ओम शांति। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। गणेश

हमें भी ये याद रखना है, हम भी ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न हैं। स्वयं ज्ञान सागर शिव ने हमें सत्य ज्ञान देकर ईश्वरीय बुद्धि प्रदान कर दी है, तो हमारे पास श्रेष्ठ विवेक भी है, ईश्वरीय विवेक भी है। और बाबा से बहुत सारे वरदान हमें मिले हैं, वे अविनाशी हैं, तो हम सिद्धिदाता भी बन जाते हैं। उनसे हमें शक्तियां भी मिली हैं विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति हमारे पास है। कोई भी विघ्न आता है, जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और विघ्न विनाशक हूँ, तो विघ्नों के प्रभाव में आकर हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन रोज सवेरे हमें कुछ चीज़ें अपने को याद दिलानी हैं। हम एक लिस्ट बना ले 5-7 चीज़ों की, जो रोज सवेरे स्वयं को याद दिलाएंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, जो विघ्न मेरे सामने आया है उसको नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। हमें यह भी याद रखना है, जो लंबे समय से निर्विघ्न जीवन जीते हैं वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। अपने विघ्नों को नष्ट करने वाले भी और दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने वाले भी बन जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी पर हम सभी अपनी ईश्वरीय बुद्धि पर ध्यान दें, चेक करें, मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है या केवल लौकिक बुद्धि। लौकिक बुद्धि में अभिमान आ सकता है, मैंपन आ सकता है, ईश्वरीय बुद्धि इन सब से हमें मुक्त करती है। ज्ञान हमें ज्ञान सागर से मिला है, तो हमें चिंतन करना है कि हम ज्ञान को याद रखते हैं, कौन सी बातें हमारे चिंतन में रहती हैं। ज्ञान चिंतन करते हुए, ज्ञान का स्मरण करने से हमें दिव्य विवेक प्राप्त हो जाता है, हो जाएगा। हमें अपनी शक्तियों को भी चेक करना है कि कहीं व्यर्थ संकल्पों में हम अपनी शक्तियों को बहा तो नहीं देते हैं। शक्तियां तो हमारे पास हैं, कहीं वो सो तो नहीं रही हैं। सोई हुई शक्तियों को हमें जगाना है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से, और अच्छी तरह से आज चेक कर लें। हम विघ्न आने पर परेशान हो जाते हैं या अपनी स्थिति को स्थिर रखने में समर्थ होते हैं। इसमें सद्ज्ञान का प्रयोग भी और शक्तिशाली होने का अनुभव भी हमें बहुत मदद करता है। विघ्न तो आते हैं, सबके पास आते हैं, तन के भी आ जाते हैं, परिवार के भी आते हैं, बीमारियों के भी बहुत ज़्यादा आते हैं, काम धंधों में पैसे के विघ्न, और आजकल दुनिया में संबंधों के विघ्न सबसे भारी पड़ रहे हैं मनुष्य को, क्योंकि उसमें अपनापन होता है। उसमें आत्मिक भाव बनाते चलें, तो इन सबको मिलाकर जब हम चलेंगे तो विघ्न कम से कम आएंगे और विघ्नों को हम नष्ट भी कर पाएंगे। पहले तो हमें ये कला सीखनी है कि निर्विघ्न जीवन रहे। कई लोग छोटी बातों को भी बड़ा विघ्न मान लेते और परेशान हो जाते हैं, और कई लोगों के लिए कॉमन बात होती है, भाई ये बात तो आती है, ठीक है चली जाएगी, तो वो शक्तिशाली रहकर उन चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। तो जितने हम हल्के रहेंगे विघ्न भी हल्के होकर नष्ट हो जाएंगे। तो आज से सभी गणेश बन जाएं, बाबा की बातों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को निर्विघ्न बनाएं और दूसरों के लिए विघ्न

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। युद्ध में सीमा पर जब कोई सामने वाले को मार गिराता है तो वह देश के लिए नायक बन जाता है, लेकिन जब कोई देश के भीतर किसी दूसरे को मार देता है तो उसे हत्यारा कहा जाता है। किसी को मारना वैसे तो अपराध है, लेकिन किसी न्यायालय के आदेश के अंतर्गत किसी को फांसी पर लटका देना जल्लाद की ड्यूटी कहलाती है। जब कोई देश के लिए अपनी जान दे देता है तो वह शहीद कहलाता है, लेकिन यदि कोई अपना जीवन आत्महत्या द्वारा समाप्त कर लेता है तो उसे कायर कहा जाता है। चोर भी चाकू का प्रयोग करता है और सर्जन भी चाकू का प्रयोग करता है। किसी भी कर्म में कोई पाप नहीं होता, पाप तो हमेशा उस कर्म के पीछे मौजूद आशय में होता है। यह बात समझ लेने से संबंधों में सहजता आ जाती है, फिर माफ कर देना उसके लिए सरल हो जाता है। यह समझ लोगों को स्थिति के अनुसार ढलने में सहायक होती है, और सबसे बड़ी बात है कि यह आपको अपने आसपास के लोगों को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। हमें सदा इस बात के प्रति सजग व सचेत रहने की जरूरत है कि हमारे आसपास का संसार तो हमारे कार्यों से ही हमें जानना जारी रखेगा। यही कारण है कि आपके कार्यों के माध्यम से प्राप्त परिणाम उस कार्य के पीछे के आपके आशय और इरादे से अधिक अंक हासिल कर लेते हैं। तभी तो यह जानते हुए भी कि लोग आपको प्रेम करते हैं, आप यह बात उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, और यही कारण है कि उन लोगों के सामने भी हमें स्वयं को स्पष्ट करने की नौबत अक्सर आ जाती है, जिनके बारे में हम मानते हैं कि वे हमें स्वयं से बेहतर जानते हैं। संसार को इस दृष्टिकोण से देखते हुए भी कि किसी कार्य में कोई पाप नहीं होता, पाप तो उस कार्य के पीछे छुपे आशय व इरादे में होता है, हमें इस तथ्य के प्रति भी सजग रहना होगा कि संसार हमें हमारे कार्यों से ही जानता है, भले ही हमारा आशय हमारा इरादा कुछ भी हो। भगवान भले ही हमारे इरादों को जानते हों, लेकिन इंसान तो हमें हमारे कार्यों के आधार पर ही पुरस्कृत या दंडित करेगा। क्यों न हम इस लोक व परलोक दोनों में ही अच्छा होने और दोनों को ही जीत लेने की कोशिश करें। अच्छे इरादे से कार्य करना ही संपूर्ण मानव बनने का इकलौता साधन है। इसलिए सदा अपने इरादों को नेक रखें तो आपके कार्य भी महान होंगे और सबके नजरों में आपका सम्मान भी बना रहेगा।

परमात्म प्रेम सबके लिए एक जैसा है। वो परमात्मा अपने बच्चों को बिना किसी दायरे के, बिना किसी भेदभाव के, सिर्फ प्यार भरी नजरों से देखता है। God loves us with everlasting love. With this, we present you seven artists: Jethram, Srishti, Jitu, Ashish, Raman, Harsh, and Rinalini. Let's listen to this soulful melody, Milavatan ka Khula Nimantran.

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाई थी। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

ऐसे लोग देखे हैं जो बेहतरीन वक्ता रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष बाद मंच से पहले जैसा प्रभाव डालने में उन्हें पसीने छूट गए, क्योंकि भरी सभा में भाषण देने का उनका अभ्यास छूट गया था। हमने कई ऐसी उच्च शिक्षित महिलाएं देखी हैं जिन्होंने गृहिणी बन जाने के बाद अपने आप को चार दीवारी में ऐसा कैद कर लिया कि वे अपने संवाद के धारा प्रवाह को खो बैठी। हमने ऐसे उत्कृष्ट गायकों को देखा है जो अपने गायन में उस स्तर को अब नहीं छू पाते जिसकी उनमें क्षमता है, क्योंकि उन्होंने रियाज करना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों है कि मेरा बायां हाथ उतना सक्रिय नहीं है जितना कि दायां हाथ? सीधी बात है, क्योंकि मैं अपने दाएं हाथ का प्रयोग अधिक करती हूँ। आपकी वे मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं जिनका प्रयोग आप अधिक करते हैं, और जिनका प्रयोग आप नहीं करते वे शक्तिहीन हो जाती हैं। हृदय संबंधी अधिकांश समस्याएं इस बात का परिणाम होती हैं कि हृदय का प्रयोग उसकी अधिकतम क्षमता तक नहीं किया गया। जिस हृदय से काम लिया जाता है वह कर्मठ बना रहता है। यह बात शरीर के हर अंग पर लागू होती है। मानव शरीर अपना जीवन काल पूरा हो जाने के बाद देहांत हो जाने के लिए गढ़ा गया है, लेकिन हम ही इसमें जंग लगाकर इस जीवन के काल को जल्दी बुला लेते हैं। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते तो इसे गंवा देते।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

जिस धन का प्रयोग नहीं किया जाता उसकी कीमत घट जाती है, जिस प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया जाता वह खत्म होने लगती है, जिस क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता वह कमजोर पड़ने लगती है, जिस मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता उसमें जंग लग जाता है, जिस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता वह एक भार समान हो जाता है, जिस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता वह अनुपयुक्त हो जाती है। यहाँ हमें कथा याद आ रही है

में अपनी यात्रा पर जाने से पहले एक मालिक अपने तीन नौकरों को बुलाता है और उन्हें कुछ मुद्राएं सौंप देता है। उसके वापसी पर पहले नौकर ने बताया कि उसे दी गई 5 मुद्राओं में उसने 5 और जोड़ दी हैं। दूसरे ने बताया कि उसे दी गई 2 मुद्राओं में उसने 2 और जोड़ दी हैं। मालिक प्रसन्न हुआ और बोला, तुम लोग इन कुछ मुद्राओं के प्रति निष्ठावान रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें और अधिक का प्रभारी बनाऊंगा। तीसरे नौकर ने आकर वह इकलौते मुद्रा भी मालिक को लौटा दी जो उसे दी गई थी। उसने उस मुद्रा का उपयोग ही नहीं किया। इस पर मालिक बोला, इससे यह मुद्रा वापस ले लो और उसे दे दो जिसके पास 10 मुद्राएं हैं। मैथ्यू में कहा गया है, जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा और इस तरह उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जीवन का परम दुख आखिर में होने वाली मृत्यु पर नहीं है, बल्कि अपने जीते जी अपने भीतर संसाधन की संपदा का मर जाना है। हम सांस लेते हुए शव न बने, जो उपलब्ध है उसका प्रयोग करें, अन्यथा आप उसे गंवा देंगे।

0: रुक, रुक, रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

एक आदमी जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर अपनी मचान पर लटका रहता है। वह दिहाड़ी पर पुताई का काम करता है। जीवन यापन करने के लिए उसका यही विचार है। उसके एक सहकर्मी ने पुताई करने की अपनी कुशलता को कुछ और निखार लिया है, इसीलिए वह ठेके पर काम करता है। जीवन यापन का यह एक और विचार है। एक अन्य व्यक्ति ने गाड़ी चलाना सीखा और एक व्यापारिक घराने में बतौर ड्राइवर नौकरी कर ली। वहां वह 14 घंटे काम करता है और इससे उसे अपने गुजारे लायक वेतन मिल जाता है। जीवन यापन का यह उसका विचार है। ऐसे ही एक चतुर व्यक्ति ने एक कॉरपोरेट संस्थान में बतौर ड्राइवर नौकरी कर ली, जहां उसे वेतन के अलावा अन्य लाभ और सुविधाएं भी मिल रही हैं। जीवन यापन का यह एक अन्य विचार है। कोई भोजन बनाने के अपने कौशल से किसी घर में मासिक वेतन पर बतौर रसोइया नौकरी कर लेता है, जबकि ऐसा ही दूसरा व्यक्ति सड़क किनारे अपना ही ढाबा खोल लेता है और दैनिक लाभ कमाता है। जीवन यापन के ये दो भिन्न भिन्न विचार हैं। ध्यान दे कि इन सभी व्यक्तियों के पास जीवन यापन का एक एक विचार था, जिसके लिए किसी शिक्षा या पूंजी निवेश की कोई पूर्व अपेक्षा नहीं थी। जीवन यापन का आपका विचार सेल्समैन बनने का हो सकता है, तो किसी और का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, तीसरे का एक उद्यमी बनने का और चौथे का अपने पारिवारिक व्यापार से जुड़ जाने का। और ऐसे लोग भी हैं जो इस विचार में विश्वास रखते हैं कि इस संसार में जीवन यापन के लिए कोई अवसर है ही नहीं। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि विशाल से विशाल उद्योग भी कभी केवल एक विचार ही था। हर क्रांति और हर सामाजिक संगठन कभी केवल एक विचार ही थे। उस विचार से ज्यादा सशक्त कुछ नहीं होता जिसका सही समय आ गया हो। हालांकि वह विचार क्या लाखों लोगों का पेट भरेगा या आपके ही छोटे से पेट को भर पाएगा? वह विचार आपको मात्र 4 पैसे कमा कर देगा या आप पर करोड़ों की बरसात कर देगा? यह सब इस बात पर निर्भर

करता है कि वह विचार किस तरह की सोच वाले व्यक्ति के दिमाग में पैदा हुआ है और वह उस विचार का क्या करता है। निष्कर्ष यह है, आप और आपके विचार मिलकर आपका संसार बदल सकते हैं। तो हमेशा ऐसे श्रेष्ठ विचारों से संपन्न रहें और उन विचारों को कार्यान्वित करने का भी प्रयास करते रहें, तो निश्चित रूप से आप उस कार्य में सफल जरूर होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य है, मगर क्या स्वास्थ्य इतना ही है? आज अगर हम स्वास्थ्य का ना होना भी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य समझते हैं तो भी आज हम देखते हैं कि कई लोग दवाइयों को खाते हुए अपने आप को स्वस्थ समझकर चलते हैं। कई लोगों को आदतन गोलियां खाने की या किसी न किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन करने की आदत हो जाती है। लोग कहते भी हैं कि भाई, इन दवाइयों के साथ तो ठीक चली रही है गाड़ी, तो फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा भी कई लोग मानने लगते हैं। जब हम स्वास्थ्य के बारे में सही जागरूकता नहीं रखते तो ऐसा होता है कि हम अपनी अपने स्वास्थ्य की मान्यताओं को ही सत्य मानने लगते हैं। इसलिए ये जानना भी आवश्यक है कि सही अर्थों में हम स्वास्थ्य को कैसे समझें और अपने परिवार और अपने स्वजनों को स्वस्थ बनाने में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। आइए, आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं। आज हमारे मार्गदर्शन के लिए स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर साहब की, बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई, जब तक किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई व्याधि ना हो, कोई पेन नहीं हो बॉडी में, तो लोग समझते हैं कि ऐसे किसी प्रकार का पेन ना होना या बीमार ना होना ही स्वास्थ्य है, ऐसा कई लोग समझ लेते हैं। और कई कई बार तो लोग उससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई, मैं अगर ये दवाई लेता रहता हूँ, हर दिन मैं ये गोली खाता रहता हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, तो मैं स्वस्थ ही हूँ, मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इसको भी स्वास्थ्य का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन समझ कर लोग चलने लगते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे
1: श्री भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात की है, एंड नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये बात करता है कि सिर्फ शरीर का दर्द नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने चाहिए। आज इस भाग दौड़ की दुनिया में जब हम अखबार अभी देखेंगे खोलकर, जब बच्चों का 10वीं या 12वीं का रिजल्ट निकलता है, उनका परीक्षा फल आता है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि ये बच्चा 99.99% पाया, और कुछ बच्चे तो इतना अच्छा नंबर पा रहे हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। पर आप ये भी तो देखिए कि बहुत बच्चे मेहनत के बाद भी अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, तो वो तो मानसिक रूप से परेशान हो ही जा रहे हैं, साथ साथ उनके माता पिता भी उस बच्चे के नंबर न होने से भी परेशान हो जा रहे हैं। तो आप इस पूरी व्यवस्था को स्वस्थ व्यवस्था नहीं कह सकते। आप अगर किसी भी व्यक्ति के बढ़ने से कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है और आप अगर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप उसको स्वस्थ व्यवस्था नहीं मानेंगे। आप ये सोच रहे हैं, आपका दिमाग कुछ ज्यादा सोचता रहता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्या मेरे खाने में कुछ गलत मिला हुआ है, अरे लोग क्या कहेंगे, क्या ये जो मैंने कपड़ा पहना है ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अगर आप बार बार इसी चीज के लिए परेशान होते रहेंगे तो आपको ठीक से स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। सिर्फ शरीर में कोई दर्द ना होना, कोई व्याधि ना होना, कोई परेशानी ना होना, जैसे हम लोग अभी डायबिटीज की बात की, आप पेशेंट को, मरीज को मालूम ही नहीं चलता है कि डायबिटीज है, उसको पता चला कंधा बस जाम है, कंधा जाम है, अरे कुछ तरह दर्द हो गया होगा, अरे जिम में खींच गया होगा, अरे हाथ खींच लिए होंगे, ये सारा हम बस बोलते रहेंगे और पता चलता है कि अरे भाई, ये तो डायबिटीज निकल गई। महिलाएं कितनी आती हैं कि उनको मासिक धर्म की समस्या हो रही है, महिलाएं आ रही हैं जिनको बाल झड़ रहे हैं, थकान बहुत लग रही है, उनको पसीने में दुर्गंध होने लगी, फिर अरे ये तो बहुत दिन से चला, हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तब मालूम चले रहे आपको तो थायराइड की समस्या शुरू हो गई, हार्मोनल समस्या शुरू हो गई। तो मैं सब बहुत एक खतरनाक एग्जांपल कैंसर है, आदमी को मालूम ही नहीं चला, जब वो सेकेंड फेज थर्ड फेज में चला गया तब पता चला, अरे भाई तो मुझे कैंसर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है आपके शरीर में कहीं पे, और आप सोच रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, पर आपको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप तीनों तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके रोज कोई दवा या गोली अपने दिमाग से, अपनी कॉमन सेंस से, अपने सेंस से मत खाइए। जब तक किसी डॉक्टर ने आपको ना लिखी हो, जब तक आपको ये समस्या हो, कुछ गड़बड़ आपके अंदर निकले, कुछ ठीक चीज ना हो, तो आपको वो दवा खानी चाहिए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि रोज मैं ये गोली खा लूं तो मैं ठीक महसूस करूंगा, रोज मैं ये, सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैं देता हूँ, कितने मरीज आते हैं, आप उनसे कहिए कि आप ये दवा खाते हैं, हाँ सुबह उठ के गैस की गोली खा लेते हैं, क्यों, हमको गैस बहुत बनती है। अच्छा, आप भोजन में कोई अपने वो किए, नहीं नहीं भोजन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, हम बस ये गैस की गोली सुबह खा लेते हैं, फिर हमें जो मन में आता है हम खाते रहते हैं। अरे अपना भोजन सुधार लीजिए, आप अगर अपना भोजन सुधार लेंगे तो शायद आपको वो गोली की जरूरत न पड़े। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए, अपने भोजन को सुधार लीजिए, और जहां तक हो सके अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके दवाई का प्रयोग मत करिए। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों का, होम्योपैथी का, एलोपैथी का, इवन नेचुरोपैथी का अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके उनका प्रयोग मत करिए।
0: ये बात समझ में आती है कि आज हम दवाइयों के साथ अपने जीवन को ठीक चला रहे हैं, और इसे हम स्वास्थ्य का परिचायक समझकर अगर चलते हैं तो वास्तविकता में ये हमारी भूल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ में आती है। अब दवाइयों के साथ जो चीजें हम कर रहे हैं, दवाइयां हर दिन खाने वाली जो चीजें एक रेगुलर चीज बन गई है, वो आम बीमारियों के रूप में भी हम देखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर हम डायबिटीज और बीपी, इनके लिए लोगों को गोली लेते हुए देखते हैं। डायबिटीज के लिए मरीज डायबिटीज की गोलियां ले रहे होते हैं, और कोई को अगर बीपी की समस्या है तो वो बीपी की गोलियां लेते रहते हैं। पिछले एपिसोड में हम ये बात कर

0: थे कि बीपी क्या है और इसे कैसे समझने की जरूरत है और क्या इसमें होता है शरीर में, ये चीज हम समझ रहे हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हम आम लोगों को, जैसे कोई घर आए मेहमान को पूछते हैं, वैसे ही हम पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज या बीपी तो नहीं है। अगर कहते हैं कि हाँ उनको बीपी है या डायबिटीज है तो भी हम बोलते हैं हाँ अच्छा ये भी ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेबल नॉर्म के रूप में इस बीमारी को देखने लगे हैं। तो प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के बारे में तो धीरे धीरे धीरे धीरे हम समझते आए हैं, मगर बीपी की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो हम इतना नहीं सुनते थे कि भाई बीपी भी कोई चीज है, बट आजकल ये एक कॉमन नोशन बन गया है। हर कोई मतलब बीपी की दवाई के बारे में बात करता है, बीपी शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये बढ़ क्यों रहा है, इसका इसकी वजह क्या है?
1: जैसा भैया हम लोग ने आज शुरुआती बात में किया कि जैसे हेल्थ की जो डेफिनेशन की बात की कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए। और कल जो हमने बातों में ये बात समझी कि देश में करीब 15 से 20 करोड़ लोग इस समस्या के मुहाने पे खड़े हैं, मतलब, और हमें जनसंख्या इतनी बड़ी है इसीलिए फिगर हमेशा बहुत बड़े हैं। हम इतने स्ट्रेस में इस समय रह रहे हैं कि हमारा जो तनाव है वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है। बहुत एकदम अगर साधारण रूप से समझिए कि अगर आप किसी चीज पे गुस्सा करते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी आवाज तेज हो जाती है, आपका गला सूखने लगता है, आप पूरे शरीर में आपके कंपन होने लगता है। तो इसका सीधा साधा ये मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है कि मतलब आप किसी पे गुस्सा हुए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अगर आपकी प्रवृत्ति यही है कि आप बार बार हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो सबसे जो बड़ी चीज ये है कि आप मानसिक रूप से बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार परेशान हो जा रहे हैं। आपके ऑफिस में अगर कुछ हो रहा है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आपके व्यापार में कुछ हो रहा है, आप उसके लिए बार बार चिंता करेंगे तो उससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, और अगर आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली मिल रही है वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब आदमी कम सो रहा, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा मोबाइल फोन है। हम लोग ने पिछले एपिसोडों में भी बात किया है, कृपा करके अपने मोबाइल फोन को अपने बिस्तर से दूर रखिए। अगर वो आपके हाथ में रहेगा तो आपको वो सोने नहीं देगा, और अगर आपको वो सोने नहीं देगा तो आप फिर अगले दिन सवेरे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जी भैया, हम लोग ने ये भी देखा है कि जो ब्रह्म कुमारी का लिटरेचर है वो बहुत पॉजिटिव लिटरेचर माना जाता है, वो बड़ा अच्छा लिटरेचर माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आप अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ किताब पढ़ लें, हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ अच्छी चीज का अध्ययन कर पाए। ये तो हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर बच्चे को सुलाना तो कोर्स की किताब दे दीजिए वो तुरंत सो जाएगा। तो हम अगर अच्छे विचार पढ़कर अगर हम सोएंगे तो हमारी नींद ठीक रहेगी, हमको मानसिक रूप से आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, और हम अपने जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है उस दोनों का तनाव कम कर पाएंगे। तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जरा ठीक से सोइए, पूरा 6 से 7 घंटा सोइए। मोबाइल के बाद जो दूसरा कारण ये देखा जा रहा है जो नींद लोगों की कम होती है वो है ट्रैवल टू वर्क, मतलब आप अपने घर से अपने काम करने की जगह पे कितना दूर जाते हैं। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये देखता हूँ लोग वहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा एक तरफ, मतलब दिन में 24 में से नॉर्मल है 2.5 से 3 घंटा वो अपना सिर्फ अपने काम की जगह पे जाने में और काम की जगह से अपने घर जाने में समय बिता दे रहे हैं। तो सोचिए 24 में से 3 घंटा तो लोगों का अपने सफर में ही बीत गया। तो आपके पास जो नींद का समय, जो 8 घंटे की नींद आपको चाहिए, वो कैसे मिली? तो ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो अपना ट्रैवल टाइम कम करने की कोशिश करिए, और सोते समय प्लीज मोबाइल को जो प्रयोग है उसको कम करिए, तो आपकी नींद ठीक हो जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, जो आप अभी बात कह रहे हैं वो पता चलता है कि वो कितनी प्रासंगिक है। एक तो हम आज अपने ही ख्याल रखने के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं हम, या तो अपने काम से रिलेटेड चीजें जो है उसको ही ज्यादा प्रामुख्यता देखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अगर हम सेल्फ केयर नहीं करते, अपने ख्याल रखने के बारे में हम ध्यान नहीं देते, तो हमारे अपने स्वास्थ्य को हम दरकिनार करते हुए इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है और इसके फाइनेंशियल कॉस्ट भी हैं, ये बात समझ में आती है। पर जैसे आपने कहा कि एक सकारात्मक लिटरेचर जो है, ऐसी पॉजिटिव चीजें जो ब्रह्म कुमारी इस परिवार में लोगों को मार्गदर्शन के रूप में मिलती है, वो उन्हें सशक्त बनाने के लिए है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बहुत बार लोग ये कहते हैं हम करना तो चाहते हैं मगर होता नहीं है, मगर उसका उदाहरण यहाँ ब्रह्म कुमारी इस परिवार में हम देखते हैं कि लाखों लोग आज यहाँ सिखाए जाने वाले इन सरल विधियों को सीख कर अपने जीवन को सशक्त जीवन बनाते हैं, जीवन में छोटी छोटी तब्दीलियां करते हैं, बुरी आदतों से बच जाते हैं, अपने क्लॉक को, बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए सोने और जागने के समय को निर्धारित करते हैं। वो जैसे अक्सर राजयोग ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यही बताया जाता है कि आप स्वयं के राजा बनते हैं, आप अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने काबू में स्वयं को, अपने मन को, आप जो करना चाहते हैं वो सशक्त होकर कर सकते हैं, बात पता चलती है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर साहब मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि बहुत बार हम बीपी के बारे में सुनते हैं, तो पहले तो ये चीज समझने की जरूरत भी है कि हम इसमें मन का क्या रोल है, हमारे शरीर का क्या रोल है, और हमारे डाइट, खान पान इत्यादि का क्या रोल है बीपी की बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं या इससे ग्रसित होते हैं।
1: भैया, आपने अभी बड़ा अच्छा बताया, और जो अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करने आते हैं, मैं जो भी सुन रहा है मैं चाहूंगा प्लीज एक बार माउंट आबू वाले सेंटर पे जरूर जाइए। जब सवेरे 4 बजे आपको उठाएंगे मेडिटेशन के लिए, और उठाएगा कोई नहीं, ये बात गलत है, आप अपने आप उठ जाएंगे, आप अपने आप, आपके अंदर से आवाज आएगी, यार इतने दूर आए हैं, चलो चल के देखें क्या होता है। और मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा, जहां पहला दिन थोड़ा सा परेशान करेगा, दूसरे तीसरे दिन तो बाप रे, आपको इतना आनंद आने लगेगा कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अपने जो मन है मानसिक रूप से शांत होते चले जाएंगे। आप खुद देखिए, ब्लड प्रेशर के इलाज में जो चीज सबसे पहले कही जाती है कि प्लीज थोड़ा मेडिटेशन करिए, ये बड़ा ही ब्रॉड टर्म है मेडिटेशन, मगर आप किसी भी विधि से, किसी भी गुरु के सिखाए हुए तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो आप बहुत कुछ पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और आप बीपी से बच सकते हैं। अभी मैं एलोपैथी की पढ़ा हूँ, तो अगर आप किताबों को पढ़िए और अगर आप क्लिनिक्स में भी जाइए डॉक्टर के यहाँ, तो पहले वो तुरंत बोलते थे कि अरे ये गोली खा लो और ठीक हो जाएगा। अब वो देखिए आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब कुछ एक्सरसाइज करिए, सेकेंड यूज ऑफ योगा आसन एंड प्राणायाम, कि आप कुछ आसन करिए मतलब फिजिकल एक्टिविटी करिए, प्राणायाम करिए मतलब ब्रीदिंग पे अपने कंट्रोल करिए, यूज ऑफ मेडिटेशन, प्लीज यूज मेडिटेशन, मतलब आप मेडिटेशन करिए, और उसके बाद नीचे लास्ट में लिखा जाता है कि अवॉइड सॉल्ट इनटेक। पहले जैसे हमेशा बोला जाता था ब्लड प्रेशर है तो आप 4 चीजें अपने भोजन में से निकाल दीजिए, जो है चूरन, चटनी, अचार और पापड़, कि अगर आप ये चीज जिसमें भयंकर सॉल्ट है, और खासकर आबू राजस्थान में है तो वहां तो बड़ा अच्छा नमक का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत अच्छा नमक और बहुत अच्छा घी का प्रयोग किया जाता है और वो पचा भी लेते हैं उसको। तो अब डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं कि आपको अपने जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको ठीक करना चाहिए। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप आलसी प्रवृत्ति के हैं, मतलब आप दिन भर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप ही मतलब कुर्सी पे बैठे ही बैठे काम कर रहे हैं, आप हिल डुल नहीं रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने को थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। कहा जाता है प्ले एनी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए। आप वो नहीं कर सकते तो बेसिक वॉकिंग करिए, आप टहलिए। और ये भी कहा जाता है प्लीज घर के बाहर जाके टहलिए। अपने घर में ट्रेडमिल ले आए, उस पर टहल रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करिए कि आप बाहर जाके भी अगर टहल पाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो मन है वो वातावरण को देखेगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आप कुछ लोगों को देखेंगे, आप अगल बगल आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। और ये हुआ मेंटल बात की मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम का प्रयोग करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपना आलस्य जीवन जो है उसको छोड़िए। और तीसरा जो कहा जाता है, मतलब माइंड ठीक हो गया मेडिटेशन से, बॉडी ठीक हो गई ठीक ठाक खाने से, एक्सरसाइज, बॉडी ठीक हो गया, और फिर बोला जाता है कि डाइट को कंट्रोल करिए, मतलब अपने भोजन को कंट्रोल करिए। और सबसे पहली बात जो बोली जाती है लो सॉल्ट डाइट, मतलब आप प्लीज ऐसा मतलब भोजन करें जिसमें नमक की मात्रा कम हो। और जो आज के परिवेश में मैं जो बोलना चाहूंगा कि प्लीज फ्रोजन एंड फ्राइड, मतलब जो भी भोजन फ्रीज किया गया हो और उसका प्रयोग हम फिर से तल के या गर्म करके या माइक्रोवेव करके या ओवन में डाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि आप एक बात समझिए, किसी चीज को भी प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी चीज को जिसको तला बहुत ज्यादा गया है, जिसपे नमक बहुत ज्यादा डाला गया हो, इन सारी चीज को अपने भोजन से हटा दीजिए और अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा घूमिए टहलिए और थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, ये सब आपको बहुत फायदा देगा।
0: बहुत ही सुंदर बात आप ये समझा रहे हैं कि एक और हम बीपी के बारे में बेहतर समझ तो हासिल कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम इसके निदान के लिए या इससे बचाव के लिए भी हमें क्या करने की जरूरत है, ये भी चीज हमें समझ में आ रही है। दोस्तों, ये ना समझें कि बीपी उम्र के साथ आने वाली बीमारी है और इससे हम नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है। अगर हम आज से ही अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम बेहतर बढ़ा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा तला हुआ या नमकीन चीजें खाना, और खासकर आज क्योंकि हम बहुत सारी चीजें घर में नहीं बनाते हैं और आसानी से ये चीजें बाहर से हम खरीद के खा लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए घातक हो सकती हैं, हमें बीमारियों के कगार पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। इसलिए अपने आप के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और कुछ सकारात्मक कदम उठाएं, जैसे कि आप थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा अपने भोजन के प्रति ध्यान देना शुरू करेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। आज समय को देखते हुए इस एपिसोड में यहां रुकते हैं दोस्तों, मगर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने आज हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें मार्गदर्शन दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य की इस कड़ी में हमने बीपी, जो एक ऐसी बीमारी है जिसे ब्लड प्रेशर के रूप में हम जानते हैं, उसके बढ़ते हुए कारणों के बारे में समझा। साथ में ये भी समझा कि हम क्या ऐसे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज के सेहत स्वास्थ्य में ये रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। परमात्मा को आखिर हमने तलाश लिया, हमने ये जाना कि जिस तरह से मैं एक आत्मा, एक लाइट का एक पॉइंट हूँ, उसी तरह से वो परम पिता भी एक लाइट, एक पावर हाउस है। मैं मुझे अपना ही स्वरूप या मैं उसी का ही स्वरूप हूँ, लेकिन मैं पुत्र, वो पिता है। आगे और जानते हैं, याद होगा कि पिछली कड़ी पे हमने छोड़ा था कि कहाँ है वो, कहाँ रहता है वो परम पिता। तो आइए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: कहाँ है वो? हमने मिल तो लिए, हम मिल लिए उनसे। आपने कहा कि आपने नहीं कहा, हम आपने जो कहा हमने उसे महसूस भी करने की कोशिश की, ये भी जान लिया कि वो कौन है, पहचानने की कोशिश की, पर वो रहते कहाँ है, कहाँ ढूंढे।
1: जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो स्वाभाविक रीति से नजर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ, है ना? बस अभी, कभी कहेंगे बस अभी थक गया, बस अभी मुक्ति चाहिए, बस अभी
0: कहाँ हो तुम, actually कहाँ हो तुम, yes, where are you,
1: where are you? Now you should think that क्यों हमारी नजर ऊपर जाती है? हमें कोई कुछ भी नहीं पता कि ऊपर क्या है, ना हमें किसी ने बताया कि ऊपर कुछ है, लेकिन स्वाभाविक, दिस इज वाई वी से कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द सोल, तो स्वाभाविक रीति से नजर ऊपर जाती है, क्योंकि वो ही वो घर है जहां से हम आए हैं।
0: कहीं मेरी याद में रचा बसा है।
1: हाँ, क्योंकि हम उस घर से आए ना। सो अ मेमोरी इज देयर। अब किसी के अंदर वो मेमोरी क्लियर होगी और किसी के अंदर वो बिल्कुल फेंट है, लेकिन एक बार हम वहां से आए हैं तो उसकी मेमोरी
0: हमारे साथ है,
1: एब्सोल्युटली इनग्रेड है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही अब सब देखेगा, उसी को पता, मतलब ऑटोमेटिकली नजर उसकी तरफ जाती है। तो जैसे ये जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज आवर फिजिकल वर्ल्ड, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मैटर, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, इट इज अ वर्ल्ड टाइम एंड स्पेस, यू नो ये लिमिटेड है, एवरीथिंग इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आवाज है, जहां मूवमेंट है, हलचल है, जहां रिलेशनशिप्स है, जहां नॉइज है, ये सब कुछ है, वो ये दुनिया है जिसको हम स्थूल वतन कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड, जहां हम कॉर्प्स में है,
0: ह्यूमन बीइंग्स हैं।
1: हाँ, हम बीइंग हैं लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में है, तो हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड या स्थूल वतन में है, लेकिन इस शरीर को

0: लेने से पहले भी तो हम कहीं थे ना, यहाँ आकर हमने शरीर धारण किया, लेकिन इस शरीर को लेने से पहले हम कहाँ थे? तो परमात्मा आकर ही हमें उस घर का परिचय देते हैं। जैसे हमें अपना दिया, फिर अपना दिया परमात्मा ने, फिर उस घर का भी दिया कि इस दुनिया से पार, चांद सितारों की भी दुनिया से पार, बियॉन्ड ऑल दिस स्पेस दैट वी कैन सी, देयर इज अनदर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड इन द सेंस it is just a region actually, you cannot call it, it's a world, but it's basically a region, it is an area which is beyond time and space, jahan sirf prakash hai, it's just red light, just golden red light, and that is the land,
1: that's where we
0: live. That is where we have, yes, absolutely,
1: okay,
0: and that is the land where we all stayed, jahan parmatma bhi nivas karte hain और जहां हर आत्मा भी निवास करती थी इस सृष्टि पर आने से पहले. इट इज अ लैंड ऑफ कंप्लीट साइलेंस, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, स्थिरता. क्यों स्थिरता नहीं? क्योंकि वहां कोई संकल्प नहीं चलेगा,
1: कोई थॉट नहीं,
0: ये नॉइज तो नहीं होगी
1: क्योंकि बॉडी
0: ये तो बॉडी नहीं है, लेकिन जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, या हम अकेले भी हैं, भले हम किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन एक नॉइज अंदर चलती है, थॉट्स. लेकिन वो जो धाम है जिसको हम परम धाम कहते हैं, क्योंकि वो परम ऊंचे से ऊंचा धाम है, वो परमात्मा का रहने का भी धाम है, तो परम धाम कहते हैं. वहां कोई आवाज नहीं, संकल्पों की भी आवाज नहीं, इट्स अ थॉटलेस स्टेज जहां आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग,
1: इट्स जस्ट देयर,
0: इट्स जस्ट देयर, अ बीइंग, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन प्लस बीइंग. यहां आकर हम ह्यूमन डूइंग हो जाते हैं, I'm doing this, I'm doing this, what am I being? There I am in that just conscient being.
1: So I'm still there.
0: I'm just absolutely still. Ek light ke andar, ek light suspended hai jaise. You can see, it's like star. Ye hum dekh rahe na, itne sare stars. It's a region like vast expanse, no time, no space, and usme ye stars suspended hai. Apne apne time pe fir,
1: नीचे उतरते
0: हैं, इस सृष्टि पर आते हैं. तो मैं आत्मा उस एब्सोल्यूट स्टिलनेस और एब्सोल्यूट साइलेंस, और इसीलिए हर आत्मा उस शांति को तलाशती है. और जब भी अशांत होते हैं तो हमें वो घर बहुत याद आता है, क्योंकि उस घर में कोई थॉट नहीं था, तो बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल साइलेंस. एंड वहां परमात्मा भी रहता है, वो भी एक ज्योति बिंदु, एंड मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु, तो उसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं. ये है फिजिकल वर्ल्ड और वो है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का रहने का स्थान. अलग अलग नाम से उसको याद किया गया है, परम धाम, शांति धाम क्योंकि वहां शांति है, मुक्ति धाम क्योंकि हम इस शरीर के कर्म बंधन से मुक्त हैं, निर्वाण धाम वाणी से परे हैं. तो इन सब अलग अलग नामों से उसको याद किया गया है, वो उस परमात्मा का रहने का स्थान है और हम आत्माएं भी वहीं रहते. अब आप देखो, जब हम वहां थे तो ये स्मृति हमारे अंदर थी, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी वैसी, ये मेरा घर, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्डेड है.
1: तो हर बार व्हेन आई टेक अनदर बॉडी, यू नो, व्हेन आई मूव आउट फ्रॉम दिस बॉडी एंड टेक अनदर बॉडी, आई इन बिटवीन गो देयर?
0: नहीं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन हम बीच में घर घर नहीं जाते हैं. इट्स लाइक वो घर है और ये हमारा कर्म क्षेत्र है, वर्ल्ड स्टेज. वहां से हम आए हैं कर्म करने के लिए, और काफी समय तक हम इस सृष्टि पर रहकर ही इस कर्म क्षेत्र में पार्ट प्ले करते हैं. फिर एक समय आता है जब हम थोड़ी देर के लिए फिर से घर जाते हैं, और फिर वापस आकर वो सृष्टि रंगमंच वापस स्टार्ट होता है.
1: Because we've come for a purpose.
0: Yeah, this is like our work. This is our workplace. वो हमारा घर है. तो एक बार आप घर से ऑफिस आते हो तो 8-10 घंटे के लिए आते हो ना. आप ये नहीं करोगे कि हर एक घंटे के बाद घर जाना है बीच में. तो आप 8-10 घंटे के लिए आते हो, शाम को 8 बजे के करीब आप थोड़ी देर के लिए घर जाते हो सिर्फ रेस्ट करने के लिए. लेकिन वो घर जाने से आप रिफ्रेश होके, रेस्ट होके, रिचार्ज्ड होके वापस नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो. द सेम थिंग, ये हमारा वर्क एरिया है, वो हमारा घर है. थोड़ी देर के लिए जाएंगे रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर ज्यादा समय इस वर्क प्लेस पे बिताते हैं. लेकिन अब क्या हो रहा है कि कर्म करते करते करते हम बहुत थक गए हैं, तो अगर बीच बीच में हम कुछ क्षण निकाल के सिर्फ मन से बुद्धि से, आत्मा निकल कर नहीं जाएगी लेकिन मन और बुद्धि से जब उस घर में चले जाते हैं ना और उस पिता के पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठे बैठे भी हम वो रिफ्रेशमेंट अनुभव कर सकते हैं। जैसे अब आप बैठो और दो मिनट के लिए अपने घर को याद करो, जस्ट गो होम फ्रॉम हियर, गो होम एंड बी विद योर फैमिली, यू विल एक्चुअली फील कि आप जाकर वो एक्सपीरियंस करके वापस आ गए। सो इट विल गिव यू दैट फीलिंग
1: हैप्पीनेस, यू नो, या
0: दैट
1: कंफर्ट लेवल, या
0: दैट कंफर्ट, क्योंकि घर मतलब कंफर्ट, घर मतलब प्रोटेक्शन, घर मतलब वो पिता की सिक्योरिटी, तो वो घर मतलब वो प्योरिटी। तो इसलिए हम मेडिटेशन मतलब वो घर जाना, उस पिता के मिलना, उससे बातें करना, फिर वापस आ जाना। कैसे करना? बुद्धि से, वो फिर हम मेडिटेशन में सीखेंगे। तो ये है कि परम धाम कहाँ हम पिता को याद करें, क्योंकि जब तक हमें उसका घर नहीं पता होगा तब भी याद करना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ पे है, कहाँ हम उससे मिलने जाएं। तो हमने परमात्मा का रूप देखा, उसका नाम देखा कि हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, फिर उसका घर देखा, लैंग्वेज हम किस भाषा में उससे कम्युनिकेट करें, थॉट्स संकल्पों के आधार से कम्युनिकेट करते हैं, और संबंध हमारा उसके साथ जो संबंध बनाना चाहे वो बना सकते हैं, वो भी हम मेडिटेशन में देखेंगे। हम परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं।
1: एक्चुअली यू नो वी कैन, माय गॉड, इफ वी हैव हिम, सी लाइक कितने राइटर्स ने कितनी बार ये कहेगी कि अगर मुझे भगवान मिल जाए, अगर मुझे खुदा मिल जाए तो मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा। सो नाउ लाइक इफ
0: Absolutely. और उसके गुणों को तो हम जानते हैं, तो किसी को भी याद करना होता है तो क्या क्या चाहिए? उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसका कर्तव्य। आपने कहा था ना एक्ट ऑफ गॉड, कि हम सब यहाँ कर्म क्षेत्र पे हैं, तो उसका रोल क्या है, वो क्या कर रहा है? तो वो अपने परम धाम में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है। पूरे हमारे इस ड्रामा के दौरान वो हमारे ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आप फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, आपके बच्चे ने ऊपर से नीचे झांक कर देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, तो कहता है मुझे भी नीचे खेलने जाना है। आप कहते हो नीचे देख लेना, मतलब चोट लगेगी, दर्द होगा, नहीं मुझे नीचे खेलने जाना है, तो आप उसको भेज देते हो। दो तीन घंटा वो बहुत अच्छी तरह से खेलता है लेकिन फिर उसको थक जाता है, चोट लगने लगती है, चीटिंग भी बहुत होती है, नीचे रोने भी वो लगता है। अब ये सब थोड़ी देर तो चलता रहता है, जब वो बहुत अति में पहुंच जाता है रोने के, कष्ट के,
1: तब आप पहुंच जाते,
0: तब वो एक बार आपकी तरफ देखता है ऊपर सिर्फ, और सिर्फ एक बार बोलता है कि प्लीज मुझे आके यहाँ से ले जाओ। आप दौड़ते हुए नीचे जाएंगे, उसको उठाएंगे और ऊपर ले आएंगे, उसको हील करेंगे, सफाई करेंगे, चुप कराएंगे, सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट डे
1: ही विल डू द सेम,
0: नेक्स्ट डे अगेन ही विल से आई वॉन्ट टू गो होम। सो दैट इज शिव बाबा's रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। वो हम नीचे आ जाते हैं खेलने के लिए, कुछ समय हम बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, इट्स अ गुड गेम, बहुत मजा आता है सारा कुछ करते हुए, लेकिन बहुत समय हो गया ना करते करते, तो बीच में से दुख अशांति ये शुरू हो गई थी, चीटिंग भी शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ रोना भी आया, हम बीच बीच में उसकी तरफ देखते भी गए, उसने कहा खेल ले थोड़ी देर और, लेकिन जब हमारी जो दुख थे वो बहुत अति में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल हम जैसे कि बहुत जोर से चिल्ला पड़ते हैं कि बस अब हमारे से और सहन नहीं होगा, अब हमें बस मुक्ति चाहिए इससे, दैट इज द टाइम व्हेन ही हैज टू कम डाउन। और वो उस समय पर आ जाता है, नीचे आता है, एक एक बच्चे को फिर उठाता है, उसके सारे जो घाव है ना उस पे मरहम लगाता है।
1: I think now the time has come actually. I feel like crying, you know, because time now.
0: Yes, it is that time. He should not come. He has already come. परमात्मा आ चुका है, वही तो ये कार्य कर रहा है, वही तो हमें बता रहा है। मेडिटेशन है क्या? उसको याद करते हैं प्यार से, वो हमारे एक एक घाव को भर देता है, एक एक चोट को हटा देता है, फिर हमें फिर ठीक करके घर ले जाएगा, और फिर थोड़े दिन के बाद हम कहेंगे हमें फिर नीचे आना है। तो कई लोग जैसे कहते हैं ना बस मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, वी डोंट वॉन्ट टू कम इन टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि द नेचर ऑफ द सोल इज कर्म। यू नो, हम घर जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्योंकि जस्ट इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग ना, इट्स अ लिटिल बॉय.

0: आत्मा हो, लेकिन वो शरीर नहीं लिया, तो वो उस शरीर से, उस साकारी दुनिया से न्यारा है, तो उसको कभी वो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूला नहीं, और इसलिए उसकी क्वालिटीज में कभी
1: डिप्लीशन नहीं हुआ, कोई कमी नहीं,
0: और हमारे उसमें हो गई, क्योंकि हमने शरीर लिया, हम उसकी अवेयरनेस भूल गए अपने, और फिर हम वर्च्यूज की बजाय वाइसेस की तरफ, विकारों की तरफ.
1: No, but actually that aspect is so good, you know, that we really need, we are all crying. We need healing, you know, all of us.
0: तो परमात्मा उसी टाइम पर आता है जब हम सब की कलेक्टिव आवाज इतनी ऊंची हो जाती है, हमारे दुख इतने बढ़ जाते हैं कि त्राही त्राही मच जाती है. और सच में इस समय त्राही त्राही मची है कि पिता अब बच्चों का दुख और नहीं देख सकता. तो वो ही ड्रामा के अनुसार उसका भी रोल है नीचे आने का. क्या करना है? ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों को वापस रिस्टोर कर देना है अपनी पीस और प्योरिटी की तरफ. और उसमें क्या करना है? उसको कोई मिरेकल नहीं करना है. लोग कहते भगवान आया तो फिर कोई मिरेकल हो जाए, सारी दुनिया परिवर्तन हो जाए. इफ वी लुक एट द वर्ल्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल, व्हाटएवर द केओस इज देयर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द केओस इन द
1: माइंड,
0: इन द सोल. अगर सोल रिस्टोर हो जाए तो वर्ल्ड अपने आप रिस्टोर हो जाएगा. तो गॉड्स रोल is to restore that peace and harmony in the world. कि ये जो सारा chaos हो गया है, इसको वापस harmony में लाना है. लेकिन उसके लिए वो करता क्या है? आत्मा की. He restores the peace and purity of the soul. जब soul अपनी original state में आ जाएगी, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी.
1: Balance.
0: अपने आप balance. So that's his role. He comes at this time, heals us, restores us back to that charged battery, nature automatically takes its course.
1: But you said he takes us back also.
0: Yeah, he takes us back, absolutely, because little rest, na? He takes us back home, we rest for a little time, then come back.
1: So, but who goes? Like, whoever is in the dire need, actually, he can't take all of us, you know?
0: Yes.
1: You know, like, how does, actually, it's, you know, it's, if we look at it, you know, and right
0: उसके
1: now...
0: उसके लिए हर एक बच्चा है. हर आत्मा उसका बच्चा है, भले उसे पहचाने या नहीं पहचाने. लेकिन हर आत्मा इस टाइम जो सृष्टि पर है, वो उस परमात्मा शिव बाबा का बच्चा है. तो उसके लिए तो सभी का दुख एक बराबर है, लेकिन वो ये चाहता है कि हर आत्मा पहचान ले और अपने दुखों से मुक्त हो जाए. और वो ही ये प्रयास चला है, जो हम हमेशा कहते हैं कि इतने सारे सेंटर्स, 130 कंट्रीज, 8500 सेंटर्स, ये सब सेंटर्स खोलने की क्या आवश्यकता है? दिल्ली शहर में आज हम हैं, 150 सेवा केंद्र है. क्यों? ताकि विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ऑफ वेयर यू आर स्टेइंग यू गेट दैट हीलिंग. आप सेंटर पे आते हैं, आपको शिव बाबा का परिचय मिलता है, अपना मिलता है, एंड योर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स एंड यू आर रेडी. नॉट अबाउट टेकिंग द जर्नी होम, लेकिन व्हाट अबाउट माय लाइफ नाउ? वो तो बाद में जो होना है वो अलग, लेकिन अभी के जीवन क्या, वो जीवन बहुत सुंदर बन जाते हैं.
1: आई कैन रियली अंडरस्टैंड, यू नो, लाइक इट्स, अगर हम शिव बाबा की बात करें, उस परिचय की बात करें, उस एहसास की बात करें, आई कैन फील इट, यू नो. I haven't experienced that meditation part of it, but yes, I can, because it really makes me feel good, you know, that it's so, he is there. But I just want to ask you, ek main sawal aap se jaanna chahti hoon, ki aaj ke is waqt mein, agar Paramatma ye hai, to hum itne sare galat, jo galat hai ya sahi hai, lekin itne fear mein jo reh rahe hain, jab hum dekhte hain dharm ke naam ki agar hum baat karte hain, kyunki aaj hum hamari zindagi itni dar mein ji rahe hain, you know, choti choti baaton ka kaam waise ho nahi rahe jaise hum chahte hain, sukh khushi pyar nahi mil raha hai, hum trahi trahi kar rahe hain, hum mandiron mein ja rahe hain, wahan nahi kuch samajh mein aa raha, phir hum un rituals mein bhi jaane ki koshish kar rahe, wo itna confusion, unse kaise bahar nikal sakte hain?
0: Knowledge, ज्ञान चाहिए. अभी क्या हो रहा है, एक्चुअली जितना दुख अशांति बढ़ती जाएगी, उतना इन सभी तरफ झुकाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें कुछ तो चाहिए, यू नो, इट्स लाइक होल्डिंग ऑन टू व्हाटएवर आई कैन गेट.
1: जनरली इफ वी लुक एट, मुझे लगता है हमारे साथ के सभी दर्शक भी इस बात को जरूर एग्री करेंगे कि कहा यह जा रहा है कि अध्यात्म बढ़ गया.
0: हाँ, एब्सोल्युटली.
1: यू नो, धर्म की के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ गई है या जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तूफान है.
0: हाँ.
1: दिलों में, दिमागों में तूफान है.
0: जैसे एक एपिडेमिक फैल गया
1: हाँ
0: तो फिर डॉक्टर की जरूरत तो बढ़ेगी, इसलिए

0: जब हम बीमार है, पहले बीमारी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी, अब जब क्रॉनिक स्टेज पर आ गई तब चाहिए, तब वो डॉक्टर की जरूरत है. लेकिन ऐसे टाइम पर बहुत जरूरी होता है कि राइट डॉक्टर.
1: यहां जो कंफ्यूजन है वो इतना ज्यादा है, व्हाट टू डू. एक्चुअली स्पीकिंग, हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, सब जगह जा रहे हैं, हर तरह के रिचुअल्स अब हमें पता भी नहीं है. वो लोग, कई तरह के लोग जिंदगी जीते आ रहे हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो बचपन से इसी तरह के रिचुअल्स में, इस पूरे धार्मिक परिवेश में अपने आप को करते आए हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको ना मानते हुए, इन द सेंस कि ज्यादा उसके बारे में ना सोचते हुए, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जब लगता है कि यही रह गया है रास्ता, तब और कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं. व्हाट टू डू इन द रियल सेंस.
0: मतलब एक है कि जो लोग समझ के कर रहे हैं, यू नो, पूरी अंडरस्टैंडिंग से, पूरे फेथ के साथ, लेकिन एक है जो सिर्फ डर के मारे कर रहे हैं, यू नो, कि मेरी नौकरी लग जाए तो उसके लिए ये इतने दिन उपवास, मेरी ये हो जाए तो उसके लिए ये पहनना है, उसके लिए ये हवन करना है, भाई आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, आप इतना दान कर दो. तो ये सारा फियर है. ये तो जैसे ज्ञान नहीं है तो हमें भय में, यू नो, अब हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब सिर्फ कुछ करने से थोड़ी कष्ट दूर हो जाएगा. कष्ट तो मुझ आत्मा की कमजोरी है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा. कमजोरी अंदर है, रिचुअल हम बाहर करते हैं, यू नो, हवन है, हवन करना है, योग अग्नि.
1: तुम भगवान से नहीं डरते इसलिए ये हो रहा है आपके साथ. यू नो, जनरली ये कहा जाता भगवान से डरो. हम भगवान से
0: डरो इसलिए कह देते हैं क्योंकि अच्छा कर्म करो, यू नो, जो हमने कहा भगवान कहते हैं कि हर जगह है, देख रहा है. लेकिन एक्चुअली जब हमें सच में उसका परिचय मिल जाता है कि वो हमारा, यू नो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है जो फियर पर बेस्ड होता है, यू नो, दुनिया में भी, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डरा के चलते हैं और बच्चे के अंदर कभी वो प्यार नहीं, मतलब प्यार होता है लेकिन नो फियर है. तो what I feel is fear and love can never be together. You know, if there's love, they can never be fear.
1: Actually, बच्चा फिर हमेशा चाहेगा कि मैं उनकी आंखों में कोशिश करूं, करता रहूं.
0: तो फिर वो अपना natural नहीं होता. वो डर में रहता है, डर की वजह से वो झूठ भी बोल देता है, उल्टा डर की वजह से ज्यादा गलत काम करता है, छुपाने की कोशिश करता है. अब उसी तरह परमात्मा के साथ एक है कि हम डर का रिलेशनशिप बना कर रखे, पर वो इसलिए क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं थे. लेकिन वो पिता है, गुस्सा तो वो कर ही नहीं सकता, वो तो प्यार का सागर है. ही लव्स मी, ही इज द ओनली वन हु लव्स मी अनकंडीशनली, यू नो, अनकंडीशनल लव जो हम दुनिया में.
1: गॉड कैन नेवर बी एंग्री, वंडरफुल. गुस्सा भगवान आपसे नाराज है, मतलब
0: भगवान कभी नाराज नहीं हो सकता.
1: सी, लेकिन लुक एट इट, आई थिंक आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, यू नो, लाइक
0: भगवान नाराज नहीं हो सकता. See, that is the beauty. उसके अंदर कोई विकार नहीं है, बिकॉज ही इज एवर प्योर. तो गुस्सा कैसे आएगा उसको? ये हमने जो बना दिए बहुत सारे, परमात्मा को गुस्सा आया तो विनाश हो गया, ये, you know, ये सारी चीजें. परमात्मा को अगर गुस्सा आ गया
1: तो परमात्मा कैसे रहा? Because he's telling us not to be angry.
0: Yeah, he is the ocean of peace. He cannot have anger. वो पिता है, वो रहम दिल है, वो कल्याणकारी है, वो क्षमा का सागर है,
1: वो लविंग है, वो प्यार. हाँ,
0: सबसे पहली चीज तो प्यार है. इतना प्यार देता है, मतलब इवन द टर्म अनकंडीशनल लव, विच आई यूज टू हियर पहले, यू नो, अनकंडीशनल लव, एंड आई फील नो ह्यूमन बींग कैन गिव अनकंडीशनल लव, इट्स नॉट पॉसिबल. अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, नो ह्यूमन बींग कैन डू इट. आप कितना भी ट्राई कर लो, कहीं ना कोई एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हो जाती है, और जब वो नहीं मीट होती तो हर्ट होता है. वो हर्ट नहीं होता, वो हर्ट नहीं होता, वो बहुत प्यार देता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कहें फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, यू नो. जहाँ पेरेंट बहुत प्यार देता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि और भी ज्यादा सही दिशा में चलने का दिल करता है, क्योंकि वो इतना प्यार देता है. तो आपको लगता है कि वो जो आपको शिक्षा दे रहा है, आप उसकी हर शिक्षा को बस फॉलो करते रहो, क्योंकि आपको ये पता है कि वो हर चीज आपके फायदे के लिए है. सो ही इज अ वेरी वेरी वेरी लविंग पेरेंट.
1: ना, जो हमने बात उस वक्त की थी, आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात,
0: आंख बंद करके, क्योंकि ये पता है ना कौन बोल रहा है. कौन बोल रहा है तो निश्चय है. इसको ब्लाइंड फेथ नहीं कहेंगे. कई लोग कहते हैं ब्लाइंड फेथ है. नहीं, जब अगर हमें एक इंसान पर भी निश्चय हो जाए, सपोज मुझे निश्चय है कि आप हमेशा मेरे अच्छे के लिए बोलोगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी आपको.
1: नहीं, पर हम अपने पेरेंट को क्वेश्चन कब करते हैं? आई डोंट नो एनीवन, एनी चाइल्ड क्वेश्चनिंग.
0: नहीं, बट अभी क्या होता है, कई बार चिल्ड्रन हैव दिस थिंग विद देयर पेरेंट्स कि नहीं ये पता नहीं मैं इनका अपना इसमें रीजन है, इनका ये मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, यू नो इसमें मेरा फायदा नहीं है, मेरा फायदा डॉक्टर बनने में है, ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं. सो ये सब लिमिटेशंस अ पेरेंट एक्चुअली अच्छा ही सोचता है. इवन मनुष्य आत्मा कभी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन ईगो की वजह से अपनी थिंकिंग, यू नो अपने लिमिटेड बैरियर्स हैं, लेकिन वो तो साकारी नहीं है ना. वो साकारी लिमिटेशंस में बाउंडेड नहीं है, वो हमारी बड़ी पिक्चर देख सकता है. ही इज नॉट बाउंडेड बाय टाइम एंड स्पेस.
1: एंड अगेन जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो लॉ ऑफ नेचर है या लॉ ऑफ कार्मिक डेप्थ
0: वो हमें रिटर्न तो करना ही है. लेकिन परमात्मा हमें सही कर्म करना सिखा देता है ना. जैसे आप माँ हैं तो आप अपने बच्चे को सही कर्म सिखाएंगे, अगर वो आपके कहे अनुसार चलते गए तो उसका रिटर्न क्या होगा, सही का सही है. तो रॉन्ग होने की कोई मार्जिन नहीं है. तो सबसे पहली चीज तो हम कहेंगे परमात्मा से डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना,
1: बिकॉज
0: ही इज जस्ट टू ब्यूटिफुल, ही इज जस्ट टू ब्यूटिफुल, डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड ऑफ हिम. ही लव्स यू एंड यू नीड टू लव हिम बैक. And that's the relationship. Relationship with God is exchange of that purest love.
1: I love him, but then how do I tell him? You know, like how do I, you know, like now you see. अभी तक I think हम जितने भी हम बातचीत करते आ रहे हैं, हमने खुद को भी पहचान लिया और you know, like we were not even aware. But the moment the picture is clear, actually I can visualize. We can all visualize. You know, lot of confusions cleared. Even if we had taken it as an assumption.
0: Yes.
1: Shiv Baba, क्योंकि जब तक हम experience नहीं करेंगे हम नहीं चलिए नहीं मानते. Assumption पे ही हमने माना कि शिव बाबा है और उसके बाद हमने ये पूरा logic दे दे के हमारे सामने एक picture create हो गई, which is I think so beautiful, so pure. Now, how do I get that love?
0: वो जो हम याद की यात्रा शुरू करेंगे ना, which we will see कि वो कैसे उसको याद करना है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन कर लीजिए कि वो मेरा पिता है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे नाराज नहीं है, मुझे उसको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है. जो बहुत सारे हमने विस्तार किया है ना कि भगवान को खुश करने के लिए you know,
1: इसी तरह से करो ये करो,
0: वो बाह्य चीजों से हमारे वैसे भी नहीं खुश होगा. वो क्या चाहता है हमसे, वो हमसे ये रिचुअल्स नहीं चाहता है, वो चाहता है हम जागे, हम ये जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं हम जागे और अपनी शक्ति को फिर से पहचाने. ये फिजिकल जो है ही फिजिकल नहीं है, जो फिजिकल है ही नहीं, तो वो हमारी फिजिकल चीजों से क्या खुश होगा. क्या उसको मैं, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है उसमें से. सो दैट कैन नॉट प्लीज हिम एट ऑल. सो स्टॉप फियरिंग एंड स्टॉप डूइंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ फियर ऑफ गॉड. यू नो इवन इफ समबडी इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स दोज थिंग्स, यूज योर इंटेलेक्ट, सोच कर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं. बिकॉज इस समय जब हम भय में होते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे भय को एक्सप्लोइट करते हैं. यू नो अभी अगर आपको, जैसे आप किसी नए शहर में चले जाओ और कोई आपको देखे कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए 10 लोग मिल जाएंगे. इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस अज्ञान में ठोकरे खाते हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए भी बहुत कुछ है. तो वो फिर यू नो देन इट बिकम्स लाइक मनी मेकिंग एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. तो उस एक्सप्लॉइटेशन से हमें अपने आप को बचाना है और फेथ से चलना है. बिल्कुल.
1: तो ये कुछ बहुत सुंदर एक्चुअली सच शिवानी की कुछ बातें इतनी क्लियर है कि भगवान से हम डर नहीं सकते क्योंकि वो तो परम पिता है. मतलब
0: डरेंगे तो उल्टा अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा.
1: हाँ, क्योंकि हमने एक रिश्ता बनाना है क्या, रिश्ता बना हुआ है, उस रिश्ते को याद करना है. एक्चुअली याद कैसे करना है, अब एक बार फिर जो है हम तो अभी भी हम स्पेस में है, स्पेस और टाइम की कॉन्स्ट्रेंट्स में है जब हम यहाँ रह रहे हैं. तो उस याद को हम अगली कड़ी में जरूर तलाशेंगे कि कैसे याद हमने करना है और कैसे हम उस रिश्ते को बना सकते हैं. इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सचे शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. कितना सुंदर है हमारे पिता शिव बाबा. अगर हम मान भी लें, अज्यूम करते हैं कि हमने उन्हें माना, वो हमारे पिता हैं, परम पिता जिन्हें हम तलाश रहे थे. उनका परिचय इतना खूबसूरत है, कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली है, मैं अपने आप कह सकती हूँ। हो सकता है आपके पास अभी भी कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल द्वारा या फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9899 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। रास्ते खुल चुके हैं, शिव बाबा अपना निमंत्रण दे चुके हैं, पहला कदम हमें बढ़ाना होगा। कैसे करेंगे हम उन्हें याद, अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: है?
1: अरे देखो नहीं पता क्या इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूं कि आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और कल गणेश चतुर्थी का खूबसूरत जो कार्यक्रम है वो हम सभी ने किया और बड़ा ही धूमधाम से जो है शाम तक ढोल ताशे नगाड़े बज रहे थे। बारिश होते हुए भी फेस्टिवल का जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे आप अभी थोड़ा आराम फरमा रहे होंगे या फिर आप सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी गणपति बप्पा का ब्लेसिंग पाकर, आशीर्वाद पाकर कल आपने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। तो आइए इसी उमंग उत्साह के साथ आज का दिन भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से मनाएंगे। और निश्चित तौर पे आज इंजीनियरिंग्स डे है, तो हमारे जो इंजीनियर भाई बहने हैं उन सभी को आज के दिन की बहुत ही शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और आशा करूंगा कि आज का दिन भी हम विश्वेश्वरैया को याद करते हैं और एक ऐसा इंजीनियर जिन्होंने अपने जीवन में देश के प्रति और देशवासियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है और उन्हें आज याद किया जाता है। तो सभी इंजीनियर भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कर रहो।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा कि आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इस समय के साथ साथ हम जिस तरह से जिस युग में जी रहे हैं, उस युग में अगर हमें इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं जहां टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें जो है ईश्वर को याद करने के लिए भारत का प्राचीन राजयोग निःशुल्क सिखाया जा रहा हो, तो ये एक वरदान ही है ईश्वर का कि जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो उनसे हमें आशीष मिलता है, उनसे हमें शक्ति मिल जाता है और हमारे दुख दूर हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये भी एक परमात्मा का वरदान कह सकते हैं, उनका ब्लेसिंग कह सकते हैं कि हर मुश्किल घड़ी में उनका आशीष हमारे सर पर आता है, बस हमें वहाँ पर अपने सिर को रखकर उस आशीष को प्राप्त करना होता है। तो सिर को रखने का अर्थ ये है कि अपने आप को समर्पण कर दे ईश्वर के सानिध्य में, तो उनकी आशीष हमें प्राप्त होगा और हमारा जीवन बेहतर बेहतर बनता जाएगा। तो आइए, अपनी मनोस्थिति को बदलने की ज़रूरत है। ऐसा कहा जाता है मनुस्मृति में कि भाई आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, अगर उसको थोड़ा साक्षी होके देखो और ईश्वर के सानिध्य में अगर अपना सर रख देते हो या अपनी बुद्धि को समर्पण कर देते हो, ये कहते हो कि अब आप ही सब कुछ है, आप ही कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको रास्ता भी मिल जाता है और आप तनाव आस्वाद से मुक्त होकर आनंदित अनुग्रहित धन्यवाद करते अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आशा करूंगा मेरी बात आपके दिल तक पहुंचा हो। तो जरूर आगे वाला ये गीत आपके लिए श्री सिद्धि विनायक का मंत्रा और आरती आपके नाम, अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: स्माइली।
1: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा प्यारा सा मंत्र और आरती आप सुन रहे थे श्री सिद्धि विनायक का। आशा करूंगा श्री सिद्धि विनायक गणपति बप्पा का आशीष आपको यूं ही मिलता रहे ऐसी शुभ आशा के साथ। 8:48 हो रहे हैं, 9 बजने ही वाला है और समाचारों की तरफ मैं ध्यान रखा हूँ, तो जैसे ही समाचार आते हैं आपको सुनाएंगे। और अभी आज विशेष अभियंता दिवस है, तो अभियंता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। आज के दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न प्राप्त मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस होता है। आज भी मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया को भारत ही नहीं बल्कि विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है। अभियंता का संकल्प दिवस आज है। 101 वर्ष का यशस्वी जीवन जीने वाले मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया सदैव भारतीय आकाश में अपना प्रकाश बिखेरते रहेंगे। भारत सरकार द्वारा 1968 में डॉक्टर मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। तब से हर वर्ष पुनीत अवसर पर सभी भारतीय इंजीनियर अभियंता एकत्रित होकर उनकी प्रेरणादायी कर्तव्य एवं आदर्शों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने कार्यकल्पों का आत्मविमोचन करते हैं और इसे संकल्प दिवस के रूप में भी मनाने का प्रण लेते हैं। संकल्प अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का समर्पित भाव से निर्वहन करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद नए भारत के निर्माण और विकास में प्रतिभावान इंजीनियरों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांव और शहरों के समग्र विकास के लिए सड़कों, पुल पुलियों और सिंचाई जलाशयों सहित

निर्माण के अनेक कार्य हो रहे हैं। हमारे इंजीनियरों ने अपनी कुशलता से इन सभी निर्माण कार्य को गति प्रदान की है। राज्य और देश के विकास में इंजीनियरों के इस विशेष योगदान के साथ साथ अभियंता दिवस के इस मौके पर भारत रत्न मोक्षगुणम विश्वेश्वरय की प्रेरणादायक जीवन गाथा को भी याद किया जाता है। तो साथियों, ये है ये खास बात जो आज के दिन की मैंने आपको सुनाया। तो आशा करूँगा आप सभी को इंजीनियरिंग डे यानी अभियंता दिवस की बहुत सारी बातें याद हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 8:50 हो रहे हैं और आपके लिए एक और सुंदर गीत मैं आपको सुनाने वाला हूं। और जैसे कि गणेश उत्सव का धूम अभी चल रहा है और मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ गणपति बप्पा को लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरह का कारोबार आप करते हैं ज़रूर हमें बताइए, और क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं आप हमें बताइए। तो तब तक मैं बहुत ही प्यारा सा उदित नारायण का सुंदर भजन आरती आपके नाम सुनते रहो मस्कर।

0: क्या बात है, सिद्धि विनायक मोर या रे। जब हम लोग इस तरह के खूबसूरत भजन सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और हाथ और पैर थिरकने लगते हैं, है ना। तो कभी कभी आप इस तरह की चीज़ें भी ज़रूर कीजिएगा जो आपके मन को प्रफुल्लित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तन्मयता से जब आप किसी चीज़ को सुन लेते हैं तो आपको इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो ज़रूर आपके लिए काम करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार। हेलो, कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। जी हाँ, प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। तो उनकी रचनाओं का भाषाओं में तो अनुवाद हुआ ही, लेकिन साथ साथ आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान के उप संपादक तथा पराग के संपादक भी रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का साहित्यिक जीवन काव्य से आरंभ हुआ और चर्चे चरके स्तंभ में, दिनमान में छपे उनके विशेष लेख लोकप्रिय हुए और 1983 में कविता संग्रह कुटियों पर टंगे लोक के लिए सर्व दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: सर नमस्ते। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
0: जी जी सुरेश जी, बहुत अच्छे हैं। गणपति बप्पा मौर्या, गणेश चतुर्थी की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कल बारिश हो गई फिर से।
1: बहुत बारिश हुई, लेकिन मैं बताऊंगी मौर्या क्यों बोलते हैं पता नहीं, ये गणपति दादा को।
0: जी जी जी,
1: मौर्या शब्द क्यों बोलते हैं? मैं बता रहा हूँ सर। हेलो, हेलो जी सर, नमस्ते।
0: हाँ, जय बोलते हैं ना, जय का जो अर्थ है वो मौर्या शब्द का ही है, एक पर्यायवाची, ठीक है। अच्छा, जैसे अपन बोलते हैं ना किसी की जय हो, वैसा गणपति बप्पा का मौर्या शब्द से जुड़ा हुआ, ठीक है। और मौर्या का अर्थ जो है संत गोस्वामी के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
1: चलो अच्छा है, हमारे सभी मित्रों को भी आज के दिन की शुभकामनाएं। और हमारे गुजरात में आज ऋषि पाचम भी बोलते हैं कि आज जो सप्त ऋषि यानी कि सात ऋषि बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जो महिलाएं सभी और पूरा दिन
0: जी जी जी
1: उपवास रखती है। और जो तो खाने में तो जो सामा बोलते हैं उसको सामा ही खा के पूरा दिन निकालना है, और कुछ खाना भी नहीं है। तो आज महिला ऐसा व्रत करती है और ऋषि का पूजन करती है, जो महादेव जी के मंदिर में उसको बनाया जाता है। तो ऋषि पाचन की भी हमारे प्रति श्रोता मित्र को, महिलाओं को शुभकामनाएं सर। और आज श्री यानी कि दूरदर्शन दिन भी है, तो कई सारी सरियल भी अच्छे अच्छी आती थी, अलिफ लैला आती थी, रामायण आती थी, महाभारत आती थी, कई सारे उसमें देखने के लिए पहले हम दूरदर्शन कहीं से लाभ लेते थे और इसका आनंद लेते थे सर।
0: हेलो जी जी जी
1: जी जी सर, तो मैं बताऊं तो इस वक्त रामायण महाभारत का बहुत जोर चल रहा था, जब वो टीवी का जो एक दिन था, यानी कि आज दूरदर्शन का दिन नहीं रहा है, लेकिन आज कई सारी नई चैनल आ गए।
0: जी जी जी,
1: आज दूरदर्शन को लोग कम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज उसमें अच्छा अच्छा धार्मिक जो बातें बताते हैं, सीरियल आती है जो देखने जाते। चलो अच्छा है सभी मित्रों को।
0: जी जी जी, शुक्रिया
1: सर, आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, ढेर सारी खुशियां। और जैसे मौर्या शब्द के बारे में आपने पूछा था, तो ये ऐसा हुआ था कि संत मौर्या गोस्वामी ये ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान गणेश के परम भक्त थे और बहुत तपस्या उन्होंने किया, और तपस्या करने के बाद उन्होंने गणेश जी को अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया था, जो पूना के पास मोरगांव और चिंचोल में रहते थे, और वहीं पर उन्होंने घोर तपस्या की। और इस तपस्या से गणेश जी प्रसन्न होकर भगवान का उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। और ये पुरानी पौराणिक जो हमारी शास्त्र है, कहानियां है, उसके अनुसार भगवान गणेश मौर्या गोस्वामी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि इस पृथ्वी पर जब भी किसी को भगवान का स्मरण किया जाएगा तो भगवान के साथ साथ भक्त मौर्या का भी नाम लिया जाएगा। और फिर तब से ये चीज़ें शुरू हुई और इस अमर संबंध भक्त और भगवान का एक गहरा संबंध को बताता है। और इसी कारण गणपति बप्पा गणेश जी को, भगवान गणेश को याद किया जा, साथ में मौर्या जोड़ा गया जो भगवान के उनके सच्चे भक्त के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। संत मौर्या गोस्वामी जी को उनकी तपस्या के लिए ये जो प्राप्ति है, ये वरदान प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए गणपति बप्पा मौर्या का मतलब भगवान और भक्त का अटूट रिश्ता को दर्शाना या बताना है। चलिए, आशा करूंगा कि मौर्या का सही अर्थ आपके जीवन में आज पता चल गया होगा। अच्छा लगा तो मुझे फोन करके बताइएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो चलिए मित्रों, अब वक्त हो गया है समाचारों का, तो समाचारों की तरफ चलते हैं सीधे अभी दिल्ली। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा ₹2000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
4: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई, जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 8 अरब 66 करोड़ डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
5: Given a choice, a judicial officer,
6: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
2: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिनभर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है। सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते, नव भारत टाइम्स की खबर है। साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:33 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। आइए बात करते हैं आज के दिन विशेष की। कुछ खास लोगों का जीवन परिचय कराता हूं आपको। जैसे कि हमने आज मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया की जीवन कहानी से रूबरू हुए और साथ ही साथ हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन कहानी से रूबरू हुए। अब बात करते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ, इतिहास में इनका भी नाम विशेष रूप से लिया जाता है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ये एक ऐसे बंगाल के अमर शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनका भी जन्म आज ही के दिन सन 1876 को हुगली जिले के एक देवनंदपुर गांव में हुआ था। शरद चंद्र अपने माता पिता की 9वें संतान थे। शरद चंद्र ने 18 साल की उम्र में 12वीं पास की थी और शरद चंद्र ने इन्हीं दिनों बासागर नाम से एक उपन्यास लिख डाला। और जैसे ही उन्होंने ये उपन्यास लिखा तो बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्रसिद्धि हुई और कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वो आगे बढ़ गए। हेलो, ओम शांति भाई जी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, अनुरागी मन का ये खूबसूरत गीत आप संगीत सुन रहे थे। आइए बात कर रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। लोकप्रियता के तत्व के अनुसार इनका जो है विशेष आस्वाद में वृद्धि ही की है। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय अकेले ऐसे भारतीय कहानीकार रहे जिनकी अधिकांश कलजाई कृतियों पर फिल्में बनी तथा उनके धारावाहिक सीरियल भी बने। इनकी कृतियां देवदास, चरित्रहीन और श्रीकांता के साथ तो ये बार बार हुआ है। तो ये एक विशेष जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी साहित्य और प्रस्तुति जिस रूप में उन्होंने की, इतनी लोकप्रियता हुई कि लोग इसके ऊपर फिल्में और सीरियल बनाने लगे थे। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं सर?
0: बढ़िया मदन भाई, स्वागत है। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
1: वाह वाह वाह, रोज शाम से बोलने चाहिए गणपति बाप्पा
0: मोरिया,
1: उनके आगे आगे। वाह भाई वाह, मजा, आपने तो बहुत अच्छा गणपति बाप्पा मोरिया, मन में तो यही सभी के, और सुबह मैं यही कह रहा हूँ सबको भाई गणपति बाप्पा मोरिया किया के, अरे आके वचन पे किया, लेकिन रोज कहने का सुबह उठ के शाम सुबह रोज गणपति बाप्पा मोरिया। तो आपको नमस्कार करते हैं प्यारी सी आवाज को, इस गणपति को याद करने के लिए, और सब याद कर रहे हैं सभी को, और नवी किरण को, और हमारे सभी दोस्त सुन रहे हैं सभी को, और सभी शो बहुत अच्छे लगते हैं सुबह से, और रोज से अच्छे लगते हैं, लगते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगता है, इतनी सारे मजा आ जाता है आके, बस दिन भर मजा आ जाती है उनकी यादों में काम करते हैं और ईश्वर की तरफ नजर देखते, वाह वाह वाह वाह वाह, ये ड्रामा वाह वाह ईश्वर वाह। तो आपको नमस्कार करते हैं, और एक कल गाना सुना था मैंने, आसमान वाले बता तेरे बंदे जाए किधर, भाई बहन चित्र का गाना था, मगर वो आवाज अभी सेटिंग नहीं हुई हमारे पास, और आपको नमस्कार करते हैं, और जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को बड़े प्यार से नमस्कार करते हैं, और बरसात पड़ रही है बूंदे बढ़िया खूबसूरत, उनको भी नमस्कार करते हैं, और ठंडक हो गई है चारों तरफ, और कहीं कहीं गर्मी भी पड़ रही है, और बहुत सारी बातें हैं, और बस गणपति बापा है, फिर आ जाएगी भाद्रवा पूनम में, बोल मारी अम्बे जे जे अम्बे, हम बाजी दू है जाना जरूर है, तो सकना नहीं है जाना है। तो नमस्कार सर, ओम शांति, जो सेवा कर रहे हैं, जो रास्ते में खाना पीने की जो भी कर रहे हैं उनको भी, और खाने वालों को भी नमस्कार करते हैं, और भी बहुत कुछ होते जाएंगे दिन पर, और बस सर बढ़िया सा खाना सुना देना। आज तो मंगलवार भी है, तो गणपति गणेश चतुर्थी भी है, तो बहुत सब कुछ है, तो बस नमस्कार करते हैं और बढ़िया सा गाना सुना देना। अभी तो फिलहाल रेडियो नहीं सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन के भी बस ऐसा लग रहा है कि सुन रहे हैं, और बस सर सभी खुश रहे मस्त रहे ऐसी शुभकामना, ओम शांति, नमस्कार
0: जी। जी जी मदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही शुभकामनाएं आपको। और आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे विशेष शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी आपको सुना रहा था, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा था, जिनके लिखने की जो माध्यम शैली थी वो फिल्म और सीरियल के लिए उपयुक्त हुआ था। और महात्मा गांधी की साथ इनकी जो है बड़ी रोचक चीज़ें हैं, और उनका एक लाइन जो है उनको खूब भा गई, पाप से गुरु ना करो पापी से नहीं। विश्वविख्यात बंगला कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के इस कथन को, इस वाक्य को अपने साहित्य में उतारा था। उन्होंने पतिता उल्टा पीड़ित दबी कुचली और प्रताड़ित नारी की पीड़ा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, स्वर दिया, और उनके पीड़ाओं को कम करने के लिए माध्यम बने। हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार रमेश भाई जी।
0: जी दयाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है, काफी दिनों के बाद याद कर रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की।
2: आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और मैं कल से ही प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो कल बहुत ही अच्छी गणेश जी के बारे में बात जो की, और बहन वंदना ने और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और जो हमारा गणेश का जो 10 दिनों का जो फेस्टिवल चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, और मंदिरों में जाते हैं, और शाम को यहाँ गणपत जो बिठाई है, वहाँ जाती है और उनकी पूजा पाठ करती है, फिर भोग लगा के बाद में वापस आती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये शुभ अवसर है। सभी सुनने वालों को, सभी मेरे मित्रों को, बहनों को, भाइयों को, आर्य भाइयों को और गुरु आपको प्रणाम है मेरी तरफ से। और गणपति के
0: जी, जी।
2: भजन आप बहुत चला भी रहे हो, एक और भी अच्छा भजन चला देना मेरे लिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: ओके थैंक यू। और ये एजी इंटरनेशनल में भी नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए भी कार्यक्रम हो रहे हैं स्कूलों में और अभी पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो है खेलों का एक बहुत ही सुंदर जो है कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग स्कूलों में अलग अलग खेलों का जो है कार्यक्रम चल रहा है और अभी एजी इंटरनेशनल में विशेष बॉक्सिंग का खेल जो है रखा गया है, जहाँ पर दो टीमें आकर खेलने वाली हैं और इसके साथ में अपने सिरोही डिस्ट्रिक्ट के आबू रोड के आसपास में भी एक हॉलीबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहा है जो यहाँ पर नज़दीक में जो है रोड़ा के पास में चीज़ें हो रही हैं, जहाँ 800 से अधिक विद्यार्थी आने वाले हैं और उनका हॉलीबॉल कंपटीशन पूरे सप्ताह भर चलने वाला। हेलो जी नमस्कार। बुरा राम जी स्वागत है आपका। गणपति बप्पा मौर्या
1: मोरिया मोरिया बोले तो हमने तो पूना में 30-35 साल सर्विस की वहाँ पूना में।
0: अच्छा अच्छा।
1: दबड़ूबा हलवाई का उधर इतना ये उस गणपति मनाते और पूरा 11 दिन
0: जी जी जी
1: मेला भरता है, चलने को भी जगह नहीं चलती है, तो गणपति बाबा का बहुत उधर दर्शन किए और गणपति का अभी चला अच्छा चल रहा है। मधुबन भाइयों को आपको हाथ जोड़ के राम राम और सब को मेरा प्रणाम। और एक मराठी में आरती है गणपति जी के सुनाएंगे तो अच्छा है।
0: जी जी जी
1: मराठी में है आरती है गणपति जी के।
0: जी जी जी मैंने सुना है सवेरे जी।
1: अच्छा क्या मालूम, मैं अभी लगाया, मैं बाहर गया था अभी फोन लगाया।
0: कोई कोई नहीं, हम लोग चलाते रहते हैं, गाने तो चलाएंगे आपका।
1: ओके सर, ओके
0: बुराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मौर्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये थे बुराराम जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। मैं बात कर रहा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। एक्चुअली में ये सच्चे हृदय के यानी दिल के सच्चे थे और हर व्यक्ति की और ख़ास करके नारियों के दिल को समझते थे। शरद चंद्र के मन में नारियों के प्रति बहुत सम्मान था। नारी हृदय के सच्चे पार के थी। उनकी कहानियों में स्त्री के रहस्यमय चारित्र, उनकी कोमल भावनाएं, दमित इच्छाएं, अपूर्ण आशाएं, अतृप्त आकांक्षाएं, छोटे छोटे सपने, छोटी बड़ी मन की उलझने और उसका महत्वाकांक्षाओं का जैसे सूक्ष्म सच्चा और मनोवैज्ञानिक चित्रण विश्लेषण इन्होंने किया था और जो कि काफ़ी दुर्लभ रहा और इन्हीं चीज़ों को फिल्मों में बखूबी उतारा गया। शरदचंद्र का संपूर्ण साहित्य नारी के उत्थान और पतन और पतन से उत्थान की करुणा कहानियों से भरा पड़ा था और शरदचंद्र जी ने अनेक उपन्यास लिखे। पंडित मोशाय, वैकुंठेर बिल, मेज दीदी, दर्पचूर्ण, अब गिनी का स्वर्ग, श्रीकांता और इस तरह से अनुपम का पेर, अनुपमा का प्रेम, ग्रहधा, शेष प्रश्न, दत्ता, देवदास, ब्राह्मण की लड़की और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। इनकी रचनाओं को जो है लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मनुष्य को अपने विपुल लेखन के माध्यम से उसकी मर्यादा सौंपी और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। तो ऐसे महान साहित्यकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की मृत्यु 16 जनवरी सन 1938 को हुई। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय को ये गौरव हासिल है कि उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य सभी भारतीय भाषाओं में आज भी चाव से पढ़ी जाती है। लोकप्रियता के मामले में बंकिम

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। राज कपूर और नरगिस का ये खूबसूरत गीत आपने सुना, प्यार हुआ इकरार हुआ। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। आज के दिन जन्म में उन खास लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। जी हाँ, 15 सितंबर को जन्मे उन लोगों की बातें करते हैं। जी

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। जब हम ईश्वर को समझ लेते हैं, जीवन को समझ लेते हैं, हमारे विचारों को समझ लेते हैं, तो जीवन कितना प्यारा लगने लगता है। आप ये भावना साधना सरगम की आवाज में सुन रहे थे। एल्बम हेमंत आचार्य का ये एल्बम था, ब्रह्मा कुमार इसके गानों में ये एक बहुत ही पॉपुलर गाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो आज एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक अल्बनेरूनी, इनका जन्म

आज के दिन 1973 को हुआ था। इंजीनियर वैज्ञानिक और निर्माता मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया 1861 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जिनकी कहानी हमने आपको सुनाई 1876 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे अशोक सिंगल। 1926 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। हिंदी साहित्यकार भारत के बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का भी जन्मदिन आज 1905 में हुआ था। तमिलनाडु के प्रसिद्ध नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई 1909 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय वैज्ञानिक लायंस नायक करम सिंह 1915 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और हिंदी के बहुत ही पॉपुलर साहित्यकारों में से एक थे द्विजेंद्रनाथ मिश्रा निर्गुण। 1915 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय साहित्य उनका वास्तविक नाम मोहम्मद हैदर खान था। कुमार बारा बांकवी 1919 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे वेद मारवा 1934 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। केरल से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक राजगोपाल जी 1929 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। मुंबई की जुग्गी बस्तियों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति जोकिन अपुरतम इनका जन्म आज के दिन 1946 को हुआ। और राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हड्डा 1947 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रोमियो जेम्स 1958 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत की महिला स्क्वॉश खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा 1986 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी 1987 में इनका जन्म आज के दिन हुआ सोनल बेन पटेल। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई 1891 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। तो चलिए जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है बिल्कुल प्यार से दिल से ढेर सारी दुआओं के साथ हैप्पी बर्थडे।

0: सभी मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
1: या फिर आज हर बात नए अंदाज के साथ, जो मन को दे एक दर्पण, ये है नई किरण।

ऋषि पंचमी आई, मारा मन में खुशियां लाई, सखी नदिए नावा चला पे। ऋषि पंचमी आई, ऋषि पंचमी आई, मारा मन में खुशियां लाई।

सखी नदिये नावा चला, फिर ऋषि पंचमी आई। तो ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। ऋषि पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में हमसे कोई भूल हो जाए तो अहंकार नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप, आत्मचिंतन और सुधार का संकल्प करना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, अगर दम्मे की शिकायत है, सांस फूलती है, तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाले हों। जी हाँ, खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

ऋषियों की तपस्या से ज्ञान का दीप जलता रहे, ऋषियों की तपस्या से ज्ञान का दीप जलता रहे, हर घर में संस्कारों का उजाला पलता रहे, सत्य शांति और सद्भाव से सजे जीवन की राह, सत्य शांति और सद्भाव से सजे जीवन की राह, ऋषि पंचमी पर सभी के जीवन में खुशियां आए अथा, ऋषि पंचमी पर सभी के जीवन में खुशियां आए अथा। पुनः आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का विचार इस प्रकार है, ऋषि पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में हमसे

भूल हो जाए तो अहंकार नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप, आत्मचिंतन और सुधार का संकल्प करना चाहिए। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी, जो बहुत ही सुंदर है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनके बच्चे बहुत धार्मिक और संस्कारी थे। वे हमेशा पूजा पाठ और संकल्पों में विश्वास रखते थे, सत्कर्मों में विश्वास रखते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी के शरीर पर अचानक छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। वह बहुत परेशान हुई। ब्राह्मण ने अपनी विद्या से इसका कारण जानने की कोशिश की। तब उसे ज्ञात हुआ कि पिछले जन्म में उस स्त्री से मासिक धर्म के समय अनजाने में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लंघन हुआ था। उसी कर्म के कारण उसे यह कष्ट भोगना पड़ रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करके सप्त ऋषियों का श्रद्धापूर्वक पूजन करने से इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। महिला ने श्रद्धा और विश्वास के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखा। उसने स्नान करके पवित्र भाव से सप्त ऋषियों का पूजन किया, उन्हें अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे सप्त ऋषियों, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन को शुद्ध एवं सद्भाव पूर्ण बनाने का आशीर्वाद दे। उसकी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसके सारे कष्ट दूर हो गए और परिवार में सुख शांति लौट आई। तभी से मान्यता कि वंदित्या चली आ रही है कि ऋषि पंचमी के दिन श्रद्धा से सप्त ऋषियों का स्मरण और पूजन करने से मनुष्य को अपने जाने अनजाने के दोषों के लिए क्षमा भाव मिलता है और जीवन में शुद्धता, सदाचार और सद्भाव की भावना बढ़ती है। तो कहने का भाव यही है, ऋषि पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में हमसे कोई भूल हो जाए तो अहंकार नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप, आत्मचिंतन और सुधार का संकल्प करना चाहिए। ऋषि मुनियों के ज्ञान और संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो पुनः आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए यहीं पर फिर से ले लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद पुनः लौटते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, कल हमारे श्रोता बंधु ने पूछा था कि भाई सांस फूलती हो, दमे की बीमारी हो तो क्या करें, तो चलिए मैं बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए, हल्दी वाला दूध एक गिलास, गर्म दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके अच्छी तरह उबाल लीजिए और इसे पीजिएगा। हल्दी फेफड़ों की सूजन कम करती है और बंद नलियों को खोलने में मदद करती है। तो अगर सांस फूलती हो, दम्मे की बीमारी हो, इसको अस्थमा भी कहते हैं, तो ऐसी समस्या में आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। एक गिलास गर्म दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके अच्छी तरह उबाल लीजिए, फिर पीजिएगा। हल्दी फेफड़ों की सूजन कम करती है और बंद नलियों को खोलने में मदद करती है। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है। अगर ये नहीं कर सकते तो शहद और मुलेठी या फिर काली मिर्च, एक चम्मच शुद्ध शहद में एक चौथाई चम्मच मुलेठी पाउडर या फिर काली मिर्च मिलाकर दिन में दो बार चाटिए। इससे गले की झकड़न और सांस की तकलीफ कम होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो आप काली मिर्च पाउडर लीजिए या मुलेठी पाउडर लीजिए। शहद में आपको एक चम्मच शहद में आपको एक चौथाई चम्मच या तो मुलेठी पाउडर या फिर काली मिर्च पाउडर मिक्स करके दिन में दो बार चाटना है। इससे गले की झकड़न और सांस की तकलीफ कम होगी। फिर अगला उपाय है, अदरक की चाय पीजिएगा। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालकर या उनकी चाय बनाकर पीजिएगा। इससे वायु मार्ग की सूजन में आराम मिलता है। तो क्या करेंगे, अदरक की चाय कैसे बनाएंगे, अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालकर या उसकी चाय बनाकर पीजिएगा। फिर देखिए, भाप लेना भी बहुत ही लाभप्रद रहेगा। गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन या फिर यूकेलिप्टस ऑयल डाल करके भाप लीजिएगा। इससे फेफड़ों में जमा गाढ़ा बलगम पिघल जाएगा और सांस लेना आसान हो जाएगा। गहरी सांस लेने का व्यायाम करना है। नाक से गहरी सांस लीजिए, पेट को बाहर फुलाइए और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़िए। इसे फर्स्ट लिप ब्रीदिंग कहा जाता है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। तो नाक से गहरी सांस लेना है, पेट को बाहर फुलाना, फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह करने से भी फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। और हाँ, थोड़ा सावधानी भी जरूर रखिएगा। धूल और धुएं से बचना बहुत जरूरी है। बाहर निकलते समय हमेशा मास्क पहनिए और प्रदूषण वाली जगह से दूर रहे। ठंडी चीज़ों से परहेज करना जरूरी है। ठंडा पानी, आइसक्रीम और ज़रूरत से ज़्यादा खट्टे या तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर कोई धूम्रपान करते हो, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तरह के धुएं और पैसिव स्मोकिंग से अगर करते हैं तो पूरी तरह से दूर रहे। ठीक है, कहते हैं ना कि खाने पीने से भी ज़्यादा परहेज पर ध्यान देना है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो कहते हैं ना कि भाई घरेलू उपाय केवल राहत के लिए है। यदि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही हो या सीने में तेज़ दर्द हो तो तुरंत किसी डॉक्टर से आप ज़रूर राय लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो दवा और दुआ दोनों ही कर सकते हैं। तो ये हुए घरेलू उपाय। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, कि देखिए हम क्या करते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं, तो उन सप्त ऋषियों का नाम आपको बताना है। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक कल फिर हम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ऋषियों की तपस्या से पावन हुई है धरती सारी, उनके ज्ञान से रोशन हो जीवन की हर क्यारी। मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता, कर्मों में हो सच्चाई, ऋषि पंचमी का पर्व लाए जीवन में सुख शांति और भलाई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। तो आज देखिए, ऋषि पंचमी है जिसको हम सामा पांचम भी कहते हैं। तो पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आज का प्रश्न भी इसी पर है, बहुत ही सुंदर, कि भाई ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है, उन सप्त ऋषियों का नाम आपको बताना है कौन कौन से, ठीक है। और आज कोई ऐसा कोई खास त्यौहार नहीं है, लेकिन ऐसे संस्कारों की दृष्टि से, शुद्धता से, स्वच्छता की बात करें तो आज का ये त्यौहार ही है। ज़रूरी नहीं कि हर त्यौहार में हम शोर शराबा करें, कोई कोई त्यौहार ऐसे होते हैं जो साइलेंस के होते हैं, शोर शराबा वाले नहीं होते हैं, अध्यात्म के होते हैं, सच्चे दिल से ईश्वर से प्रेम करने का होता है। जो ऋषि मुनि हमारे धरा पर है उनको सम्मान देने का होता है, और ऋषि मुनियों को सम्मान देने के लिए शोर शराबे की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम फ्रेंडशिप डे मनाते, टीचर्स डे मनाते, मदर्स डे मनाते, फादर्स डे मनाते, सारे डे मनाते हैं, लेकिन कभी हम ऋषियों के डे मनाया, कभी दिन मनाया, नहीं मनाया ना। चलिए, हमारे पहले तो श्रोता बंधु जुड़ना चाहते, बात करेंगे। हेलो
1: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से, कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: संजीव भी अच्छे हैं, और आज अच्छा दिन भी है। आज जैसे बताया कि आज ऋषि पाचन है, यानी के सामा पाचन भी बोलते हैं हमारे गुजरात में
0: जी।
1: तो सामा ही खाने के दिन है आज, सभी महिला सामा खा के पूरा दिन उपवास करते हैं आज के दिन
0: जी।
1: और कुछ भोजन और नहीं लेती है, बस सामा थोड़ा सा दोपहर को खा लेते हैं और पूरा दिन निकाल देते हैं। और सुबह में बताओ तो हमारे पास में ही माता जी का मंदिर है, वहाँ सबसे ऋषि बनाया है, सात ऋषि
0: जी।
1: मैं ऋषि का नाम तो नहीं दूंगी, क्योंकि आपका जो सवाल है
0: जी,
1: तो ये सबसे ऋषि बनाया के इसके पूरा गांव का जो लोग इधर आते हैं पूजा करने के लिए, सभी महिलाएं आती है लेके सामा लेके आती है, क्योंकि सामा तो खास लाना है, ऋषि पंचमी है तो सामा
0: जी
1: लेके ही आएगी और पूजा करेंगे।
0: हाँ जी।
1: और मन्नत मांगेगी दीदी की, हमारे जो कोई भूल हुई है पूरे साल, तो हम क्षमा मांगते हैं उसी से, और कहते हैं कि भाई हमको अच्छा रखना, परिवार अच्छा रखना, ऐसे मन्नत महिलाएं मांगती है
0: जी। तो सुरेश भाई, हम जैसे बात कर रहे थे कि सारे डे मनाते हैं, लेकिन ऋषियों के सम्मान के लिए हम कोई डे नहीं मनाते, आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, ये दीदी बताऊँ तो हमारे ये मनाते नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ तो हमारे जो गांव में कई जगह पे ये ऋषियों का भी डे मनाते हैं। कैसे मनाते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ दीदी
0: जी।
1: हमारे जो थोड़ा दिन पहले हमारे गाँव में भी एक कहते हैं कि संतों का जो नाम भूल गया, संतों का सभी संतों को बुलाते हैं और संतों को भोजन करवाते हैं, संतों का जो कार्यक्रम रखते हैं और इसका सम्मान करते हैं, और बाद में सभी पूरे गांव वाले जाते हैं वहाँ संतों के पास, ऋषियों के पास, तो और सभी एक दूसरे जाते हैं, वह पूरा एक दो घंटे का कार्यक्रम होता है, वहाँ उसको सम्मान करते हैं और भोजन का भी कार्यक्रम रखते हैं। ये संतों का मिलावड़ा बोलते हैं हमारे गुजरात में
0: जी।
1: तो ये डे नहीं मनाते, लेकिन ये डे जैसा हो जाता है दीदी,
0: क्योंकि वो तो देखिए वो तो एक आध गांव में होता है ना, जैसे
1: हाँ,
0: होता नहीं, हर जगह एक साथ नहीं होता है, हर जगह संतों का सम्मान होता है लेकिन एक साथ नहीं होता है। ठीक है, आपके गाँव में आ गए तो आपके गाँव में मना लिया, हमारे गाँव में आ गए तो हमने, बाकी हर जगह नहीं होता है।
1: हाँ, एक साथ में नहीं होता है, उसका डे मनाते नहीं है, ये जो डे आता है नहीं मनाते। लेकिन आज मैं बताऊँ तो आज एक कैसा डे जैसा ये दीदी कि आज सभी जगह पे ऋषियों का जो सम्मान यानी कि पूजा पाठ होती है
0: जी,
1: आज के दिन
0: जी,
1: चाहे डे ना मनाए, लेकिन आज जो ऋषि का सभी पूरे गाँव वाले सभी महिलाएं आज उसका पूजा पाठ करती है और क्षमा भी मांगती है कि जो बोल हुए हमारे से पूरे साल में, तो हमको क्षमा कर देना
0: जी।
1: तो ऐसे करके आज का दिन मनाते हैं दीदी
0: जी। जी जी अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल,
1: कोई बात थी ना दीदी, और कोई नहीं।
0: हाँ जी हाँ जी, बस यही है, कैसे क्या करते हैं ये भी बता सकते हैं। और ऋषियों के सम्मान के लिए देखो, वो इतनी तपस्या करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सम्मान करें।
1: सम्मान करें, सम्मान करें,
0: है ना, क्योंकि ये धरा टिकी हुई है तो कैसे टिकी हुई है, संत मुनियों की तपस्या के बल पर।
1: संतों की, जहाँ दीदी मैं बताऊँ, हमारा गांव की जो भूमि है संतों की भूमि है। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे संत हो गए, बड़े बड़े संत, आपने शायद नाम भुला होगा, डोंगरे जी महाराज वो,
0: जी जी जी सुना है ना,
1: हाँ वो भी हमारे गांव में कथा करके गए हैं। और एक था हमारे मुरारी बापू, ये भी आ गए। और कई सारे संतों का दीदी, हमारे आश्रम भी है जो हरिद्वार में बड़ा से बहा मंथ है महंत, वो उसका भी हमारे गांव में बड़ा आश्रम है। तो हमारे गांव की भी इतिहास बताऊं दीदी, अभी टाइम ने मैं कभी आपको जरूर बताऊंगा, समय आए, संतों की भूमि है हमारे गांव।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: कभी
0: जी,
1: आपको शायद टाइम मिले तो आपको हमारे गांव की
0: अभी बता दीजिए, शॉर्ट रूप में बता दीजिए।
1: हाँ शॉर्ट रूप में बता दीजिए कि हमारे गांव में एक बार क्या था, संतों का जो मिलावड़ा था दीदी ऐसा, और उसमें क्या था दीदी, जो पहले जमाने की बात, पहले बहुत टाइम नहीं हो, 100 साल हो गए शायद, तो क्या था दीदी, एक मंदिर के पास वो कार्यक्रम था, और उसमें पूरा कार्यक्रम करके सब दीदी खाना बनाना था, तो घी पूरा खलास हो गया, और घी की जरूरत थी 2-3 डब्बे की
0: जी।

0: तो बोला कि सभी अभी तो लोग की खलास हो गए, कहाँ लेने जाएंगे। तो उस संत ने बोला ये कुआ है, कुआ में से ले लो।
1: अच्छा?
0: और जब आप लाओगे तो कुएं में से डाल देना। तो दीदी वो पानी का घी बना दिया था संत ने, और इसमें ही खाना बनाया था। जब लाया बापू तीसरे दिन तो इसमें डाल दिया था। ऐसा ऐसा संत दीदी हमारे गांव में हो गए। आज भी कई सारे संत हमारे गांव में, मूर्ति जो उसकी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है। और आपको कोई पथरी की तकलीफ है तो आपको पथरी होता है तो पथरी की मन्नत मांगेंगे दीदी, उसका आपको जो चढ़ाना है, पेड़ा है, आपको कोई शक्कर है, वो उसको थोड़ी सी मन्नत मार लो, आपकी पथरी का जो दुखावा बिल्कुल गायब हो जाएगा।
1: अरे वाह, तब तो ये तो ठीक है, कोई भी मान सकते हैं।
0: हाँ मान सकते हैं दीदी, और इधर आके आपको बोल देना कि भाई ये हमारा कर देना, तो हम आपके वहाँ जाके आराम से आपकी मन्नत पूरी कर देंगे।
1: तो ये तो सुरेश भाई धानेरा वालों के समस्या है, उनको बोलिए।
0: हाँ मैंने मानी है दीदी, मन्नत मानी है, लेकिन एक बार तो उसको ऑपरेशन करवा दिया, दूसरी बार मैंने मानी कि उसको ठीक हो जाए तो मैं मेरे हिसाब से इधर मन्नत कर दूंगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: जी लेकिन ठीक हो जाएगा। मेरे संत का वो जो दुआ है संतों की, वो हरदम काम आती है दीदी। हमारा भी अनुभव है, हमको भी ऐसा एक दिन हुआ था तो हमारे भी ठीक हुआ था।
1: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया
0: जी।
1: जी
0: जी,
1: तो चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने जानकारी दी है कि किस तरह पथरी की समस्या होती है तो इनके गांव में ये समस्या ठीक हो जाती है। तो बहुत बढ़िया, और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि देखिए आज के दिन हम ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कि स्पेशल उनका डे रखना चाहिए। बाकी सम्मान तो करते ही है, और महिलाएँ इस व्रत को करती है तो महिलाएँ सप्त ऋषियों की पूजा करती है, इसलिए सप्त ऋषियों का मान सम्मान ज़्यादा देती है। क्योंकि देखिए भोजन कौन पकाते हैं, घर घरों में तो महिलाएं पकाती है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्ते।
2: जय माता जी, जय श्री हरि। ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
1: जी आपको भी,
2: और सभी रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी भक्तों को और सुनाने वाले सभी भक्तों को आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
1: जी।
2: तो आज तो ऋषि पंचमी है, कल गणेश जी आ गए
1: जी,
2: सब चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है
1: जी।
2: और गणेश जी आ गए तो बारिश भी थोड़ी लेके आए।
1: बिल्कुल अच्छी लेके आए, अच्छी लेके आए।
2: हाँ, आपके उधर अच्छी हुई है?
1: हाँ जी, यहाँ पर तो अच्छी हुई, बहुत हुई।
2: नहीं यहाँ तो कम ही हुई है, मगर ठीक है, थोड़ी गर्मी से राहत मिली।
1: यहाँ तो अभी भी मौसम ऐसा ही है?
2: नहीं, यहाँ तो धूप खिली हुई है।
1: अच्छा, नहीं यहाँ तो बादल मंडरा रहे, बारिश हो सकती है, सुबह भी बूंदाबांदी थी, कल अच्छी हुई पूरे दिन?
2: नहीं यहाँ तो ठीक है, कल अच्छी मतलब बूंदाबांदी चली है पूरे दिन, मतलब चली है, कुछ कुछ बूंदे चालू ही थी
1: जी।
2: और जब गणेश जी के आने का टाइम हुआ, चार बजे स्थापना का दिन हुआ, मतलब टाइम हुआ, तब थोड़ी तेज हो गई सुमावली
1: जी।
2: तो बस गणेश जी आगे बारिश लाई, और क्या चाहिए। और बस आज का खुशनुमा जीवन का राज क्या है?
1: आज यही है, आज ऋषि पंचमी है, ऋषियों का मान सम्मान होना ही चाहिए। हर एक का डे मनाते, फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, लेकिन ऋषियों का कोई दिन हम नहीं मनाते हैं, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए।
2: देखिए मैं तो इस पे यही कहना चाहूंगा कि ऋषि मतलब सन्यासी, अगर आप खुद भी ये पांच विकारों से अगर दूर है तो आप खुद भी एक ऋषि और सन्यासी है। मगर कुछ संन्यास लेने के बाद भी इन विकारों में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी से संन्यास लेने के बाद भी इन
1: हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे जो पूजनी है ना। आज हम पॉजिटिव बोलेंगे कि जो सभी, तो देखो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है, लेकिन जो है सही मायने में सच्चे संत है उनको तो वाइब्रेशंस पहुंचने ही चाहिए।
2: बिल्कुल, उनके तो चरणों में कोटि कोटि वंदन है, और उनसे तो हमें कुछ सीखना चाहिए। देखिए कि गुरु के मतलब गुरु के बिना तो जीवन में घोर अंधेरा है। हर चीज में, मतलब। और ये देखिए संत ऋषि, मतलब इनका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनका सम्मान अगले भगवान का सम्मान है, सही है ना
1: जी।
2: हाँ, अगर आप डायरेक्टली भगवान से मिलना चाहोगे तो वो संभव नहीं है, मगर इनके द्वारा सीख लेके, आप उनके द्वारा अंधेरा दूर करके भगवान से मिलना चाहोगे तो जरूर मिलोगे, क्योंकि ऋषि मतलब संत इसीलिए है कि अपने जीवन का अंधेरा दूर करे, मतलब इंसान को सही मार्ग दिखाए, वो कठोर तपस्या करते हैं तब जाके भगवान को प्राप्ति करते हैं इतने, मतलब। तो बस मैं तो यही कह, और जो सच्चा संत होता है वो यही कहता है कि आप कि मेरे वैराग्य की लाज रखना, बस भगवान से कुछ और नहीं मानता, बस मानता यही मानता है, सही है ना
1: जी।
2: हाँ, बस यही कहना चाहूंगा, बस ऋषियों का सम्मान करना जरूरी है, बस अपने द्वार, अगर कोई ऋषि, मतलब अपन को वैसा नहीं सोचना है कि ये वो है वो है, कोई भी अपने द्वार आ जाए तो ऋषि को खाली नहीं देना।
1: अच्छा,
2: अपने लिए कोई भी अपने पूजनीय है वो ऋषि है अपने लिए
1: जी,
2: इसमें सब कुछ आ गया है ना
1: जी।
2: वो कहते हैं ना, संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह
1: जी,
2: बस इसमें सब कुछ आ गया है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, सम्मान कीजिए ऋषियों का, और बस मीठे फलों की प्राप्ति कीजिए। जय माता
1: जी, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, बहुत ही सुंदर आज का विषय है कि भाई हर एक डे मनाते हैं तो ऋषि मुनियों का भी डे होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उनका डे नहीं रखा है, लेकिन आज के दिन तो हम उनको अपने शुद्ध वाइब्रेशंस उनको भेज ही सकते हैं। हेलो,
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
3: हाँ जी
1: कंचन भाई, कैसे हो आप?
3: बस बहन जी दुकान पे है, आज तो बारिश आई तो अभी खेत में तो जाने का जो पानी इलेक्ट्रिक पंप से और कुएं में से निकालते के पियत करते थे, वो तो ये काम भगवान ने कर दिया
1: जी।
3: जो एक विश्वास है ना कि भाई आएगा, बारिश आएगी, जरूर आएगी
1: जी जी,
3: बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद होते हैं, बारिश आई बहन जी, रात को भी थी, कल भी थी, परसों भी बारिश आई, अभी भी आज भी अभी रुकी है, सुबह में आई, ठीक है
1: जी जी,
3: लेकिन इतनी जोरों से नहीं आई कि भाई नदियों तालाबों में पानी हो, आएगी जरूर, विश्वास रखना है
1: जी।
3: ऑफलाइन ऑनलाइन?
1: हाँ जी, ऑन एयर है, ऑन एयर।
3: हाँ
1: जी,
3: हाँ जी, तो ऋषि पंचमी के बारे में बात चल रही है, बड़ों का आशीर्वाद, जो ऋषि जो एक साखी है, संत मिलन को जाइयो, सति लोभ मोह अभिमान, जो जो डग आगे भरो, तो संतों ने तो देखो ऋषियों ने कितना बलिदान दिया है, आगे हम रामायण महाभारत में देखते हैं कि वे यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग आके बहुत संहार करते थे तो ऋषि तो भी मन लोगों के लिए ये यज्ञ करते थे तो मन नहीं चलित होता था कि भाई अब रहने दीजिए, यज्ञ नहीं करने है, ये राक्षस परेशान करते हैं, ऐसा नहीं किया है उन्होंने, लोगों के लिए बहुत बलिदान दिया
1: जी,
3: ठीक है। तो आज दूसरी बन गई है तो उसका याद करना चाहिए, ठीक है।
1: हाँ जी,
3: और सवाल तो मैंने नहीं सुना अभी अभी,

0: हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: सप्त ऋषियों के चरणों में आज श्रद्धा से शीश झुकाए। सप्त ऋषियों के चरणों में आज श्रद्धा से शीश झुकाए। पावन विचारों की गंगा से अपने मन को नहलाए। बीते कर्मों की भूलों को प्रेम से आज सुधारे। बीते कर्मों की भूलों को प्रेम से आज सुधारे। ऋषि पंचमी के शुभ दिन जीवन में संस्कार संवारे। ऋषि पंचमी के शुभ दिन जीवन में संस्कार संवारे। तो पुनः आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। हम सभी का सम्मान करते हैं, सबका डे मनाते हैं, सबका दिन मनाते हैं धूमधाम से। लेकिन ऋषि पंचम ये भी एक अच्छा शांत त्यौहार है, तो ऋषि मुनियों का भी सम्मान होना चाहिए, इनका भी दिन मनाना चाहिए। तो देखे ऋषि मुनियों के बल पर, इनके तपस्या के बल पर तो आज धरा टिकी हुई है। बाकी तो कितना पापाचार हाहाकार मच रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। कहाँ क्या अनर्थ, छोटी छोटी बच्चों के क्या हस्र हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं, है ना।

0: लेकिन कहते ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अच्छाई भी यही है तो बुराई भी यही है। बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम है, कहीं पर भी जाइए। आप कहते हैं ना कि भाई 100 में से 10 आपको सच्चे ईमानदार दिखाई देंगे, बाकी हर एक मन में कुछ ना कुछ खोट कपट होती है। और संत महात्माओं में भी ऐसा ही है, लेकिन अधिकांश संत वो सच्चे भी होते हैं और दिल के अच्छे नेक होते हैं, जो सिर्फ समाज का भला चाहते हैं। बाकी तो कलयुग का प्रभाव उनके मन पर भी पड़ रहा है। कहीं कहीं पर हम ऐसी वैसी बातें सुन लेते हैं, वो बहुत ही गलत है, लेकिन ऐसे संत जो गलत है वो बहुत कम है। जो घर का त्याग करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, जो संत बनकर सच्ची साधना करते हैं, सचमुच उनको नमन करती हूँ मैं। और जैसे कि सुरेश भाई ने कहा कि जो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर ले वही संत है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर में भी रह करके हम संत के समान अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। हेलो,
1: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ सरपंच जी।
0: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
1: बस अभी घर पे आया था, थोड़ा खेत का अच्छा किया। कल गणेश जी बैठे और हमारे लिए गणेश जी ने सुनी और पानी पिला दिया, थोड़ा जान शांति में हो गई और
0: जी,
1: थोड़ा
0: जी।
1: ये हो गया, नहीं तो जल रही थी खेती। कल अच्छा बारिश हो गया थोड़ा
0: जी।
1: तो मैं बोला चलो नवा अभी घर के आते देखा और आपको फोन लगाया।
0: अच्छा
1: और क्या कोई विषय भी है कि कोई आए?
0: आज का विषय है ऋषि पंचमी है आज, तो हम मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, बहुत सारे डे मनाते हैं। ऋषि मुनियों का भी तो सम्मान का दिन होना चाहिए।
1: हाँ ऋषि मुनियों का तो ये तो बहुत बड़ा है ना, ऐसी बात है। ऋषि मुनियों के हिसाब से जो अपने को थोड़ा ये जीवन मिलता है और अपने को ज्ञान चर्चा मिलती है
0: जी,
1: और अपना उनको गुरुदेवों से आदर से तो अच्छा है। लेकिन अभी क्या करे, अभी आया कलयुग वो हिसाब में तो ऋषि मुनियों का थोड़ा थोड़ा असर घटता ही गया है
0: जी।
1: और
0: जी, और आज का प्रश्न है, आज सप्त ऋषियों की पूजा होती है, उन सप्त ऋषियों के नाम आपको बताना है।
1: नाम तो इतना मेरे को मैडम याद नहीं है।
0: अच्छा,
1: लेकिन देखो कोशिश करेंगे।
0: ठीक है ठीक है, बुरा राम जी, राम राम। हाँ जी,
1: और कल मैं आपको एक मैसेज भेजा था कि मेरे को थोड़ी दम की बीमारी, कुछ बताया नहीं कि बताएंगे?
0: बता दिया, आज आपने सुना ही नहीं कार्यक्रम।
1: नहीं तो मैं तो अभी आया हूँ खेत से, अभी आके बैठा हूँ।
0: वो अब आशियाना तो 10 बजे शुरू हो जाता है, तो हमने बता दिया था दम।
1: वो तो नहीं हो जाता है, लेकिन इसे आपको तो भी बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट करके तो बता देंगे तो ठीक है।
0: ये क्या, भले मैं शॉर्ट में बता दूं क्योंकि
1: ओके
0: हाँ जी, फिर दूसरे भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे ना, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि देखिए हाँ, अगर सांस फूलती है तो आप हल्दी वाला दूध पीजिए, दम्मे की तकलीफ है ना,
1: हल्दी वाला।
0: तो हल्दी दूध गर्म करके आप एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच आप हल्दी डाल करके गर्म करके पीजिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो शहद में 1 चम्मच, शहद में 1/4 चम्मच या तो मुलेठी या काली मिर्च पाउडर डाल करके चाटिए दिन में 2 बार, ठीक है।
1: और दिन में 2 बार
0: हाँ जी, और अदरक की चाय पीजिएगा, और फिर आप गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन डाल करके भाप लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी
1: ओके,
0: हाँ जी,
1: थैंक यू।
0: और आप खेत में जाते हैं, अच्छी बात है, खेत में जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन धूल मिट्टी से बचना, इसलिए मास्क लगाना है।
1: हाँ थोड़ा ये क्या, मेरे को धूल और जब ये जो सुबह ये शाम को बोले तो जब ये बगार देते हैं ना, समका आता है ना, वो टाइम में तो मेरी हालत खराब हो जाती है।
0: वही तो, इसलिए इसलिए आप मास्क लगाइए। बारीक बारीक मिट्टी कब उड़ के आ जाती पता ही नहीं चलता है। फिर ये कि स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग मत करिएगा, ठीक है।
1: नहीं मैं तो इसको पहले करता था लेकिन अभी छोड़ दिया है।
0: अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया।
1: जब से आपसे जुड़ आपसे जुड़ा रहता था थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को मैं जो आदत गंदी थी वो छोड़ दी है, धीरे धीरे सब छोड़ दिया है। थोड़ा वाइट भी करता था वो भी आपके संपर्क में आने से छूट गया है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हाँ बहुत बहुत नाम, नजर नाम तो मेरे है ही नहीं, कम से कम आपसे जुड़ा जब से 3-4 बरस से तो बिल्कुल मुंह पे भी नहीं लगा कोई भी नशा।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। और फ्रीज की चीजें नहीं खानी है ठंडी, आइसक्रीम कुल्फी भी नहीं खानी है।
1: हाँ इससे भी डिफेक्ट पड़ता है नहीं।
0: जी
1: अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ओके उषा बहन जी,
0: जी थैंक यू। तो ये थे भूराराम जी ओर से, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। तो यही है, आज सप्तऋषि है, ऋषि पंचमी है, और इसमें सप्तऋषियों की पूजा की जाती है, और एक माता अरुंधति की, इनकी पूजा होती है। माताएं बहनें नदी स्नान करके आती है, अभी तो नदी है कहाँ है, जा नहीं पाती है, और जहाँ है वहाँ तो आज भी महिलाएं जाती है, तालाब है, नदी है, नहर है, तो महिलाएं आज भी जाती है, और नहीं तो कुएं पर। और आजकल तो देखो जो वाली महिलाएं होती है, फास्ट लाइफ है, सभी का बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को काम पर जाना है, खाना बनाना इसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो समय मिलता है तब 12-1 बजे दिन में जाते हैं, पूजा भी ये दिन में ही करते हैं 3-4 बजे। और आज के दिन जैसे कि सुरेश भाई बता रहे थे, सामा ही खाते हैं बिल्कुल, मतलब खेत में बिना खेड़ी चीज़ें, ये जो सामा है ना ये भी घास फूस में लगता है, इसको हल से नहीं हाँका जाता है, तो ऐसी चीज़ें खाते हैं। कोई कोई तो आजकल क्या है, चावल भी ऐसे लगाते हैं जिसको खेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर वो चावल का वो जो लोट बॉईल करते हैं, राजस्थान में घेरिया कहते हैं, गुजराती में इसको लोट कहते हैं, चावल का लोट, तो खिचू कहते हैं, खिचू गुजराती में, तो वो भी खाते हैं लेकिन बिना खड़े चावल का। बाकी तो ज़्यादातर सामा ही खाते हैं, फ्रूट में केला खाते हैं, और तो खेत के जोते हुए तो नहीं खाते हैं। तो इस तरह महिलाएं श्रद्धापूर्वक इनका व्रत करके कहानी कहती है, और उसके बाद ही वो फराल लेती है, फराल है सामा लेती है, मतलब सामा फराल में समझिए, या फिर और इसका गोरत भी होता है, उद्यापन। 5 महिलाओं को खाना खिलाया जाता है, उसमें भी ये सामा ही बनाते हैं, फिर हाँ फ्रूट सलाद जो भी आप बनाना चाहो साथ में बनाते हैं, और 5 महिलाओं को खाना खिलाया जाता है, ये सब पूजा अर्चना करने के बाद, और यथा योग्य उनको भेंट भी दी जाती है। तो इस तरह इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं, शुभ भावनाओं के साथ मनाते हैं कि भाई सप्तऋषि, ये तो सप्तऋषि की बात है, बाकी सारे ऋषि मुनि श्रेष्ठ है, योग्य है, और उनका हम दिल से नमन करते हैं, क्योंकि संत बनना भी हर एक के बस में नहीं है। जिन्होंने 5 अपने 5ों ही कर्मेंद्रियों को जीता है, ठीक है, वो ही सच्चे संत है। कहते हैं ना प्रकृति के 5 तत्व, ऐसे ही शरीर के भी हर कर्मेंद्रिया, आँखें है, कुछ भी देखने की इच्छा करती, देखो आजकल मोबाइल का कितना क्रेज हो गया है, मोबाइल छोड़ते ही नहीं, लेकिन जिन्होंने इसको जीत लिया वो महान है, तो आंखें धोखा नहीं देगी उस समय। मुंह है ये खाया वो खाया, लेकिन संत जो है सच्चे संत, वो न मोबाइल देखेंगे, ठीक है काम की बातों के अलावा, अब किसी शिष्य का या भक्तों का फोन आया तो वो तो उठाना पड़ेगा, और बाकी खाने पीने में सात्विक भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, और बनती कोशिश खुद बना करके भोजन करते हैं, वो सच्चे संत है। मन इधर उधर भटकता है, वो मन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा संयम मन पर रखा जाता है, तो वो सच्चा संत है। तो इस तरह संतों का भी दिन मनाना चाहिए, और आज इस दिन को ऋषि पंचमी कहते हैं कि चलो इसी बहाने हम ऋषियों की पूजा करते हैं, ऋषि मुनियों को दिल से याद करते हैं, और सुंदर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भेजते हैं, दुआएं देते हैं, और कहते हैं ना कि जहाँ दवा काम नहीं करती वह दुआ काम करती है। संत जो समाज की सेवा करते हैं, समाज में गंदगी साफ करने की सेवा करते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षा संस्कार देते हैं, तो कम से कम हम उनको दुआ तो दे ही सकते हैं, है ना। और बाकी तो बहनों का ज़्यादा है यहाँ पर, इस व्रत का बहनों का रोल ज़्यादा है, बहनें ही इस व्रत को ज़्यादा करती है। बाकी ठीक है, भाई लोग तो सहयोग देते, जो चाहिए घर में सामान ले आते हैं। तो इस त्यौहार को इस तरह मनाते हैं। बाकी तो जितना इसका वर्णन करो उतना कम है, पर बस शॉर्ट रूप में आपको बताया है कि ऋषि पंचमी इस तरह मनाई जाती है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ऋषि मुनियों का सम्मान करना सीखे और उनसे गुण ग्रहण जरूर करें, तो ही ऋषि पंचमी मनाना हमारा सार्थक होगा। और आइए आज के प्रश्न की तरफ। आज के दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है, उनके नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आइए आशियाना के किचन में पधारिए। आज आपको ऋषि पंचमी है, जिसको सामा पंचमी भी कहते हैं, तो सामा बनाना सिखा रही हूँ आज आपको। ठीक है, सामा के लिए सामग्री ले लीजिए। एक तो सामा तो लेना ही है, फिर आप लीजिएगा मूंगफली के दाने, आलू, जीरा लीजिए, हरी मिर्च लीजिए, धनिया लेना है, और लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, ये आप ले लीजिए सामग्री। ठीक है, फिर तो मीठा नीम का पत्ता भी आप ले सकते हैं, धनिया पाउडर आप ले लीजिए। तो ये हो गई सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सामा लेना है आपको, फिर आप लीजिएगा आलू, सिंग दाने जिसको मूंगफली के दाने कहते हैं, मीठा नीम के पत्ते जिसको कड़ी पत्ते भी कहते हैं, हरी मिर्च लीजिएगा, हरा धनिया लीजिएगा, आप लीजिए सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर, जीरा। ठीक है, ये सब खेत के बिना खेड़े लेना है, और बहुत सारी चीज़ें ये बिना खेड़े होती है। ठीक है, सामा जो थोड़ा सा श्याम कलर का होता है उसको सामा कहते हैं। मोरैया और सामा में भी फर्क है। मोरैया चावल की तरह दिखता है, मतलब दिखता तो चावल तो लंबे दाने होते हैं, वो छोटे होते हैं, छोटे छोटे मोरैया के, लेकिन कलर ऐसा होता है। लेकिन सामा क्या है, थोड़ा सा श्याम होता है, इसलिए इसका नाम सामा रखा गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर बहने क्या करती है, सामा नहीं मिलता है तो फिर ये बिना खेड़े चावल भी बनाती है, या फिर मोरैया। ठीक है, बाकी ऐसे चावल नहीं बनाते आज के दिन, वो वाले खेड़े हुए चावल बिल्कुल नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर नहीं मिलता है सामा तो मोरैया बना देती है। तो चलिए, सामा बनाने के लिए सामग्री आपने ले ली है। अब ये सब आलू की धुलाई करके काट लीजिए, इसको सामा को आप धुलाई करिए अच्छी तरह, और ये क्योंकि ये मिट्टी से निकलता है ना, तो ये मिट्टी वाला ही होता है, इसलिए अच्छी तरह धुलाई करिएगा। धुलाई करने के बाद इसको भिगो के रख दीजिए। हरी मिर्च साफ़ कर दीजिए, हरा धनिया साफ़

दीजिए और रखिए। अब आप गैस पर कढ़ाई और तेल डालिए। तेल आपको यूज़ किया हुआ नहीं डालना है, अंदर से अच्छा सा ताज़ा तेल निकाल करके डालना है। मतलब ताज़ा बोले तो फ्रेश, ऐसे पहले से सब्जी का बनाया हुआ या किसी में तला हुआ ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। और वो तेल डालिए। तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरे का तड़का लगाइए। जीरा तड़क जाए तो फिर हरी मिर्च डाल दीजिए, करी पत्ते डाल दीजिएगा, फिर आप डालिए सिंगदाने, और फिर आप आलू जो हमने काटे हैं वो डालिएगा, धुलाई करके काट के। और फिर अब इसमें आप सेंधा नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा मसाला फ्राई करके फिर आप पानी डाल दीजिए, धनिया पाउडर भी इसमें डाल दीजिएगा, और फिर आप पानी डाल दीजिए, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार पानी डालना है। पानी का उबाल आ जाए, एक उबाल आए, फिर ये सामान जो लिया है इसके धुलाई करके अंदर डाल दीजिए और ऊपर से ढक्कन ढक दीजिए। अब इसको खदबद होने दीजिए, इसको सीजने दीजिए। देखिए कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में ही आजकल में आता है, बहने ज़्यादा बनाती है तो बस कुकर में तो एक सीटी में काम हो जाएगा आपका। आलू है तो 2 सीटी ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी 1 सीटी में अच्छा बन जाता है। और कढ़ाई में बना रहे हैं खुला तो इस तरह पानी सोख लेवे तब तक आप इसको सीजने दीजिए। बीच बीच में आप हिलाते रहिए, वो दाना गलेगा वो तो पता चल ही जाएगा कि हमारा सामा तैयार हो गया है। तो लास्ट में हरा धनिया डाल दीजिएगा, हिला दीजिए, ये बन गया सामा। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ। आप कुकर में बना रहे हैं तो भी तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो जीरे का तड़का लगाइए, जीरा तड़क जाए तो हरी मिर्च डाल दीजिए, फिर आप सिंग दाने भी डाल दीजिएगा और साथ ही साथ मीठा नीम भी डाल दीजिएगा। पहले तो आपको सिंग दाल, ये जैसे जीरा तड़क गया फिर सिंग दाने डालने हैं, उसके बाद हरी मिर्च और करी पत्ते डालने हैं। फिर आप जब ये सब थोड़ा सा मसाला फ्राई हो जाए फिर आप इसमें डाल दीजिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर हल्का सा मसाला पक जाए फिर आप पानी डाल दीजिए। आलू डालना है, आलू डाल करके हिलाना है। जब ये सारे मसाले थोड़े से पक जाए तब आप पानी डालिए, और एक उबाला कुकर में बना रहे हैं तो पानी डाल दीजिए, ठीक है। पानी डालने के साथ ही साथ आप सामा भी धुलाई करके डाल दीजिए, भिगो रखा है ना, पानी निकाल के इसमें डाल दीजिएगा। और आवश्यकता के अनुसार पानी लेकर के फिर आप कुकर को बंद कर दीजिए, ठीक है। कि पर्याप्त तो पानी है कुकर में, बस फिर कुकर बंद कर दीजिए। 1 सीटी में सामा तैयार हो जाएगा। और फिर आपको कहीं कहीं का पानी हार्ड होता है तो फिर 2 सीटी, बाकी 1 सीटी में सामा अच्छा तैयार हो जाता है। फिर आप जब भाप निकल जाए तो धनिया डाल करके फिर से बंद कर दीजिए ढक्कन को, ताकि वो धनिया भी अंदर बैठ जाए। फिर जब चाहे आप खा सकते हैं। तो इस तरह सामा बनाया जाता है, पर अपने इष्ट देव को, सप्तऋषियों को भोग लगा करके ही खाना है, ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत सुंदर है। आज सप्तऋषियों की पूजा होती है, उन ऋषियों के नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर दम्मा है, सांस फूलते हैं तो क्या करेंगे, आपने जाना है। और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। ऋषि मुनियों का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है, क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए जी रहे होते हैं। इसलिए आज के दिन हम ऋषि मुनियों का भी दिल से दुआएं देते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और रेसिपी में जो सामा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। ऐसा नहीं कि बहनें ही खाएगी, भाई लोग भी खा सकते हैं। बहुत ही लाइट खुराक है, लाइट डाइट है, आप आराम से खा सकते हैं। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आज के दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है, तो उन सप्त ऋषियों का नाम बताना है। तो हमारे लगभग सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है। सुरेश भाई जोटाना से, कला बहन अहमदाबाद से, नीलम जी आबूराज से, ममता जी मेहसाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आप सभी का जवाब सही, और कंचन भाई मंडाली से, आप सभी का जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से और भूराराम जी ने जवाब नहीं दिया है, बाकी आप सभी और अलका जी जुड़े हैं, अलका जी काबरा कपासन से, आप सभी का जवाब सही है। मैं जवाब जरूर सुनाऊंगी, एक बार तालियां बजा देती हूँ। तो आज का जवाब सुन लीजिए, सप्त ऋषियों के नाम है अत्रि मुनि, जमदग्नि मुनि, कश्यप मुनि, विश्वामित्र जी, गौतम मुनि, भारद्वाज मुनि और वशिष्ठ मुनि, ये हुए सप्त ऋषि। और विषय में भी जुड़े हैं सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, फिर भूराराम जी ओर से जुड़े हैं, कंचन भाई मंडाली से जुड़े हैं, सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं और सुभाष भाई महाराष्ट्र से। तो आप सभी के लिए पुनः तालियां। आज का मीठा मोती है हमारे द्वारा किया जाने वाला विचार विश्व का निर्माण भी कर सकता है तो विनाश भी। अच्छे विचार निर्माण करते हैं, बुरे विचार विनाश। अब मैं आपको अपना ही स्वरचित गीत सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक सुंदर से प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
1: दीदी, मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
1: ओके।
2: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए। ये भी हो सकता है ना? सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है। उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं, तो ब्लंटली जवाब देता है। जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। सो अब उसको सवाल समझ में नहीं आया, तो उसने कहा क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को
1: अनकंफर्टेबल होते हैं,
2: अनकंफर्टेबल। किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं
1: जी।
2: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है।
1: ओके।
2: वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए।
1: ओके।
2: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना। सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि इस छोटी सी बात को सोचने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे पास दो बिल्लियां हैं, तो मुझे दो होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल।
1: ओके।
2: तो उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे ये आपने दो होल क्यों बनाए हैं। कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली के लिए
1: छोटी बिल्ली के लिए छोटा होल।
2: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की जरूरत
1: नहीं है।
2: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते,
1: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके। तो जैसा आपने बताया, वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है, जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ। उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। ओके। यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
2: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
1: जी जी।
2: जो सवाल था आपका, उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।
1: हाँ जी, इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते।
2: नहीं करते हैं, तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
1: ओके। कैसे?
2: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो।
1: ओके।
2: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो, जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम

0: जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
1: ओके,
0: क्योंकि
1: इंटरेस्टिंग है।
0: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना,
1: संभालेगा
0: और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ कि राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड। उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज, एंड वो इतने उदार दिल है कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी
1: है। ओके, तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
0: कर सकते,
1: बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत, या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सप्रेशन में चली जाती है। और सप्रेस की हुई फीलिंग्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे प्रेशर दे तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे
1: तो एकदम से बाहर आती है,
0: उछल कर कूद कर
1: चलती है,
0: कहीं और चली जाएगी। तो वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते, उसको वेंट आउट नहीं हुई ना हमारी फीलिंग्स, उसको कई बार कहते हैं आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो पर थोड़ा ज्यादा खा लेते हो, तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
1: वॉमिटिंग हो जाती है
0: या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है, दबा दबा दबा दबा के सप्रेस कर कर करके फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाए। क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
1: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा। जैसा आपने कहा, इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना, हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, तो शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं, एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा, अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसर्च में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी, तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
1: ओके,
0: हाँ, सो वो कैसे बना, तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। सो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव। तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं। अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो क्वाइन होता था
1: जी।
0: तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया कि किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे। तो मैंने आगे आके कहा कि ये मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए। फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा, आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो, चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है, बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना, किसी के भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा, हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए, आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए, और अपने आप को आपको कम नहीं समझना चाहिए। जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना, उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, लेकिन मुझे उस पर नाज होना चाहिए, उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होगे, मेरे सिंपल होगे लेकिन स्वच्छ होगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी, तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है? वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अपने छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई,
1: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कितना प्रैक्टिकल है ये।
0: लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं
1: जी,
0: कपड़ों से, अपनी बातों से बड़ी बड़ी बातें

0: लगा कि मैं भी उड़ाऊ मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं क्या, क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है।
1: देखिए, एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
0: जी,
1: तो मुझे आप बताओ, उनको ही पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या।
0: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है, नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या ऐसे
1: ग्रुप
0: रहना
1: में
0: अच्छा
1: शामिल होने
0: होता
1: के
0: है।
1: लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते
0: जी
1: है ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना, पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद ही नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते,
0: अपनी फीलिंग्स को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं।
1: यस यस, ये फेक मी है,
0: इसमें से न्यू मी नहीं है।
1: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। सो यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना।
0: मुझे अच्छा फील नहीं कर रहा, अच्छा बुरा लग रहा है, डाउन बुरा लग रहा है, लो लग रहा है।
1: फिर लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ ऐसे, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझ में ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूँ,
0: सेम जरूरी नहीं है,
1: नहीं है। मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
0: बहुत सुंदर डेफिनेशन है, और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं, सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है, मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए, और मी जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं उसको रियली रखें।
1: जी, सो मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर लें, किसी एक शांत, स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस लें, और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही, गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है, सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए।

0: 10 सेकेंड्स के लिए देखिए अपने आप को रोल प्ले करती। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूं, रियल हूं। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस ले। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखें, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो है, जैसे है, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर है, गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार है, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे है वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं। इसलिए गहरी और लंबी सांस ले। अपने आप से वादा करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना। अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलूं। बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। तब तक आइए, दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपकी खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: आदियों से। आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है हेमलता गोयल। आप आबू रोड के रहने वाले हैं, आपने 8वीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60 प्लस है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू देकर के खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा 8वीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार,
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव?
1: पांच पांडव।
0: तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं, आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे छह भाई है और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, छह भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है। हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी?
1: पूरी हुई, हर डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
0: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है?
1: आज भी पूरी हो रही है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना। नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती है, भाभियां आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: अच्छा तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि छह भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों भाई बहन कैसे रहते थे?
1: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, तीन भाई मेरे से बड़े, तीन भाई छोटे, मैं पांचवे नंबर की थी।
0: अच्छा, तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
0: इकलौती बेटी तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
1: सही बात है।
0: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
1: जन्म मैंने कहा निकालते थे बाहर।
0: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिशें होती थी
1: बहुत,
0: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
1: बंदिश थी ना। मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में है।
0: अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: फोरमैन की पोस्ट पे थे पर।
0: जी जी, तो आपने जैसे 8वीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
1: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बेटी सामने।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
0: तब तो आपकी फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपकी फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
1: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
0: अच्छा, ये सारे गेम होते थे। आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
1: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
1: सेवंथ में।
0: फिर एट में भी गए?
1: एट्थ में नहीं गई थी फिर।
0: तो सेवंथ में फर्स्ट आई तो एट में क्यों नहीं गए?
1: एट्थ में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी मैं, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था 8वीं पास करके।
0: अच्छा अच्छा, तो 7वीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
1: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
0: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
1: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना जो फर्स्ट मिला था,
0: सर्टिफिकेट,
1: सर्टिफिकेट और इनाम।
0: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है,
1: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
0: अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए,
1: चाहिए। टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
0: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
1: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
0: अच्छा, चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
1: ना, कभी मैंने जीता ही है।
0: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की,
1: लाइफ की।
0: अच्छा, और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
1: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो वजह से याद रह गए सारे।
0: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
1: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्र गीत और सरस्वती के ऊपर और
0: ये। जी जी, देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
1: जैसे ये मनाते ना सरस्वती का फंक्शन बसंत पंचमी के दिन, उसपे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी, सब कुछ नाच कूद में। और
0: तो चंदेलाई ने सुनाएंगे आप?
1: हाँ, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सका।
0: जी जी जी, तो ये प्रार्थना बोलते थे आप?
1: प्रार्थना बोलते थे।
0: और आप किसमें भाग लेते थे?
1: बस ये खो खो में, और वो बताया ना मैंने वॉलीबॉल में, और उसमें भाग लेते।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब तो आप कह रहे थे एट में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया
1: था, इसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
0: तो आप तो अच्छे प्लेयर रह चुके, फिर स्वास्थ्य कैसे ऊपर नीचे हो गया?
1: डिप्टेरिया हो गया था, फिर गला बंद हो गया था मेरा, तो आवाज भी नहीं आती थी मेरे से, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। फिर मेरे ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा नहीं पढ़ाना बोले।
0: अच्छा, इसी वजह से आपकी पढ़ाई
1: रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
0: जी जी जी,
1: मजबूरी थी मेरी, मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी थी।
0: पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
0: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई?
1: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती थी।
0: स्वाभाविक है। जी जी जी, हर एक के सपने होते हैं। जी, तो हेमलता जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरी आंखों में सपने छोटे हो या बड़े, चुन लिए हैं मैंने क्यों जिद पे हो अड़े। मेरी आंखों में सपने

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी, पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: तो आपकी बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
1: जी, बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
2: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक का एक बच्ची है और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
1: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
2: इसलिए भेजा नहीं।
1: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़ प्यार मिलता है तो पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाते हैं।
2: बात है, सही बात है।
1: तो उस समय आपको कैसा लगा जैसे आगे नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है,
2: दुख हुआ ना उस समय कि भाई मैं और पढ़ती, पर घर वाले लाइक नहीं कर रहे थे, क्या कर।
1: और उस समय बचपना होता है, इतना सीरियसली नहीं लेते, वो तो जब एक एज होती तब पता चलता है पढ़ाई क्या है।
2: वो तो आगे बढ़ने के बाद अब महसूस हो रहा है हमको, आगे बढ़ते तो और कहीं पहुंचते, सर्विस करते, टीचर लाइन में जाते और कहीं जाते।
1: जी जी जी, हर एक का सपना होता है,
2: मजबूरी थी ना हमारी, क्या करें।
1: जी, कोई बात नहीं, अब तो आपके 60 की उम्र हो गई है और आप भूल भी गए होंगे उन बातों को।
2: सब बातें भूल गए, अब तो यही याद आता है, और सत्संग का।
1: जी जी, सत्संग का याद आता है। सही बात है, कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है, तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा, चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे? खेल
2: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
1: अच्छा, तो कौन सा खेल हमको भी पता चले उस समय क्या?
2: उस समय तो यही थे ना, आंख मिचोली, छुपा छुपी, और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
1: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
2: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
1: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी?
2: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
1: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
2: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी धोती थी शादी होने के बाद में भी।
1: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला?
2: सभी का प्यार मिला, कभी कोई, कभी कोई, कभी वो।
1: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो, लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो। तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
2: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
1: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
2: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूल में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बड़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने, सब स्कूलों में सीखा था।
1: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
2: पे बनाए थैलिया, मनाई कसी देखी, और सब कुछ बनाए, बैग बनाए और सामान बनाए।
1: जी जी जी, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
2: मैं 18 या 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, 8th में।
1: 8वीं पास होने के बाद आपकी शादी हो गई?
2: मेरी शादी हो गई थी।
1: तो आपको बीच में गैप नहीं मिला थोड़ा घर पर रहने का?
2: नहीं, वैसे तो गैप मिला ना, उस समय तो मैं 15-16 साल की थी, 8वीं में पढ़ी जब, फिर 2 साल मेरे को घर पे रेस्ट करवाया ना, बीमार थी जो, उसके बाद बोलेगा अब शादी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई कर देते हैं, ये तो और कुछ हो जाएगा इसको, ऐसा सोचते थे घर वाले,
1: पढ़ाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा।
2: ऐसा पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे ना, तो फिर 80 में मेरी शादी हुई थी।
1: अच्छा, तो 80 में फिर आपकी शादी हो गई?
2: 1980 में मेरी शादी हुई थी।
1: तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
2: शादी के बाद तो वही गृहस्थी संभालो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो।
1: नहीं, बच्चे तो बाद में हुए होंगे। आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
2: हस्बैंड प्रिंसिपल है।
1: अच्छा, प्रिंसिपल है, मतलब आपका सपोर्ट करते थे?
2: हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सब में सपोर्ट करते हैं।
1: और घर में उस समय कौन कौन थे जब आप शादी करके आए? तब
2: मैं शादी करके आई जब मेरी जेठ जेठानी और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, चार जने थे।
1: सास ससुर नहीं थे?
2: ससुर नहीं थे मेरे,
1: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी।
2: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड 12 महीने के थे जब भी उनकी डेथ हो गई थी।
1: सास ससुर दोनों की?
2: सास तो थी, ससुर पहले गुजर गए थे, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जब सास भी गुजर गई थी, एसटीसी करी माउंट आबू से, फिर जब सास गुजर गई थी फिर इनकी नौकरी लग गई एसटीसी करने के बाद, फिर हमारी शादी हुई।
1: तो फिर आपके जेठ जेठानी ने आपका सारा काम किया?
2: सारा काम उन्होंने किया, जेठ जेठानी।

0: जी जी
1: वही सास ससुर के बराबर ही है मेरे।
0: जी जी आपने तो उन्हीं को देखा है।
1: उन्हीं को देखा है मैंने, यही है सास ससुर।
0: बिल्कुल समझदार के लिए तो यही है,
1: यही है। हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे, शादी करी तो उनको ही सम्मान देना है ना।
0: सही बात है। आप जैसे शादी करके अपने ससुराल में आए तो आपने देखा कि जेठ जेठानी आपके सास ससुर है, तो कैसे रहते थे आपस में, रिश्ता कैसा रहा आपका आपके जेठ जेठानी के साथ?
1: हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा रहा था, आपस में साथ में ही निभाए 20 साल 25 साल तक। फिर वो पोस्टमास्टर थे तो इनका बार बार ट्रांसफर होता था जेठ जी का, तो फिर मेरे को अकेला ही रहना पड़ता था इनके साथ में। उनके भी बच्चे नहीं है, जेठ जी के भी एक ही लड़की थी जो उसकी शादी कर दी।
2: अच्छा,
0: और आपके कितने बच्चे हैं?
1: मेरे दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं,
0: चार बच्चे हैं।
1: चार बच्चे
0: जब आप शादी करके आबू में आए, एक तो जोधपुर इतना बड़ा शहर, फिर जोधपुर से आप एक कस्बे में आए, तो यहाँ आपका मन लग गया?
1: नहीं लगा था मन बहुत, अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वीरान था पूरा। मैं शादी करके आई जब कुछ भी नहीं था, और मैं तो देख देख के रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे को तो जोधपुर छोड़ के आओ, ऐसे करती थी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर ये नौकरी पे जाते, फिर मैं अकेली रहती दिन भर, जब तो बच्चे ही नहीं थे और नई नई किससे बात करूं मैं, तो मैं अकेली कमरा बंद करके बैठी रहती थी, रोती थी अंदर ही अंदर।
0: आपके माता पिता ने ये नहीं देखा कि बच्ची इतनी लाड़ प्यार से पली हुई है, एक गांव में दे रहे हैं, उस समय आज तो फिर भी कस्बा है, उस समय तो आप कह रहे हैं कि वीरान था, तो उस समय कुछ था नहीं, तो उनको थोड़ा सा ये नहीं लगा कि बच्ची कैसे सेट होगी वहां?
1: उनको बहुत लगा था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, चार बार रिश्ता तोड़ा है चार बार।
0: अच्छा,
1: मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया मेरी एक ही लड़की है, मैं बाहर नहीं दूंगी, रोने लग गई थी वो भी, पर अब किस्मत ने यहाँ लाया साथ तो फिर क्या करें। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं बाहर नहीं दूंगी।
0: जी जी फिर कैसे हुआ यहाँ पर आपके पिताजी?
1: अगले ने भी जिद करी, इन्होंने भी जिद करी कि नहीं हमको लड़की यही पसंद है, हम तो यही करेंगे साथ।
0: और आपके पिताजी भाई लोग का फोर्स था क्या?
1: सपोर्ट दिया ना, फिर क्या करें कि भाई करो जिद कर रहे तो। बाकी मेरे खानदान में कोई बार नहीं है, मैं अकेली बार हूँ।
0: तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?
1: उस पुराने जमाने में तो हमसे बात ही कहाँ करते थे पहले, वो तो बड़ों ने जो कर दिया वो सही है, हमने ना आदमी को देखा ना किसी को देखा।
0: अच्छा, देखने का सिस्टम था ही नहीं, तो देखा ही नहीं।
1: मेरी शादी के टाइम तो सिस्टम था ही नहीं, पूछते ही नहीं थे।
0: जी जी जी बस जो बड़ा ने किया वो पत्थर की लकीर,
1: पत्थर की लकीर हो गई।
0: तो जब आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि वीरान है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपके हस्बैंड से आपने बात नहीं की कि कहीं अच्छे शहर में सेट हो जाए?
1: नहीं तो वो नौकरी का इशू था ना भाई, बाहर नौकरी तो यहीं लगी हुई थी ना, फिर बार बार इनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर ये अप डाउन करते थे पास में, अनादरा है जैसे, आतल है, चार पांच जगह इन्होंने नौकरी करी, फिर मावल, ये तो मावल तो आबू रोड में ही था जो चल गया।
0: जी जी छोटे छोटे गांव में
1: डीन की प्रमोशन होता रहता था बार बार।
0: जी जी इसलिए आप जा नहीं पाते, बड़े शहर में हो तो आप चले जाओ।
1: चली जाती, नहीं तो मैं छोटे शहर में मैं क्या करूंगी जाके, जब एक जगह ही अपना रहना है तो। फिर दो बच्चे छोटे थे दोनों, एक इनको लेके कहाँ घूमती इधर उधर।
0: और आपके जेठ जेठानी बाहर रहते थे?
1: जेठ जेठानी का ट्रांसफर हो जाता था हर 3 साल में, तो फिर वो बाहर जाते थे, 3 साल यहाँ रहते, 3 साल बाहर रहते थे।
0: अच्छा, इसलिए आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते
1: हो? गई थी मैं बिल्कुल, छोटे से घर में रहती थी फिर।
0: तो आपके जेठ जेठानी को बोला नहीं कि मैं अकेले, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कि आप लोग ट्रांसफर मत होना?
1: कभी तो मजबूरी थी ना, नौकरी थी, उनकी भी तो ट्रांसफर होता था ना, उनके 3 साल फिक्स होते थे, हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता।
0: जी जी 3 साल में आपको जाना ही है,
1: चाहे आप कैसे भी रहो।
0: जी जी और जैसे आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, तो आप अकेले पढ़ते थे कि जैसे आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, आप अकेले हो घर में, तो आपने कैसे समय व्यतीत किया? इन चीजों में ध्यान दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, भजन सत्संग में, या फिर कैसे आप? भाई रोज अकेले रहना रोना वो तो अच्छी बात नहीं है।
1: नहीं तो घर का काम तो करना पड़ता था ना मेरे को पीछे, जैसे घर का काम करना, बच्चों को रखना, ऐसे ये स्वेटर वेटर बना लेती, टोपे मोजे और ये बनाती बैठे बैठे सर्दी में, फिर बच्चों को रखना भी तो मेरे को ही पड़ता है। जब इनको सुला के फिर घर का काम करती। पहले नौकर चाकर कहाँ थे, कोई संभालने वाला भी नहीं, सास नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कौन संभालता।
0: जी बिल्कुल, तो इन चीजों में ध्यान दिया और जरूरी भी है, और बच्चे होते हैं जिस घर में वहां तो टाइम कैसे बीतता पता ही नहीं चलता।
1: इसीलिए मैंने बच्चों के साथ ही जिंदगी लगाई, फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, पांचवी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो दिन उसमें पूरा हो जाता था मेरा।
0: क्या बात है, आपने आठवीं तक पढ़ाई की और आज के युग के पांचवी तक के बच्चों का पढ़ा लेते।
1: पढ़ा लेती थी सारा,
0: क्योंकि आपके समय में तो इतनी अंग्रेजी नहीं थी।
1: मैं तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ी हुई हूँ आठवीं तक, तो मेरे को इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है।
0: अच्छा चलो, ये आपका अच्छा रहा। तो आप फिफ्थ तक के बच्चों को आराम से पढ़ा लेते।
1: पढ़ा लेती थी, पहले तो इतनी हाई फाई किताबें नहीं थी ना छोटे बच्चों की, पांचवी तक तो नॉर्मल ही था। इंग्लिश भी कहा ABCD और यही होते थे, स्पेलिंग है वही होती थी। अब ये कोर्स तो अब भारी हुए।
0: हाँ जी हेमलता जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma
1: Kumaris. Mamta ki murat bhi wahi, shakti ka swarup bhi wahi. Mamta ki murat bhi wahi, shakti ka swarup bhi wahi. Nari ko kamzor kehne walo, नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था। फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
2: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेली किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अब रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी। तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
1: अच्छा सोचा। तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
2: हाँ, हस्बैंड से बात की ना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
1: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की?
2: शुरुआत
1: जी। बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
2: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
1: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
2: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
1: जी जी। तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
2: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
1: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ?
2: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते हैं, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
1: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते हैं ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
2: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
1: हाँ जी हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन, आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
2: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
1: तो बच्चे लोग आते थे?
2: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
1: इसकी एड कैसे की आपने?
2: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
1: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
2: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब कि भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
1: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
2: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
1: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापस रिपीट हो जाती थी?
2: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से कि भाई इसको ये पढ़ाना, इसको ये पढ़ाना।
1: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके 4 बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
2: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
1: अच्छा, ट्विंस हुई?
2: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
1: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
2: तो फिर काम वाली भाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं।
1: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
2: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
1: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो।
2: मम्मी आई थी ऐसे, तो मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई दो चार महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती, उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
1: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
2: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
1: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
2: 10 साल का गैप है, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा और इनके साथ 10 साल का रहा।
1: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
2: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
1: जी जी जी, हाँ स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे ही काम वाली माई लगा रखी थी?
2: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना, काम तो बहुत मजबूरी से बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
1: कहते हैं ना दुख सुख जीवन के साथ चलता है,
2: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
1: जी जी, 4 बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना घर में भतीजे भतीजे को बड़ा किया हो तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
2: सरल है, कराना बड़े को भतीजे भतीजे, 3 की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं,
1: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
2: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
1: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा?
2: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
1: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है एक साथ में बना के देना पड़ता है, उस समय मुश्किल होता?
2: क्या मैं तो मुश्किल ही भाई, बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
1: बिल्कुल, 3 जनों का टिफिन, फिर 2 बच्चों को संभालना,
2: बच्चियों को संभालना सारा।
1: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
2: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी, जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, 2 बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
1: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
2: आते थे ना पियर वाले मिलने आते थे, कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
1: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
2: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, बाहर कैसे लेके जाना दोनों बच्चों को, आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैं तो मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
1: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
2: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
1: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
2: नहीं
1: थे?
2: गई मैं 2 साल तक, कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई मैं।
1: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने

0: कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकते।
1: बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे 2 साल के।
0: जी जी, तो 2 साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया।
1: शुरू किया 2 साल के बाद।
0: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं?
1: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए तो चारों के।
0: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
1: नानी बन गई ना।
0: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए।
1: कहाँ जिम्मेदारियां, तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
0: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
1: रहा होता है।
0: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है?
1: फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख किडनी की प्रॉब्लम है जो।
0: अच्छा, पोते पोती के?
1: पोते पोती को।
0: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई।
1: हाँ, ये परेशानियां हो गई है सब।
0: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में जाता है?
1: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ, टाइम नहीं।
0: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं?
1: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, 2 बार।
0: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
1: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
0: अच्छा, सभी साथ में है, दोनों बहुए साथ में?
1: सब साथ में, सब साथ में।
0: तो बच्चों का कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
1: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
0: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
1: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
0: अच्छा, कोरोना के समय हो गया?
1: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हो गए।
0: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
1: कुछ नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
0: फिर भी कैंसर हो गया? तो अभी ठीक है?
1: हाँ, अभी ठीक है।
0: तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
1: नहीं, जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना, लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते, फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
0: जी जी जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती
1: है? बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहू संभाल लेती।
0: जी जी जी, और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं, उनको कितना पढ़ाया आपने?
1: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है पीएचडी में, बड़ा बेटा एमबीए करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
0: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करती
1: है? नहीं, जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
0: जी जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है?
1: अच्छा पढ़ा दिया, सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
0: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
1: उन्होंने पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब, सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
0: जी जी जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
1: खुश हूँ मैं, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मेरे जीवन।
0: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही हैं, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती, तो आप क्या कहेंगे?
1: नहीं, हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
0: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
1: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें, जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो, किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है, तू मेरा वो है, अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से 4 बात अपने को सुनने को मिलेगी, इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
0: क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर

0: किए रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
1: धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से हैं आप, आपने भले पढ़ाई 8वीं तक की है लेकिन आपके नॉलेज देखिए कितना है। आज आप अपनी बहुओं के साथ बहुत प्यार से रह रही हैं, जब शादी करके आए तो भाभियों के साथ बहुत ही प्यार से रहे, तभी घर में सुख शांति बनी रही। और आज भी आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए थोड़ा रुचि रख रहे हैं और भजन सत्संग में भी अपना समय देते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के हैं

0: जीवन की कहानी तुमसे ही शुरू है, तुमसे ही खत्म है। मैं एक शब्द हूँ, मैं एक भावना हूँ, मैं सबके दिलों में राज करती हूँ, तराना बनकर, गीत बनकर। सुखद सलोनी कहानी प्रेम की पटरी पर चली जा रही है, इसका आनंद लें। सरगम की ट्रेन पर छुक छुक करती यह आगे ले जा रही है, साथ चलने का मजा अलग ही है। रेडियो मधुबन पर शुरू हो चुका है कार्यक्रम गुलदस्ता। यह गुलदस्ता अपने बारे में ही कह रही है कि मैं शब्द हूँ, फीलिंग हूँ, आप सबके दिल में राज करती हूँ। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आइए फिर से आज की संगीत की जो यह मुलाकात है इसे यादगार बनाए। फिर से सुनते हुए मुस्कुराते हुए कायम रहिए स्वर्ण लता के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: के साथ स्वर संगीत की धरनी है। वे आपसी तालमेल से संगीत की कहानी को आगे ले जाते हैं। ऐसे ही सा से साथी, रे से रिश्ता और प से प्यार। यह रिश्ता है प्यार का, विश्वास का। चाहे दो दोस्त हों, जीवन साथी हों, कोई भी रिश्ता हो, क्या चाहिए? अपनापन, मजबूती, इरादे पक्के और एक दूसरे की मान्यताओं को, वैल्यूज को हम माने, हम उसे एक ब्रीदिंग स्पेस दें। जीवन में जो जिस रास्ते पर चल रहा है, उसे हम उसकी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करें। लाइफ स्टोरी में हस्तक्षेप किए बिना उसे आगे जाने दें। यही है सच्चा रिश्ता। तो आज के प्रोग्राम में हम इन गीतों को सुनकर अपनी कहानी को और दूसरों की कहानी को एक नया मोड़ देंगे। सुनते हुए मुस्कुराते हुए बने रहिए स्वर्णलता के साथ। कार्यक्रम है गुलदस्ता और आप छाए हैं दिल से रेडियो मधुबन पर।
1: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
2: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
1: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह

0: स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
1: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
2: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: लाइफ स्टोरी में, लाइफ की कहानी में पहाड़ों का भी आना होता है, पतझड़ भी आते हैं। पतझड़ में अगर हम फूल खिला दें, एक दूसरे की उतार चढ़ाव भरी कहानी में अगर हम पतझड़ में भी फूल खिलाने का प्रयास करें, तो ऐसे ही आज के हमारे गीत हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। इनको अगर आप गहराई से सुनेंगे तो आपके जीवन में ये फूल खिलाएंगे और अन्य के भी, यानी आपके जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके जीवन के सपनों को और साकार करने के लिए उनकी मुसीबतों में आप एक फूल का कार्य कर सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज के मीनिंगफुल सॉन्ग्स को अपने जीवन में शामिल कीजिए। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुलदस्ता स्वर्ण लता के साथ।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जब हम कहते हैं तो एक दूसरे की कहानी को और अपनी कहानी को भी स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, शक्ति भर रहे होते हैं। वैसे हम सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने वैल्यूज हैं और सपने भी अपने होते हैं, पर जब साथ मिलकर चलते हैं तो हमारे सपने एक हो जाते हैं। कई बार कुछ कॉमन सपने भी देखने होते हैं, इससे मजबूती मिलती है। इंडिविजुअल तो जीना आसान है, पर मिलकर चलना उतना आसान नहीं। उसके लिए कई रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। रास्ता है कॉमन सपना। हम सबका एक सपना क्या हो सकता है? उस कॉमननेस में ही यूनिटी है। फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम के गीत हमें इस यूनिटी की ओर ही लेकर जा रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वरलता के साथ आप हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब तक आसपास रहेंगे, जब तक आसपास रहेंगे, गीत सुनेंगे और सुनाएंगे। यही तो हमारी कहानी है रेडियो मधुबन पर। कार्यक्रम गुलदस्ता हर सप्ताह आपके लिए पेश करता है अलग अलग मूड के गीत बेस्ड ऑन वेरियस थीम्स, और इसमें कुछ न कुछ कहानी होती है, कुछ समझने की, कुछ बदलने की, कुछ अंजाम देने की, है ना। तो आज भी हम उसी सफर पर जारी हैं। दोस्तों, अक्सर दुख जो है, दुख में कोई शामिल नहीं होता, लेकिन खुशी में महफिल सजाने के लिए लोग आसपास होते हैं। तो इसी से ही हमें आंसर मिल जाता है कि हमें हमेशा कैसे रहना है, क्या दुख की बात करनी है या खुशी की बात शेयर करनी है। तो ये सारे जो गीत हैं, वो हमें अपनी कहानी और दूसरों की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं, जो हम अक्सर करते आ रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
2: रेडियो मधुबन

0: दिलकश समा है, प्यार ही प्यार है, और अपनी और आपकी जो लाइफ स्टोरी है वह और भी खूबसूरत हो जाता है जब एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार है, कदर है, सम्मान है, अपनापन है, और ये तो वैरायटी लिस्ट है इसकी। अनकही छोटी सी कहानी हम सब की, लेकिन जब हमारी आंखों में एक चमक होती है, हम अपनी आंखों से एक स्माइल करते हैं, तो वह बहुत कुछ कह जाती है। कहानी बहुत बड़ी भी हो सकती है, कहानी को समझने के लिए एक लाइन या एक सीन ही काफी है। ट्रेन में सफर करते भी किसी की जिंदगी की कहानी को हम जान लेते हैं। किसी की जिंदगी की कहानी स्कैन कर लेने का पावरफुल लेंस आंखों में होती है। रास्ते में एक व्यक्ति को जब आप ऑफिस से लौटते हुए देखते हैं, उसकी आंखें भी बहुत कहानी कहती हैं। क्या ऐसी कहानी को आप पढ़ पाते हैं? तो आइए आज हम ऐसी कहानियों को पढ़ लें और दुआओं से उनकी जिंदगी की कहानी को एक सुंदर मोड़ दें, है ना? सुनते हुए मुस्कुराते रहें और सुनिए अगला गीत।
1: मैं शिवराज सिंह चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: दूसरे के लिए ज्यादा कमिटमेंट करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में दुआओं का एक घर बना लेना है और उस घर में इतनी ताजगी हो, जिंदा दिली हो, उस घर में इतनी खुशबू हो कि वह घर जो है हम सब के लिए एक वरदान बन जाए। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, ऐसे ही हम हर सप्ताह मिलेंगे। आज के प्रोग्राम के गीतों को आप पसंद कर रहे होंगे और जब भी हम किसी से मिलें, किसी से बातचीत करते हैं और किसी की लाइफ स्टोरी को सुन रहे होते हैं, तो उस समय हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि वह इंसान अपने जीवन में कामयाब हो, वह अपने सपनों को साकार कर सके और वह हमारे जीवन में भी एक अभिन्न हिस्सा बनकर रहे, ताकि हमारा आपसी तालमेल एक दूसरे के लिए सुखदायी हो। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह नए पन को लिए, नया पन भरने, सुनते हुए मुस्कुराते हुए।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी, अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों।
1: भाई आज मैं बहुत खुश हूँ,
0: बता दूं क्यों? चलो बता ही देता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे अगले जन्मदिन पे मुझे एक नई साइकिल दिलाएंगे, है ना खुशी की बात।
1: लेकिन ये मीना, अरे इसे क्या हुआ, ये इतनी उदास क्यों लग रही है? आओ जरा देखे तो।
2: ये ले मीना बेटी, आम खा ले, बहुत मीठे आम हैं।
3: मुझे नहीं खाना दादी।
2: क्या बात है मीना, देख रही हूँ जब से तुम दीपू के घर से वापस लौटी हो बहुत उदास हो।
3: मुझे दीपू की बहुत चिंता हो रही है दादी।
2: कहीं वो फिर से बीमार तो नहीं पड़ गया?
3: बीमार नहीं दादी, उदास, बहुत उदास है दीपू।
2: वो क्यों?
3: वो पिछले हफ्ते दीपू के बाबा को कुछ पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने दीपू की साइकिल बेच दी, तभी से दीपू उदास रहने लगा है। अब तो उसने हमसे बात करना भी बंद कर दिया है, मैं क्या करूं दादी?
2: मेरे पास एक तरकीब है।
3: सच दादी?
2: हाँ, तू दीपू को यहाँ लेके आ।
3: वो नहीं आएगा।
4: नहीं आएगा, फिर से चिल्लाएगा।
2: आएगा मीना, जरूर आएगा। जब उसे पता चलेगा कि मैं ये मीठे मीठे आम लाई हूँ तो दौड़ा दौड़ा आएगा। हाँ
3: बात तो सही है, मैं अभी जाके उसे बताती हूँ।
2: कृष्णा को भी साथ में लेके आना।
3: कृष्णा को? लेकिन कृष्णा को?
2: जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर।
3: ठीक है दादी, चल मिट्टू।
0: आम का नाम सुनते ही दीपू मीना के साथ चलने को राजी हो गया। रास्ते में उन्होंने कृष्णा को भी अपने साथ ले लिया और फिर मीना के घर पहुंच के सब मजे से मीठे मीठे आम खाने लगे।
2: बच्चों, आम खाते खाते क्यों ना एक खेल खेलें?
5: कैसा खेल दादी?
2: बड़ा मजेदार खेल है ये कृष्णा। इस खेल का नाम है देखो आसपास कौन खुश कौन उदास। तुम सब बारी बारी से मुझे एक उदासी की और एक खुशी की बात बताओ। तुम शुरू करो मीना।
3: जी दादी, आज मैं उदास हूँ क्योंकि हाँ, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, पसीना भी आ रहा है।
4: पसीना भी आ रहा है, बहता जा रहा है।
3: अब तुम्हारी बारी है दीपू।
6: आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरी साइकिल अब मेरे पास नहीं है।
3: अब तुम्हारी बारी कृष्णा।
4: तुम्हारी बारी कृष्णा, आम बाद में चखना।
3: चुप मिट्ठू, शरारती कहीं के। तुम बोलो कृष्णा।
6: बोलो ना कृष्णा, कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से तुम उदास हो गए।
5: क्या बोलूं दीपू, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से मैं उदास हूँ, बल्कि आज तो मैं खुश हूँ क्योंकि आज हम सब दोस्त फिर से साथ हैं।
4: फिर से साथ हैं, खुशी की बात है।
6: लेकिन कृष्णा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें ठीक से ना चल पाना उदास नहीं करता?
5: बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं धीरे धीरे ही सही मगर चल तो सकता हूँ।
2: शाबाश कृष्णा, ये हुई ना बात।
4: ये हुई ना बात, चलो मिलाओ हाथ।
6: कृष्णा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
5: हाँ हाँ दीपू, भला दोस्तों की बात कभी कोई बुरा मानता है?
6: तुम्हें चाचा चाची ने पोलियो की खुराक नहीं दिलवाई थी क्या?
5: दीपू, मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था और शायद मेरे माँ और बाबा को ये बात पता ही नहीं थी कि बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद उसे पोलियो के जन्म की खुराक दी जाती है।
6: लेकिन तुम ये बात सोच के उदास नहीं होते?
5: नहीं दीपू, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे कम से कम BCG का टीका तो लगा।
3: BCG का टीका लगवाने से क्या फायदा होता है दादी?
2: मीना बेटी, BCG का टीका TB जैसी खतरनाक बीमारी से बचा के रखता है बच्चों को।
6: दादी, जैसा भाई कृष्णा ने कहा कि बच्चे को पैदा होते ही पोलियो की जन्म की खुराक दी जाती है, लेकिन ये जन्म की खुराक होती क्या है?
2: दीपू बेटे, जन्म की खुराक मतलब BCG का टीका और पोलियो की खुराक। ये जन्म की खुराक बच्चों को पोलियो और TB जैसी बीमारियों से बचाती है, समझे?
7: जी दादी।
2: चलो अब अपना खेल पूरा करते हैं। अब तुम सब बारी बारी बताओ कोई खुशी की बात। पहले तुम बताओ कृष्णा।
5: मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हाँ क्योंकि दीपू बहुत खुश होके आम खा रहा है। अब आपकी बारी दादी।
2: कृष्णा बेटे तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ।
3: लेकिन दादी आप तो कोई खुशी की बात।
2: मीना बेटी उसी से जुड़ी है ये कहानी।
5: सुनाइए ना दादी।
2: ठीक है तो सुनो। एक आदमी और एक औरत के घर में एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ। फिर कुछ सालों बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और उसके कुछ सालों बाद एक प्यारी सी बिटिया।
3: इसमें खुशी की क्या बात।
2: पूरी कहानी तो सुन लो दीपू बेटे। तीनों बच्चों के पैदा होने के तुरंत बाद उनके माँ बाप ने उन्हें जन्म की खुराक दिलवाई, यानी बीसीजी का टीका और पोलियो की खुराक, जिसके कारण वो तीनों बच्चे आज स्वस्थ हैं।
3: लेकिन दादी इस कहानी से आप क्यों खुश हैं?
2: क्योंकि उन बच्चों के नाम हैं मीना, राजू और रानी।
4: मीना, राजू और रानी। अब आई समझ कहानी?
3: सच दादी, क्या हम तीनों को जन्म की खुराक दी गई थी?
2: बिल्कुल।
5: अब तुम बताओ मीना, तुम आज खुश क्यों हो?
3: हाँ, आज मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाबा ने मुझे, राजू और रानी को जन्म की खुराक दिलवाई थी।
4: खुराक दिलवाई थी, अकलमंदी दिखाई थी।
3: अब तुम्हारी बारी दीपू।
6: मीना मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ठीक से चल सकता हूँ। साइकिल नहीं तो क्या हुआ?
4: क्या हुआ? मिट्ठू भी खुश हुआ।
6: मैं कुछ और सोच के भी खुश हूँ दादी।
2: हाँ हाँ दीपू कहो।
6: मैं खुश हूँ क्योंकि हम सब ने आज मीठे मीठे आम खाए।
4: आम खाए? दीपू जी मुस्कुराए।
0: भाई वाह, दादी का ये खेल तो सचमुच मजेदार था। सुन के मजा भी आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिल गया। चलो अब सुनते हैं एक प्यारी सी कविता।
4: खेल खेल में मजे मजे में हमने तो ये सीखा,
3: बहुत जरूरी पोलियो की खुराक और बीसीजी का टीका।
0: भाई वाह, सचमुच बहुत सुंदर कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्ठू। अब लगे हाथों एक गाना भी हो जाए।

0: गाना सुन के तो दिल कर रहा है नाचने का, लेकिन अगर नाचना शुरू कर दिया तो खेलेंगे कब? इसलिए अब सीधे चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे पहचानो कौन। मैं आपको तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और आपने मुझे बताना है उसका सही जवाब, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: आज की पहेली है एक मशहूर इमारत के बारे में। तुम्हें कड़ियां जोड़ जोड़ कर बूझना है इस इमारत का नाम। तो सुनो, पहली कड़ी, दूध के जैसा रंग है, ये है दुनिया में मशहूर, जो भी भारत आए इसको देखना चाहे जरूर।
3: लाल किला।
1: क्यों मनु, लाल किला क्यों?
3: क्योंकि लाल किला पूरी दुनिया में मशहूर जो है।
1: वो तो है, लेकिन लाल किले का रंग तो लाल है और दूध कभी लाल रंग का होता है? भूल गए पहली कड़ी, दूध के जैसा रंग है, ये है दुनिया में मशहूर, जो भी भारत आए इसको देखना चाहे जरूर।
3: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है दीपू, दूसरी कड़ी सुनो बच्चों, इसको जिसने बनवाया था वो मुगल सुल्तान, लाल किला भी उसने बनवाया था, अब पहचान?
4: शाहजहां। बहन जी लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था।
1: ये जवाब तो ठीक है कृष्णा, लेकिन तुम्हें बूझना है पहेली में छुपी इमारत का नाम।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है ताजमहल। दूध सा सफेद रंग पूरी दुनिया में मशहूर, और मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारत है आगरा में स्थित ताजमहल।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया। अब मैं चलता हूँ, लेकिन हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हे प्रभु।
1: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं?
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 3 चखने से पचने तक पृष्ठ 22 स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी। हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पृष्ठ 23 पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लोगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीजें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई, कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखो। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? क्यों? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? पृष्ठ 24। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीजें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीजें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीजें चखाओ और पूछो, स्वाद कैसा था? खाने की चीज क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ? तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर जीभ के एक चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीजों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होंठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला? पृष्ठ 25। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहां चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो। कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? बताओ। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीजों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीजें चखने के बाद झुंपा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाजें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। पृष्ठ 26। चबाकर या चबा चबाकर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में ये गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। जब तुम कोई सख्त चीज जैसे अमरूद खाते हो, तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। पृष्ठ 27। दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है, शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है, भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? सचमुच अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। एक बच्ची कहती है, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। बच्चा बोला, जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। दूसरा बच्चा बोला, जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। एक बच्ची बोली, जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। कुत्ता बोला, मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। पृष्ठ 28। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को भी बताओ। पृष्ठ 29। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? बताओ, नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली। हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहें तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे वह मीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की। इसके उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। यह कविता राजेश उत्साही ने लिखी थी। पृष्ठ 30। कहानी पेट में झांका, जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, वह सन 1822 में 18 साल का और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंड के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मॉर्डिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है, पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका उन्होंने बना ली। पृष्ठ 31। जैसे कच्चा दूध, पचने का समय पेट में 2 घंटे 15 मिनट, गिलास में 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध, पेट में पचने का समय 2 घंटे, गिलास में पचने का समय 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला हुआ अंडा, पेट में पचने का समय 3 घंटे 30 मिनट, गिलास के पाचक रस में 8 घंटे। कम उबला अंडा, पेट में पचने का समय 3 घंटे, गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ, पेट में पचने का समय 2 घंटे, गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा, पेट में पचने का समय 1 घंटा 30 मिनट और गिलास में पचने का समय 4 घंटे। कहो आप क्या सोचते हो, है कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी ये देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए, जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने कभी किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? ये लेख अनीता रामपाल ने लिखा। पृष्ठ 32। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो हम तुम्हें दे रहे हैं। रश्मि 5 साल, 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ, अक्सर बीमार रहती है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। कैलाश 7 साल, उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता है उसे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। पृष्ठ 33, चर्चा करो, तुम्हें क्या लगता है

0: दो। ओम शांति, मैं खुशदान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया, और बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि उनके माइंड में लर्न करने की बहुत ज़्यादा शक्ति भी होती है, वो सीखते भी रहते हैं और बहुत कुछ इमेजिन भी करते हैं। तो उसी इमेजिनेशन के अंदर जाएंगे और आज बच्चों की दुनिया में एक अलग स्टोरी बनाएंगे हम सब मिलके। तो स्टोरी में एडवेंचर होने वाला है, डर होने वाला है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि है कौन कौन आज स्टूडियो में हमारे साथ। तो एक बार आपके नाम और क्लास तो बता दीजिए सब लोग।
2: मेरा नाम है हर्षिता, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
4: मेरा नाम है शिवन्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
5: मेरा नाम है आराध्या, मैं 2nd क्लास में।
6: मेरा नाम सक्षम है, मैं 6th क्लास में हूँ।
7: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
1: ओके, तो एक काम करते हैं, ये गेम है, इसमें हमें अपनी स्टोरी बनानी है, और वो स्टोरी कैसी भी हो सकती है, आपको जो मन में आए, मतलब वो आसमान पे, जमीन पे, एनिमल्स पे, लोगों पे, कुछ भी आ सकता है उस स्टोरी में। स्टोरी तो सबने सुनी है ना, स्टोरी तो अच्छी लगती है। तो यहाँ आपको अपनी स्टोरी बनानी है, लेकिन नई स्टोरी नहीं बनानी है, जो फर्स्ट पहले जैसे राघव बोलेगा, वो जो स्टोरी जहाँ छोड़ेगा वहाँ से आपको उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ओके, सब लोग समझ गए? तो चलो राघव,
5: इसके बाद से।
1: हाँ, उसके बाद से आपको बोलना है। राघव स्टार्ट करो।
7: एक 10 साल का बच्चा था, उसके मतलब उसके पास एक मीटियोराइट गिरा।
1: उसका नाम क्या था?
7: उसका नाम राहुल।
6: वो मीटियोराइट से बचने के लिए भागा।
1: ओके,
5: और वो भागते रहे,
1: भागते रहा। फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या हुआ, उसको एक वो लायन दिख लिया, और वो बोला, वो जो लायन था रॉयल से बोला,
1: लॉयन जल्दी से घुर्राया। फिर क्या हुआ?
7: फिर राहुल भागा और लॉयन से उसने बोला कि मुझे छोड़ दो, उस मीटर रॉड के पास चले जाओ। फिर लॉयन तो उसके पीछे ही पड़ गया, फिर वो भागते भागते बच गया लॉयन से, पर वो एक अंधेरी जगह पे पहुंच गया। उस अंधेरी जगह पे बहुत सारे लॉयन थे, और वो एक लॉयन के ऊपर सैडल लगा के उसके ऊपर राइड करने लगा।
1: वाह, लॉयन पे राइड करने लगा,
6: वो लॉयन उसको काट गया।
5: उसके बाद उसको एक गुफा मिली, फिर उस राहुल के पास पावर आ गया, तो उसको एक जाल था, वहीं पे उसको ऐसे बंद कर,
1: लाइन को बंद कर दिया जाल में।
7: उसके बाद राहुल बड़ी शांति से अपने कमरे पे गया, उसने कमरा खोला और जाके लेट के सो गया।
1: लाइन के काटने के बाद सो गया जाके, बड़ा ब्रेव राहुल है। और ये क्या किया उसने, तो अपना इलाज भी नहीं कराया। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? काटा था, चलो आगे क्या हुआ? सो गया राहुल, फिर क्या हुआ?
7: दीदी जब वो सो गया थोड़ी देर के बाद, इतने में बहुत सारा खून बह गया था, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर वो वापस, क्योंकि उधर उसके घर पे तो कोई नहीं था, फिर वो भागे भागे बाहर गया, और बाहर

0: पता चला ये पूरा सपना था। तो फिर आपने जो भी वो उसका मेट्रॉइड तो सच में गिरा हुआ था, तो उसकी जो लैब टीचर वो साइंटिस्ट के साथ काम करता था वो लैब टूट गई थी, तो इसलिए वो फिर कहीं और ढूंढ रहा था कि कोई साइंटिस्ट मिल जाए अमेरिका में, इजिप्ट में।
1: तो मतलब सपना था ये सब कुछ, तो लैब भी टूट गई और सपना भी खुल गया। तो सपने में राहुल रोबोट भी बन गया था और उसने भूतों से लड़ाई भी कर ली थी, पावर भी आ गई थी स्पेशल राहुल में, क्या बात है।
0: और फिर इजिप्ट और अमेरिका भी ढूंढ रहा था साइंटिस्ट।
1: तो राहुल को तो बड़ी सारी कंट्रीज ढूंढ रही थी, क्या कहानी बनाई आप लोगों ने, वाह वाह। एक और बनाएंगे कहानी?
2: हाँ, भूत वाली।
1: कौन शुरू करेगा इस बार?
2: दीदी भूत वाली। लेकिन
1: इसमें एक से ज्यादा जो मर्जी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
3: मैंने तो बस ये बोला था कि मीटियोराइट।
1: अच्छा मेरी बात सुन लो, आप लोगों को स्टोरी बढ़ानी है आगे, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, दो तीन चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो अभी स्टोरी आप स्टार्ट करो।
2: दीदी आप भूत वाला बोले,
1: कुछ भी आप बना सकते हो स्टोरी जो आपको मन में आए, बस जोड़ना चाहिए पीछे वाली स्टोरी से, जुड़ना जरूरी है। माइक नहीं भी लाओगे तो चलेगा।
3: करनाल में एक गांव था जो बहुत पुराना था।
1: उस गांव में क्या था कुछ तो बताओ, इंट्रो दो।
2: उस गांव में 3 लड़के थे।
1: ओके।
2: वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी और वो जब रात में सोने गई अपने बच्चों के साथ, तब उसके साथ फिर उसको आवाज आया कि छन छन की, फिर बाहर जाके देखी कोई नहीं है, फिर बाहर आके देखी कि इधर उसको आवाज आया, इधर आ। जब बाहर गई तो उस चुड़ैल ने अपना फेस ही बदल लिया, तो उसकी फ्रेंड बन गई। वो चुड़ैल बोली कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? हाँ। तो वो बुढ़िया बोल रही हाँ, तो फिर उसके घर में सो गई वो चुड़ैल। फिर
1: तो 3 लड़के थे वहाँ पे और एक
0: दीदी, वो 3 लड़के दोस्त थे। वो बुढ़िया है ना, उनके बगल में पड़ोस में रहती थी। हाँ। तो उनको लगा कि है ना किसी की चिल्लाने की आवाज आई, तो वो अपने कमरे से तीनों बाहर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक है ना, एक जो भूत था वो है ना उसकी दोस्त के रूप में था, तो उन्हें भी समझ नहीं आया, तो वो तीनों है ना वापस कमरे में चले गए, उनको बुढ़िया ही नहीं दिखी थी।
1: ओके।
4: दीदी फिर उसके बाद वो जब कमरे में गए सुबह उठ गए, उठने के बाद उनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई, जैसे कि अब वो रोज ऐसे ही मतलब उनके पास जो गाय थी उनको मतलब छोड़ते थे लैंड में ऐसे चारा खिलाने के लिए, तो फिर उस टाइम में ना उनको ऐसे आवाजें आ रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, ऐसा वैसे।
1: फिर क्या हुआ?
3: फिर उसके बाद है ना, दीदी उसके बाद है ना किसी मतलब एक है ना काली जादू वाली बुढ़िया है ना, वो काला जादू कर रही थी, तो वो उसने बुढ़िया को जिंदा कर दिया, वो जो मरी थी। और फिर उसने बोला तुम कौन हो, तो उसने बोला कि हाँ मेरे को मेरी दोस्त ने मार दिया था, पर फिर उसने बोला कि ना वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी, वो चुड़ैल थी, वो तुम्हारा दोस्त का रूप लेके आई थी, तो उसने बोला उस चुड़ैल को तो मैं मार दूंगी।
1: ओके।
3: और सबसे खास बात, जो वो 3 लड़के थे वो भूत एक्सप्लोरर थे, वो रात को भूत को ढूंढने के लिए निकले थे उसी।
1: अच्छा, भूत।
2: उनमें से एक लड़के को तीर चलाना आता था। और जो एक लड़का था उसका नाम था राहुल, वो भूत ही नहीं था।
1: वो भूत नहीं था और बाकी दोनों भूत थे।
0: वो भूत थे और वो दूसरे भूतों को एक्सप्लोर करते थे।
1: ओके।
0: दीदी वो दोनों भूत थे और उन्होंने एक साथ राहुल को मार दिया, फिर वो जो राहुल था उसकी आत्मा निकली और वो भी एक भूत बन गया और वो उनको छोड़ने नहीं वाला।
3: दीदी फिर है ना, और राहुल ने उठ के देखा तो वो तो उसका सपना था, फिर वो अपने उन दोनों दोस्तों के पास गया, फिर उन दोनों दोस्तों को उसने बोला कि क्या तुम भूत हो, तो उसने बोला नहीं हम तो तुम्हारे दोस्त ही हैं, तो उसको पक्का पता चल गया था कि उसके वो दोस्त ही हैं ना एक भूत, वो बस उसको सपने में आया था और ना उनके पास वाली कोई बुढ़िया मरी थी,
1: कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ सपना। हाँ, था
3: सब कुछ सपना था।
0: उसने उठ के सब कुछ देख लिया कि हाँ ये सपना था, कंफर्म करा और बस वो अपने खुशी खुशी फिर काम पे चला गया।
1: हाँ। ओके।

0: ने तो इतनी भूत वाली स्टोरी सुनाई आप लोगों ने, ये आपको लगता है सच में भूत होते हैं कि नहीं होते
1: हैं? नहीं होते
2: हैं,
0: एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ओके,
3: लेकिन मेरे को तो डर लगता है भूत।
0: डर लगता है भूत से?
3: हनुमान चालीसा,
0: हनुमान चालीसा पढ़ते हो?
3: आता हनुमान चालीसा लेकिन मैं पढ़ती नहीं।
0: क्यों नहीं पढ़ते? आती है तो पढ़नी चाहिए ना, है ना? थोड़ी थोड़ी आती है क्या, है ना? अभी आप छोटे हो ना, इसलिए पूरी नहीं आती होगी आपको, है ना? कोई बात नहीं, सीख लेना।
4: मैं ये बोल रहा था कि वह पूरा उसका सपना था और उसने सपने में कुछ किया ही नहीं था। और जो ये भूत भूत होते हैं वो रियल में नहीं होते हैं। मतलब अगर आप सोचेंगे कि हाँ भूत रियल में होते तो अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी घूमते रहे, पर हमको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए।
3: लेकिन भगवान रियल में होते हैं,
0: भगवान रियल में होते हैं।
1: दीदी बोलते ना, अगर मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा।
0: लेकिन भूतों से डर लगता है क्या? किसको लगता है डर? लगता है
3: मुझे रात को लगता है।
0: रात को लगता है ना? हाँ, मुझे भी लगता है कभी कभी, लग सकता है डर
1: कभी, थोड़ा बहुत जो डर होता है ना, सोचते हैं हमें तो डर नहीं लगता, बिल्कुल ब्रेव, पर कहीं ना कहीं डर थोड़ा बहुत तो होता ही,
0: थोड़ा बहुत होता है ना। राघव लगता है?
2: नहीं दीदी,
0: दीदी
4: पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि भूत को पकड़ के उसको पूरा कूट के फेंक दूंगा।
0: ऐसा लगता है? ओके, आपको
2: पहले लगता था, अब इतना नहीं लगता। पहले अब लगता ही नहीं।
0: पहले कब लगता था? मतलब
2: पहले जैसे जब मैं थोड़ा छोटा था तब लगता था।
0: कितने छोटे थे आप?
2: 7 या 7 से नीचे
0: तब लगता था ना। तो क्यों लगता था? आप लोगों ने क्या भूत वाले वीडियोस या मूवीज देखे हैं?
3: मैं तो खाली भूत वाला वीडियो देखती रहती।
0: खाली भूत वाले वीडियो देखते हो? और आप?
3: मैंने भूल भुलैया मूवी देख रखी है।
0: हाँ, उसमें भूत होता है ना
1: दीदी। मैंने भूल भुलैया 1 से लेके 3 तक सारी देखी है
4: दीदी। मैंने भी देखी है।
0: अच्छा, YouTube पे वीडियोस देखते हो आप लोग?
4: नहीं दीदी, टीवी पे भी आती है। हाँ, या फिर हम चला लेते हैं।
0: चला लेते हो? तो जैसे भूत के वीडियोस, वैसे तो देखो ना अगर वीडियोस, तो जो हम देखते हैं वैसा हमको लगने लगता है, मालूम है? अगर हम जो, जैसे आप कोई ऐसे पोएम वाले वीडियो देखोगे, गाने वाले वीडियो देखोगे, तो गाना सीख लोगे ना वीडियो देख के, याद हो जाता है ना?
3: स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता
0: है ना, तो याद हो जाता है ना फिर। तो ऐसे अगर, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है ना, तो अगर आप भूत वाले वीडियोस देखोगे ना तो वो ब्रेन को याद हो जाता है, तो वो हर जगह फिर हमको भूत दिखाता है और डराता है। तो इसलिए
3: मेरे को ऐसा लगता है इस घर में कोई आत्मा भटकती
0: है ना। तो अगर हम वीडियोस देखते हैं ना तो फिर हमको और डर लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ऐसे हमको डरा देता है, क्योंकि उसको याद हो जाता है वो भूत वाला वीडियो। तो अगर हमको थोड़ा डर कम करना है ना, तो हमको वो वीडियो नहीं देखने हैं, हमको ना और कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपको बहुत मजा आता है देखने में, भूत के अलावा जिसमें बहुत मजा आता है?
3: सासा।
0: उसमें क्या होता है?
3: उसमें दो बहन होती है।
0: दो बहनें होती है, कार्टून है क्या?
3: बस ऐसे थोड़ा बहुत कार्टून है,
0: थोड़ा बहुत है।
4: YouTube चैनल
0: है। ओके, और आपको क्या अच्छा लगता है?
3: कार्टून।
0: कार्टून अच्छा लगता है ना आपको?
3: मेरे को वीर वाला
0: कार्टून अच्छा लगता है।
3: मुझे ब्लू विंग वाला।
0: ओके, और आपको?
2: कार्टून ब्लू लॉक।
0: ओके, और आपको? हाँ, एनिमे भी अच्छा लग सकता है। और आपको?
1: दीदी मैं इतना कार्टून देखती नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता। वैसे तो मैं फिर यूट्यूब चैनल में IUPU का एक चैनल है, वो देखती
3: हूँ। मैं भोजपुरी देखती हूँ पिक्चर,
1: तो वो जो उसके अंदर वो ऐसे चैलेंजेस करवाते हैं।
0: हाँ, उसमें मजा आता है ना, चैलेंजेस करते हैं, गेम्स करते हैं। शिक्षा, आप तो सबसे बड़े, आपको क्या अच्छा लगता है?
1: दीदी शिनचैन और डोरेमोन।
3: दीदी आपने वही कभी चाली चाली खेला है?
0: नहीं, मैंने तो नहीं खेला। मैं आप लोगों से सीख लूंगी अभी इसके बाद, ठीक है? तो इसलिए जो ये भूत वाला है,
1: और कभी कभी ऐसे वीडियो में दिखाते हैं कि वो एकदम पेंसिल अगर चलती है ना तो भूत से चलते, ऐसे होता है वो।
0: तो
3: अगर खुद हो जाता है, अगर यस पे हो जाता है, तो अगर सच्चे में भूत हो तो वो यस पे ऐसे हो जाता है,
0: पेंसिल घूम जाती है। तो आपने खेला है वो? नहीं खेला ना, देखा है उसके बारे में वीडियो?
2: दीदी जब राघव और मैं तो शाम में थे, तो हमने राघव के दोस्त के घर पर जाके कुछ भूतिया वीडियो देखी थी।
0: अच्छा
2: रात को बहुत डर थे,
0: बहुत डर लग रहा था,
4: अपने घर चला गया था उसी टाइम, उसी टाइम भी चला गया था।
0: डर तो लगता है ना देख के।
4: दीदी फिर मेरे को बाद में फोन करके बोल रहा था यार कुछ होता नहीं है, चल मैं रह ही जाता
0: है ना, लेकिन डर लगने लगता है उस वक्त, तो डर लगने तो मन करता है घर भाग जाओ फटाफट।
4: दीदी वो ऐसे बोलते थे कि हेल में किसी बंदे ने बनाई है, उसके मतलब एक डॉग था उसके साइड में हाथ मतलब वो हेल के हाथ भी थे खून के।
0: अरे बाप रे।
4: और वो उसके मतलब वो ना डॉग इकलौता था जो हंस रहा था, हंसता हुआ डॉग किसी को नहीं दिखता,
0: डरावना हंसता हुआ डॉग। ओके
3: दीदी मैं किशनगंज में एक रात सो रही थी तो मेरे को रात में ऐसे आवाज आया बहुत जोर से।
0: आवाज सुनाई दी। ओके तो जैसा हम बात कर रहे थे जब हम वीडियोस देखते हैं ना तो आप ना वीडियोस देख के फिर भूल जाओगे, कुछ और करने लगोगे है ना, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना उसमें सबकॉन्शियस, वो आप बाद में पढ़ोगे जब बड़े हो जाओगे ना, एक ऐसा ब्रेन होता है जिसको सब कुछ याद होता है, छप जाता है। तो अगर आप भूत वाले वीडियोस या गेम्स खेलोगे ना तो आपको डराएगा, वो रात को डराएगा है ना, अलग अलग टाइम पे डर लगेगा। तो ऐसे वाले गेम्स या वीडियोस की जगह आपने जो और कार्टून्स बताए ना वो अच्छी अच्छी चीजें देखो, क्योंकि डरना किसी को अच्छा लगता है क्या?
4: नहीं दीदी
0: नहीं लगता
3: बस
0: है ना,
3: देखने का मन करता है लेकिन डर लगता है।
0: डर लगता है ना, तो डर जब लगता है तो मजा आता है क्या? आज तो बड़ा अच्छा लगा डरने में, ऐसा होता है? नहीं ना, तब तो लगता है घर भाग जाओ, डर लगता है ना बहुत, अकेले जाने में भी डर लगता है।
3: हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते
0: हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो डर ना लगे उसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे वाले वीडियोस की जगह
3: और कुछ देखना है।
0: कितना अच्छा आंसर दिया आपने, वाओ।
4: दीदी क्या हुआ था जब मैं 6 में थी और मेरे गली में ना मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे और एक दो रिलेटिव्स भी थे, तो उस टाइम पे ना वो एक लाइट होती है ना लेजर लाइट करके, वो छोटे बच्चे से घुमाते हैं, तो ना हम ऐसे वो मतलब इधर से घुमा रहे थे, मेरे जो छत है ना उधर से हम वो घुमा रहे थे, और फिर कल परसों ना लिटरली हमको ऊपर आसमान में ना ऐसे लेजर लाइट कोई नहीं घुमा रहा, ऐसे दिखता तो है सब तरफ देख के आ जाता है कोई नहीं घुमा रहा, पर वो कहीं ना कहीं से तो वो आता ही है लेजर लाइट और हम पे ही गिरता है वो लेजर लाइट, ऐसे होता है। और फिर रात को मतलब एकदम से ये होता है, फिर मेरे वो जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि हमारे घर पे आवाज़ें आ रही थी, वैसे वो उस टाइम पर बहुत डर लग रहा था, वो सबसे मेरा एकदम डरावना सीन था।
0: तो अभी हमें ये समझ में आया कि अगर हमें डर लगता है एक तो किसी बड़े को बताना है, अगर ज़्यादा डर लगे तो है ना बताना ज़रूरी है, फिर ऐसे नहीं तो आपको अकेले और डर लगेगा, और दूसरा जैसा आपने बताया कि और दूसरे तरह के वीडियोस देखने हैं, है ना, नहीं तो हमारा ब्रेन फिर वो याद करके हो सकता है आज डराए कल डराए और फिर बाद में भी डरा सकता है हमको, और डरते हैं तो फिर वीक लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, फिर हमको कभी कभी ऐसे घबराहट होने लगती है ना, और भागने का मन करता है यहाँ से भाग जाओ फटाफट कहीं पर, है ना, और अकेले जाने में तो बहुत ही डर लगता है, पानी पीने या वॉशरूम जाने में भी डर लगता है ना अकेले रात को अंधेरे में।
3: हाँ मैं पापा जब सोते हैं मेरे को वॉशरूम लगता है तो मैं पापा के साथ ही जाती हूँ।
0: हाँ तो इसलिए कौन से वीडियोस देखने हैं, अच्छे वाले, ठीक है पक्का, और अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे जिसमें मजा आए, जिसको हम एंजॉय करें, है ना। ओके
4: दीदी मेरा एक दोस्त है, उसका एक और दोस्त है, उस वो है ना मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा होरन चीज हुई थी, मतलब है ना मैं आपको बता नहीं सकता।
0: कोई बात नहीं,
4: वो बहुत ज्यादा
0: कोई बात।
3: दीदी एक भूत के बारे में बताऊं?
0: बताओ।
3: तो एक लड़का था वो रात में सोया ही नहीं था, और जब वो बाहर पानी पीने गया तो उसको बहुत अजीब सा लगा डरने।
0: उसने भी कोई हॉरर स्टोरी देख ली होगी इसलिए। आराध्या तो नहीं देखती है भूत वाले वीडियोस? नहीं ना। हाँ अच्छी बात है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना, ठीक है।
3: डेडी जब मुझे रात में वॉशरूम आते हैं मैं अकेले चली जाती हूँ।
0: हाँ क्यों? क्योंकि आप भूत वाले वीडियोस नहीं देखते ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर आपको लगता भी है ना डर लगने लगा है, कोई बात नहीं, जैसे ब्रेन में वो वाले वीडियोस छप गए थे, दूसरा कुछ अच्छा देखोगे तो वो भी छप जाएगा, तो इसलिए अच्छा अच्छा देखो, है ना। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, भगवान को दोस्त बना के उनको साथ लेकर जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा मेडिटेशन सीख सकते हो, तो उससे डर फिर छू मंतर हो जाएगा, गिली गिली छू हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
4: गिली गिली छू।
0: चलो डर को करते हैं गिली गिली छू, और हमारे दोस्तों को करते हैं बाय बाय।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन।

0: प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में। आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ला, जो हमें बच्चों में न्याय और निष्पक्षता के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का विषय निष्पक्षता के प्रति बालमन का वास्तविक दृष्टिकोण। डॉक्टर शुक्ला हमें बताएंगे कि कैसे बच्चे निष्पक्षता को समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। वे यह भी समझाएंगे कि बच्चों को न्याय और निष्पक्षता के बारे में सिखाने के प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं और कैसे यह उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम को सुनना न भूले और जाने कि कैसे आप अपने बच्चों को न्याय और निष्पक्षता के मूल्यों को सिखाकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बाल संसार इस कार्यक्रम को आप लगातार सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिल रहा है। डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं और बाल मन पर विशेष रूप से बातें वो बताते हैं और निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक रिसर्चर है, वैज्ञानिक है, तो उनके मन में बच्चों के संसार के प्रति जो प्यार है वो हम उनकी बातों से समझ सकते हैं। तो आज बाल संसार इस कार्यक्रम में हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है और मुझे लगता है कि आप सभी को आज का जो विषय है निष्पक्षता के प्रति बाल मन का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है। अब ये कार्यक्रम में ये विषय लेकर हम जब बात करेंगे तो इसमें अगर आप सुनते हैं तो बच्चों को एक बहुत ही अच्छा न्याय दे पाएंगे। निष्पक्षता के मूल्यों को सिखा कर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें, तो कोशिश हमारी जारी है और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाल संसार में। बाल संसार, बाल संसार। कैसे हैं आप?
2: बहुत आनंद मंगल में हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि बाल संसार का ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों की ओर गतिशील है और नवीन आयाम आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुँच रहे हैं और उसमें हम सब लोग एक सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जी
1: जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, आज का हमारा जो विषय है उससे रिलेटेड एक सवाल आपके लिए शुरुआत में
2: जी।
1: बच्चों को न्याय और निष्पक्षता के बारे में सिखाने के लिए कौन कौन से तरीके प्रभावी हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए।
2: बहुत ही सटीक और मूल्यवान प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि न्याय व्यवस्था के प्रति जो इस समय वर्तमान परिदृश्य में चीजें हमें दिखाई देती हैं उसमें बच्चे भी अपनी नज़रिए से, अपनी सोच से तमाम वो प्रश्न करते हैं जो उनके मानस में समय अनुसार उभरते हैं और इस परिवेश और परिदृश्य में जब बड़े उनके साथ साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं तो कई बार कुछ स्थिति और परिस्थिति के कारण, कुछ दबाव और तनाव के कारण बच्चे अक्सर इस निष्पक्षता के बिहेवियर में स्वयं को लाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन यदा कदा जो भय का मनोविज्ञान है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है और कुछ बातों को कम्युनिकेट करते समय उसमें वो सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते हैं। फीडबैक ये आता है कि गार्जियन के तौर पर माता पिता उनसे ये बात कहते हैं कि हमें आपके तमाम बिहेवियर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन आपने पर्टिकुलर इस बात को लेकर झूठ बोला, ये बात हमको नागवार गुजरी या अच्छी नहीं लगी। तो माता पिता यहाँ चाह रहे थे कि तमाम स्थितियों के बावजूद भी आपको हमने इतना खुला परिवेश दिया, खुला आकाश दिया, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में आप अलग अलग स्थिति में बात कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपको झूठ बोलना पड़ा। तो उनका ये कहना था कि हम आपको जो पनिश कर रहे हैं या आपके तरफ हम थोड़ा सा आँख दिखा के जो बात कर रहे हैं वो एक ही रीजन था कि ये जो जीवन में व्यथा आपकी आ गई है कि कैसे, क्यों आपको झूठ बोलना पड़ा, क्यों आप भयभीत हुए, ये सारी स्थितियों को लेके कई बार वाद विवाद बच्चों और बड़ों के बीच में होता है। कुल मिला के बड़े भी ये चाहते हैं कि ठीक है, मनुष्य हैं, गलती हो गई है लेकिन आप हमको सच सच बता दें। कई बार गार्जियन ये भी स्टेटमेंट देते हैं कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो कम से कम हमें सूचित कर दो ताकि इमरजेंसी केस में हम उसमें आपकी मदद कर सकें, ये भाव उनके रहते हैं। लेकिन बच्चे कुछ जब हाइड कर जाते हैं उस सिचुएशन में, किसी इमरजेंसी में गार्जियन की ओर से मदद पाना या मदद ले पाना उस समय फिर संभव नहीं हो पाता है और इसी प्रकार की स्थिति जो माता पिता ने बच्चों से अपेक्षा की है तो कुछ स्थितियों में बच्चे भी चाहते हैं कि माता पिता जैसे अन्य माता पिता या या पड़ोसी में जो रह रहे हैं या हमारे घर में जो मेहमान आ रहे हैं या रिलेशनशिप में जो लोग हैं या माता पिता के मित्र हैं या बच्चों के जो दोस्त हैं उनके माता पिता हैं, उनके आवागमन में उनको बच्चों को खास अपनी प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता रहती है। और खासकर आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बच्चों को बुला के कुछ परिचय कराने के बाद में कुछ प्रेजेंट करने की बात करते हैं और कई बार वो खरे नहीं उतरते हैं तो उनके मन में एक निराशावाद का अभ्युदय हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार हमें लगता है कि आखिर ये क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या विरोधाभास है, ये बड़ा एक द्वंद्व की स्थिति होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सामने रखना चाहूँगा, उससे ये बात स्पष्ट होगी। मेरे एक मित्र हैं, सीनियर फैकल्टी रहे और उन्होंने एक हम लोग यात्रा कर रहे थे, उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था और जब हम लौट रहे थे वहाँ से तो उन्होंने एक बात उठाई कि मेरा बेटा है और मेरे एक मित्र घर पर आए और हमने उनको नाश्ता पानी कराया, चाय भी दी और चाय देते समय उनका जो बेटा है जो मित्र का उसके हाथ से चाय की जो प्याली है वो गिर गई, छूट गई। अब जैसे ही छूटी तो मैंने बड़े प्यार से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप परेशान मत हो, हम लोग इसको उठा लेंगे। मैंने अर्थात वहाँ थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी पड़ी, वो प्लेट कप प्लेट टूट गया, उसको केयर करना पड़ा, ये सारा कुछ करके 5-10 मिनट में फ्री हो गए और बच्चे को दूसरे ग्लास में या कप में चाय ला के दिया उन्होंने और वो बच्चे ने सेटिस्फाई होकर उसको ग्रहण किया। अब इस बात को हमारे जो मित्र हैं इनका बेटा बड़े एक तरह से गहराई से ऑब्जर्व कर रहा था और उसने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो चले गए, एक दो दिन बीत गए तो उन्होंने अपने फादर से बोला कि मैं पिताजी एक बात आपसे पूछना चाह रहा था और आपने कहा है कि कोई बात आपके मन में आए तो मेरे से पूछ लो। तो बोले बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि कल अंकल आए थे घर पे और उनके बेटे से ये कप छूट गया था पहली चाय का और ये गिर गया था, फर्श भी खराब हुआ, लेकिन आपने बड़े प्यार से उनको ट्रीट किया, केयर किया, उनका सम्मान रखा, बच्चे के मन में के प्रति दया प्रेम करुणा सब आपने दिखाई। लेकिन ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरे को, मैं सोया हुआ था, आप आए थे और आपने मेरे को दूध का एक कप दिया था और मैं नींद में था, नहीं पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाया था, आपकी भावना थी कि मैं दूध पी लूँ और वो नींद में होने के कारण मेरे से वो ग्लास छूट गया था। अब ग्लास जो छूट गया तो वो टूट गया और टूट गया तो उस समय आपने मेरी पिटाई की थी और मैं रो रहा था और रात में उस दिन मैं सो नहीं पाया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप दुनिया में ये विषय पढ़ाते हैं और लोगों को समझाते हैं और कोई अपने घर में आता है तो उनसे अलग बिहेव करते हैं, मेरे से अलग बिहेव करते हैं, तो ये आखिर पूरा चक्कर क्या है? तो उन्होंने मेरे से बोला कि ये बात जब मेरे घर में आई तो बड़ा मैं निरुत्तर हो गया और मैंने कहा कि अब मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया था कि ठीक है, आपने उनके उनको सहारा दिया, सपोर्ट किया, सहानुभूति दिखाई, मेरे को भी आप दिखा देते, बल्कि मैं चाह रहा था कि दूध गिर भी गया था, ग्लास टूट भी गया तो आप मेरी पिटाई नहीं करते, आपने पिटाई भी की, जैसे कि बहुत बड़ा अपराध मैंने कर दिया। तो एग्जैक्टली मेरे को उस समय लगा कि आपका मैं पुत्र नहीं हूँ, बल्कि वो जिनकी केयर की थी ना वो आपके पुत्र हैं। तो ऐसा करके उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया बच्चे ने, तो ये बात उन्होंने मेरे को यात्रा में शेयर की। तो मैं उनसे बोलने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर जो इमेज बिल्डिंग है या प्रतिष्ठा वाला जो बैकग्राउंड है, या हमारे पास में कोई कम समय के लिए आया है इसलिए हम थोड़ा संवेदनाओं को वहाँ अधिक मात्रा में रख के ये प्रयास करते हैं कि ये बच्चा आज अपने घर में नहीं है, दूसरे के यहाँ पर है और यहाँ इसको कोई पीड़ा पहुँच गई तो शायद इसको स्वयं को संभालना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम इस प्रकार से वहाँ केयर कर रहे थे। तो बच्चे ने कहा कि चलो वो ठीक है, लेकिन मेरे प्रति क्यों ऐसा, मेरे को भी समझाया जा सकता था, मेरे प्रति भी सहानुभूति रखी जा सकती थी। तो मैंने ये दोनों आपको तथ्य और कथ्य बताए कि जहाँ बच्चों को लेके माता पिता जागृत रहते हैं कि भाई किसी बात में तुम सत्य बताओ, ऐसे ही बच्चे भी अपने माता पिता से चाहते हैं कि उस सत्यता का आचरण उनसे भी हो, और दोनों ओर से अगर सही कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो निश्चित रूप से द्विमार्गीय संप्रेषण क्रिया के अंतर्गत एक बात देखने में आती है कि आप वैल्यू को मेंटेन भी कर लेंगे, आचरण भी वहां सत्यनिष्ठ हो जाएगा और कुल मिलाकर मोटे तौर पर हम कहें तो न्याय करने की बात कहेंगे। दोनों ही घटनाएं इस बात का प्रतीक है कि बच्चे चाहते हैं कि निष्पक्षता वाला बिहेवियर हो जो उनको संतुष्टि भी प्रदान करे और कुछ अच्छा आगे करने की प्रेरणा भी दे। जी
1: डॉक्टर अजय जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है बच्चों में ये सिखाने का प्रयास कर सके, लेकिन उसमें बच्चे जो हैं हमारे, जब भी आप ज्ञान देते हैं बच्चे सुनते ज़रूर हैं, लेकिन आपका बच्चों का जो आचरण है वो आपके एक्शन पर होता है। तो ज्ञान सुनना उनके लिए आसान है, लेकिन एक्शन को वो प्रभावी तौर पे अपने मानस पटल पर लाते हैं तो उस पे ज़्यादा उनका विचार चलता है। तो इसीलिए हमें बच्चों के सामने हमेशा जो है जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से उनको बताते हैं, वही एक्शन उनको दिखाई देना चाहिए। अगर यहाँ थोड़ा भी प्लस माइनस होता है तो बच्चे का मनोस्थिति बिगड़ सकती है या फिर वो आपसे दूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो है समझ लेने की बात है हमें कि हमें किस तरह से जो है बच्चों के बीच में पेश आना चाहिए। वर्ड्स एंड एक्शन, एक्शन ज़्यादा प्रभाव करेगा, वर्ड्स आपके तब तक प्रभावित नहीं होंगे जब तक आपके एक्शन में परिपक्वता नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत सवाल मेरे मन में आ रहा है, बच्चों को अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करने देना क्यों महत्वपूर्ण है और इसे उन्हें क्या सीख मिलती है, ये बताइए डॉक्टर अजय शुक्ला जी।
2: जी, जैसे ही हम निष्पक्षता को इम्प्लीमेंटेशन के जोन में लेके जाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और जैसा आपने अभी कहा भी कि एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा प्रियम्बल भी है कि लर्निंग बाय डूइंग, किसी भी काम को हम अगर करते हैं तो वहाँ हम ज़्यादा सीख पाते हैं। करने से अर्थ यहाँ पर यह है कि हमारा पूरा मनोयोग उसमें इन्वॉल्व होता है और इस इन्वॉल्वमेंट का परिणाम होता है कि जितनी भी हमारे पास में नेचुरल पावर है उसको हम उसमें लगाने का प्रयास करते हैं, संलग्न होते हैं, उससे अपनी बिलोंगिंगनेस क्रिएट करते हैं। तो ये सारे वैल्यू जब एक मोशन में काम करते हैं तो वहाँ पर हमारी सीखने की, समझने की जो एबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है और वो हमारी जो शक्तियां हैं वो उस कार्य और कार्य से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं, भले ही उसको हमें टेक्निकल नो हाउ से देखना हो या उसके कुछ सैद्धांतिक परिवेश हो सकते हैं, उसको रीड आउट करना हो, गूगल पे सर्च करना हो, या इसको जब हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो इसके क्या क्या इफ एंड बर्ड्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन हमारी चिंतन में, हमारे जेहन में आता है, जिसको हम लोग मनोवैज्ञानिक भाषा में थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं। एक सोच के बाद में सोच, कोई बच्चा जब किसी कार्य को करता है तो वो इस बात के लिए निश्चित रूप से चिंतन करता है, भले ही वो एक्सपोज नहीं कर रहा है, सोचता है कि मैं इसको बेहतर ढंग से कैसे कर पाऊंगा, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, ये उसका एक इंटरनल पार्ट रहता है। लेकिन इसमें वो चाहता है कि अगर आप को कुछ सपोर्ट देना है तो वो उसकी मर्जी से दे। कहने का अर्थ ये है कि कई बार वो चाहता है कि इंटरफियर आप नहीं करें बल्कि इंटरवेंशन करें, और इंटरवेंशन तब करें जब वो आपको एक विकल्प दे, वो कहे कि मैं ये चीज़ बनाता हूँ या ये मैं कार्य करता हूँ, इसको करने के जो बेहतर तरीके हो सकते हैं, इसको मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ और ये कार्य जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं आपको शेयर करूँगा और इसकी कमियों को दूर करने के लिए या इसमें और क्वालिटी लेके आने के लिए, क्योंकि कई बार कार्य को करने के बाद बड़े सोचते हैं कि बहुत सारी कुछ कमी या सुधार की गुंजाइश होगी, लेकिन बच्चों के मन में रहता है कि इसको हम एक अचीवमेंट तक लेके जाएं। और जब अचीवमेंट सब जुड़ता है उनकी लाइफ में तो उनके अंदर एक बात आती है कि अचीविंग एक्सीलेंस, वो चाहते हैं कि जो हमारी उपलब्धि हो वो एक्सीलेंस ओरिएंटेड हो, अर्थात जब हम उच्चता की ओर जाने की बात करते हैं तो उसमें गुणवत्ता का समावेश होता है। ये दोनों बातों को लेके वो चलता है बच्चा, और उसके मन में आता है कि अब इसमें जो सजेशंस हैं वो किसी कमी कमजोरी के वशीभूत होकर ना आके इसके जो डायमेंशंस हैं इसको हायर लेवल पर और ले जाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो वो जब आपसे ये पूछते हैं कि इसमें आप कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जोड़ने का प्रयास करें, कुछ वैल्यू बेस्ड चीज़ों को बताने का प्रयास करें, तब हम इस लर्निंग बाय डूइंग की प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। जब ये सारे एस्पेक्ट आपको सामने वो रखते हैं तो उस स्थिति में हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस व्यवहारिक कदम में या तो हम मदद करें और उस मदद के भाव में थोड़ा सा हम वेट करें और ये देखें कि कब वो मदद मांगते हैं। कुछ हेजिटेशन हो सकता है, आपको लगेगा कि इनको सारी मदद लेनी चाहिए, या कई बार आप वो मदद की फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है तो आपके मन में आता है कि क्या हमेशा ही मैं इनकी मदद करता रहूंगा, तो आप कई बार ये बोलते भी हैं कि नहीं भाई इसको तुम करो और इसको पूरा होने के बाद में इसके तमाम लेवल पर हम एक फीडबैक सेशन कर लेंगे, उस समय हम आपको बताएंगे कि बेसिकली इसमें जो बेस्ट सजेशन है वो क्या हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन उनकी मन स्थिति में चलती है और ऐसी स्थिति में उनको ये पता होना चाहिए कि हमें सपोर्ट मिलेगा या जो भी सपोर्ट मिलेगा वो किसी भी एंगल से बायज नहीं होगा, वो निष्पक्ष होगा। तो ये निष्पक्षता के प्रति जो उनकी गहरी आस्था है उसे बनाए रखना हमारा फर्ज भी है, हमारा दायित्व भी है। और बच्चों को जब अपने जीवन में निष्पक्षता से परिपूर्ण कोई सजेशंस मिलते हैं तो उन्हें बहुत खुशी भी होती है और इसकी वो इंटरनल रूप से एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं। जी
1: जी अजय जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कैसे हम बच्चों के साथ डील करें। और बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जितनी बातें हम कर रहे हैं शायद आपको सुनते सुनते तो कभी बातें जो है रिपीट भी हो रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये कैसे संभव है, लेकिन प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो आपको बार बार वो चीज़ें इसलिए बताएं कि कोई अल्टरनेटिव वहाँ पर नहीं है। अगर मैं कहूँ आपके एक्शंस बच्चे कॉपी करते हैं तो आप एक्शन कहीं भी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। मुद्दा यही है कि राइट एक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा गीत सुनकर आपका मन को जो है एक खुशी मिल रहा होगा, क्योंकि ये गीत सबको खुशी देने का है। खुले मन से होगा यहाँ सबका स्वागत। जी हाँ, जब आप इस गीत के एक एक लाइन को सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको हर बार एक नया मोटिवेशन मिला ही होगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन को याद करते हुए आप सभी का फिर से खुले मन से स्वागत करते हुए, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं एक और दृष्टिकोण की तरफ, जहाँ पर बच्चों को हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कैसे मदद की जा सकती है। कई बार बच्चे जो है एक ही तरीके से जो आप बोलेंगे उसी को देखेंगे और उसी पर वो परसेप्शन लगाएंगे कि क्या है, लेकिन हमें उनके तरफ से उनके इनसाइड की तरफ देखने के लिए और इससे उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ सकता है, अगर हम बच्चों को ये बता दें कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में वो काम करे।
1: बड़ी अच्छी बात है। देखिए, दृष्टि और दृष्टिकोण पर लेकर हमने काफ़ी चर्चा किया भी है।
0: जी जी जी।
1: लेकिन एक अच्छी बात निकल के आ रही है यहाँ पर कि बाल संसार की मनस्थिति में ये बात रहती है कि, और बड़े भी अपेक्षा करते हैं कि भाई हम आपको समझा रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं, लेकिन उस एंगल को उस समय आप दूसरों का जो दृष्टिकोण है उसे जब उस स्थिति में स्वयं को रख के देखेंगे, आप वहाँ पर स्वयं को इस्टेब्लिश करें और देखें कि आप बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद आप जब किसी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके तमाम एग्जाम्पल्स और आधार को भी आप देख रहे हैं, और वहाँ जब हम थोड़ा सा दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दूसरे अगर किसी दृष्टि और दृष्टिकोण से हमें समझा रहे हैं तो उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनका जो जस्टिफिकेशन है, वो भी हमारे दिमाग में बैठ रहा है। और कुल मिला के उसको हम कंक्लूड करें तो पॉजिटिव लाइफ टू मीनिंगफुल लाइफ, मैंने कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी से किसी एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर आपको ले जाने का प्रयास करते हैं। और उस स्थिति में हमारे सामने कई बार कुछ उदाहरण भी निकल के सामने आते हैं कि हम बड़े होने के नाते किसी कर्म को कर रहे हैं और हमें लगता है कि बच्चे इस बात को समझ लें, या कई बार हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अपेक्षा बच्चों से रख रहे हैं, तो इस प्रकार के द्वंद क्रिएट होते हैं। मैं एक छोटा सा केस स्टडी आपके सामने शेयर करूँगा जिसमें एक बच्ची ने अपनी माँ की अनुपस्थिति में अपने पिता के लिए वो सारी व्यवस्थाएँ की कि जैसे पिता घर में खुश रह सकें, और उनके मन में आया कि क्यों नहीं कुछ रिलेटिव्स के साथ में मैं इनको कुछ आउटिंग के लिए भेज दूं। तो उन्होंने करीब एक महीने का प्लान किया और भारत में पूरा भ्रमण करने की योजना बनाई। उनके पिताजी चले भी गए, इस बीच में वो स्वयं भी अपने घर में रहीं और तमाम चीज़ों को लेके काम करती रहीं। उनकी एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया कि मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने अपने पिताजी को कहीं बाहर भेजा है, लेकिन इस समय उनकी जो मनस्थिति है वो बड़ी द्वंद में है और वो चाहती हैं कि उनको कोई काउंसलिंग करके थोड़ी सी मदद करे। तो मैंने कहा ठीक है, और जिन्होंने उनकी फ्रेंड ने कहा था तो मैंने बोला आप भी उनके घर पहुंच जाइए और मैं भी उनके घर पहुंचता हूं। तो मैंने टाइम लेके और फिर हमने जाने का प्रयास किया, और मेरे साथ में मेरे एक मित्र भी थे, तो ऐसे करीब चार लोगों की हमारी बातचीत हो रही थी। तो जैसे ही उन्होंने परिचय कराया तो उन्होंने, काफ़ी बड़ा उनका फार्म हाउस था और काफ़ी लोग किराए से वहाँ रहते भी थे, तो उनकी बातचीत में मुझे लगा कि जिस दृष्टिकोण की वो बात कर रहे हैं

0: मेंटल स्टेटस को हाईलाइट करता है. हमारी इमोशंस है कि हम बड़ों को समझें, बड़ों की इमोशंस है कि वो बच्चों को समझे. दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को जब समझने का प्रयास करते हैं तो वहाँ तीन बातें निकल के आती हैं और वो हमारे रिश्ते को मजबूत करती हैं. कई बार अगर आप ये तीन चीज़ें नहीं समझ पाए तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम में होंगे. ये मैंने उनको कहने का प्रयास किया. हालांकि उन्होंने मेरी बात को नकार दिया और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप बोल रहे हैं और मैं इस दृष्टिकोण को फॉलो करती हूँ. मैं लोगों की भावनाएं भी अच्छी तरह से समझती हूँ, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी अच्छी समझती हूँ और मैं उस अच्छाई के साथ साथ में जो उनका मेंटल लेवल है उस दृष्टि और दृष्टिकोण में भी अपने आप को शिफ्ट करके देखती हूँ. तो मैंने बोला कि जब ये तीन बातों में अपने आप को आप इतना साउंड बता रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये आप मेंटेन रखिए. और ये जो मानवीय संबंध है, मैं टोटल ओवरऑल मानवीय संबंध की बात कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म हाउस इतना आपका बड़ा है कि इसमें 20-25 आपके किराएदार भी रहते हैं, आप इनके साथ कुशल मंगल से हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ में ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा. आपकी किसी स्किल पर, आपकी किसी नॉलेज पर और आपके एटीट्यूड पर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है. आपकी फ्रेंड मेरी स्टूडेंट है, इन्होंने बड़ी सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन मैं एक राइटर हूँ और एक मनोवैज्ञानिक हूँ तो इस दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि रिश्तों में जितना भी बुनियाद होती है, बेसिक जो नींव होती है, उसमें तीन कंपोनेंट एसेंशियल हैं जो आपको दूसरे की दृष्टि और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में और कुल मिला के निष्पक्षता तक पहुंचने में मदद करते हैं. उसमें भावना, अपेक्षा और मानसिक स्तर, मतलब इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और मेंटल लेवल, ये तीन का आप ध्यान रखिएगा. इसको अगर आप ध्यान नहीं रख पाए तो बहुत अच्छी कंडीशन में भी एक नई प्रॉब्लम में आप जा सकते हैं. तो मेरा आपसे इस बात को कहते कहते मैं नकारात्मक कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है और इस रियल स्टोरी का परिणाम हुआ कि 3 महीने के बाद में उनके घर में एक घटना घटती है कि उनके ही लोग जो किराएदार उन्हें रखे थे उन्हीं में से कुछ लोगों ने मिलके उनकी हत्या कर दी. तो कभी कभी मैं ये बात इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि हम अकेले हैं या हमारा परिवार हमारे साथ में है, लेकिन जिनके साथ में आप रह रहे हैं उस परिवेश स्थिति को समझिए, उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण को भी जानने का प्रयास कीजिए. इससे हमें दूसरे के तमाम व्यूज़ को जानने का मौका मिलेगा. अब वहाँ पर क्या क्या परिस्थितियाँ गुजरी होंगी आप समझ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के हुआ क्या, भावना, अपेक्षा और मेंटल लेवल को आइडेंटिफाई नहीं करने का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा. और ये सब बातें बड़ी गहरी हैं और जब आप इस पर चिंतन करेंगे तो हमें एहसास होगा कि एक हमारा मन और एक हमारी मनमानी हमें एक नई स्थिति में लाके खड़ा कर देती है और वहाँ जब परिणाम निकलता है उसका विश्लेषण हम करते हैं तो पता चलता है कि हमने अपने से बड़ों या गार्जियन या अपने शुभ चिंतकों की भावना, उनकी अपेक्षा और उनके मेंटल लेवल को दरकिनार करके जो स्टेप लिया उसकी परिणति हुई कि कहाँ हम जीवन में उन्नति करते और हमने जीवन ही समाप्त कर लिया. जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने विस्तार से बताया और एक एग्जांपल देकर बात को समझाने की कोशिश की जहां पर हम सभी को इस पर बड़ा अच्छा जो है अंतर दृष्टिकोण आपने दिया जिसके वजह से हम अपने निजी अस्तित्व को समझ पाते हैं. तो आइए एक और आखिरी प्रश्न छोटा सा मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें. बच्चों को नैतिक निर्णय लेने के अवसर प्रदान करने से उनके व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका निभाई जा सकती है, क्या परिवर्तन आ सकता है? जी
0: नैतिकता को लेके एक ये बड़ा सवाल है, भले ही प्रश्न छोटा है, और नैतिक होने की मुश्किलें आप देख रहे हैं समाज में बढ़ती जा रही हैं. उसका कारण सिर्फ ये है कि अच्छाई को और अच्छी चीज़ों को फैलाने में हम थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं. हमें जहां अच्छी चीज़ें हो रही हैं और जहां बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं, बड़े अच्छा कर पा रहे हैं, हमारी ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसको एक्सपोज करें और उसको सोसाइटी में कम्युनिकेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई को हम यहाँ देख पाएंगे, समझ पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे और हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ें हो पाएंगी. एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको लेता हूँ नैतिकता के परिवेश में. जैसे उदाहरण लीजिए कि आपके गार्जियन आपको बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये सुनते सुनते भी हमारे कान पक जाते हैं, लेकिन अब इसका समाधान क्या है? तो एक सीनियर प्रोफेसर जो एनसीईआरटी में मेरे साथ में रहे और मैं उनके साथ में उनके सानिध्य का लाभ लेके मैं काफ़ी वर्षों तक उनके साथ में कार्य भी कर सका, तो उन्होंने एक बार मेरे से प्रश्न किया कि बच्चे घर में पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपके लेवल पर कोई सजेशन हो तो शॉर्ट में दीजिए, क्योंकि मैं उनके साथ में निरंतर कार्य करता हूं. तो वो भी मेरे से बड़ी उम्मीद रख रहे थे. तो मैंने उनसे कहा कि सर एक काम करते हैं कि जो डाइनिंग टेबल आपके यहाँ रखा हुआ है उस पर खाना खाना बंद करते हैं. तो बोले अरे भाई

0: ये मैं पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, इसमें डाइनिंग टेबल पर खाना खाने को बंद करने वाली क्या बात है। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि आप जब यहाँ ऑफिस से जाते हैं और आपके बॉस अगर बोले कि 10-20 फाइल आप लेते जाइए, इसको कल करके लेके आइएगा, तो इसको आप तो ऑफिस ही आवर में करेंगे ना। अब बच्चे स्कूल में भी पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें और घर पे भी पढ़ें, तो घर पे पढ़ने का एक ही उपाय बचा है इस कलयुग में, और वो भी एक ही तरीका है कि डाइनिंग टेबल को खाली करिए और बच्चों से संबंधित कुछ किताबें, हिस्टोरी की या महापुरुषों की जीवनियाँ, ये जो गवर्नमेंट की ओर से अलग से कुछ पब्लिकेशंस हैं या भारत सरकार का जो मंत्रालय है, योजना, कुरुक्षेत्र और कुछ अच्छी पत्रिकाएं वो लोग पब्लिश करते भी हैं, तो ये सब पत्रिकाओं को और कुछ किताबों को हम लोग लेके आते हैं। तो एक साथ आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने मेरी बात को 100% फॉलो किया और करीब हम 25,000 से 30,000 के बीच में रुपए खर्च करके किताबें लेके आए, पूरी गाड़ियाँ भर के, और कुछ अलमारी में और डाइनिंग टेबल पर पूरा लगा दिया और कुछ जगह छोड़ दी। और मैंने बोला कि आप उसमें जाके पढ़ना शुरू करना, तो पहले आप पढ़ेंगे तो उस मॉरलिटी को जो हम उनसे बोलने वाले हैं ना वो खुद पढ़ेंगे। तो उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर किताबें जम गई, अलमारियों में किताबें जम गई और पूरी फैमिली ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो नैतिकता के परिवेश को कई बार बोलने की बजाय हम करने में अगर बिलीव करते हैं और एक इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से उस नैतिकता के प्रति एक नई दृष्टि भी विकसित होगी और उसे फॉलो करने में हम निष्पक्ष रूप से सहभागी बन पाएंगे। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इस विषय को लेकर काम कर सकते हैं और बच्चों की सहभागिता और उनके नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए और समाज में उनका दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ये सभी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मुझे लगता है हमारे अभिभावक इस बात को गहराई से समझ रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बाल संसार में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह के लेकर। और एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुनाए हैं बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष 15 सितंबर है। 15 सितंबर की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और अमावस्या उत्तरा फाल्गुनी आज है। इसके साथ ही पिटोरी अमावस्या, खुशा गृहिणी अमावस्या, अभियंता दिवस भी आज है। तो अभियंता दिवस की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और इसके साथ में मोक्ष गुणम विश्वेश्वरैया शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चंपक रमन पिल्लई, राम कुमार वर्मा, वेद मारवा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी एन अन्ना दुराय, करम सिंह, जाकी अपुरतम, अबलेरुन कुमार, बारा बंकी मिश्रा, निर्गुण अशोक, सिंगल जोशना चिन्नप्पा, भूपेंद्र सिंह हड्डा, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही के एस सुदर्शन, इनका पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ में मिलकर और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सफलता कुछ कर सकने से आती है, असफलता कुछ ना कर सकने में आती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए अभियंता दिवस के बारे में बात करते हैं। और भारत में प्रत्येक साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, और आज के दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुणम विश्वेश्वरा का जन्म दिवस होता है। आज भी मोक्षगुणम विश्वेश्वरा को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर मोक्षगुणम विश्वेश्वरा को भारत ही नहीं बल्कि वरना विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है। तो आइए इनके बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं। अभी आज का दिन अभियंताओं का संकल्प दिवस है। एक वर्ष एक यशस्वी जीवन जीने वाले मोक्षगुणम विश्वेश्वरा सदैव भारतीय आकाश में अपना प्रकाश बिखेरते रहेंगे। भारत सरकार 1968 में डॉक्टर मोक्षगुणम की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। तब से हर साल ये पुनीत अवसर पर सभी भारतीय अभियंता एकत्रित होकर उनकी प्रेरणादायी कृत्य और आदर्श के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और अपने कार्यकल्पों का आत्मविमोचन करते हैं और इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाने का प्रण लेते हैं। संकल्प अपने दायित्वों और कर्तव्यों का समर्पित भाव से निर्वहन करने की बात आती है। भारत की आज़ादी के बाद नए भारत के निर्माण और विकास में प्रतिभावान इंजीनियरों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांव और शहरों के समग्र विकास के लिए सड़कों, पुल पुलियों और सिंचाई जलाशयों सही संशोधन निर्माण के अनेक कार्य कर रहे हैं। हमारे इंजीनियरों ने अपनी कुशलता से इन सभी निर्माण कार्य के प्रति प्रदान की है। राज्य और देश के विकास में इंजीनियरों के साथ योगदान के साथ साथ अभियंता दिवस के इस मौके पर भारत रत्न सर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया की प्रेरणादायक जीवन गाथा को भी याद किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात कर रहे थे हम लोग अभियंता दिवस के बारे में, और अभियंता दिवस में विशेष विश्वेश्वरैया को तो याद करते हैं, और कर्नाटक का भागीरथ भी उन्हें कहा जाता है। दक्षिण भारत के मैसूर कर्नाटक को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाने का श्रेय पूरा मोक्ष गुणम विश्वेश्वरैया को जाता है। तकरीबन 55 वर्ष पहले जब देश आज़ाद नहीं था, तब कृष्णा राजसागर बांध, भाद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अन्य महान उपलब्धियां मोक्षगुरम विश्वेश्वरैया के कड़े प्रयास से ही संभव हो पाए, इसलिए उन्हें कर्नाटक का भागीरथ भी कहते थे। जब वो केवल 32 वर्ष के थे, उन्होंने सिंधु नदी से सुक्कर कस्बे में पानी की पूर्ति भेजने का प्लान तैयार किया जो सभी इंजीनियरों को पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए समिति बनाई और इसके लिए विश्वेश्वरैया ने एक ब्लॉक सिस्टम को ईजाद किया। इन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध से पानी से बहाव को रोकने में मदद करता है, और उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने मुक्त कंठ से की थी। आज ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। विश्वेश्वरैया ने मूसा और ईसा नामक दो नदियों के पानी को बांधने के लिए प्लान तैयार किया। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियरिंग नियुक्त किया गया। रोचक तत्व यह है कि मोक्ष गुरम विश्वेश्वरैया के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है जो आज किसी भी अभियंता को प्रेरणा प्रदान करने के अभूतपूर्व समर्थ रखते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक बार कुछ भारतीयों का अमेरिका में कुछ फैक्ट्रियों की कार्य प्रणाली देखने के लिए भेजा गया। फैक्ट्री के एक ऑफिसर ने एक विशेष मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर आप इस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसे 75 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाकर देखना होगा। भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे सबसे उम्रदराज व्यक्ति ने कहा, ठीक है, हम भी अभी चढ़ते हैं। ये कहकर वो व्यक्ति तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। ज़्यादातर लोग सीढ़ी की ऊंचाई से डर कर पीछे हट गए तथा कुछ व्यक्ति के साथ हो लिए। शीघ्र ही मशीन का निरीक्षण करने के बाद वो शख्स नीचे उतर गया। केवल 3 अन्य लोगों ने ही उस कार्य को अंजाम दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मोक्षगुरम विश्वेश्वरैया थे जो कि सर MV के नाम से विख्यात हुए। तो जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, खचाखच भारी एक रेलगाड़ी चल रही थी, यात्रियों में अधिकतर अंग्रेज थे। अब इसमें एक बहुत बड़ा जो है विशेष विश्वेश्वरैया की बात आती है। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठा था। सांवले रंग और मंजले कद का वो यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसलिए वहाँ बैठे अंग्रेजों से मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर वह व्यक्ति किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने उठकर गाड़ी की जंजीर खींच दी। तेज रफ्तार में दौड़ती वह गाड़ी तत्काल रुक गई। तभी यात्री उसे भला बुरा कहने लगे। थोड़ी देर में गार्ड भी आ गया और उसने पूछा, जंजीर किसने खींची है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने खींची है। कारण पूछने पर उसने बताया, मेरा अनुमान है कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलगाड़ी की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता चला? वो बोला, श्रीमान, मैंने अनुभव किया कि गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है। पटरी में गूंजने वाली आवाज़ की गति से मुझे खतरे का आभास हो रहा है। गार्ड उस व्यक्ति को साथ लेकर जब दूरी पर पहुंचा तो वो देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी की जड़ें खुली हुई थी और सब नट बोल्ट अलग बिखर हुए पड़े थे। दूसरे यात्री भी वहां आ पहुंचे। जब लोगों को पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण उनकी जान बच गई तो वे एक उनकी प्रशंसा करने लगे और गार्ड ने पूछा, आप कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। नाम सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। दरअसल उस समय तक देश में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की ख्याति फैल चुकी थी। लोग उनसे क्षमा मांगने लगे और डॉक्टर विश्वेश्वरैया का उत्तर था, आप सब ने मुझे जो कुछ भी कहा होगा मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। तो ये थी एक सुंदर उदाहरण अभियंता विश्वेश्वरैया की जीवन कहानी से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मस्कुरा।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, साहित्यकार के बारे में। जी हाँ, बंगाल के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, इनका जन्म आज ही के दिन 1876 को हुगली जिले के एक देवानंदपुर गांव में हुआ था। शरदचंद्र अपने माता पिता की 9वें संतान थे। शरदचंद्र ने 18 वर्ष की उम्र में 12वीं परीक्षा पास की थी और शरदचंद्र ने इन्हीं दिनों बासागर नामक से एक उपन्यास लिख डाला, पर यह रचना प्रकाशित नहीं हुई। कॉलेज की पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर वे 30 रुपये मासिक के क्लर्क बर्मा पहुंच गए और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की कथा साहित्य की प्रस्तुति जिस रूप स्वरूप में हुई, लोकप्रियता के तत्व ने उनके पाठकीय आस्वाद में वृद्धि की। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय अकेले ऐसे भारतीय कहानीकार थे जिनकी अधिकांश कलजाई जो लेख है उन पर फिल्में बनी तथा उनके धारावाहिक सीरियल भी बने। इनकी कृतियां देवदास, चारित्रहीन और श्रीकांता के साथ तो ये बार बार गठित हुआ है। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय यथार्थवाद को लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे, वो लगभग बंगाल साहित्य में नई चीज थी। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने लोकप्रिय उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया था और पीटी पिटाई लीक से हटकर सोचने को बाध्य किया था। शरदचंद्र की प्रतिभा उपन्यासकारों के साथ साथ उनकी कहानियों में भी देखने को मिलता है। उनकी कहानियों में उपन्यासों की तरह मध्यवर्गीय समाज का यथार्थ चित्र अंकित है। शरदचंद्र प्रेम कुशल के चित्रे थे। शरदचंद्र की कहानियों में प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों की सशक्त चित्रण हुआ करती थी और इन कहानियों कला और दृष्टि से बहुत ही मार्मिक है। ये कहानियाँ शरदचंद्र की हृदय की संपूर्ण भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहानियों, अपने बालपन के स्मरण से और अपने संपर्क से आए मित्र व अन्य जन के जीवन से उठाई हैं। ये कहानियाँ जैसे हमारे जीवन का एक हिस्सा है, ऐसा प्रतीत होता है। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ शरदचंद्र उपाध्याय की कुछ और बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले एक और गीत आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदाई हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है। सभी बोलेंगे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है,
2: नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुरेश चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। विश्वविख्यात बंगाल कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के उपरांत कथन को अपने साहित्य में उतारा था। उन्होंने पतित, उल्टा, पीड़ित, दहेबी कुचली और प्रताड़ित नारी की पीड़ा को अपनी रचनाओं में स्वर दिया है। हृदय के सच्चे पारखी शरद चंद्र के मन में नारियों के प्रति बहुत सम्मान था और वे नारी हृदय के सच्चे पारखी थे। उनकी कहानियों में स्त्री के रहस्यमय चरित्र, उसकी कोमल भावनाओं, दमित इच्छाओं, अपूर्ण आशाओं, आकांक्षाओं, उसके छोटी छोटी सपने, छोटी बड़ी मन की उलझनों और उसकी महत्वाकांक्षाओं का जैसा सूक्ष्म सच्चा और मनोवैज्ञानिक चित्रण विश्लेषण हुआ है वो अन्यत्र दुर्लभ है। संपूर्ण साहित्य शरदचंद्र का संपूर्ण साहित्य नारी के उत्थान के पतन और उत्थान की करुणा कहानियों से भरा पड़ा है। शरदचंद्र अपनी कहानियों में केवल पीड़ित प्रताड़ित नारी की पतन गाथा नहीं गाते, सिर्फ उसके पतित और उल्टा हो जाने की कहानी नहीं कहते। स्नेह, त्याग, बलिदान, ममता और प्रेम की पावन कहानी भी सुनाते हैं। शरदचंद्र कहानियों में नारी का महानतम और निचतम दोनों रूपों का एक साथ दर्शन होते हैं। जब शरदचंद्र नारी के बारे में लिखते हैं तो कहते हैं कि उस नारी के उद्दत्व और उज्जवल चरित्र के उद्घाटित करते हैं तो पाठक प्रसन्न सन्न रह जाते हैं। मन में यह प्रश्न कहीं गहरे गर कर जाती है कि एक ही स्त्री के दो रूप कैसे हो सकते हैं, और वो ये नहीं समझ पाता कि आखिर वह नारी के किस रूप को स्वीकार करे। शरदचंद्र अपनी कहानियों में नारी हृदय की घंटों और गुत्तियों को जिस कुशलता से खेलते हैं, उनकी रचनाओं में नारी का जो बहुरूप सामने आता है वैसे झलक विश्व साहित्य में कहीं नहीं मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं बताना चाहूँगा। शरदचंद्र बाबू के मनुष्य को अपने विपुल लेखन के माध्यम से उसकी मर्यादा सौंपी और समाज की उन परंपराओं को ध्वस्त किया जिनके अंतर्गत नारी की आंखें आंसुओं से हमेशा छलकाई रहती है। शरद बाबू ने समाज द्वारा अनसुई रही गतिविधियों पर विलाक, चीख और अंतर्नाद को परखा और यहाँ जाना कि जाति, वंश और धर्म आदि के नाम पर एक बड़े वर्ग के मनुष्य की श्रेणी से दुख मिल रहा है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इस षड्यंत्र के अंतर्गत की पनप रही तथाकथित सामाजिक आम सहमति पर रत्नात्मक हस्ताक्षेप किया जिसके चलते वह लाखों करोड़ों पाठकों के चहेते बने और नारी और अन्य शोषित समाजों के दूसर जीवन का चित्रण भी नहीं उन्होंने किया बल्कि उनके आम जीवन से जो इंद्रधनुषी रंगों की छटा भी बिखेरी जाती है वो भी उन्होंने बताया। तो दोनों पक्ष बताने का जो जड़ी बूटी सा काम जो है इन्होंने किया है। और प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की मृत्यु 16 जनवरी सन 1938 को हुई थी। और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय को ये गौरव हासिल है कि उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य सभी भारतीय भाषाओं में आज भी चाव से पढ़ी जाती है। लोकप्रियता के मामले में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरदचंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर से भी आगे है। तो ये थी कुछ खास बातें शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए आप सभी को एक गीत और सुनाते हैं, सुनते हैं।

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज के इस प्रोग्राम के आखिरी मोड़ पे हम लोग हैं और एक कहानी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और आशा करूंगा कि आप सभी को कहानियां सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और कहानियां जब भी आपको सुनाई जाती है तो आप भी बड़ी इंटरेस्टिंग मूड में आ जाते हो, बड़ी अच्छी तरह से सुनते हो। कहानी अपने आप में ये शब्द ही हम सभी को जो है प्रेरित करता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी पंचतंत्र में से, जिन्हें आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन बार बार सुनकर हमें मैसेज को अपने जीवन में अपनाना है। तो एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गाँव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वो लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा उतना ही वो दुखी रहता, और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक महसूस होता था। इतना ज़्यादा दुखी होने के वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हो गई। ये बात लोगों में आज एक आग की तरह फैल गई। वो बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था, और जहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताज़ा दिखाई पड़ रहा था। ये देख कर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं, 80 साल में मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और ये बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली, और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए मैं अब खुश हूँ। तो कहानी से सीख यही मिलता है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम लोग किसी रहस्य को समझ लेते हैं। अब देखिए, बंदा जो है खुश रहने के लिए बहुत प्रयास करता रहा। जब प्रयास 60-70 साल में भी उसको खुशी नहीं मिला, तो उसी ने खुशी का पीछा करना ही छोड़ दिया। और जैसे छोड़ दिया था खुशी उसके पास, मैंने आदमी बेकार में इतना मेहनत करता, इतना फजूल सारी संपत्ति खड़ा कर देता है, और फिर भी उसके आसपास वाले उनके लोग उससे नाराज रहते हैं या दुखी रहते हैं। तो ऐसे में उसका एम्पायर भी कुछ काम नहीं आता, और जब सब कुछ छोड़ देता है तो खुशी उसके पीछे दौड़ने लगती है। पहले हम खुशी के पीछे दौड़ते थे, अब खुशी हमारे पीछे दौड़ने लग जाती है। तो ये बड़ा ही रहस्यात्मक चीज़ें हैं। व्यक्ति को काफ़ी गहरा अगर अनुभव हो, चिंतन करे, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। आशा करूँगा कि आप भी इस रहस्य को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका जीवन बड़ा ही अद्भुत और अनोखा रहस्य से, आप खुशी से भरपूर हो जाएंगे। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत के साथ और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। और विचार आप सभी सुनते हैं। कहते हैं कि जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हो उसी में आपकी सफलता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस, लेकिन अपने आप के साथ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का, ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का, ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

0: रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। दोस्तों, आज तारीख है 15 सितंबर। वैसे तो हम सभी जानते हैं अब फेस्टिवल के दिन चल रहे हैं और आने वाले भी हैं, तैयारी भी हो रही है और सभी बहुत सुंदर सी जो है गीत भजन और बहुत डेकोरेशन भी कर रहे हैं। चाहे नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है या गणेश पूजा होती है या फिर घरों में दिवाली के दीपक जलते हैं, कोई भी त्यौहार जब आता है तो ढेर सारी खुशियाँ प्यार लेकर आता है, सबको एक करता है। अब देखिए, हर त्यौहार एक साथ मनाया जाता है, कोई त्यौहार ऐसा नहीं होता कि हाँ सिर्फ अकेले एक जने को मनाना है। वो सबको साथ लेकर आता है, साथ रहना सिखाता है, प्यार बढ़ाता है और इसीलिए वो सेलिब्रेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इन चीज़ों की तो ज़रूरत हम सभी को है जीवन में। चलिए दोस्तों, सेलिब्रेशन के इस माहौल को जारी तो रखेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या है, क्योंकि हम रहते हैं आबू में लेकिन हम एक और जगह भी रहते हैं। वो कौन सी जगह है? वो है इंटरनेट की दुनिया। भाई, इंटरनेट की दुनिया जहां हर कोई रहता है। अब उस दुनिया में रहते हैं तो उस दुनिया के नियम कानून भी तो पता होने चाहिए। तो कुछ ऐसे स्कैम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, जिससे लोगों के साथ उनके चाहे किसी भी तरीके का नुकसान किया जा सकता है। अब वो नुकसान ना हो, इसके लिए कौन सा हथियार चाहिए? सिर्फ एक, और वो है जानकारी का हथियार। वही देने के लिए हम आपके पास आते हैं। हफ्ते में एक दिन युवा मंच पर जरूर हम बात करते हैं किसी भी तरह के स्कैम के बारे में और कैसे आप उससे बच सकते हैं। दोस्तों, आप साइबर दोस्त को फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर। ये एक बहुत सुंदर पहल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहल है और इसका आप हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि कई तरह के स्कैम्स के बारे में आपको सही जानकारी देता है, क्या हो रहा है वो भी आपको बताता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये आपको सही जानकारी ही देगा। इसलिए ज़रूरी है आपको सही जगह से सही जानकारी लेना, क्योंकि कई बार हमें मिलती तो है जानकारियाँ लेकिन कौन सी सही है और कौन सी नहीं ये तो समझ ही नहीं आता। अब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, साइबर दोस्त की बात

कर रही हूँ, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई पहल है। यानी आपको मिलेगी सही जानकारी, इतना तो कहा जा सकता है। साथ साथ यहाँ पे एक रिपोर्ट करने के लिए नंबर भी दिया रहता है। अगर कभी भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो आप सीधा 1930 यानी 1930 इस पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर वेबसाइट या ऑनलाइन करना चाहें कंप्लेंट या जानकारी चाहें तो भी आप जा सकते हैं cybercrime.gov.in पे। जी हाँ, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, cybercrime.gov.in इस पर भी आप जा सकते हैं। और चलिए हम आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी चर्चा जो आपके लिए, अगेन मैं कहूँगी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने फ़ोन में आजकल बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, फाइल्स डाउनलोड करते हैं, कई बार वो परमिशन मांगती है, कई बार हम गलती से क्लिक कर देते हैं तो डाउनलोड हो जाता है, ऐसा भी हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है उन ऐप्स की, या APK स्कैम आपने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि फाइल डाउनलोड करें और वो आपके फ़ोन में किस तरह से वायरस आता है या आपको नुकसान कर सकता है, वो आपको बताते हैं। तो कुछ ही देर में आपको इस बारे में सही और ज़रूरी जानकारी मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, यानी युवा मंच पर रेडियो मधुबन के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, वेलकम टू दिस वीक साइबर सेफ लाइव ब्रॉट टू यू बाय साइबरडोज़, द ऑफिशियल साइबर सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आज का सेशन एक ऐसे साइबर थ्रेट पर बेस्ड है जहां एक सिंपल ऐप डाउनलोड करना आपके फोन और आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों के लिए रिस्क बन सकता है। आजकल साइबर क्रिमिनल्स फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू यूजर्स को सस्पिशियस वेबसाइट्स तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्हें गूगल प्ले स्टोर के बाहर से एपीके फाइल्स डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद सेंसिटिव परमिशंस के थ्रू फोन पर कंट्रोल लिया जा सकता है, जिसके बाद अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिस्क भी हो सकता है। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर सौरभ हरितेश, सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट दिल्ली पुलिस। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और व्यूअर्स, अगर आपके पास इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ सवालों का जवाब सेशन के दौरान या सेशन के बाद दिया जा सके। सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मलिशियस एपीके क्या होता है और ये एक नॉर्मल ऐप से कैसे अलग होता है?
3: जी बिल्कुल, असल में एपीके का मतलब होता है एंड्रॉइड पैकेज किट, और कोई भी एंड्रॉइड ऐप पैकेज होता है। जब हम गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो गूगल उस ऐप की पहले जांच करता है, उसका मालवेयर स्कैन करता है, उसकी डेवलपर वेरिफिकेशन करता है, उसका परमिशन रिव्यू करता है, तब जाकर वो ऐप स्टोर पर लाइव अवेलेबल होती है। असल में मैलिशियस एपीके एक ऐसी फाइल होती है जो इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कम्प्लीटली बाईपास कर देती है। वैसे तो ये नॉर्मल ऐप जैसे ही दिखती है, सेम आइकन, सेम नाम, और कभी कभी ये एक जेन्युइन ऐप का क्लोन भी हो सकती है, बट इसके अंदर हिडन मैलिशियस कोड छुपा होता है। इसका प्राइमरी रिस्क ये है कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ होता और ये आपके फोन से डाटा चुराने, सेंसिटिव परमिशंस मिसयूज करने या बैकग्राउंड में अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए डिजाइन की गई होती है। सबसे बड़ी बात, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, व्हाट्सएप लिंक्स या सोशल मीडिया एड्स के थ्रू अधिकतर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो कोई भी ऑफिशियल स्टोर नहीं होता, उसके बाहर से ये डाउनलोड की जाती है।
2: सर, तो सोशल मीडिया पर दिखने वाला कोई भी एड देखकर यूजर ट्रैप में कैसे फंस जाता है?
3: मैम, असल में ये ना एक वेल प्लान्ड सोशल इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है इनका, और इसका जो हुक है हर बार अलग ही होता है। साइबर क्रिमिनल्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अट्रैक्टिव एड्स रन करते हैं, उसके बाद कभी बैंक से कैशबैक ऑफर, कभी इंस्टेंट लोन अप्रूवल, कभी फ्री रिचार्ज, और आजकल एक नया ट्रेंड भी देखने में आ रहा है, एडल्ट या एंटरटेनमेंट कंटेंट के नाम पर एप्स को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कोई वीडियो स्ट्रीमिंग या प्राइवेट कंटेंट ऐप का बहाना लेकर इस तरीके से वो आपको इसको मोटिवेट करते हैं। नाम हर बार लगभग अलग ही होता है, मगर पैटर्न हमेशा एक जैसा रिल्यूप ही होता है। टाइप जेनेरिक साउंडिंग नेम होते हैं, तो कभी कभी किसी जानी मानी ब्रांड जैसा नाम रख दिया जाता है। जब यूजर उस एड पर क्लिक करता है तो उसे एक फेक या सस्पिशियस वेबसाइट पर ले जाया जाता है। कभी ये किसी बैंक की वेबसाइट जैसी दिखती है, कभी सीधे कंटेंट का प्रीव्यू दिखाती है। जो इंक्वायरी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऐसे केसेस की, वो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाते हैं कि ऐसी फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स का जो डोमेन है वो अक्सर अनयूजुअल एक्सटेंशन में होता है, जैसे .live, .xyz या इसी तरह के कम जाने पहचाने TLDs जो जेन्युइन बिजनेसेस या प्लेटफॉर्म्स रेयरली यूज ही करते हैं। ऐसे फ्रॉडलेंट प्लेटफॉर्म पर एक बटन या ऑप्शन दिया होता है जो डाउनलोड ऐप या फिर गेट द ऐप के नाम से हो सकता है, जो यूजर को ऑफिशियल लीगल प्लेटफॉर्म या प्ले स्टोर की जगह डायरेक्टली एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए रिडायरेक्ट कर देता है, क्योंकि ऑफर अट्रैक्टिव होता है और अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, तो यूजर बिना सोचे समझे एपीके डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लेते हैं। यही पहला और सबसे क्रिटिकल ट्रैप पॉइंट होता है इन ऐसे केसेस में।
2: तो सर जैसे कि आपने बताया यूजर को इवेंचुअली डायरेक्ट किया जाता है कि वो एक ऐप इंस्टॉल करे, तो इंस्टॉलेशन के बाद ऐसी एप्स कौन सी परमिशंस मांग सकती हैं और इन परमिशंस को अलाउ करना कितना रिस्की हो सकता है?
3: मैम ये जो मैलिशियस एप्स होती हैं टिपिकली हाई रिस्क परमिशंस मांगती है। परमिशन जो मांगती है जैसे कि ओटीपी और बैंक अलर्ट्स पढ़ने के लिए वो आपकी एसएमएस एक्सेस मांगेंगी, स्क्रीन का कंटेंट देखने और ऑटोमेटिकली एक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज की आपकी परमिशन मांगती है। मैलिशियस ऐप खुद दूसरी एप्स भी इंस्टॉल कर सके उसके लिए वो आपसे इंस्टॉल अननोन एप्स की परमिशन मांगेंगी। आपका पर्सनल डाटा अगर उन्हें कलेक्ट करना है जो कि चाहिए ही उनको उस पर्पस के लिए, तो वो कॉल लॉग्स और कंटेंट एक्सेस की परमिशन के नाम से आपसे परमिशन मांग सकते हैं। आपको फेक लॉगिन एक्सपीरियंस दिखाने के लिए जैसे कि रियल बैंकिंग ऐप के ऊपर आप काम कर रहे हो ऐसा कुछ दिखाने के लिए मैलिशियस ऐप क्या करते हैं, ओवरले या फिर डिस्प्ले ओवर अदर एप्स परमिशन आपसे वो मांगते हैं जो कि आप गलती से दे बैठते हैं। आपके डिवाइसेस के फाइल्स और फोटोज तक पहुंच के लिए उनको स्टोरेज एक्सेस की परमिशन चाहिए होती है। इंडिविजुअली ये परमिशंस अगर देखा जाए तो नॉर्मल लगती है, लेकिन जब ये सब परमिशंस कंबाइन हो जाए एक जगह और फिर उनको वो अटैकर यूज करता है तो प्रैक्टिकली उसके पास डिवाइस का पूरा कंट्रोल आ जाता है, यूजर के ओटीपी पढ़ने से लेकर बैंकिंग ऐप की स्क्रीन देखने तक और बिना यूजर की जानकारी के ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने तक सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर ये सारी परमिशंस उसके पास आ जाए तो।
2: सर आई थिंक जैसा आपने बताया हम लोग एप्स डाउनलोड करने के इतने आदि हो चुके हैं और इतनी जल्दबाजी में चीजें करते हैं कि कभी भी हम ध्यान नहीं देते कि किस टाइप की परमिशन हम एक रैंडम ऐप को एक्सेस दे रहे हैं। मतलब जैसे अगर बैंकिंग ऐप है तो डेफिनेटली उनको हमारे मैसेज का एक्सेस जरूरी हो सकता है, बट हमारे फोटोज या हमारे कॉन्टैक्ट का एक्सेस इतना नेसेसरी नहीं होता। तो डिपेंडिंग ऑन द ऐप हमें देखना ही चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इस ऐप को एक्चुअली में क्या चीज नेसेसरी है वही परमिशन दी जाए, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोकेशन या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस ना दिया जाए। सर ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां एक ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने आप ही एक दूसरी ऐप डाउनलोड हो जाती है, तो ये कैसे होता है?
3: मैम असल में ये ना एक टेक्निक है जो आपका आजकल तो बहुत कॉमन हो गई है। पहले ऐप जो यूजर जनरली इंस्टॉल करते हैं यूजरली उतनी हार्मफुल लगती नहीं है स्टार्टिंग में, परमिशंस भी लिमिटेड होती हैं, लेकिन उसके पास एक परमिशन जरूर होती है जो होती है इंस्टॉल अननोन एप्स की। इसका यूज करके वो मैलिशियस ऐप अपने आप ही खुद कुछ देर बाद एक दूसरी ज्यादा डेंजरस पैकेज जो है उसको साइलेंटली डाउनलोड कर लेता है या इंस्टॉल कर लेता है, और इस प्रोसेस में वो मोस्टली यूज करता है एक कॉमन नेम जो है ऐप अपडेट। वो ऐप अपडेट के नाम पर या उसका बहाना लेकर चुपके से चोरी छिपे आपके बैकग्राउंड में एक दूसरी ज्यादा डेंजरस फाइल है वो डाउनलोड कर लेता है। यानी यूजर को लगता है कि बस एक नॉर्मल अपडेट हुई है या इंस्टॉल कर रहा है वो सिर्फ नॉर्मल अपडेशन एक पर्टिकुलर ऐप का, जबकि एक्चुअल में एक बिल्कुल अलग ज्यादा परमिशंस मांगने वाली ऐप जो है डिवाइस पर आ जाती है। जेन्युइन ऐप्स के अपडेट्स हमेशा प्ले स्टोर से ही आते हैं बैकग्राउंड में बिना किसी पॉपअप या एक्स्ट्रा परमिशंस के। अगर कोई ऐप खुद से अपडेट के लिए यहाँ क्लिक करें या कोई और इस तरीके से मिलता जुलता प्रॉम्प्ट आपको पेश कर रही है या दे रही है या आपके सामने आ रहा है तो ऐसे किसी लिंक पर क्लिक ना करें, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जब आपको इस तरह के कोई प्रॉम्प्ट्स आते हैं।
2: सर आई थिंक कई बार ऐसे आ जाता है कि आपके फोन में ये फाइल पाई गई है इसको क्लीन करने के लिए इसको क्लिक कर लीजिए, या आपके फोन का स्टोरेज भर गया है। तो जैसा आपने बताया कि कभी भी आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऐसे कोई भी एड्स पे क्लिक करना, इनफैक्ट बहुत बार एप्स के बीच में भी एड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉपअप्स आते हैं, तो ये चीज ध्यान देना बहुत नेसेसरी है कि ऐसे कोई रैंडम चीज पे क्लिक नहीं करना है। सर जैसे आपने बताया एक्सेसिबिलिटी परमिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परमिशन है जो लोग बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी परमिशन का मिसयूज किस तरह हो सकता है और इसका रिस्क क्या है?
3: देखिए मैम, ये जो एक्सेसिबिलिटी सर्विस है ये बेसिकली एक जेन्युइन एंड्रॉइड फीचर है जो हमारे दिव्यांग यूजर्स होते हैं उनकी मदद के लिए डेवलप किया गया था, जैसे स्क्रीन रीडर या वॉइस कंट्रोल। लेकिन इस सर्विस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये उस डिवाइस की स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है आपको वो पढ़ सकती है और यूजर की तरफ से टैप्स, क्लिक्स और इनपुट्स भी खुद सिमुलेट कर सकती है। जब ये परमिशन किसी मैलिशियस ऐप को दे दी जाती है तो प्रैक्टिकली वो ऐप आपके फोन को देख भी सकती है और खुद ही फोन को यूज भी कर सकती है बिना फिजिकली डिवाइस स्क्रीन को टच करे या कोई वॉइस कमांड दिए। मतलब अगर आप बैंकिंग ऐप ओपन कर रहे हैं तो अटैकर बैकग्राउंड में वही स्क्रीन देख सकता है, क्रेडेंशियल्स कैप्चर भी कर सकता है और खुद ही बटन प्रेस करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकता है। सब कुछ वो रियल टाइम में कर सकता है और अक्सर यूजर को पता भी जब तक कि पैसा अकाउंट से निकल ना जाए। इसीलिए इस विषय पर सबसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस मेरी तो यही है कि एक्सेसिबिलिटी परमिशन सिर्फ ट्रस्टेड वेल नोन एप्स को ही दें और अननोन सोर्स से आई किसी भी ऐप को ये परमिशन कभी ना दें।
2: सर, हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, मलिशियस ऐप अगर इंस्टॉल हो गया है फोन में, मलिशियस ऐप इंस्टॉल होने के बाद फोन में कौन से वार्निंग साइंस दिखाई दे सकते हैं?
3: बिल्कुल मैम, कुछ ना कॉमन वार्निंग साइंस होते हैं जो यूजर्स को हमेशा नोटिस करनी चाहिए ऐसे कंडीशंस में। सबसे पहले तो फोन में ऐसी ऐप्स दिखना जो उन्होंने खुद इंस्टॉल नहीं की। दूसरा, बैटरी जो है फोन की या डिवाइस की अचानक तेजी से ड्रेन होने लगती है या फोन गर्म रहने लगता है। थर्ड नंबर पे आता है डाटा यूजेज जो है वो आपका अचानक से बढ़ जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड में जो डाटा है वो साइलेंटली कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। अचानक आपके फोन में बहुत सारे एड्स या पॉपअप्स आने लगते हैं, फोन स्लो हो जाता है या ऐप खुद ब खुद ओपन होने लगती है या क्लोज होने लगती है। डिवाइस पर एक नया वीपीएन कनेक्शन दिखना शुरू हो जाता है, हमेशा ऑन रहता है जबकि यूजर ने खुद कभी कोई वीपीएन सेटअप ही नहीं किया होता। कुछ मैलिशियस एप्स जो होती हैं वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि जो उनका ट्रैफिक है वो ट्रैफिक अपने हिसाब से वो खुद कंट्रोल कर सके, उसका रूट खुद के खुद प्लान कर सके। इसका सेकंड लास्ट है सेटिंग्स में जाकर आपको नॉर्मल तरीके से अनइंस्टॉल करना ट्राई करके आप ये सब चीजें जो है वो ऑप्शंस को आप बार बार अगर वापिस जा रहा है और आप उसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको पता लग सकता है कि भी आपके फोन में कुछ ना कुछ गलत हो गया है। SMS या कॉल लॉग्स हैं, ऐसे में उसकी एंट्रीज अगर आपको दिख रही है जो कि आपने नहीं की है तो भी आपको पता लग जाएगा कि भी ये कुछ गड़बड़ इसमें हो गई है। बैंक की अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन की अलर्ट्स अगर आपके पास आ रही है तो उससे भी आपको पता लग जाता है कि भी कुछ ना कुछ मेरे फोन में बैकग्राउंड में चल रहा है। अगर इनमें से किसी भी तरीके का कोई भी साइन आपके फोन में दिखे तो आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है और वो आपको करना चाहिए।
2: तो सर, अगर कोई सस्पिशियस ऐप अनइंस्टॉल नहीं हो पा रही है तो यूजर को क्या स्टेप लेने चाहिए?
3: हाँ मैम, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आपको काम रहने की जरूरत है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जितने आप काम रहेंगे उतना आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे। और दूसरा, पैनिक में ना गलत स्टेप भी आपके को बढ़ा सकता है नॉर्मली, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। जैसे फोन को तुरंत आप एयरप्लेन मोड में डाल दें या इंटरनेट और जो मोबाइल डाटा है उसको बंद कर दें, इससे आपका एक्सटर्नल सर्वर जो है उससे कनेक्शन कट हो जाएगा। दूसरा, आप क्या करें कि फोन की सेटिंग्स में जाएं, वहां एक्सेसिबिलिटी में जाकर चेक करें कि किसी अननोन ऐप को ये परमिशन तो नहीं दे दिया आपने गलती से, अगर है तो उससे तुरंत वो परमिशन रिवोक करें। इसी तरह सेटिंग्स में जाकर आप सिक्योरिटी ऑप्शन में जाएं, वहां से डिवाइस एडमिन ऐप्स ऑप्शन में जाकर भी चेक करें, अगर कोई एक्सेस ग्रांट की हुई है तो वहां से भी वो एक्सेस हटा दें तुरंत। सेटिंग्स में जाकर आपको ऐप में जाकर उस मैलिशियस ऐप को फोर्स स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर अनइंस्टॉल ट्राई करें उसको। उसके बाद अगर मैलिशियस ऐप नॉर्मल तरीके से अनइंस्टॉल नहीं हो रही है आपसे तो फोन को सेफ मोड में रीस्टार्ट करें। और सेफ मोड में जाने का तरीका ये है कि आप पावर बटन को प्रेस होल्ड करें, फिर पावर ऑफ ऑप्शन को प्रेस होल्ड करके सेफ मोड सेलेक्ट करें, फिर सेफ मोड में सिर्फ सिस्टम ऐप्स ही चलेंगे, आपको कोई और थर्ड पार्टी मैलिशियस ऐप ऑटोमेटिकली दिखेगी नहीं, और वहां से अनइंस्टॉल करना फिर आपके लिए आसान हो जाता है। काम होने के बाद फोन को जब आप नॉर्मली रीस्टार्ट करते हैं तो सेफ मोड ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। एरोप्लेन मोड में फोन कई बार रहता है तो आप वो मैनुअली एरोप्लेन मोड से हटा सकते हैं। कभी कभी ऐसी मैलिशियस ऐप से फोन का जो डिफॉल्ट होम लॉन्चर है वो भी बदल दिया होता है, उसको वो चेंज कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, फोन की सेटिंग्स में जाना चाहिए, वहां से एप्स में जाना चाहिए, वहां से डिफॉल्ट एप्स में जाना चाहिए, फिर वहां होम ऐप पे जाकर आप अपनी ओरिजिनल लॉन्चर वापस सेट कर सकते हैं। साथ ही अपने बैंक को आप तुरंत इन्फॉर्म करें, और आपका कोई कार्ड है या नेट बैंकिंग की आपकी फैसिलिटीज है उनको आप टेम्पररी ब्लॉक करें या मॉनिटर करवाएं। इसके अलावा आप किसी दूसरे से तुरंत अपने सारे इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स को चेंज कर दें। और इसके अलावा मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो तुरंत 1930 की हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.gov.in का जो हमारा पोर्टल है ऑफिशियल, उस पर अपनी कंप्लेंट फाइल करें। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे फंड्स रिकवर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अगर अनइंस्टॉल फिर भी ना हो पाए या ऐप बार बार वापस आ जाए तो फोन का फैक्ट्री रिसेट करना सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले आपको एक ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसका आप बैकअप जरूर लें।
2: सर, तो साइबर फ्रॉड का पूरा साइकिल क्या होता है ऐसे केसेस में? क्या सिर्फ एपी के इंस्टॉल करने से ही पैसा निकल जाता है, या फ्रॉडस्टर्स इसके बाद भी और तरीके यूज कर सकते हैं?
3: नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही और जायज है। असल में इंस्टॉल होना ही अपने आप में सब कुछ नहीं होता, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें पूरी स्टेजेस को समझना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली स्टेज है, उस स्टेज में होता क्या है कि यूजर को ना सोशल मीडिया पर एक लुभावना ऐड दिखाया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल ऑफर का कोई कंटेंट हो, और वो प्ले स्टोर के बाहर से कोई एपीके उसके फोन में इंस्टॉल करा दी जाती है, डाउनलोड करने के लिए डायरेक्शन दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव बेट और इंस्टॉल वाला स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यूजर को कोई SMS या एक्सेसिबिलिटी जैसी परमिशंस जो है वो अलाउ कराई जाती है, और कई बार ऐसी परमिशंस का यूज करके मैलिशियस ऐप खुद एक दूसरी ज्यादा डेंजरस ऐप भी अपडेट के नाम पर इंस्टॉल कर लेता है, जैसा भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले
2: जी।
3: और इसके बाद फिर आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, बैकग्राउंड में ना कोई OTP, बैंकिंग नोटिफिकेशन या स्क्रीन एक्टिविटी कैप्चर करना वो जो मैलिशियस ऐप है शुरू कर देती है, और कई बार अपना VPN भी इन्फोर्स कर देती है, उसमें इंस्टॉल करा देती है, ताकि उसका जो अपना ट्रैफिक है वो उसके अपने सर्वर से रूट होके और प्राइवेटली डाटा ट्रांसफर होता रहे। फिर स्टेज आती है फोर्थ, और उस स्टेज में होता क्या है कि हम जहां देखते हैं केसेस में एक फेक कस्टमर केयर या बैंक रिप्रेजेंटेटिव का कोई कॉल आता है, और फिर वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, यूजर को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और फिर एक रिमोट स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनीडेस्क हो गई या फिर टीम व्यूअर हो गई, इस तरीके से आपके उनके फोन में इंस्टॉल करवा दी जाती है, या इंस्टॉल करके फिर वेरिफिकेशन के नाम पर और बाद में उनसे मैनिपुलेट करते हुए डाटा उनसे कैप्चर कर लिया जाता है या मांग लिया जाता है उनसे लेते हैं, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग फॉलो अप कहते हैं। और ये जो फिर लास्ट स्टेज होती है, ये असल में विक्टिम की जब कंप्लीट एक्सेस मिल जाए तो अटैकर डायरेक्टली बैंकिंग ऐप को ओपन करता है, OTP खुद पढ़कर ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देता है, और फिर वो पूरा पूरा अमाउंट जो उनके अकाउंट में है वो पूरा डाटा वो ट्रांसफर पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ये सिर्फ एक मैलिशियस ऐप इंस्टॉलेशन या परमिशन एक्सेस का इशू नहीं है, ये एक पूरा चैन है जिसमें हर स्टेज पर यूजर को रुकने का मौका होता है, बस यूजर अगर अलर्ट रहे तो बात बन सकती है।
2: सर, लीगल एंगल से अगर कोई इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो कौन से लॉज अप्लाई हो सकते हैं, और पुलिस इस केस में कैसे हेल्प कर सकती है?
3: देखिए मैम, ऐसे केसेस में टिपिकली IT एक्ट के रिलेवेंट सेक्शंस जैसे 66C जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, या 66D जिसमें चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स हो गया, ये सेक्शंस लगती हैं, ये ऑफेंस बनते हैं, इनके अगेंस्ट इन सेक्शंस में कार्रवाई की जाती है। और साथ के साथ BNS के जो चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जुड़े सेक्शंस हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं, और डिपेंड करता है कि केस की नेचर क्या है उसके हिसाब से वो

0: किस जो सेक्शंस है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग मगर जब भी कोई कंप्लेंट दर्ज होती है तो चाहे वो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर हो या साइबर क्राइम .gov.in या 1930 के थ्रू या सीधा लोकल साइबर सेल में जाकर कंप्लेनेंट ने या विक्टिम ने शिकायत की हो, इसमें एक इंक्वायरी ऑफिसर जो सबसे पहला काम करता है वो करता है ट्रांजेक्शन ट्रेस को फॉलो करना, किस अकाउंट में पैसा गया है, कौन सा पेमेंट गेटवे यूज हुआ और क्या वो फंड्स अभी भी फ्रीज किए जा सकते हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो गोल्डन रूल है वो ये है कि जितनी जल्दी आप कंप्लेन कर देंगे उतनी जल्दी आपकी वो फंड्स को फ्रीज कराने का और वापस आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कराने की जो पॉसिबिलिटीज है जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। आइडियल विंडो पहले कुछ घंटों की होती है, हर कंप्लेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड होती है और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम डिवाइस फॉरेंसिक्स और आई टी ट्रेसिंग और बैंक ऑपरेशन और एक्यूज तक पहुंचने की कोशिश करते ही है। इसके अलावा अगर कंप्लेनेंट को किसी मैलिशियस एपीके फाइल के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन करनी है तो वो डायरेक्ट cybercrime.gov.in का जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से वहां जो हमारा रिपोर्ट सस्पेक्ट ऑप्शन है उस पे जाके वहां से रिपोर्ट टू I4C ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। वहां रिपोर्ट टू I4C सेक्शन जैसे वो सेलेक्ट करेगा तो वहां पर वेबसाइट URLs व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रोफाइल या फेक आइडेंटिटी है तो और या फिर आपकी मोबाइल ऐप जो जो कि APK के फॉर्म में हम इंस्टॉल कराते हैं उससे रिलेटेड वो कोई भी क्वेरी कोई भी अपनी ग्रीवेंसीज है वो वहां अपना रिकॉर्ड करा सकता है और इसके थ्रू हमारी रिपोर्टिंग होने के बाद हम लीगल एक्शन प्रॉपर प्रोसीड करते हैं।
1: सर, कई बार यूजर्स जैसे सीनियर सिटीजन्स कंटेंट की नेचर की वजह से शर्मिंदा महसूस करते हैं और रिपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं, तो ऐसे यूजर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी?
0: बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है मैम आपका इस सबको लेके। ऐसे फ्रॉड्स में कि यूजर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, पहला तो सीनियर सिटीजन्स और नए स्मार्टफोन यूजर्स जिन्हें टेक्निकल परमिशंस और वार्निंग साइन समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और दूसरा ऐसे यूजर्स जो कंटेंट की नेचर जैसे अडल्ट कंटेंट के बहाने वाली एप्स हो गई हमारी उनकी वजह से थोड़ा शर्मिंदगी उनको महसूस होती है, उनको एक डर होता है सोसाइटी को लेके अपनी सोशल इमेज को लेकर कि किसी को कुछ बताएंगे तो वो क्या सोचेगा, सॉरी हमारे बारे में क्या ऑब्जर्वेशन बनाएगा और खामोशी से फिर वो अपना नुकसान झेलते रहते हैं जो क्रिमिनल्स को बेसिकली और फायदा ही पहुंचाता है कंप्लेन ना करना उनका। इसके रिगार्डिंग हमारी कुछ स्पेसिफिक एडवाइसेस हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि cybercrime.gov.in या फिर 1930 के हेल्पलाइन पर जो कंप्लेन आप रजिस्टर करते हैं वो कॉन्फिडेंशियली हैंडल की जाती है, आपके आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। दूसरा किसी भी घर के यंगर मेंबर को मेरी सलाह ये है कि वो अपने घर और आसपास के सीनियर सिटीजन के फोन में प्ले स्टोर प्रोटेक्ट या फिर अननोन सोर्सेज सेटिंग एक बार चेक और सिक्योर कर दें। सीनियर सिटीजन को ये सिखाएं कि कोई भी बैंक या गवर्नमेंट एजेंसी कभी कॉल और SMS या सोशल मीडिया के थ्रू ऐप इंस्टॉल करने को नहीं कहती। स्क्रीन शेयरिंग ऐप किसी भी कस्टमर केयर कॉल पर इंस्टॉल ना करें, ये एक यूनिवर्सल रेड फ्लैग है। बेसिकली फैमिली में एक सिंपल रूल बनाएं कि कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करने से पहले एक ट्रस्टेड टेक्नो सेवी फैमिली मेंबर से पूछ लें या अभी बताए तरीके से जैसा मैंने अभी आपको शेयर किया साइबर क्राइम पोर्टल पर अपलोड करके इन्फॉर्मेशन ले लें कि जिस तरीके के हमारे पास ये APK फाइल है ये मैलिशियस तो नहीं है, इसको हम इंस्टॉल करें या नहीं करें। यंगस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैंक स्टेटमेंट और SMS अलर्ट्स रेगुलरली सीनियर सिटीजन के साथ बैठकर चेक करें ताकि कोई भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जल्दी जल्द से जल्द पकड़ी जाए। सॉरी, कम्युनिटी अवेयरनेस और फैमिली सपोर्ट ये दोनों इस वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है और बेस्ट ऑप्शन है।
1: आई थिंक साइबर क्रिमिनल सबसे पहले वल्नरेबल ग्रुप्स को ही टारगेट करते हैं, तो व्यूअर्स हम आपको ये जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप खुद भी अवेयर रहें और अपने आसपास अपने बड़े और अपने पेरेंट्स को जरूर अवेयर करें कि वो कैसे ऐसी चीजों से कुछ ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेके बच सकते हैं। सर, आखिर
0: मैम
1: में
0: मैं इस बारे में कुछ सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव रूल शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या दूसरे ट्रस्टेड ऐप स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड करें, कभी भी APK फाइल किसी एड वेबसाइट या व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक आदि से डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। दूसरा मैम, इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज ऑप्शन जो है आपके डिवाइस का हमेशा डिसेबल रखें, और अगर कोई ऐप यूज इनेबल करने को कहे तो समझ जाइए कि कुछ गलत है, ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है।
1: सर,
0: तीसरा, एक्सेसिबिलिटी या डिवाइस एडमिन परमिशंस किसी भी अननोन ऐप को ना दें। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये सबसे सेंसिटिव परमिशन होती है और इसका बेसिक यूज था दिव्यांग जो हमारे यूजर्स हैं उनको सपोर्ट करना या उनके लिए हेल्पफुल होना, मगर यूजर्स इसका जो अटैकर है उसका वो गलत यूज कर लेते हैं। अट्रैक्टिव ऑफर्स, कैशबैक, लिमिटेड टाइम एड्स या एक्सक्लूसिव कंटेंट के प्रोमिसेस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। असली कंपनीज कभी भी सोशल मीडिया एड्स के थ्रू ऐप डाउनलोड करने को नहीं कहती है। फिफ्थ, मैं कहूंगा कि किसी भी वेबसाइट को डोमेन जो भी आप देखते हैं उसका डोमेन हमेशा ध्यान से देखें। अगर नाम अजीब लगे या आपको एक्सटेंशन उसके अनफेमिलियर लग रही है तो वहां से तुरंत बाहर निकल जाए, उसमें ज्यादा एक्सेस करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मैं कहूंगा कि आप इंस्टॉल करने से पहले किसी भी ऐप को डेवलपर नेम, रिव्यूज और डाउनलोड काउंट जरूर चेक कर लें। उससे भी आपको बहुत सारी चीजें उस ऐप के बारे में पता लग जाती है। रिव्यूज भी बहुत सारे यूजर्स उस पर डाल के रखते ही हैं मोस्टली।
1: जी
0: बैंक अकाउंट के लिए SMS या ईमेल अलर्ट जो है आपका हमेशा ऑन रखें ताकि कोई भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन तुरंत नोटिस हो जाए और वो आपको इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए। अपने इंस्टॉल्ड एप्स रेगुलरली रिव्यू करें और जो पहचान में ना आए उसे तुरंत रिमूव कर देना चाहिए, वो आप रूटीन में चेक करते रहें। गूगल प्ले प्रोटेक्ट हमेशा इनेबल रखें और डिवाइस को अपडेटेड रखें। अपने डिवाइस में आपका कभी भी कोई एंड्रॉइड का पैचअप आता है अपडेट करने के लिए तो उसे आप हमेशा करते रहें। और
1: जी
0: सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कभी किसी भी पॉइंट पर डाउट हो तो ऐसा कंटेंट या ऐप डाउनलोड ना करें। 1 मिनट के डाउट पर सही डिसीजन लेना आपकी लाइफ की पूरी सेविंग्स बचा सकता है। बस एक सिंपल मंत्र याद रखें कि डाउनलोड करना है सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स से और किसी भी कंडीशन में परमिशन देनी है सिर्फ पर्टिकुलर जरूरत के लिए, सिर्फ उसी पर्पस के लिए जिसके लिए आपको उसकी नीड है। और सेशन को क्लोज करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज हमने जो भी बात की है उसका एक ही कोर मैसेज है, साइबर फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इंसान के भरोसे का फायदा उठाकर होता
1: जी
0: है। एक मैलिशियस APK खुद कुछ नहीं करती जब तक यूजर खुद उसे इंस्टॉल नहीं करता और परमिशंस नहीं देता। तो आज के सेशन का समरी ये है कि फ्रॉड की शुरुआत एक अट्रैक्टिव फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड से होती है। ऑफर का नेचर कुछ भी हो सकता है जो यूजर को ऑफिशियल प्ले स्टोर से बाहर एक सस्पिशियस वेबसाइट पर ले जाती है। वहां से APK फाइल डाउनलोड होती है जो कोई भी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन पास नहीं करी होती और कभी कभी एक दूसरी ऐप भी अपडेट के बहाने साइलेंटली बैकग्राउंड में इंस्टॉल करा दी जाती है। इंस्टॉल होने के बाद ऐप SMS, एक्सेसिबिलिटी और ओवरले जैसे सेंसिटिव परमिशन आती है और यही सबसे क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट होता है। अगर परमिशन मिल जाए तो अटैकर स्क्रीन देख सकता है, OTP पढ़ सकता है और खुद ट्रांजेक्शंस कंप्लीट कर सकता है। कभी कभी फेक कस्टमर केयर कॉल और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के थ्रू भी ऐसा किया जा सकता है। आपके वार्निंग साइन क्या क्या हैं इन पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपकी बैटरी अगर ड्रेन हो रही है ये एक वार्निंग साइन है। अननोन ऐप आपके फोन ये एक वार्निंग साइन है। अनयूजुअल डाटा यूजेज, आपको पता लग रहा है कि आपका डाटा अनयूजुअली बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये एक वार्निंग साइन है। कोई ऐप आपके फोन से अनइंस्टॉल नहीं हो पा रही है आप करना चाह रहे हैं, ये एक वार्निंग साइन है। अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन के आपको अलर्ट्स आ रहे हैं, ये एक वार्निंग साइन है। ऐसे वार्निंग साइंस को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आप जैसे ही आप ऐसा कुछ भी देखते हैं पाते हैं आपको तुरंत इमिडिएटली रिपोर्ट करनी है, सस्पिशियस जरूर जरूर। अगर गलती से इन सबके शिकार आप हो भी जाए तो तुरंत इंटरनेट बंद करें, शांत रहें, घबराए नहीं, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। परमिशंस आप अपनी जो भी उसको दे रखी है, जो भी अभी हमने आपको भी चर्चा करी, सारी रिवोक करें। बैंक्स को अपनी जो भी आपके क्रेडेंशियल्स बैंक से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्म करें और 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर कंप्लेन दर्ज कराएं। याद रखिए पहले कुछ घंटे सबसे क्रिटिकल होते हैं आपकी फंड रिकवरी के, वो आपको मिस नहीं करना। कानून की नजर में ये एक सीरियस ऑफेंस है और IT Act और DNS की प्रोविजंस के अंडर इस पर एक्शन लिया जाता है, इसलिए हर केस रिपोर्ट करना जरूरी है। छोटी से छोटी लॉस भी अगर आपको होती है उसकी भी आपको रिपोर्ट कंप्लेन करनी चाहिए इस। और सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स और कम टैक्स सेवी यूजर्स, या जो कंटेंट की नेचर की वजह से शर्मिंदा होकर चुप रह जाते हैं वैसे यूजर्स। उन्हें फैमिली सपोर्ट और बेसिक अवेयरनेस से सबसे ज्यादा नीड होती है और उसी से उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है, तो वो उन्हें जरूर प्रोवाइड की जाए। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा।

0: याद रखिए, स्टे अलर्ट, स्टे वेरीफाइड, स्टे साइबर से. थैंक यू.
1: सो मलिशियस ऐप सस्पिशियस एपीके डाउनलोड्स और एंड्रॉइड डिवाइसेस के मिसयूज से होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर आपकी गाइडेंस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस ड्रिवन रही। और आपने बिल्कुल सही बताया कि व्यूअर्स को भी जागरूक होने की जरूरत है, बट साथ साथ में वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बारी वो ये चीजें शेयर नहीं करते। हमें उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद लोग किसी भी अट्रैक्टिव सोशल मीडिया ऐड या वेबसाइट के थ्रू एपीके डाउनलोड करने से पहले जरूर सोचेंगे और अननोन एप्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने से भी बचेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू फॉर टू ऑल द व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट साइबर सिटी टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे साइबर। थैंक यू।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: को क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: तेनाली रामा, पात्र परिचय। राजा सैंडी, तेनाली रामा आकाश, सुखराम वेदांत, सेवक आदित्य, आम आदमी शशिकांत, नरेटर कृष्णा। एक गरीब आदमी था, नाम था सुखराम। उसके बारे में यह बात फैल गई कि सुबह सुबह जो व्यक्ति उसका मुंह देख ले उसे पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता।
5: सुखराम का मुंह क्या देख लिया, सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा।
4: बात फैलते फैलते राजा के कानों में पड़ी।
5: भला ऐसा भी हो सकता है?
4: राजा ने रात में सुखराम को राजमहल में बुलाया, उसे भोजन करवाया और अपने सोने के कमरे में ही एक बिस्तर पर उसे सुलाया। प्रातःकाल उठते ही राजा ने सुखराम का मुंह देखा। सुखराम ने भी राजा को नमस्कार किया। तभी गुप्तचरों ने आकर खबर दी।
5: महाराज महाराज, पड़ोसी राजा विजयनगर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है।
4: राजा जल्दी जल्दी नित्य कर्म से निपटे और नाश्ता किए बिना ही दरबार में पहुंचे। लंबे समय तक विचार विमर्श होता रहा। भोजन का समय हो गया।
6: महाराज भोजन का समय हो गया।
4: लेकिन राजा एक के बाद दूसरे काम में मग्न रहे। सेवक फिर आया, उसने डरते डरते पूछा,
6: महाराज आपका भोजन?
7: ठीक है, मेरा भोजन नहीं ले आओ।
4: सेवक भोजन की थाली लेकर आया। तभी रानीवास से समाचार आया,
6: महाराज महारानी की तबीयत ठीक नहीं है।
4: महाराज तुरंत रानीवास में पहुंचे। वहां राजवैद महारानी का उपचार कर रहे थे। महारानी का बुखार उतरा तब दोपहर डलने लगी थी। राजा बहुत विहल हो गए थे।
7: आज सुबह मैंने सुखराम का मुंह देख लिया, इसलिए मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसे अभागु को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए।
4: व्याकुल महाराज ने आदेश दिया,
7: सुखराम को जेल में डाल दो और सूर्यास्त से पहले उसे फांसी पर लटका दो।
4: तेनाली रामा को इस बात का पता चला,
8: निर्दोष मनुष्य को फांसी लगे ये गलत है।
4: तेनाली रामा जेल पहुंचे, सुखराम के कान में कुछ कहा और जेल से लौट गए। सूर्यास्त का समय हुआ, फांसी का तख्ता तैयार हो चुका था। फांसी पर जाने से पहले जिम्मेदार अधिकारी ने सुखराम से पूछा,
6: मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
9: मेरी अंतिम इच्छा है कि पूरे नगर में सभी को बता दिया जाए।
6: क्या बता दिया जाए?
9: सुखराम अभागा है, सुबह सुबह जो उसका मुंह देख ले उसे पूरे दिन खाना नहीं मिलता। लेकिन महाराज तो सुखराम से भी अभागे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो उनका मुंह देख ले उसे शाम को फांसी पर लटका दिया जाता है।
4: अधिकारी को बहुत गुस्सा आया। अधिकारी ने दौड़ते हुए जाकर महाराज को सुखराम की अंतिम इच्छा बताई।
6: महाराज आप हुक्म करें तो उसकी यह अंतिम इच्छा पूर्ण किए बिना ही इसी समय उसे फांसी पर लटका दूं।
4: महाराज सोच में पड़ गए,
7: मैंने जरूर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया है।
4: उन्होंने सुखराम की फांसी की सजा माफ कर दी और सुखराम को बुलाकर पूछा,
9: आज्ञा महाराज।
7: ऐसी अंतिम इच्छा की बात तुम्हें कहाँ से सूझी?
9: महाराज मुझ मूर्ख को कहाँ से सूझता, ऐसा कहना तो मुझे तेनाली रामा ने सिखाया था।
4: महाराज को लगा कि तेनाली रामा ने उसे कोई पाप करते हुए रोक दिया। उन्होंने तेनाली रामा का आभार मानकर कहा,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग

0: कार्ड करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: डिटेक्टिव गोपीचंद, पात्र परिचय, दृष्टि यश, आदित्य और आकाश। रीटा के पास इंस्पेक्टर गोडबले का फोन आया था। रीटा ने गोपीचंद को बताया कि फिल्म स्टार सुरेश कुमार का कत्ल हो गया है और गोडबले ने फौरन उन्हें मुंबई के फिल्म स्टूडियो बुलाया है।
3: सर, गाड़ी तैयार है, आप फौरन तैयार हो जाइए, वहाँ गोडबले हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैंने सारा सामान रख लिया है।
2: वे तुरंत फिल्म स्टूडियो के सेट पर पहुंच जाते हैं, जहां सुरेश का मृत शरीर लहूलुहान पड़ा था। फिर वे फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलते हैं।
4: हमें पूरा भरोसा था कि सुरेश और रमन ये फिल्म बनाने के बाद बहुत शानदार कमाई करते, लेकिन लंच के बाद जब सुरेश का शॉट रेडी हुआ तो मेकअप रूम में उसे मृत पाया गया।
2: गोपीचंद और रीटा लाश के आसपास का पूरा मुआयना करते हैं और उन्हें वहां कुछ जरूरी चीजें मिलती हैं। वे उन्हें तफ्तीश के लिए अपने पास रख लेते हैं।
5: प्रोड्यूसर साहब, मैं आपकी इस फिल्म के तैयार शॉट्स देखना चाहता हूं। आप प्रोजेक्टर पर मुझे बनी हुई फिल्म दिखाने का इंतजाम कर दीजिए।
2: वे अचानक फिल्म देखते हुए उछल पड़ते हैं और एक शॉट रुकवाते हैं। उस शॉट को वह ध्यान से रिवर्स कर करके देखते हैं। उन्हें कुछ दिखाई देता है। रीटा और गोपीचंद फिर स्क्रिप्ट राइटर से कहानी लेकर ध्यान से पूरी स्क्रिप्ट को देखते हैं। गोपीचंद को कुछ मिल जाता है।
3: गोपी जी और मैंने अपनी पूरी तहकीकात कर ली है। प्रोड्यूसर साहब, वे आपकी पूरी फिल्म यूनिट और सभी कलाकारों से मिलना चाहते हैं।
5: मुझे सुरेश के कातिल के बारे में पता चल गया है और उसका नाम रमन है। वह उस फिल्म में सुरेश का को स्टार था।
6: पर रमन तो बहुत अच्छा कलाकार था, वो ऐसा क्यों करने लगा? वो तो सुरेश के साथ बहुत अच्छा किरदार निभा रहा था।
5: मेकअप रूम में मुझे यह लाइटर भी मिला और यही लाइटर मैंने फिल्म के एक सीन में भी देखा है, जिससे रमन कुछ पेपर जला रहा था। मतलब मेकअप रूम में सुरेश के कत्ल के बाद रमन इस लाइटर को धोखे से वही छोड़ गया था। हमें जल्दी से रमन के घर पर पहुंचना होगा, कहीं वह सबूत ना मिटा दे।
2: फिर रमन के घर की तलाशी ली जाती है और उन्हें वहां धारदार हथियार भी उसके बगीचे में एक कोने से मिल जाता है, जिससे उसने सुरेश का कत्ल किया था। रमन गहरी पूछताछ के बाद सब कुछ कबूल कर लेता है।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: से परिचय, गोपीचंद, यश, इंस्पेक्टर शर्मा, आदित्य और वेदांत। डिटेक्टिव गोपीचंद एक दिन तालाब के किनारे टहल रहे थे कि उन्हें इंस्पेक्टर शर्मा मिल गए।
1: हेलो गोपीचंद, कैसे हो? बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले, कभी घर भी आ जाया करो।
2: चलो तुम भी मेरे साथ जॉगिंग कर लो। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, आपको कसरत करते हुए देखना अच्छा लग रहा है।
1: चलो तुम भी मेरे साथ जॉगिंग करो।
2: असल में मुझे जॉगिंग करना पसंद नहीं।
1: भीड़ भाड़ वाले जिम में जाने से अच्छा मैं तालाब किनारे जॉगिंग करना बेहतर मानता हूँ।
2: पर मुझे जॉगिंग से वॉक करना बेहतर लगता है, और अपराध की दुनिया से कोई खबरें।
1: आप विश्वास नहीं करेंगे, पर 3 हफ्ते में अब तक एक भी केस हाथ नहीं लग पाया।
0: दोनों एक पुल के नीचे से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी।
1: अरे ये क्या था?
0: दोनों दौड़कर पुल की दूसरी तरफ गए। वहां उन्होंने एक आदमी को गिरा हुआ पाया।
1: क्या ये जिंदा है?
0: गोपीचंद ने उसकी नब्ज चेक की।
2: ये तो मर चुका है।
1: मेरे ख्याल से ऊपर से गिरने की वजह से ही इसकी मौत हो गई है।
2: अरे इसके कान से तो खून भी बह रहा है। क्या आपको यकीन है कि इसने खुदकुशी की है?
1: आखिर क्या वजह हो सकती है कि इसने खुदकुशी कर ली?
2: देखो वह कार अभी यहाँ से निकल कर गई। क्या आपको यकीन है इसने खुदकुशी की है?
1: आखिर इसने पुल से ही छलांग लगाई होगी ना?
2: इसने छलांग नहीं लगाई है, इसका किसी ने खून किया है, यानी कि इट्स अ क्राइम केस।
1: पर मैंने तो यहाँ अभी तक किसी को भी नहीं देखा।
2: वो देखो, वो कार अभी यहाँ से निकल कर गई है।
1: पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसने खुदकुशी नहीं की है?
2: अगर वह आदमी सिर के बल गिरता तो उसका खून गालों की तरफ नहीं बहता। इससे पता चलता है कि ये कत्ल ही है, आत्महत्या नहीं।
1: आपने सही कहा गोपीचंद, ये आत्महत्या नहीं कत्ल है। तो चलो उस कार का पीछा करते हैं।

0: आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: डिटेक्टिव गोपीचंद, पात्र परिचय आकाश, दृष्टि आदित्य, वेदांत। जाड़े की सुबह गोपीचंद अपने पड़ोसन जैनी के साथ चाय पी रहे थे। जैनी इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्ट्रेस है।
4: जैनी, क्या बात है, आज तुम ड्यूटी पर नहीं गई?
5: क्या बताओ गोपी जी, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो मुझे दोपहर में जॉब पर जाना था, लेकिन मैंने रीना से अपना टाइम एक्सचेंज कर लिया है।
4: क्या बात है जैनी, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो, पहले तो तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा।
5: बताती हूँ गोपी जी, आज इसी सिलसिले में मुझे सलाह लेनी है। असल में मेरे दादाजी ने अपनी जायदाद मेरे नाम की थी, लेकिन कल मुझे दादाजी के सेक्रेटरी बत्रा ने बताया कि उन्होंने उसे बदलकर अपने भाई के नाम पर कर दी है।
4: आगे क्यों, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है?
5: जी हाँ, हम दोनों में झगड़ा हुआ है।
4: आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, ठीक से बताओ बात क्या है।
5: जाने दीजिए सर, अब क्या कहूँ।
4: नहीं जैनी, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ, मुझे पूरी बात बताओ।
5: सर असल में मैं अपने सहयोग अशोक से शादी करना चाहती हूँ। मैंने अपने दादाजी को इस बारे में बताया तो वे बड़े नाराज हुए।
4: जैनी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जायदाद से बेदखल किए जाने का यह कारण होगा।
5: सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही समझती हूँ।
4: जैनी यह बताओ कि उन्होंने अपनी वसीयत कब बदली।
5: सर बत्रा कहता है कि दादाजी ने 31 जून को वसीयत में फेर बदल किया, और अगर मैं उसे 2.5 लाख दूं, तो वह दूसरी वसीयत को मेरे नाम पर बदल सकता है।
4: क्या मतलब वह वसीयत बदल सकता है?
5: मैंने उसे आज सोचकर जवाब देने को कहा है, इसलिए वह मिलने आ रहा है।
3: तभी सीढ़ियों से उतरकर बत्रा वहाँ आता है।
6: ओह, आपके घर मेहमान हैं। क्या मैं किसी और समय आऊँ?
4: मैं डिटेक्टिव गोपीचंद हूँ, जैनी ने मुझे वसीयत के बारे में सब कुछ बता दिया है।
6: हेलो गोपी जी, आपसे मिलकर खुशी हुई।
4: लेकिन माफ करना, मुझे आपकी नीयत खराब लग रही है, क्योंकि आप जैनी को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
6: सर गोपी जी, माना कि आप एक डिटेक्टिव हैं, लेकिन एक शरीफ आदमी पर शक करना ठीक नहीं।
4: तो बताइए, आपने जैनी से 2.5 लाख रुपए क्यों मांगे?
6: यह तो मेरी फीस है। आखिर बेकसूर जैनी को वह बुड्ढा 10 लाख की जायदाद से बेदखल कर रहा था।
4: जैनी को दादाजी ने जायदाद से बेदखल किया ही नहीं, तो आप वसीयत कैसे बदलेंगे?
6: आप ये कैसे कह सकते हैं?
4: क्योंकि जून का महीना 30 का होता है, 31 का नहीं। आपने कहा था वसीयत 31 जून को बदली गई थी, क्यों, पकड़े गए ना?
3: झूठ कभी न कभी पकड़ा ही जाता है, और इसलिए सेक्रेटरी बत्रा भी एक भूल होने के कारण पकड़ा गया।

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की

0: बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना,

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी है क्योंकि राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा में पहुंचे। बहुत खुशी लग रहा है। हर दिन की तरफ आज भी विद्यालय का आवाज बच्चों का आवाज सुनने को मिलेगा। बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो भाव है, भावना है, कविता का माध्यम से, गीत का माध्यम से, प्रार्थना का माध्यम से और भाषण का माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सरकार का जो मंशा है, आसपास जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है जिसका चलते बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस तरह मौका जब उनको मिलता है तब तो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनके पास जो छुपी हुई प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाते हैं। रेडियो मधुबन इस तरह पुनित काम करने के लिए सभी सहयोग देते हैं और सरकार भी और प्रशासन लोकल प्रशासन भी सहयोग देते हैं और विद्यालय के स्टाफ और प्रभारी इस कार्यक्रम को सहयोग देते हैं। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं पहला प्रस्तुति और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी देख रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेट किए। मैम अपना परिचय देंगे, मैम का आवाज सुनकर बच्चे भी थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे, बच्चे को बोलने के लिए उमंग उत्साह है, छोटे छोटे बच्चे उनका तोतला आवाज में सुनने को मिलेगा। लेकिन पहले मैम को स्वागत करते, मैम अपना परिचय देंगे।
1: मैं श्रीमती अशोक धायल, सब्जेक्ट इंग्लिश से
0: जी मैम,
1: और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धामसरा
0: जी,
1: और रहने वाले सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
0: मैम आज सीकर जिला से आप रोड में आए हैं तो आपको कैसे महसूस होता है, यहाँ का और वहाँ का बच्चों का डिफरेंस देखे होंगे सीकर का और आप रोड के?
1: यहाँ पे थोड़ा सर मुझे ठीक नहीं लगता है, सीकर में एजुकेशन का काफी फर्क है। बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, बच्चों को कुछ कहा जाता है ध्यान से सुनते भी हैं और काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को कितना भी बोल दो कितना भी कह दो ये बच्चे बहुत ध्यान देने में बहुत कमी रखते हैं और हमारे चिल्लाते रहो लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ये पढ़ाई में ध्यान देते हैं, जो पढ़ना होता है स्कूल में पढ़ते, घर पे कुछ भी पढ़ के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे स्टाफ इनके साथ कोशिश करते रहते हैं, 7-8 घंटे स्कूल रहते हैं, इन्हीं के लगे रहते हैं कि कैसे भी बच्चे पढ़े कैसे भी आगे आए, पूरी मेहनत रात दिन इनमें लगे रहते हैं। जी सर,
0: सही बात, कितना सुंदर भाव से आपने बताया और खासकर जैसे आपने बताया आप भी कभी बच्चे होकर पढ़ रहे थे, उस समय भी बच्चे जब पढ़ते थे आप भी
1: जब
0: पढ़े
1: ये होते? बच्चे 1 से 8 तक की क्लासों में पढ़ते हैं तब हमारा कहना भी मानते हैं और जितना कहते हैं उतना पढ़ते भी हैं, लेकिन जैसे बच्चे 9 से 12 तक पहुंच जाते हैं बच्चे एक भी सुनते नहीं है सर।
0: ओ, तो इसका राज क्या, क्यों सुनते नहीं बच्चे?
1: क्यों नहीं सुनते, इनके दिमाग से सारी बातें ऊपर से जाती है, न टाइम से स्कूल आना पसंद करते हैं, न ही ये कोई काम करना चाहते हैं।
0: ये तो शिकायत बहुत बड़ी बात से,
1: इतनी बड़ी बात ही नहीं है सर, ये हम परेशान हो जाते हैं इनको, आप ही नहीं देखा हम एक गाने के लिए सबको इनको हाँ हाँ करके आगे, लेकिन एक गाना नहीं सुना पाए
0: तो,
1: और सबको आता है इनको गाना लेकिन आगे नहीं आना चाहते,
0: इसे पीछे थोड़े रहेंगे आगे तो बढ़ना, इसलिए तो सरकार भी आपका पीछे कितना मेहनत करते हैं। और मैम
1: और हमारी स्कूल की तो प्रिंसिपल मैडम इतनी एक्टिव है, इतना समझाती है इनको, सर हम एक चोटी के लिए इतने परेशान हो गए लेकिन ये इतनी अच्छी लड़कियां हैं कि 2 चोटी नहीं बना के आ सकती।
0: लेकिन अभी तो देखिए दीदी बहुत सुंदर,
1: ये तो पूछो इनको हम कितना चिल्ला रहे हैं कितना कर रहे हैं फिर भी हमारे ये परेशान करने में लगी रहती है।
0: लेकिन अभी तो मुझे तो दिखाई दे रहा सबका
1: ये सुबह सुबह इनसे करवाते हैं, आते स्कूल में आने के बाद ये मैडम करवाती है इनसे,
0: देखो कितना उसका दिल में कितना लगा होगा मैम को, इतना दूर से आया तो उनका जो जिसके लिए आए वो नहीं दिखाई देगा तो उनको तो गुस्सा आएगा
1: सर, ना? मुझे तो बहुत दुख होता है ये बच्चों को, जब मैं इतना पढ़ाती हूँ मैं इनको 5 मिनट याद करने के लिए देती हूँ, रोज तुम 5 मिनट याद करके सुना दिया करो, रोज 5 मिनट ज्यादा नहीं डिमांड करती हूँ इनसे, फिर भी इनसे 5 या 1 मिनट मेरे को सुनाने के लिए राजी नहीं होते।
0: जैसे अपना बच्चे कुछ शैतान करेंगे तो माँ बाप कितना दुखी होते, तो विद्यालय का जो शिक्षक गण मैम प्रिंसिपल जो सभी स्टाफ है आपके लिए कितना जी जान लगा कर देते, उनका जीवन आपके लिए सैक्रिफाइस किए और इतना मेहनत किए उनका समय में आपको देने के लिए, आप लेने के लिए जब पीछा नहीं करेंगे और उसको आत्मसात नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल बात नहीं मानेंगे बड़ों का तो जाकर क्या करेंगे, इसलिए अभी समय मैम, इसलिए अपना बात पूरा करें, हर स्कूल में ऐसे मैम होना चाहिए क्योंकि बच्चे अपना बच्चे खराब होंगे तो हमें दुख होगा,
1: बहुत दुख होता है सर, हमारे बच्चे जब हमारी नहीं सुनते, हम क्लास में आते हैं तब इनके कोई पढ़ी नहीं है कि मैडम आई है तो हम कुछ बैठे हैं शांति से,
0: जो हुआ हुआ है जो हो गया आज से ऐसे संकल्प करेंगे, सभी बच्चे संकल्प करेंगे ना, हम आज से जरूर बड़ों का बात मानेंगे वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमारा भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। अभी से हम मानेंगे, माँ बाप का बात भी मानेंगे, हमको कोई बोलने का पहले हम खुद करेंगे। जो पहले करते हैं उसको देवी देवता कहते हैं, बोलने के बाद भी जो नहीं करते हैं, बोलने के बाद भी नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, अलग नाम है उसका, उसको बोलना नहीं चाहते हम। जो बोलने के बाद करते हैं वो तो मनुष्य है, बोलते हैं तो करते हैं, लेकिन बोलने का पहले जो करेंगे ना उसके लिए शाबाश वो चाहिए हमें। इसलिए धर्मशाला स्कूल के आगे जब आएंगे रेडियो प्रोग्राम के लिए, उस समय जरूर मैं आप सबको, मैंने चेहरा देख रहा हूँ, और जरूर बोलने का पहले ऐसे रेडी रहेंगे, मैम को बोलना नहीं पड़ेगा, मैम को मेहनत करने के लिए नहीं देंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, मैम को पूछना मैम हम क्या कर सकते और क्या कर सकते और क्या कर, इसे पूछो, वो देने के लिए तैयार है, आपको टिप्स देंगे, आगे भी आगे जा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम को, अपना परिवार सोच कर अपना बात को बताया, लेकिन ऐसे होना चाहिए। और आप सभी बच्चे हमारा सच्चे है और बहुत अच्छे बच्चे परियां है सभी, और आपका पास वो भाग्य है, लेखा आपका पास लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा उजागर करना है, बस हो जाएगा। सबका अंदर में विशेषता है, जैसे मैम बोल रहे थे सबका पास विशेषता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा आगे हमें आना है। चले बहुत बहुत धन्यवाद सबको, उमंग उत्साह दिला दिए, और एक वार्म अप हो गया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। यह था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा का, खासकर मैम का अपना दिल का बात।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हमारा साथ प्रार्थना के रूप में शुरू करेंगे। कि हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में कोई भी कार्य शुरू करते तो माँ सरस्वती को व भगवान को अल्लाह को खुदा को याद करते। तीन छात्र उपस्थित है तो उनको भी स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएंगे और कौन सा फल से आते हैं।
2: मेरा नाम वर्षा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: क्या बात है वर्षा, हमारा कितना नाम सुंदर है। वर्षा का दिन में वर्षा, बारिश तो हो रहा है और वर्षा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे और उसका दो दोस्त भी है। हेलो, नाम बताइए प्लीज।
3: मेरा नाम है अंजलि, मैं कक्षा 9 से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: गुड, ऐसे होना चाहिए। आवाज में दम है, भले अनेक तारा है लेकिन एक चांद पूरा रात का उजाला दे देता है। तो हमारा तीन छात्र जो पूजा और वर्षा और एक,
4: मेरा नाम दुर्गा, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: क्या बात, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, कौन बोलता भाई बच्चे नहीं आते। लेकिन मैम का उमंग उत्साह देख कर बच्चे भी अपना उमंग उत्साह को बढ़ाए और डांट खाए तो आगे बढ़ गए। तो पूजा एंड टीम को एक प्रार्थना का गीत गाने के लिए रेडी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और शुरुआत जब अच्छा होता है तो अंतिम भी अच्छा होगा, ये हमें विश्वास है, क्योंकि बच्चे का अंदर में जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, अभी उनका आवाज जब सुन रहे थे कितना सुंदर आवाज, और कंठ में माँ सरस्वती जैसे विराजमान है, ऐसे उनको लग रहा था। और बड़े होकर तो अच्छा अच्छा आशा रखते हैं, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा, बड़े होकर मैम जैसे कितना उमंग उत्साह से सीकर जिला से आकर आपको देने के लिए आए, उनका जो शिक्षा है आपको भी शिक्षित बनाने के लिए दिए, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा?
1: मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी।
0: वाह, टीचर के लिए ताली बजाओ, हमारा बहुत अच्छा बच्ची हमारा टीचर बनेगी। टीचर होते तो बहुत अच्छे से मैम कितना दिल से अपना पढ़ाई को आप तक पहुंचाते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए उनका कदम पर चल लेंगे तो आप भी बड़े बनेंगे, है ना वर्षा? बड़े होकर तो टीचर बनेगी। और घर में कौन कौन है?
1: माँ है, बहन है, पापा है,
0: कौन
1: है।
0: सबसे अच्छा कौन लगते हैं?
1: पापा।
0: पापा, वाह, पापा तो पापा होते हैं, माँ तो माँ होते हैं, उनका बिना अधूरा है। जिसका माँ बाप है तो सब कुछ है, भगवान तुल्य, है ना? बाप को हम भगवान कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, है ना? तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते हैं, हमारा माँ बाप हमारा भगवान तुल्य है ना वर्षा?
1: है।
0: हाँ, तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: टीचर।
0: टीचर ही टीचर, तो जिसको आवश्यकता है तो सीकर जिला को हम याद नहीं करेंगे, अब्रोड में टीचर मिल जाएंगे। मैम आपका टीचर का पोस्ट को सभी लोग लाइक करते पसंद करते हैं, क्या विशेषता है जो टीचर बनने के लिए आप भी टीचर बने, क्या मेहनत की मैम आप? ऐसे बच्चों का समय में आपका उमंग था जिसे हम टीचर बने का भी सोचा था, मैम आप कैसे टीचर बने? बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगा, आप कितना मेहनत किए?
2: मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि घर से 600 किलोमीटर दूरी पे मुझे स्कूल मिलेगा, जो बहुत कुछ खो दिया इस जॉब के चक्कर में, ना परिवार के साथ रह पाई, ना बच्चों की देखरेख कर पाई, ना अपना भविष्य कहीं संभाल पाई मैं। हकीकत पूछा जाए ना सर, तो मैं मेरे जॉब से बहुत दुखी हूँ कि जहाँ हूँ वहाँ मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, और जिस पोस्ट को लेके यहाँ बैठी हुई उससे भी खुश नहीं हूँ मैं।
0: देखिए मैम, ये तो आपने जो बताया, मैंने और कल लेकर स्कूल में भी वो भी दूसरा
2: टीचर बनने के लिए बहुत मेहनत करी थी, ऐसे ही नहीं पहुंचे थे आरपीएससी से टेस्ट पास करके, इतनी रातों दिन रात दिन एक करके, लेकिन जहां पहुंचे वहां बहुत परेशान हुए।
0: देखिए आपका लेखा यहां पर लिखा हुआ है तो आपको यहां पर ही पालन करना पड़ेगा, कुछ समय बाद ये चेंज हो सकता, हमेशा नहीं रहता।
2: नहीं है सर, ये हम 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, फिर 10 साल बढ़ा दिया, 15 साल कर दिया, आज 20 साल हो गए यहाँ इतनी दूर बैठे हुए।
0: अच्छा,
2: अब तो हमारे भी तो घर परिवार वाले भूल गए हमें कि हमारे कोई बहू भी है, एक बेटी भी है, कोई जानते ही नहीं है हम लोगों को।
0: लेकिन अच्छा लग रहा है,
2: हम लोग यही इन बच्चों के लिए समर्पित है सारे दिन।
0: जी जी,
2: जो पैसे कमाते हैं वो भी हम सारा यहीं खर्च कर देते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं। स्कूल है तो ऐसे आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं कि एक एक चीज के लिए हमें खुद ही अपने पेमेंट से बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ती है।
0: जी जी,
2: तब जब उत्सव होते हैं तब भी हम अपने ही पैसों से लाकर स्कूल की व्यवस्था करते हैं, सरकार की तरफ से हम ऐसी गिनी चुनी चीजें मिलती है जो हम बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी।
0: तो सभी बातें दिल का बात रखें कि हमारा प्रशासन तक ये पहुंचे, क्योंकि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे प्रशासन हो चाहे भामाशाह हो, क्योंकि कोई भी जो चीज होता है उसको दिल से इस माध्यम से, ये तो कम्युनिटी रेडियो है, अपना रेडियो है, रेडियो का माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपना दुख हो चाहे सुख हो सब तक पहुंचे, जो निवारण हो, कोई दुखी नहीं रहे, ये हमारा भावना है। हम दुख रहेंगे तो हमारा बच्चे कैसे रहेंगे सुखी, इसलिए दुख और सुख, हम दुख रहेंगे तो बच्चे भी दुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे तो बच्चे भी सुखी रहेंगे, इसलिए सभी स्टाफ हो चाहे हमारा बच्चे सुखी रहे, ये हमारा भावना है। हाँ, हिसाब किताब किसका कहाँ पर जो भी होता है, कुछ कार्मिक अकाउंट भी होता है, जैसे हम कर्म को देखेंगे तो जरूर हिसाब किताब जब चुक्त हो जाएगा वो तुरंत वहां से किस हिसाब बच्चों का साथ आपका किसी जन्म में लगाव झुकाव है, इसलिए आज आप और बच्चों का साथ हम रूबरू हो रहे, नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ, ये तो हमारे हाथ में नहीं कि आपका हाथ में, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, इसका मतलब और कुछ दिन थोड़ा इतना सहन किए तो और कुछ दिन सहन करना पड़ेगा लगता मुझे, और हो सकता कल भी आपका प्रमोशन होकर जा सकते आप जहाँ चाहते, क्योंकि ये तो अपना संकल्प का ही पावर है, तो ये अपना अपना जगह में है, लेकिन हमारा कहने का मतलब जहां भी रहे जो भी वो परिस्थिति तो आएगा हर जगह में, तो वो परिस्थिति को अपना स्वस्थिति में टिका रहना चाहिए, स्वस्थिति मतलब खुद को कंट्रोल करना, जो भी परिस्थिति है उसको मुकाबला करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी किसका पास क्या भी आता, हर इंसान का पास अलग अलग आता है ट्रबल, बच्चों का पास भी आज रिकॉर्डिंग करने के लिए तो उनका समस्या आ गया है, बोला हम तो नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय आया तो बच्चे तो बच्चे तो
2: अभी ये आप आए हो तो ये बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखे मैडम क्या कर ले वे, सर क्या कर ले वे। ऐसे तो खूब गाने गाते हैं, ये कोई कमी थोड़ी छोड़ते हैं।
0: देखिए अभी पहला प्रस्तुत में कितना सुंदर सा आवाज में दिए वर्षा और उनका टीम। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा छोटे छोटे परियां भी बैठे तो उनको कौन भूल पाएंगे। और राकेश सर और मैम को भी धन्यवाद देते हैं बच्चों को लेकर आए रेडियो प्रोग्राम में, क्योंकि आकाशवाणी में जब आते हैं बच्चे तो उनका परिवार जब सुनेगा अरे मेरा बच्चा पढ़ाई का साथ साथ ऐसे रेडियो में आते हैं, ये कम बात नहीं है। क्योंकि उसके लिए जाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। सरकार तो बच्चों के लिए ग्रामांचल बच्चों को एक रेडियो स्टेशन दिया है, ऑल इंडिया रेडियो तो बच्चे नहीं जा पाते हैं कि कमर्शियल रेडियो में जा नहीं पाते। ये सामुदायिक रेडियो कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी का आवाज के लिए बच्चों को मंच मिलेगा। और हमारा छोटे छोटे नन्हियां परिया तो उपस्थित है तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ नन्हियां परिया आए, छोटे छोटे बच्चे टोतल टोतले आवाज में, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के सब बच्चे हैं। सभी अपना अपना नाम बताएंगे खुशी से जब सुनेंगे रेडियो में आहा की आवाज है। हेलो, नाम बताइए।
2: मेरा नाम हिना है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: अरे क्या बात, मैम जो कंप्लेन कर रहे थे बच्चे, अब पूरा उम्मीद गुस्सा आ गया भाई। मैम का इज्जत को हमको रखना, मैम हमको इस स्कूल से नाराज थे, लेकिन हमारा बच्चे आज नाराज नहीं करेंगे मैम को, नहीं करेंगे, है ना मैम? जो चाहते हैं वो करना है। ओके, हमारा बहुत अच्छा बच्ची है, ऐसे बुलंद आवाज में बोलना है, डरना नहीं, हाँ झिझक नहीं।
2: मेरा नाम दुर्गा, मैं चौथी कक्षा पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: क्या बात, एक्सप्रेस पूरा दुर्गा काली सब यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम है गुड़िया, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है सीमा, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: वाह।
4: मेरा नाम है रमिता, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ।
1: कौन बोलता है भाई, ग्रामांचल वाले आदिवासी बच्चे बोल नहीं पाते, झिझक करते, लेकिन बड़े बच्चे शर्माते, लेकिन छोटे बच्चे से सीखो। नाइन्थ क्लास का बच्चे, तीसरी क्लास, दूसरी क्लास का बच्चे कैसे आवाज से बोलते हैं, मैम सही बोल रहे थे। पहले क्लास से आठवीं तक मानते, नाइन्थ हो गया बस पढ़ाई हो गया, ऐसे नहीं करना। हाँ।
5: मेरा नाम है भावना, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ।
6: वेरी गुड।
7: मेरा नाम है सिंजल, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: हो गया, सभी का हो गया। देखो ये आवाज जब सुन रहे श्रोता मित्र, हो सकता है उनका माँ बाप भी सुन रहे होंगे, उनका बड़ी बहन बा बड़ा भाई बा छोटे काका दादा दादी सुन रहे होंगे, तो सुनेंगे जब इनका आवाज को, तो वो आवाज ही उनका पहचान होगा। क्योंकि रेडियो का माध्यम से, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे एफएम का माध्यम से, लिंक का माध्यम से, एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, जहां पर भी भारत का कोई भी कोने में हम सुन सकते इस कार्यक्रम को, क्योंकि शाम को 7 से 8 बजे हमारा श्रोता सुनते हैं और ये सामुदायिक आवाज। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे, सब रेडी बच्चे हैं, शुरू।

0: सरे कह रहे।
1: और एक गीत, अरे वाह क्या ऐसे होना चाहिए। और आज मोर खुद बोले सर और एक गीत गाओ, मैं हाँ गाओ गाओ क्यों नहीं भाई, क्योंकि एक गीत में हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है हमारा घर से, घने दूर है, बहुत दूर है, तब फिर हम कैसे जाओ। सरकार सुन रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे आंगनबाड़ी जल्दी जल्दी अपना आसपास रख दीजिए, और आज प्राइमरी स्कूल भी साथ में रहेगा आसपास, तो बच्चे पढ़ने के लिए भणवाने के लिए आ जाएंगे, इसलिए वैसे ज्यादा दूर में बच्चे दिक्कत होता है, बारिश का सीजन में दिक्कत होता है, गर्मी के टाइम में भी दिक्कत होता है, इसलिए जितना नजदीक स्कूल मिलेगा बच्चे तुरंत जाएंगे, और सीसी रोड मिलेगा तो अच्छा है, कीचड़ नहीं, आराम से जा पाएंगे। ठीक है चलिए, और एक प्रस्तुति हमारा वर्षा सुनाएगी सभी टीम के साथ, फिर और एक गीत, कौन सा गीत गाएंगे वर्षा?
0: हम सब बच्चों को गिनती सिखाएंगे।
1: अरे वाह बहुत अच्छा, सुनाओ।
0: हाँ।

0: तुम भी नाच होंगे।
1: क्या बात, ताली बजा भाई बच्चों के लिए। बस ताली में कोई कंफ्यूज नहीं है। और बच्चे, छोटे बच्चे देखो उनके पास कितना उमंग है। वो खुद बोले सर और एक गीत गाओ। मतलब गाओ गाओ क्यों भाई? हाँ, हमारे वर्षा के लिए बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। घर में कौन कौन है ना?
0: मेरा दादा है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है।
1: रोटा कौन बनाता है? रोटा
0: मम्मी।
1: अब तुम बनाती कभी?
0: नहीं।
1: तुम आती नहीं? क्या आती तुमको बताओ देखिए।
0: हमको कविता आता है।
1: और मगरा जाते हैं? मगरा में
0: जी।
1: मगरा में क्या मिलता है? बकरी चराने के लिए जाते। देखो हमारा बच्चे माँ बाप का हेल्प करते हैं, बकरा बकरी को मगरा में जाते, घास वगैरह लेकर आते हैं। बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बड़ों का भी प्रस्तुति सुनेंगे। वर्षा, वर्षा नाम ले रहे, वर्षा रेडी रहे और एक प्रस्तुति के लिए। मैम फिर उमंग उत्साह से आपको फिर दिलाएंगे डोज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन नहीं।
1: ओए रुको, रुको, ओए रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
2: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
1: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो, और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
3: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि बच्चे का पास थोड़ा सा जब उमंग उत्साह होता है, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाता है ना तो पिकअप पकड़ता है, तो बच्चे पहले पहले मना कर रहे थे, लेकिन जब मैम का डोज पड़ा तो सभी ने बच्चे रेडी हो गए, और वांस मोर करके प्रोग्राम रेडी हो रहा है। सभी को धन्यवाद देते हुए अगला प्रस्तुति के लिए रेडी हमारा साथ वर्षा एंड पार्टी आए हैं, तो सुनाएंगे

बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए और लय और ताल का साथ गाते हैं। बच्चों का बल गीत को नहीं देखना, उनका जो भाव और भावना, उनका जो शब्द में गला में सरस्वती का जैसे बैठा हुई ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनका सुर लय और ताल का साथ जो गीत गाते हैं तो खुशी लगता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: सकीन।
1: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ और एक छात्रा उपस्थित है, तो अपना हम बात को रखेंगे। पहले आप।
1: मेरा नाम पांडरी कुमारी, कक्षा 9th में।
0: चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे। सब रेडी बच्चे, शुरू।

0: रही।
1: चल इस कार्यक्रम को और साथ देने के लिए और एक प्रस्तुति सुनाओ।
2: मेरा नाम है अंजलि कुमारी, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामसरा। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ, गलतियों तो क्षमा करना। एक दिन बोले मुझे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। एक खेत में जूता पड़ा था, उबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कोई चिड़िया बीज उड़ाती, उड़ती उड़ती गई डाल पर। हवा डरा की धूप चलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। मिट्टी की गोदी में रहकर, सूरज को किरणों में जलकर। कहा बीज ने हाय अकेला, पर नडर में भले अकेला।
1: अंजलि बड़ा होकर क्या बनेगी? अंजलि
2: मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: और घर में डॉक्टर है कोई?
2: नहीं नहीं, थोड़े गांव में है।
1: गांव में है डॉक्टर? डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीज को
2: सुई लगाना।
1: सुई लगाते हैं, इलाज करते हैं। और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है?
2: मेरा दोस्त सीमा।
1: सीमा, सीमा अच्छा दोस्त है। कौन सा क्लास के सीमा?
2: 9th
1: क्लास। और कौन सा गांव से आप आते हैं?
2: तामसरा गांव से।
1: तामसरा गांव से। चलिए हमारे साथ अब छोटी सी परी भी है, तो वो भी अपना गीत गाएगी, है ना? गाओ
3: ला ला।

0: यार
1: कहाँ से कॉलर्स निकाल देते, सब कहाँ से सीखते, मोबाइल से ना, घर में कहाँ से सीखते, कहाँ से सीखते है?
0: स्कूल में,
1: स्कूल में सब होता है। हाँ, कब?
0: झंडे पे,
1: झंडे पे होता है। और कहाँ से आती तुम, कौन सा फल ली? भमरिया फल। और कौन कौन है भमरिया फल का, दो चार लोग का नाम बताओ, काका काकी का नाम बताओ।
0: गोवा राम जी।
1: और तुम बताओ?
0: विक्रम,
1: विक्रम जी। और तुम बताओ?
0: धर्मी देवी जी।
1: धर्मी देवी। और तुम बताओ?
0: गीता देवी।
1: गीता देवी। और पापा का नाम?
0: रमेश कुमार जी।
1: क्या करते रमेश जी?
0: खेती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, धन्यवाद, आभार।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा मैं सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हुआ तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो की केन हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त केवल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम खुशी के नगमे दिल की बातें। जी दोस्तों, आज है सितंबर 15 2026 की ये हसीन और शांत रात। हल्की हल्की बारिश कई जगह पे हुई है। आज हमारे यहाँ पे तो बारिश नहीं रही पूरा दिन, लेकिन कई जगहों पे देखा है अहमदाबाद में भी काफ़ी बारिश रही है। और दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा ठहरने का, अपने आप से मिलने का और दिल की बातें करने का। खुशी के नगमे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रात का ये पहर बड़ा अजीब है और प्यारा भी है। जब बाहर की आवाज़ धीमी हो जाती है तो अंदर के विचार साफ सुनाई देते हैं। लगता है दिन भर हम दुनिया के लिए जीते हैं, पर ये वक्त सिर्फ आपका और मेरा है। जी हाँ, आज दिल की बातें में एक छोटा सवाल आपसे। आखिरी बार आपने अपने दिल की बात बिना किसी डर के किससे कही थी? कभी कभी हम अपने अंदर इतना कुछ समेट के रखते हैं कि दिल भारी होने लगता है। पर याद रखिए, जो बातें हम बयां करते हैं वही से खुशियों के नए नगमे शुरू होते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, सबसे पहले करते हैं उनसे बातें। हेलो
1: जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से। मैंने सोचा आज भूरीलाल जी क्यों नहीं आए, तो मैंने सोचा चलो इंतजार तो मैंने किया, लेकिन मैं कि चलो अब भूरीलाल जी नहीं आया तो चलो मैं बात कर लो सबसे पहले।
0: सबसे पहले तो सुरेश भाई आपको नमस्कार, गुड इवनिंग। और दूसरी बात, भूरीलाल जी का शायद कॉल तो आया था, लेकिन शायद आज से पहले कॉल आ गया था उनका। मतलब अच्छा। अभी अपना शो का टाइम हुआ नहीं, शायद उससे पहले ही उन्होंने कॉल किया था, तो शायद वो वेट कर रहे हैं कि मैं फिर से कॉल करूं। शायद भूरीलाल सुन भी रहे होंगे हमारी अच्छा, बातें और अभी वो कॉल करेंगे भी।
1: कोई बात नहीं, चलो मैंने तो थोड़ा इंतजार किया कि पहले सबसे पहले भूरीलाल जी बनाओ, क्योंकि भूरीलाल जी आएगा सबसे पहले का हर दो जाता है, तो मैंने सोचा मैं नहीं बोलूं, लेकिन चलो अब तो मुझे कॉल करना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल, आज तो मुझे कॉल करना ही पड़ेगा। क्या हो गया अभी तक कॉल लिया है? हाँ,
1: तो बस सबसे पहले मैं भी सबको हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे सभी मित्रों को लिए अच्छा गाना तो मैं दे दूंगा, लेकिन सभी को आज के दिन के भी शुभकामना है
0: जी,
1: सब अच्छे रहे। बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, अभी तो चल रहा है बारिश का मौसम
0: जी,
1: और भी हमारे किसान भाई खुश हुए हैं क्योंकि जरूरत थी और जरूरत से आ गए हैं, तो जरूरी है कि जीवन दान दे दिया भगवान ने। आज गणपति का दिन भी चल रहा है, तो गणपति दादा की कृपा भी हो गई है
0: जी,
1: और सभी हमारे किसान भाई खुश है। और किसान भाई खुश हो गए सर, तो हम भी खुश होंगे क्योंकि सभी किसान से ही चलता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि खेत में कुछ पकेगा तो ही हमारे पास आएगा।
0: बिल्कुल,
1: हम सिलाई काम करते हैं, लेकिन जो खेती के करते हैं कोई किसान भाई के पास, जो खेती अच्छी नहीं होगी तो हमारे पास कपड़ा सिलाने जल्दी नहीं आएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बस सबसे तो किसान भाई यही सबसे, जो ग्राहक आएगा तो किसान भाई के सबसे
0: पूरी पूरी चेन। हाँ बिल्कुल, पूरी चेन है अगर भोजन होगा या जो भी,
1: क्योंकि किराना की दुकान है वो भी वहाँ जाएगी, ग्राहक कुछ हाथ में आएगा पैसा तो कुछ खरीद पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो चलो अच्छा हुआ भगवान ने सबकी कृपा सुन ली
0: जी,
1: और आज हम भी आपसे बात कर रहे हैं सर, तो हमारा तरफ से सबको नमस्ते है। और मैं गाना तो अच्छा एक दे ही दू
0: की
1: गाना याद आता, मैं फिल्म का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं दो लाइन आपको जरूर सुनाता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: माँ जी चल, ओ माँ जी चल, तू चले तो थम थम बाजे ज्योति सरगम हो, माँ जी चल, ओ माँ जी चल, ऐसा गाना है
0: जी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल से चलिए।
1: आप लाइन है जो आपको मिले थे जरूर सुना देना सर। हमारे भूरीलाल जी हैं, बड़ा राम जी को राम राम है, हमारा सुभाष भाई को भी हमारा तरफ से नमस्ते हैं, मदन लाल जी को, हमारे फिरोज भाई को पालनपुर वाले से, तो ही सुन रहे हैं हमारी तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार, और जो भी सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको भी नमस्कार। और आपने भी बहुत ही प्यारा हमें जो अभी गाना दिया है फरमाइश के रूप में, माजी चल, ओ माजी चल, तू चले छम छम बाजे मौजों की पायल। चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए भी ये गाना हम प्ले करेंगे। लेकिन जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि अगर आज की दिन में अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है, जो मैंने सवाल पूछा कि अपने दिल की बात बिना किसी डर के किसी से कही थी, और कभी कभी हम अपने अंदर इतना कुछ समेट के रखते हैं कि दिल भारी होने लगता है। पर याद रखिए, जो बातें हम बयां करते हैं वहीं से खुशियों के नए नगमे शुरू होते। तो बस अपने दिल को हल्का कीजिए, एक मीठी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए और जुड़िए हमारे साथ। पर उससे पहले हमारे साथ जुड़े हमारे कॉलर, हम करते हैं उनसे बात। हेलो,
2: हेलो,
0: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
2: अरे माँ मन मुझे हमारी खुशियाँ ऐसी खुशियाँ जैसे आपसे आपसे भी मिलकर खुशियाँ है।
0: क्या बात है, अरे वाह, बहुत बढ़िया।
2: अरे मेरी खुशियाँ सूरज भाई से भी मिलकर है।
0: अच्छा,
2: सूरज भाई याद करके हमारे में सपने में भी याद करते, दिन में भी याद करते, मित्र में भी याद करते।
0: अच्छा,
2: इसलिए मेरे ये जगह का मिलने में हमेशा हम उनके दिल के अंदर बैठा के रहते, हम उनके साथ में बैठते।
0: अच्छा,
2: क्या जगह है मेरा एक गाँव सर।
0: हाँ जी,
2: कौन सा
0: गाना
2: सामने आओ, चुप चुप करके दिल में जला।
0: अच्छा,
2: हाँ, तुमसा नहीं देखा फिल्म का नाम, तुमसा नहीं देखा,
0: तुमसा नहीं, छुपने वाले
2: छुपने वाले सामने आ, चुप चुप करके दिल में जला।
0: अच्छा, छुपने वाले सामने आ, क्या बात है,
2: आवाज आ रही है मेरी?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, लेकिन मैं गाना ही सोच रहा हूँ कि ये जो आपने गाना मुझे दिया है, छुपने वाले सामने आ,
2: क्योंकि
0: मेरा दिल ना जला। चलिए कोशिश करते हैं।
2: दिल ना जला ऐसे है ना, तुमसे नहीं देखा फिल्म में, नाम तुमसे नहीं देखा।
0: ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, आपके लिए ये गाना हम प्ले करते हैं और आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। अच्छा,
2: तो इसका भी गाना है कहीं मिश्रा में।
0: बिल्कुल, कौन सा गाना है?
2: गाना है वो फूलों से सजाया हुआ दरबार में गणेश जी सजाने भी आ जाओ आप लोग।
0: अच्छा,
2: ठीक है सर,
0: चलिए कोशिश
2: थैंक यू सो मच।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस शांत रात को और भी खूबसूरत बनाते हैं और प्यारा सा गीत के साथ, और आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर ये प्यारा सा नगमा।

0: दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली। ये कहती है ऐसा करके गाना है।
1: अच्छा
0: तो सुनेंगे तो सुनेंगे
1: बिल्कुल।
0: तो
1: एक बार एक बार फिर से ये गाना सुना दीजिए जो अभी आपने गाया।
0: दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली। कहती है एक ऐसा करके गाना है कुछ।
1: जी
0: अच्छा आशा भोसले की ऐसी आवाज में
1: जी। चलिए कोशिश करते हैं हम आपके लिए गाना बजाए और बिल्कुल से बजाए।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: ओके सर।
1: जी हाँ दोस्तों, और अभी हमने जो गाना सुना बहुत ही प्यारा हमने गाना सुना था, और इस गाने के बारे में बताऊँ तो शाहिद जी ने क्या खूब लिखा है, जो तुम मुस्कुरा दो तो बन जाए आलम, एक छोटी सी मुस्कान में कितनी ताकत होती है, दिन भर की सारी थकावट सारे गम और परेशानियों की एक प्यारी सी मुस्कान के आगे फीकी पड़ जाती है। क्या दौर था वो भी, और जब बात होती है फिल्म के संगीत की तो एन दत्ता जी का म्यूज़िक और साहिल लुधियानवी जी साहब के बोल दिल को छू लेते हैं। इस फिल्म के एक बेहद प्यारे रोमांटिक ड्यूएट है जो तुम मुस्कुरा दो, जो भी हमने ये गाना सुना। इस गाने को अपनी आवाज़ से सजाया था आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी ने। महेंद्र कपूर जी के कैरियर की शुरुआती दौर में बी आर चोपड़ा के साथ, यानी कि बी आर चोपड़ा जी का कैम जो होता है उनके साथ का उनका ये सफ़र बेहद मेमोरेबल रहा। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के महत्वपूर्ण माइलस्टोन में से एक, क्योंकि इससे लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। उन्होंने अपने बड़े भाई बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के तले ये फिल्म बनाई थी। 1950s के दौर में अनमैरिड मदरहुड और बिना किसी धार्मिक पहचान के बच्चे के पालन पोषण जैसे गंभीर विषय पर इस फिल्म को बनाने का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: शायद बात नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस बात की मैं बात कर रहा था कि फिल्म में राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, नंदा, अशोक कुमार और मनमोहन कृष्णा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। मनमोहन कृष्णा को इस फिल्म में अब्दुल रशीद के कैरेक्टर के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो ये थी इस गाने से जुड़ी कुछ खास बातें। फिर से हमारे कॉलर का कॉल है, हम सुनते हैं उनसे। हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं, बार बार कट रहा है। तो अभी हम करते हैं अगले गाने की तरफ रुक और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और फिर करते हैं इस गाने के बारे में ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: जी हाँ दोस्तों, कभी कभी सोचा है आपने? चलिए पहले हम बात करते हैं हमारे कॉलर से। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: अरे हमारा ये अशु भाई, अशु आया धान मेरा गांजा।
0: हाँ
1: ये कहता है कि मेरा ये गाना है, इनको देखे है कि मेरे को सुनना है।
0: हाँ कौन सा गाना सुनना है?
1: रूप मेरा देख कर, रंग तेरा, रंग तेरा देख कर, रूप तेरा देख कर, सुंदर भी हैरान है, सुंदर सा चेहरा तेरा।
0: चलिए बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा गाना नया है और मैं चाहता हूँ कि आप 1960-1950 के दशक का कोई अगर ऐसा गाना है तो आप वो उनको बोलिए सजेस्ट करने के लिए, तो हम उसको
1: पुराना
0: गाना देना है। हाँ हाँ बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे इस गाने के बारे में। तो दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि जब जीवन में बहुत बेचैनी होती है तब कोई एक इंसान, कोई एक मुस्कान या कोई एक प्यारा लफ्ज दिल को कितना सुकून दे जाता है। हसरत जयपुरी जी ने इस गाने में कितने खूबसूरत बोल लिखे हैं, मेरे बेचैन दिल को चैन तूने दिया। ये सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं है, एक इकरार है इस बात का कि किसी ने आने से ज़िंदगी में, किसी के आने से ज़िंदगी में भटकना बंद हो जाता है और एक मीठा ठहराव आ जाता है। जब से देखा तुम्हें खोया खोया हूँ मैं, कभी कभी किसी से मिलकर पूरी दुनिया एक तरफ और एक इंसान की मौजूदगी एक तरफ हो जाती है। इस फिल्म में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की आइकॉनिक जोड़ी नज़र आई थी, जिनकी केमिस्ट्री को पर्दे ए सीने में, मतलब जो हम पर्दे जो कहते हैं, पर बेहद पसंद किया गया था। फिल्म का संगीत लेजेंडरी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, जिन्होंने इससे सस्पेंस ड्रामा में रोमांटिक गानों के जरिए एक अलग ही मिठास घोल दी थी। इस खूबसूरत गीत का बोल गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने लिखे थे। जोड़ी दिल के जज्बात को बेहद सरल और गहरे लफ्जों में पिरोए जाते हैं। गीत का महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ से सजाया था। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में जो एक अलग ही तरन्नुम और ठहराव था वो इस गाने में साफ झलकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। एक और प्यारा सा नगमा हमारे इंतजार में है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी जब हमने गाना सुना, हसरत जयपुरी जी ने क्या खूब सवाल पूछा है कि गाने में जब दो आंखें मिलती हैं तो चाहे तो गायब होना ही होता है, मज़ा तो तब आता है जब गाने में हीरो और हीरोइन के बीच ये मीठी नोकझोंक शुरू होती है। नैन मिला के चैन चुराना किसका है ये काम, जी है ना। ये गीत उस शुरुआती प्यार की याद दिलाता है जहाँ एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं और उन इल्ज़ामों में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत छिपी होती है। एक तरफ है चैन चुराना और शिकवा है, तो दूसरी तरफ दिल हारने की खुशी। अगर आपने भी कभी किसी से आंखें मिलाकर अपने चैन खोया है तो ये गाना बिल्कुल आपके लिए था। शुक्रिया। और इस चुलबुले नगमे को कल्याण जी आनंद जी के लिए, आनंद जी ने किया था। इस गीत के बोल गीतकार हसरत जयपुरी जी ने लिखे हैं, जिन्होंने इश्क की मीठी टकरार और नखरों के बेहद प्यारे लफ्ज़ों को बोल दिए हैं। कल्याण जी आनंद जी ने इस गाने में जो रिधम और बीट्स दी है वो आज भी सुनते ही पांव थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले नगमे की ओर। जो भी हमारी आज फरमाइश आई है, हम कोशिश कर रहे हैं इन फरमाइशों को सारों को एक साथ इस गाने के बाद हम बजाएंगे। तो हमारे सुरेश जी की फरमाइश, हमारी बुरेलाल जी की फरमाइश, हमारे भूरा राम जी की फरमाइश, हम सभी की फरमाइश एक साथ सुनाने वाले। तो बिल्कुल से बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अरे ना ना ना ना ना,
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
2: ओम शांति, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी जो गाना सुना हमने मजरूह सुल्तानपुरी जी ने, इस गाने में एक ऐसी हसीन, एक दिल की बात लिखी है जो प्यार के झंझटों से बड़ा आना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अरे नाना नाना नाना तौबा मैं प्यार करूँगी, ये जो गाना अभी हमने सुना। मज़ा तो तब आता है जब आगे कहने लगती है कि प्यार में तो रोज़ नए नखरे और नई शरारतें होती है। ये गाना उस मीठी टकरार और ऐठन का प्रतीक है जो हर रोमांटिक कहानी की शुरुआत में होती है। जहाँ मुंह से तो ना निकलता है पर दिल हाँ कह रहा होता है। तो अगर आप भी किसी के नखरों से परेशान हैं या खुद किसी को नखरे दिखा रहे हैं तो ये गाना बिल्कुल आपके मूड को सेट करता है। जी हाँ, आर पार से पहले ओपी नैयर जी की शुरुआती फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। गुरुदत्त जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर बनाया। ओपी नैयर के रिदम हैवी और वेस्टर्न मीट्स ईस्ट म्यूजिक स्टाइल ने इस फिल्म को म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बना दिया। गीता दत्त जी ने अपनी आवाज़ दी थी। गुरुदत्त जी की पत्नी गीता दत्त की आवाज़ में एक कुदरती शरारत और नखरा था जो इस गाने को स्ट्रेस पर फिल्माया गया था, जहां उनके साथ गुरुदत्त जी खुद नज़र आए थे। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब हमारी फरमाइशों की तरफ। तो हमारा सबसे पहला जो फरमाइश है, छुपाने वाले सामने। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा पहला नगमा और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। जो भी हमने नगमा सुना, हमारी फरमाइश थी छुपाने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। जी हाँ बिल्कुल, सूरज से किरण, बादल से पवन, कब तक छुपेगी ये तो बता। कई बार ऐसा होता है। ये जो गाना अभी हमने सुना तुमसा नहीं देखा फिल्म 1957 से, इसे भी ओपी नैयर साहब ने ही म्यूज़िक डायरेक्ट किया था। आज हमने काफ़ी गाने सुने हैं ओपी नैयर साहब के म्यूज़िक डायरेक्शन में, और उनके जो भी म्यूज़िक, जो भी धुन होती है वो एक अलग ही वे में बसती है, और हमें वो सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है, बड़ा प्यारा लगता है वो गाना सुनने में भी। ये भी गाना मैंने सुना, बड़ा अच्छा लग रहा था। इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी प्यारी सी आवाज़ दी थी। इसे लिखा था मजरूल सुल्तानपुरी जी ने, और ये फिल्म थी 1957 में तुमसा नहीं देखा। चलिए बढ़ते हैं, एक और हमारी फरमाइश थी, एक और फरमाइश को सुनते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने जो गाना सुना, माझी चल ओ माझी चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल। बिल्कुल, जब भी हम ऐसे कभी नाव में, मैंने अपनी पर्सनल बात बताऊं, जब भी मैंने कभी ऐसे नाव में पर्सनल जब हम चले हैं और पानी जब धीरे धीरे चलती है तो जो आवाज़ होती है, जब हम माझी के वो जो चप्पू चलता है और उसमें जब तैर वो जो नाव चलती है उसमें जो मज़े होती है, हवा, ठंडी हवा जो मज़े होती है, वो बड़ा मतलब सुकून भरा वो आवाज़ होता है। ये जब भी हमने गाना सुना, आया सावन झूम के, म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आनंद बख्शी जी के इसके लिरिक्स थे, लिखे थे मोहम्मद रफ़ी साहब जी ने, इसे अपनी प्यारी सी आवाज़ दी थी। फिल्म 1969 में आई थी। चलिए दोस्तों, एक और गाना अभी हम सुनेंगे। ये हमारे बुराराम जी और से थे, इन्होंने ये प्यारा सा गाना हमें फरमाइश में दिया था, इस दुनिया में जीना है तो सुन ले मेरी बात। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने जो गाना सुना गुमनाम मूवी से ये गाना था, और इस गाने को आपने अगर उस वे में देखा है, अगर फिल्मों में आपने देखा है या पर्दे पे आपने देखा है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हेलन जी ने इसे समुंदर के बीच में इसे गाया है, मतलब प्रस्तुत किया है। इस दुनिया में जीना है तो लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, शंकर जयकिशन जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। इसमें मनोज कुमार, नंदा, प्राण, महमूद, हेलन जी, मदनपुरी जी, तरुण बोस, इस फिल्म में काफ़ी लोगों ने किरण किया है। इस चीज़ में एक और प्यारी चीज़ थी कि इसे फिल्म फेयर अवार्ड दिया था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जी हाँ जी, महमूद जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में अवार्ड मिला था, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में हेलन जी को एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगले नगमे की, और हमारा प्यार सा अगला जो नगमा है, हमारे प्यारे से बुरीलाल जी ने एक और हमें फरमाइश की उनके भांजे के लिए, तो सुनते हैं ये अगला सा गाना और हम आपसे लेते हैं विदाई। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खमा गणी, गुड नाइट।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य है, मगर क्या स्वास्थ्य इतना ही है? आज अगर हम स्वास्थ्य का ना होना भी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य समझते हैं, तो भी आज हम देखते हैं कि कई लोग दवाइयों को खाते हुए अपने आप को स्वस्थ समझकर चलते हैं। कई लोगों को आदतन गोलियां खाने की या किसी न किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन करने की आदत हो जाती है। लोग कहते भी हैं कि भाई, इन दवाइयों के साथ तो ठीक चली रही है गाड़ी, तो फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी कई लोग मानने लगते हैं। जब हम स्वास्थ्य के बारे में सही जागरूकता नहीं रखते तो ऐसा होता है कि हम अपनी अपने स्वास्थ्य की मान्यताओं को ही सत्य मानने लगते हैं। इसलिए ये जानना भी आवश्यक है कि सही अर्थों में हम स्वास्थ्य को कैसे समझें और अपने परिवार और अपने स्वजनों को स्वस्थ बनाने में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। आइए, आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं। आज हमारे मार्गदर्शन के लिए स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई, जब तक किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई व्याधि ना हो, कोई पेन नहीं हो बॉडी में, तो लोग समझते हैं कि ऐसे किसी प्रकार का पेन ना होना या बीमार ना होना ही स्वास्थ्य है, ऐसा कई लोग समझ लेते हैं। और कई कई बार तो लोग उससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई, मैं अगर ये दवाई लेता रहता हूँ, हर दिन मैं ये गोली खाता रहता हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, तो मैं स्वस्थ ही हूँ, मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इसको भी स्वास्थ्य का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन समझकर लोग चलने लगते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे
1: श्री भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात की है, एंड नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये बात करता है कि सिर्फ शरीर का दर्द नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने चाहिए। आज इस भाग दौड़ की दुनिया में जब हम अखबार अभी देखेंगे खोलकर, जब बच्चों का 10वीं या 12वीं का रिजल्ट निकलता है, उनका परीक्षा फल आता है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि ये बच्चा 99.99% पाया, और कुछ बच्चे तो इतना अच्छा नंबर पा रहे हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। पर आप ये भी तो देखिए कि बहुत बच्चे मेहनत के बाद भी अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, तो वो तो मानसिक रूप से परेशान हो ही जा रहे हैं, साथ साथ उनके माता पिता भी उस बच्चे के नंबर न होने से भी परेशान हो जा रहे हैं। तो आप इस पूरी व्यवस्था को स्वस्थ व्यवस्था नहीं कह सकते। आप अगर किसी भी व्यक्ति के बढ़ने से कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है और आप अगर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप उसको स्वस्थ व्यवस्था नहीं मानेंगे। आप ये सोच रहे हैं, आपका दिमाग कुछ ज्यादा सोचता रहता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्या मेरे खाने में कुछ गलत मिला हुआ है, अरे लोग क्या कहेंगे, क्या ये जो मैंने कपड़ा पहना है ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अगर आप बार बार इसी चीज के लिए परेशान होते रहेंगे, तो आपको ठीक से स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। सिर्फ शरीर में कोई दर्द ना होना, कोई व्याधि ना होना, कोई परेशानी ना होना, जैसे हम लोग अभी डायबिटीज की बात की, आप पेशेंट को, मरीज को मालूम ही नहीं चलता है कि डायबिटीज है उसको, पता चला कंधा बस जाम है, कंधा जाम है, अरे कुछ तरह दर्द हो गया होगा, अरे जिम में खींच गया होगा, अरे हाथ खींच लिए होंगे, ये सारा हम बस बोलते रहेंगे और पता चलता है कि अरे भाई, ये तो डायबिटीज निकल गई। महिलाएं कितनी आती हैं कि उनको मासिक धर्म की समस्या हो रही है, महिलाएं आ रही हैं जिनको बाल झड़ रहे हैं, थकान बहुत लग रही है, उनको पसीने में दुर्गंध होने लगी, फिर अरे ये तो बहुत दिन से चला, हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तब मालूम चले रहे आपको तो थायराइड की समस्या शुरू हो गई, हार्मोनल समस्या शुरू हो गई। तो मैं सब बहुत एक खतरनाक एग्जांपल कैंसर है, आदमी को मालूम ही नहीं चला, जब वो सेकेंड फेज थर्ड फेज में चला गया तब पता चला, अरे भाई ये तो मुझे कैंसर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है आपके शरीर में कहीं पे, और आप सोच रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, पर आपको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप तीनों तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके रोज कोई दवा या गोली अपने दिमाग से, अपनी कॉमन सेंस से, अपने सेंस से मत खाइए। जब तक किसी डॉक्टर ने आपको ना लिखी हो, जब तक आपको ये समस्या हो, कुछ गड़बड़ आपके अंदर निकले, कुछ ठीक चीज ना हो, तो आपको वो दवा खानी चाहिए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि रोज मैं ये गोली खा लूं तो मैं ठीक महसूस करूंगा, रोज मैं ये, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ, इतने मरीज आते हैं, आप उनसे कहिए कि आप ये दवा खाते हैं, हाँ सुबह उठ के गैस की गोली खा लेते हैं, क्यों, हमको गैस बहुत बनती है। अच्छा, आप भोजन में कोई अपने वो किए, नहीं नहीं भोजन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, हम बस ये गैस की गोली सुबह खा लेते हैं, फिर हमें जो मन में आता है हम खाते रहते हैं। अरे अपना भोजन सुधार लीजिए, आप अगर अपना भोजन सुधार लेंगे तो शायद आपको वो गोली की जरूरत न पड़े। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए, अपने भोजन को सुधार लीजिए, और जहां तक हो सके अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके दवाई का प्रयोग मत करिए। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों का, होम्योपैथी का, एलोपैथी का, इवन नेचुरोपैथी का अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके उनका प्रयोग मत करिए।
0: ये बात समझ में आती है कि आज हम दवाइयों के साथ अपने जीवन को ठीक चला रहे हैं, और इसे हम स्वास्थ्य का परिचायक समझकर अगर चलते हैं तो वास्तविकता में ये हमारी भूल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ में आती है। अब दवाइयों के साथ जो चीजें हम कर रहे हैं, दवाइयां हर दिन खाने वाली जो चीजें एक रेगुलर चीज बन गई है, वो आम बीमारियों के रूप में भी हम देखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर हम डायबिटीज और बीपी, इनके लिए लोगों को गोली लेते हुए देखते हैं। डायबिटीज के लिए मरीज डायबिटीज की गोलियां ले रहे होते हैं, और कोई को अगर बीपी की समस्या है तो वो बीपी की गोलियां लेते रहते हैं। पिछले एपिसोड में हम ये बात कर रहे थे कि बीपी क्या है और इसे कैसे समझने की जरूरत है, और क्या इसमें होता है शरीर में, ये चीज हम समझ रहे हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हम आम लोगों को, जैसे कोई घर आए मेहमान को पूछते हैं, वैसे ही हम पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज या बीपी तो नहीं है, और कहते हैं कि हाँ उनको बीपी है या डायबिटीज है, तो भी हम बोलते हैं हाँ अच्छा ये भी ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेबल नॉर्म के रूप में इस बीमारी को देखने लगे हैं। तो प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के बारे में तो धीरे धीरे धीरे धीरे हम समझते आए हैं, मगर बीपी की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो हम इतना नहीं सुनते थे कि भाई बीपी भी कोई चीज है, बट आजकल ये एक कॉमन नोशन बन गया है, हर कोई मतलब बीपी की दवाई के बारे में बात करता है, बीपी शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये बढ़ क्यों रहा है, इसका इसकी वजह क्या है?
1: जैसा भैया हम लोग ने आज शुरुआती बात में किया कि जैसे हेल्थ की जो डेफिनेशन की बात की कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, और कल जो हमने बातों में ये बात समझी कि देश में करीब 15 से 20 करोड़ लोग इस समस्या के मुहाने पे खड़े हैं, मतलब, और हमें जनसंख्या इतनी बड़ी है, इसीलिए फिगर हमेशा बहुत बड़े हैं, हम इतने स्ट्रेस में इस समय रह रहे हैं कि हमारा जो तनाव है वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है। बहुत एकदम अगर साधारण रूप से समझिए कि अगर आप किसी चीज पे गुस्सा करते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी आवाज तेज हो जाती है, आपका गला सूखने लगता है, आप पूरे शरीर में आपके कंपन होने लगता है, तो इसका सीधा साधा ये मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है कि मतलब आप किसी पे गुस्सा हुए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर आपकी प्रवृत्ति यही है कि आप बार बार हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो सबसे जो बड़ी चीज ये है कि आप मानसिक रूप से बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार परेशान हो जा रहे हैं, आपके ऑफिस में अगर कुछ हो रहा है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आपके व्यापार में कुछ हो रहा है आप उसके लिए बार बार चिंता करेंगे तो उससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, और अगर आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली मिल रही है वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब आदमी कम सो रहा, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा मोबाइल फोन है। हम लोग ने पिछले एपिसोडों में बात किया है, कृपा करके अपने मोबाइल फोन को अपने बिस्तर से दूर रखिए। अगर वो आपके हाथ में रहेगा तो आपको वो सोने नहीं देगा, और अगर आपको वो सोने नहीं देगा तो आप फिर अगले दिन सवेरे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जी भैया, आप लोग ने ये भी देखा है कि जो ब्रह्म कुमारी का लिटरेचर है वो बहुत पॉजिटिव लिटरेचर माना जाता है, वो बड़ा अच्छा लिटरेचर माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आप अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ किताब पढ़ लें, हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ अच्छी चीज का अध्ययन कर पाए। ये तो हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर बच्चे को सुलाना तो कोर्स की किताब दे दीजिए वो तुरंत सो जाएगा। तो हम अगर अच्छे विचार पढ़कर अगर हम सोएंगे तो हमारी नींद ठीक रहेगी, हमको मानसिक रूप से आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, और हम अपने जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है उस दोनों का तनाव कम कर पाएंगे। तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जरा ठीक से सोइए, पूरा 6 से 7 घंटा सोइए। मोबाइल के बाद जो दूसरा कारण ये देखा जा रहा है जो नींद लोगों की कम होती है वो है ट्रैवल टू वर्क, मतलब आप अपने घर से अपने काम करने की जगह पे कितना दूर जाते हैं। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये देखता हूँ लोग वहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा एक तरफ, मतलब दिन में 24 में से नॉर्मल है 2.5 से 3 घंटा वो अपना सिर्फ अपने काम की जगह पे जाने में और काम की जगह से अपने घर जाने में समय बिता दे रहे हैं। तो सोचिए 24 में से 3 घंटा तो लोगों का अपने सफर में ही बीत गया। तो आपके पास जो नींद का समय, जो 8 घंटे की नींद आपको चाहिए वो कैसे मिली। तो ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो अपना ट्रैवल टाइम कम करने की कोशिश करिए, और सोते समय प्लीज मोबाइल को जो प्रयोग है उसको कम करिए तो आपकी नींद ठीक हो जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, जो आप अभी बात कह रहे हैं वो पता चलता है कि वो कितनी प्रासंगिक है। एक तो हम आज अपने ही ख्याल रखने के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम या तो अपने काम से रिलेटेड चीजें जो है उसको ही ज्यादा प्रामुख्यता देखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अगर हम सेल्फ केयर नहीं करते, अपने ख्याल रखने के बारे में हम ध्यान नहीं देते तो हमारे अपने स्वास्थ्य को हम दरकिनार करते हुए इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है और इसके फाइनेंशियल कॉस्ट भी हैं, ये बात समझ में आती है। पर जैसे आपने कहा कि एक सकारात्मक लिटरेचर जो है, ऐसी पॉजिटिव चीजें जो ब्रह्म कुमारी इस परिवार में लोगों को मार्गदर्शन के रूप में मिलती है वो उन्हें सशक्त बनाने के लिए है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बहुत बार लोग ये कहते हैं हम करना तो चाहते हैं मगर होता नहीं है, मगर उसका उदाहरण यहाँ ब्रह्म कुमारी इस परिवार में हम देखते हैं कि लाखों लोग आज यहाँ सिखाए जाने वाले इन सरल विधियों को सीख कर अपने जीवन को एक सशक्त जीवन बनाते हैं, जीवन में छोटी छोटी तब्दीलियां करते हैं, पूरी आदतों से बच जाते हैं, अपने क्लॉक को, बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए सोने और जागने के समय को निर्धारित करते हैं। वो जैसे अक्सर राजयोग ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यही बताया जाता है कि आप स्वयं के राजा बनते हैं, आप अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने काबू में स्वयं को, अपने मन को, आप जो करना चाहते हैं वो सशक्त होकर कर सकते हैं, बात पता चलती है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर साहब मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि बहुत बार हम बीपी के बारे में सुनते हैं, तो पहले तो ये चीज समझने की जरूरत भी है कि हम इसमें मन का क्या रोल है, हमारे शरीर का क्या रोल है, और हमारे डाइट, खान पान इत्यादि का क्या रोल है बीपी की बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं या इससे ग्रसित होते हैं।
1: भैया, आपने अभी बड़ा अच्छा बताया, और जो अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करने आते हैं मैं जो भी सुन रहा है, मैं चाहूंगा प्लीज एक बार माउंट आबू वाले सेंटर पे जरूर जाइए। जब वो सवेरे 4 बजे आपको उठाएंगे मेडिटेशन के लिए, और उठाएगा कोई नहीं, ये बात गलत है, आप अपने आप उठ जाएंगे, आप अपने आप, आपके अंदर से आवाज आएगी, यार इतने दूर आए हैं, चलो चल के देखें क्या होता है। और मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा, जहां पहला दिन थोड़ा सा परेशान करेगा, दूसरे तीसरे दिन तो बाप रे आपको इतना आनंद आने लगेगा कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अपने जो मन है मानसिक रूप से शांत होते चले जाएंगे। आप खुद देखिए, ब्लड प्रेशर के इलाज में जो चीज सबसे पहले कही जाती है कि प्लीज थोड़ा मेडिटेशन करिए, ये बड़ा ही ब्रॉड टर्म है मेडिटेशन, मगर आप किसी भी विधि से, किसी भी गुरु के सिखाए हुए तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो आप बहुत कुछ पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और आप बीपी से बच सकते हैं। अभी मैं एलोपैथी की पढ़ा हूं, तो अगर आप किताबों को पढ़िए और अगर आप क्लिनिक्स में भी जाइए डॉक्टर के यहाँ, तो पहले वो तुरंत बोलते थे कि अरे ये गोली खा लो और ठीक हो जाएगा। अब वो देखिए आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब कुछ एक्सरसाइज करिए। सेकंड, यूज ऑफ योगा आसन एंड प्राणायाम, कि आप कुछ आसन करिए मतलब फिजिकल एक्टिविटी करिए, प्राणायाम करिए मतलब ब्रीदिंग पे अपने कंट्रोल करिए। यूज ऑफ मेडिटेशन, प्लीज यूज मेडिटेशन, मतलब आप मेडिटेशन करिए। और उसके बाद नीचे लास्ट में लिखा जाता है कि अवॉइड सॉल्ट इनटेक। पहले जैसे हमेशा बोला जाता था ब्लड प्रेशर है तो आप 4 चीजें अपने भोजन में से निकाल दीजिए, जो है चूरन, चटनी, अचार और पापड़, कि अगर आप ये चीज जिसमें भयंकर सॉल्ट है, और खासकर आबू राजस्थान में है तो वहां तो बड़ा अच्छा नमक का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत अच्छा नमक और बहुत अच्छा घी का प्रयोग किया जाता है, और वो पचा भी लेते हैं उसको। तो अब डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं कि आपको अपने जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको ठीक करना चाहिए। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप आलसी प्रवृत्ति के हैं, मतलब आप दिन भर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप ही मतलब कुर्सी पे बैठे ही बैठे काम कर रहे हैं, आप हिल डुल नहीं रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने को थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। कहा जाता है प्ले एनी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, आप वो नहीं कर सकते तो बेसिक वॉकिंग करिए, आप टहलिए। और ये भी कहा जाता है प्लीज घर के बाहर जाके टहलिए, अपने घर में ट्रेडमिल ले आए उस पर टहल रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करिए कि आप बाहर जाके भी अगर टहल पाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप का जो मन है वो वातावरण को देखेगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आप कुछ लोगों को देखेंगे, आप अगल बगल आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। और ये हुआ मेंटल बात की मेडिटेशन योगा प्राणायाम का प्रयोग करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपना आलस्य जीवन जो है उसको छोड़िए, और तीसरा जो कहा जाता है मतलब माइंड ठीक हो गया मेडिटेशन से, बॉडी ठीक हो गई ठीक ठाक खाने से, एक्सरसाइज बॉडी ठीक हो गया, और फिर बोला जाता है कि डाइट को कंट्रोल करिए, मतलब अपने भोजन को कंट्रोल करिए, और सबसे पहली बात जो बोली जाती है लो सॉल्ट डाइट, मतलब आप प्लीज ऐसा मतलब भोजन करें जिसमें नमक की मात्रा कम हो। और जो आज के परिवेश में मैं जो बोलना चाहूंगा कि प्लीज फ्रोजन एंड फ्राइड, मतलब जो भी भोजन फ्रीज किया गया हो और उसका प्रयोग हम फिर से तल के या गरम करके या माइक्रोवेव करके या ओवन में डाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि आप एक बात समझिए, किसी चीज को भी प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी चीज को जिसको तला बहुत ज्यादा गया है, जिसपे नमक बहुत ज्यादा डाला गया हो, इन सारी चीज को अपने भोजन से हटा दीजिए और अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा घूमिए टहलिए और थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, ये सब आपको बहुत फायदा देगा।
0: बहुत ही सुंदर बात आप ये समझा रहे हैं कि एक और हम बीपी के बारे में बेहतर समझ तो हासिल कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम इसके निदान के लिए या इससे बचाव के लिए भी हमें क्या करने की जरूरत है, ये भी चीज हमें समझ में आ रही है। दोस्तों, ये ना समझें कि बीपी उम्र के साथ आने वाली बीमारी है और इससे हम नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है। अगर हम आज से ही अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम बेहतर बढ़ा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा तला हुआ या नमकीन चीजें खाना, और खासकर आज क्योंकि हम बहुत सारी चीजें घर में नहीं बनाते हैं और आसानी से ये चीजें बाहर से हम खरीद के खा लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए घातक हो सकती हैं, हमें बीमारियों के कगार पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। इसलिए अपने आप के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और कुछ सकारात्मक कदम उठाएं, जैसे कि आप थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा अपने भोजन के प्रति ध्यान देना शुरू करेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। आज समय को देखते हुए इस एपिसोड में यहाँ रुकते हैं दोस्तों, मगर डॉक्टर आर मोदी जी ने आज हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें मार्गदर्शन दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य की इस कड़ी में हमने बीपी, जो एक ऐसी बीमारी है जिसे ब्लड प्रेशर के रूप में हम जानते हैं, उसके बढ़ते हुए कारणों के बारे में समझा। साथ में ये भी समझा कि हम क्या ऐसे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज के सेहत स्वास्थ्य में ये रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम शुरू हो गया है और मनी दीदी और परी भी आ गए हैं आपसे बातें करने। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: हाँ बच्चों, अभी तो हमारे घर में गणेश जी विराजे हैं और रोज हम सुबह शाम उनकी पूजा आरती करते हैं, उनको लड्डू भोग लगाते हैं और खुद भी खाते हैं, बड़ा मजा करते हैं।
1: हाँ बच्चों, तो आज हम गणपति बापा की दूसरी कहानी सुनेंगे।
2: हाँ, कौन सी परी?
1: बच्चों, गणेश जी और उनके जो भाई थे ना कार्तिके, उनके बीच प्रतियोगिता हुई थी।
2: हाँ अच्छा, उसमें क्या हुआ था?
1: मात पिता ने कहा जो तीनों लोगों का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही विजेता होगा।
2: और फिर पता है बच्चों, अब कार्तिके जी का वाहन तो था मोर, और वो मोर पे चढ़ के तो बहुत फास्ट फास्ट उड़ने लगे और चक्कर लगाने चले गए, और गणेश जी का वाहन तो छोटा सा था, चूहा।
1: और उन्होंने क्या किया पता है? कुछ देर सोचा और फिर अपने मात पिता शिव और पार्वती की तीन बार परिक्रमा लगा दी।
2: हाँ, और फिर कहा कि मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार है, और गणेश जी विजेता बन गए।
1: तो देखा बच्चों, इस कहानी से पता चलता है ना कि मात पिता का सम्मान करना ये बहुत बड़ा गुण है।
2: हाँ बच्चों, और ये गुण हमें जरूर धारण करना चाहिए। तो चलो, ऐसे ही आगे भी हम आपको गणेश जी की और नई नई कहानियां सुनाएंगे, तो बने रहिएगा। और अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
1: सपनों की।

0: ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: बच्चों चलो सुनते हैं अब कहानी। बातें तो हो गई, गाना भी पूरा हो गया, जल्दी से रेडियो का वॉल्यूम लाउड कर लो। आज भेड़िया और मेमना की कहानी सुनेंगे। एक मेमना था, एक दिन वो झरने पर पानी पीने गया। वो पानी पी रहा था और उसी समय एक भेड़िया भी वहाँ पानी पीने के लिए आया। मेमने को देखकर भेड़िये ने सोचा, इस नन्हे मेमने का मांस निश्चित रूप से बहुत मुलायम और स्वादिष्ट होगा, मुझे अपने आहार के लिए इसका शिकार करना चाहिए। तो बच्चों भेड़िया मेमने के पास गया और कहा, तुम मेरे पीने का पानी गंदा कर रहे हो। मेमने ने कहा, ये कैसे हो सकता है, पानी तो आपकी तरफ से बहकर मेरी तरफ आ रहा है। भेड़िये ने कहा, मुझसे बहस मत करो, तुम शायद वही उजड़ प्राणी हो जिसने पिछले महीने मुझे गाली दी थी। बच्चों उसने कहा, मैं तो पिछले महीने पैदा भी नहीं हुआ था। मेमने ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा, तो फिर पिछले महीने तेरी माँ ने मुझे गाली दी होगी। ऐसा कहते हुए भेड़िया बेचारे मेमने पर टूट पड़ा और बच्चों उसे मार डाला। तो देखा बच्चों, कहानी कितनी छोटी सी है लेकिन हमें क्या सिखाती है। बच्चों खतरनाक लोगों की छाया से भी दूर रहना चाहिए। तो बच्चों आपको जो नुकसान करता हो, जो आपकी भलाई ना चाहते हो, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, ठीक है ना बच्चों? तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे। सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली राम की अनोखी दुनिया की किताब, और हम शुरू करने वाले हैं एक नई कहानी जिसका नाम है सप्तद्वीप नवखंड। तो बच्चों, कहानी का टाइटल तो बड़ा जटिल है, अब आगे क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। विजयनगर महाराज कृष्णदेव राय का साम्राज्य था। धन धान्य से परिपूर्ण इस राज्य की समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। विजयनगर के वैभव ने पड़ोसी राजाओं को चकित कर रखा था। सभी जानना चाहते थे कि विजयनगर की समृद्धि और वैभव का रहस्य क्या था। विजयनगर के पास ही सप्तद्वीप नवखंड नाम का एक वैभवशाली राज्य था। मान्यता थी कि प्राचीन काल में विजयनगर के पास से एक वेगवती नदी गुजरती थी, जिसके बीच में जगह जगह पर पाषाण खंड उभरे हुए थे, और कालांतर में नदी का पानी कम होने लगा और ये पाषाण खंड द्वीपों के रूप में प्रकट होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब यह नदी सूख गई और वहाँ निर्जन स्थल प्रकट हो गया। नदी के सूखते सूखते प्रकट हुए द्वीपों की संख्या 7 थी, इसलिए उस निर्जन स्थान को सप्त द्वीप के नाम से संबोधित किया जाने लगा। नदी के सूखने या लिप्त हो जाने के बाद प्रकट हुई धरती को नवखंड की संज्ञा दी गई। इस प्रकार इस निर्जन स्थल को सप्त द्वीप नवखंड कहा जाने लगा। तो बच्चों, अब इसकी क्या कहानी होगी, अब इसके बारे में आगे जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक के बने रहिएगा और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: तो चलो बच्चों, अब वक्त हो गया है गुड नाइट करने का, लेकिन उसके पहले जो परी ने पहेली पूछी थी उसका हम जवाब देंगे और अगली पहेली पूछेंगे। याद है ना, पिछली कड़ी में पूछा था, बिना आँखों के देखूं मैं, बिना कानों के सुनूं मैं, बिना हाथों के पकड़ लूं सब, बताओ मैं कौन हूँ।
3: और बच्चों हमने इसके लिए बहुत सारी हिंट भी दी थी कि वो रात को आता है और हमारे कार्यक्रम के नाम से मिलता जुलता है, तो सही जवाब है सपना। बिना आंखों के देख सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं और बिना हाथों के पकड़ सकते हैं, तो है ना सही जवाब सपना। और परी, हमारे बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब भेजा है और खास कर तो सपना ने भी सही जवाब सपना भेजा है।
2: वाह सपना वाह, बढ़िया। तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। दिन में सोता रात में जागता, चांद सितारों संग मैं सजता, कभी काला तो कभी नीला बनूं, बताओ मैं कौन हूँ।
3: तो बच्चों अब ये कौन सी चीज है भाई जो दिन में सोता है और रात में जागता है और चांद तारों के साथ चांद तारों को समा लेता है साथ में, क्या है जो ऊपर देखने पे दिखाई देता है? तो जल्दी चलो हमें 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो जल्दी जल्दी।
2: हाँ बच्चों, और साथ में भगवान को याद करके सोना, सारे दिन का कारनामा उनको बताना और साथ में उनको शुक्रिया भी करना।
3: हाँ बच्चों, तो चलो अब करते हैं गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
3: गुड बाय।
2: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 10

मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं। इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

ऋषि पंचमी आई मारा मन में खुशियां लाई सखी नदिये नावा चला पी ऋषि पंचमी आई ऋषि पंचमी आई मारा मन में खुशियां लाई।

आवा सखी नदिये नावा चला पीर ऋषि पंचमी आई। तो ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। ऋषि पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में हमसे कोई भूल हो जाए तो अहंकार नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप, आत्मचिंतन और सुधार का संकल्प करना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर दम्मे की शिकायत है, सांस फूलती है, तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाले हो। जी हाँ, खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

ऋषियों की तपस्या से ज्ञान का दीप जलता रहे, ऋषियों की तपस्या से ज्ञान का दीप जलता रहे, हर घर में संस्कारों का उजाला पलता रहे, सत्य शांति और सद्भाव से सजे जीवन की राह, सत्य शांति और सद्भाव से सजे जीवन की राह, ऋषि पंचमी पर सभी के जीवन में खुशियां आए अथा, ऋषि पंचमी पर सभी के जीवन में खुशियां आए अथा। पुनः आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का विचार इस प्रकार है, ऋषि पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में हमसे कोई भूल हो जाए तो अहंकार नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप, आत्मचिंतन और सुधार का संकल्प करना चाहिए। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी जो बहुत ही सुंदर है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनके बच्चे बहुत धार्मिक और संस्कारित है। वे हमेशा पूजा पाठ और संकल्पों में विश्वास रखते थे, सत्कर्मों में विश्वास रखते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी के शरीर पर अचानक छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। वह बहुत परेशान हुई। ब्राह्मण ने अपनी विद्या से इसका कारण जानने की कोशिश की। तब उसे ज्ञात हुआ कि पिछले जन्म में उस स्त्री से मासिक धर्म के समय अनजाने में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लंघन हुआ था। उसी कर्म के कारण उसे यह कष्ट भोगना पड़ रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करके सप्त ऋषियों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। महिला ने श्रद्धा और विश्वास के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखा। उसने स्नान करके पवित्र भाव से सप्त ऋषियों का पूजन किया, उन्हें अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे सप्त ऋषियों, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करे और मेरे जीवन को शुद्ध एवं सद्भाव पूर्ण बनाने का आशीर्वाद दे। उसकी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसके सारे कष्ट दूर हो गए और परिवार में सुख शांति लौट आई। तभी से मान्यता किंवदंतियां चली आ रही है कि ऋषि पंचमी के दिन श्रद्धा से सप्त ऋषियों का स्मरण और पूजन करने से मनुष्य को अपने जाने अनजाने के दोषों के लिए क्षमा भाव मिलता है और जीवन में शुद्धता, सदाचार और सद्भाव की भावना बढ़ती है। तो कहने का भाव यही है, ऋषि पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में हमसे कोई भूल हो जाए तो अहंकार नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप, आत्मचिंतन और सुधार का संकल्प करना चाहिए। ऋषि मुनियों के ज्ञान और संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो पुनः आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए यहीं पर फिर से ले लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद पुनः लौटते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति, नमस्कार। मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, कल हमारे श्रोता बंधु ने पूछा था कि भाई सांस फूलती हो, दमे की बीमारी हो तो क्या करें, तो चलिए मैं बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए, हल्दी वाला दूध एक गिलास, गर्म दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके अच्छी तरह उबाल लीजिए और इसे पीजिएगा। हल्दी फेफड़ों की सूजन कम करती है और बंद नलियों को खोलने में मदद करती है। तो अगर सांस फूलती हो, दमे की बीमारी हो, इसको अस्थमा भी कहते हैं, तो ऐसी समस्या में आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। एक गिलास गर्म दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके अच्छी तरह उबाल लीजिए, फिर पीजिएगा। हल्दी फेफड़ों की सूजन कम करती है और बंद नलियों को खोलने में मदद करती है। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है, अगर ये नहीं कर सकते तो शहद और मुलेटी या फिर काली मिर्च, एक चम्मच शुद्ध शहद में एक चौथाई चम्मच मुलेटी पाउडर या फिर काली मिर्च मिलाकर दिन में दो बार चाटिए। इससे गले की झकड़न और सांस की तकलीफ कम होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो आप काली मिर्च पाउडर लीजिए या मुलेटी पाउडर लीजिए। शहद में आपको एक चम्मच शहद में आपको एक चौथाई चम्मच या तो मुलेटी पाउडर या फिर काली मिर्च पाउडर मिक्स करके दिन में दो बार चाटना है। इससे गले की झकड़न और सांस की तकलीफ कम होगी। फिर अगला उपाय है, अदरक की चाय पीजिएगा। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालकर या उनकी चाय बनाकर पीजिएगा। इससे वायु मार्ग की सूजन में आराम मिलता है। तो क्या करेंगे, अदरक की चाय कैसे बनाएंगे, अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालकर या उसकी चाय बनाकर पीजिएगा। फिर देखिए, भाप लेना भी बहुत ही लाभप्रद रहेगा। गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन या फिर यूकेलिप्टस ऑयल डाल करके भाप लीजिएगा। इससे फेफड़ों में जमा गाढ़ा बलगम पिघल जाएगा और सांस लेना आसान हो जाएगा। गहरी सांस लेने का व्यायाम करना है। नाक से गहरी सांस लीजिए, पेट को बाहर फुलाइए और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़िए। इसे फर्स्ट लिप ब्रीदिंग कहा जाता है, जो फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो नाक से गहरी सांस लेना है, पेट को बाहर फुलाना, फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह करने से भी फेफड़ों की क्षमता, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और हाँ, थोड़ा सावधानी भी जरूर रखिएगा। धूल और धुएं से बचना बहुत जरूरी है। बाहर निकलते समय हमेशा मास्क पहनिए और प्रदूषण वाली जगह से दूर रहे। ठंडी चीजों से परहेज करना जरूरी है। ठंडा पानी, आइसक्रीम और जरूरत से ज्यादा खट्टे या तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना है। अगर कोई धूम्रपान करते हो, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तरह के धुएं और पैसिव स्मोकिंग से अगर करते हैं तो पूरी तरह से दूर रहे। ठीक है, कहते हैं ना कि खाने पीने से भी ज्यादा परहेज पर ध्यान देना है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो कहते हैं ना कि भाई घरेलू उपाय केवल राहत के लिए है। यदि सांस बहुत ज्यादा फूल रही हो या सीने में तेज दर्द हो तो तुरंत किसी डॉक्टर से आप जरूर राय लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो दवा और दुआ दोनों ही कर सकते हैं। तो ये हुए घरेलू उपाय। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि देखिए, हम क्या करते हैं, ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं, तो उन सप्त ऋषियों का नाम आपको बताना है। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ऋषियों की तपस्या से पावन हुई है धरती सारी, उनके ज्ञान से रोशन हो जीवन की हर क्यारी। मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता, कर्मों में हो सच्चाई, ऋषि पंचमी का पर्व लाए जीवन में सुख शांति और भलाई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। तो आज देखिए, ऋषि पंचमी है जिसको हम सामा पांचम भी कहते हैं। तो पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आज का प्रश्न भी इसी पर है, बहुत ही सुंदर, कि भाई ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है, उन सप्त ऋषियों का नाम आपको बताना है कौन कौन से, ठीक है। और आज कोई ऐसा कोई खास त्योहार नहीं है, लेकिन ऐसे संस्कारों की दृष्टि से, शुद्धता से, स्वच्छता की बात करें तो आज का ये त्योहार ही है। जरूरी नहीं कि हर त्योहार में हम शोर शराबा करें, कोई कोई त्योहार ऐसे होते हैं जो साइलेंस के होते हैं, शोर शराबा वाले नहीं होते हैं, अध्यात्म के होते हैं, सच्चे दिल से ईश्वर से प्रेम करने का होता है। जो ऋषि मुनि हमारे धरा पर है उनको सम्मान देने का होता है, और ऋषि मुनियों को सम्मान देने के लिए शोर शराबे की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम फ्रेंडशिप डे मनाते, टीचर्स डे मनाते, मदर्स डे मनाते, फादर्स डे मनाते, सारे डे मनाते हैं, लेकिन कभी हम ऋषियों के डे मनाया, कभी दिन मनाया, नहीं मनाया ना। चलिए, हमारे पहले तो श्रोता बंधु जुड़ना चाहते, बात करेंगे। हेलो
1: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बोल रहा हूँ जताना से, कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: और संजीव भी अच्छे हैं, और आज अच्छा दिन भी है। आज जैसे बताया कि आज ऋषि पाचन है, यानी के सामा पाचन भी बोलते हैं हमारे गुजरात में
0: जी।
1: तो सामा ही खाने के दिन है आज, सभी महिला सामा खा के पूरा दिन उपवास करते हैं आज के दिन
0: जी।
1: और कुछ भोजन और नहीं लेती है, बस सामा थोड़ा सा दोपहर को खा लेते हैं और पूरा दिन निकाल देते हैं। और सुबह में बताओ तो हमारे पास में ही माता जी का मंदिर है, वहाँ सबसे ऋषि बनाया है, सात ऋषि
0: जी।
1: मैं ऋषि का नाम तो नहीं दूंगी, क्योंकि आपका जो सवाल है
0: जी,
1: तो ये सबसे ऋषि बनाया के इसके पूरा गांव का जो लोग लेकर आते हैं पूजा करने के लिए, सभी महिलाएं आती है लेके सामा लेके आती है, क्योंकि सामा तो खास लाना है, ऋषि पंचमी है तो सामा
0: जी
1: लेके ही आएगी और पूजा करेंगे।
0: हाँ जी।
1: और मन्नत मांगेगी दीदी की, हमारे जो कोई भूल हुई है पूरे साल, तो हम क्षमा मांगते हैं ऋषियों से, और कहते हैं कि भाई हमको अच्छा रखना, परिवार अच्छा रखना, ऐसे मन्नत महिलाएं मांगती है
0: जी। तो सुरेश भाई, हम जैसे बात कर रहे थे कि सारे डे मनाते, लेकिन ऋषियों के सम्मान के लिए हम कोई डे नहीं मनाते, आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, ये दीदी बताऊँ तो हमारे ये मनाते नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ तो हमारे जो गांव में कई जगह पे ये ऋषियों का भी डे मनाते हैं। कैसे मनाते मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ दीदी
0: जी।
1: हमारे जो थोड़ा दिन पहले हमारे गाँव में भी एक कहते हैं कि संतों का जो नाम भूल गया, संतों का सभी संतों को बुलाते हैं और संतों को भोजन करवाते हैं, संतों का जो कार्यक्रम रखते हैं और इसका सम्मान करते हैं, और बाद में सभी पूरे गांव वाले जाते हैं वहाँ संतों के पास, ऋषियों के पास, तो और सभी एक दूसरे जाते हैं, वह पूरा एक दो घंटे का कार्यक्रम होता है, वहाँ उसको सम्मान करते हैं और भोजन का भी कार्यक्रम रखते हैं। ये संतों का मिलावड़ा बोलते हैं हमारे गुजरात में
0: जी।
1: तो ये डे नहीं मनाते, लेकिन ये डे जैसा हो जाता है दीदी,
0: क्योंकि वो तो देखिए वो तो एक आध गांव में होता है ना, जैसे
1: हाँ,
0: होता
1: नहीं,
0: हर जगह एक साथ नहीं होता है, हर जगह संतों का सम्मान होता है लेकिन एक साथ नहीं होता है। ठीक है, आपके गांव में आ गए तो आपके गांव में मना लिया, हमारे गांव में आ गए तो हमने, बाकी हर जगह नहीं होता है।
1: हाँ, एक साथ नहीं होता है, उसका डे मनाते नहीं है, ये जो डे आता है नहीं मनाते। लेकिन आज मैं बताऊँ तो आज एक कैसा डे जैसा ये दीदी, कि आज सभी जगह पे ऋषियों का जो सम्मान यानी कि पूजा पाठ होती है
0: जी
1: आज के दिन
0: जी,
1: चाहे डे ना मनाए, लेकिन आज जो ऋषि का सभी पूरे गाँव वाले सभी महिलाएं आज उसका पूजा पाठ करती है और क्षमा भी मांगती है कि जो बोलो हुई हमारे से पूरे साल में तो हमको क्षमा कर देना
0: जी।
1: तो ऐसे करके आज का दिन मनाते हैं दीदी
0: जी जी जी। अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल,
1: कोई बात थी ना दीदी, और कोई नहीं।
0: हाँ जी हाँ जी, बस यही है, कैसे क्या करते हैं ये भी बता सकते हैं। और ऋषियों के सम्मान के लिए देखो, वो इतनी तपस्या करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सम्मान करें।
1: सम्मान करें, सम्मान करें, है ना,
0: क्योंकि ये धरा टिकी हुई है। तो कैसे टिकी हुई है? संत मुनियों की तपस्या के बल पर।
1: संतों की, जहाँ दीदी मैं बताऊँ, हमारा गांव की जो भूमि है संतों की भूमि है। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे संत लोग गए, बड़े बड़े संत, आपने शायद नाम भुला होगा, डोंगरे जी महाराज वो।
0: जी जी जी, सुना है ना।
1: हाँ, वो भी हमारे गांव में कथा करके गए हैं। और एक था हमारे मुरारी बापू, ये भी आ गए। और कई सारे संतों का दीदी, हमारे आश्रम भी है जो हरिद्वार में बड़ा से बहा मंथ है, महंत वो, उसका भी हमारे गांव में बड़ा आश्रम है। तो हमारे गांव की भी इतिहास बताऊं दीदी, अभी इस टाइम में मैं कभी आपको जरूर बताऊंगा, समय आए। संतों की भूमि है हमारे गांव।
0: जी
1: मैं
0: जी,
1: कभी
0: जी
1: आपको शायद टाइम मिले तो आपको हमारे गांव की
0: अभी बता दीजिए, शॉर्ट रूप में बता दीजिए।
1: हाँ, शॉर्ट रूप में बता दीजिए कि हमारे गाँव में एक बार क्या था, संतों कोई संतों का जो मिलावड़ा था दीदी ऐसा, और उसमें क्या था दीदी, जो पहले जमाने की बात, पहले बहुत टाइम नहीं हो, 100 साल हो गए शायद। क्या था दीदी, एक मंदिर के पास वो कार्यक्रम था, और उसमें पूरा कार्यक्रम करके सब दीदी खाना बनाना था, तो घी पूरा खलास हो गया, और घी की जरूरत थी 2-3 डब्बे की।
0: जी।
1: तो बोला कि सभी अभी तो घी खलास हो गए, कहाँ लेने जाएंगे? तो उस संत ने बोला, ये कुआ है, कुआ में से ले लो।
0: अच्छा।
1: और जब आप लाओगे तो कुएं में से डाल देना। तो दीदी वो पानी का घी बना दिया था संत ने, और इसमें ही खाना बनाया था, जब लाया बापू तीसरे दिन तो इसमें डाल दिया था। ऐसा ऐसा संत दीदी हमारे गांव में हो गए। आज भी कई सारे संत हमारे गांव में, मूर्ति है उसकी, बड़ी मूर्ति बनाई हुई है। और आपको कोई पथरी की तकलीफ है तो आपको पथरी होता है तो पथरी की मन्नत मांगेंगे दीदी, उसका आपको जो चढ़ाना है, पेड़ा है, आपको कोई शक्कर है, वो उसको थोड़ी सी मन्नत मार लो, आपकी पथरी का जो दुखावा बिल्कुल गायब हो जाएगा।
0: अरे वाह, तब तो ये तो ठीक है, कोई भी मान सकते है।
1: हाँ, मान सकते दीदी, और इधर आके आपको बोल देना कि भाई ये हमारा कर देना, तो हम आपके वहाँ जाके आराम से आपकी मन्नत पूरी कर देंगे।
0: तो ये तो सुरेश भाई धानेरा वालों के समस्या है, उनको बोलिए।
1: हाँ, मैंने मानी है दीदी, मन्नत मानी है, लेकिन एक बार तो उसको ऑपरेशन करवा दिया, दूसरी बार मैंने मानी कि उसको ठीक हो जाए, तो मैं मेरे हिसाब से इधर मन्नत कर दूंगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: जी जी, ठीक हो जाएगा। मेरे संत का वो जो दुआ है संतों की, वो हरदम काम आती है दीदी। हमारा भी अनुभव है, हमको भी ऐसा एक दिन हुआ था, तो हमारे भी ठीक हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया।
1: जी
0: जी जी, तो चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने जानकारी दी है कि किस तरह पथरी की समस्या होती है, तो इनके गांव में ये समस्या ठीक हो जाती है, तो बहुत बढ़िया। और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि देखिए, आज के दिन हम ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कि स्पेशल उनका डे रखना चाहिए। बाकी सम्मान तो करते ही है, और महिलाएं इस व्रत को करती है, तो महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती है, इसलिए सप्त ऋषियों का मान सम्मान ज्यादा देती है। क्योंकि देखिए, भोजन कौन पकाते हैं, घरों में तो महिलाएं पकाती है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्ते।
2: जय माता जी, जय श्री हरि। ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
0: जी आपको भी,
2: और सभी रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी भक्तों को और सुनाने वाले सभी भक्तों को आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
0: जी।
2: तो आज तो ऋषि पंचमी है, कल गणेश जी आ गए
0: जी,
2: सब चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है
0: जी।
2: और गणेश जी आ गए तो बारिश भी थोड़ी लेके आए।
0: बिल्कुल अच्छी लेके आए।
2: हाँ,
0: अच्छी लेके आए।
2: आपके उधर अच्छी हुई है?
0: हाँ जी, यहाँ पर तो अच्छी हुई, बहुत हुई।
2: नहीं, यहाँ तो कम ही हुई है, मगर ठीक है, थोड़ी गर्मी से राहत मिली।
0: यहाँ तो अभी भी मौसम ऐसा ही है?
2: नहीं, यहाँ तो धूप खिली हुई है।
0: अच्छा, नहीं, यहाँ तो बादल मंडरा रहे, बारिश हो सकती है, सुबह भी बूंदाबांदी थी, कल अच्छी हुई पूरे दिन?
2: नहीं, यहाँ तो ठीक है, कल अच्छी, मतलब बूंदाबांदी चली है पूरे दिन, मतलब चली है, कुछ कुछ बूंदे चालू ही थी
0: जी।
2: और जब गणेश जी का टाइम हुआ, 4:30 स्थापना का दिन हुआ, मतलब टाइम हुआ, तब थोड़ी तेज हो गई
0: जी।
2: तो बस गणेश जी आगे बारिश लाई और क्या चाहिए। और बस आज का खुशनुमा जीवन का राज क्या है?
0: आज यही है, आज ऋषि पंचमी है, ऋषियों का मान सम्मान होना ही चाहिए। हर एक का डे मनाते, फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, लेकिन ऋषियों का कोई दिन हम नहीं मनाते हैं, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए।
2: देखिए मैं तो इससे यही कहना चाहूंगा कि ऋषि मतलब सन्यासी, अगर आप खुद भी ये पांच विकारों से अगर दूर है तो आप खुद भी एक ऋषि और सन्यासी हैं। मगर कुछ संन्यास लेने के बाद भी इन विकारों में फंसे हुए हैं। घर गृहस्थी से संन्यास लेने के बाद भी
0: हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे जो पूजनीय है ना। आज हम पॉजिटिव बोलेंगे कि जो सभी, तो देखो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है, लेकिन जो है सही मायने में सच्चे संत है उनको तो वाइब्रेशंस पहुंचने ही चाहिए।
2: बिल्कुल, उनके तो चरणों में कोटि कोटि वंदन है और उनसे तो हमें कुछ सीखना चाहिए। देखिए कि गुरु के मतलब गुरु के बिना तो जीवन में घोर अंधेरा है हर चीज में मतलब। और ये देखिए संत ऋषि मतलब इनका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनका सम्मान अगले भगवान का सम्मान है,
0: सही
2: है ना
0: जी?
2: हाँ, अगर आप डायरेक्टली भगवान से मिलना चाहोगे तो वो संभव नहीं है, मगर इनके द्वारा सीख लेके आप उनके द्वारा अंधेरा दूर करके भगवान से मिलना चाहोगे तो जरूर मिलोगे। क्योंकि ऋषि मतलब संत इसीलिए है कि अपने जीवन का अंधेरा दूर करे, मतलब इंसान को सही मार्ग दिखाए, वो कठोर तपस्या करते हैं तब जाके भगवान को प्राप्ति करते हैं इतने मतलब। तो बस मैं तो यही कहूंगा, और जो सच्चा संत होता है वो यही कहता है कि आप कि मेरे वैराग्य की लाज रखना, बस भगवान से कुछ और नहीं मानता, बस मानता यही मानता है, सही है ना
0: जी?
2: हाँ, बस यही कहना चाहूंगा, बस ऋषियों का सम्मान करना जरूरी है। बस अपने द्वार अगर कोई ऋषि मतलब अपन को वैसा नहीं सोचना है कि ये वो है वो है, कोई भी अपने द्वार आ जाए तो ऋषि को खाली नहीं देना।
0: अच्छा,
2: अपने लिए कोई भी अपने पूजनीय है वो ऋषि है अपने लिए
0: जी,
2: इसमें सब कुछ आ गया है ना
0: जी।
2: वो तो कहते हैं ना संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह
0: जी,
2: बस इसमें सब कुछ आ गया। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, तो सम्मान कीजिए ऋषियों का और बस मीठे फलों की प्राप्ति कीजिए। जय माता दी, जय श्री
0: जी, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, बहुत ही सुंदर आज का विषय है कि भाई हर एक डे मनाते हैं तो ऋषि मुनिया का भी डे होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उनका डे नहीं रखा है, लेकिन आज के दिन तो हम उनको अपने शुद्ध वाइब्रेशंस उनको भेज ही सकते हैं। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
3: हाँ जी सेवन जी,
0: हाँ जी कंचन भाई, कैसे हो आप?
3: बस बहन जी दुकान पे है, आज तो बारिश आई तो अभी खेत में तो जाने का जो पानी इलेक्ट्रिक पंप से बोर और कुएं में से निकालते के पियत करते थे, वो तो ये काम भगवान ने कर दिया
0: जी।
3: जो एक विश्वास है न कि भाई आएगा, बारिश आएगी, जरूर आएगी
0: जी जी,
3: बड़े बुजुर्ग पे तो आशीर्वाद होते हैं, वो बारिश आई बहन जी, रात को भी थी, कल भी थी, परसों भी बारिश आई, अभी भी आज भी अभी रुकी है, सुबह में आए ठीक है
0: जी जी,
3: लेकिन इतनी जोरों से नहीं आई कि भाई नदियों तालाबों में पानी हो, आएगी जरूर, विश्वास रखना है
0: जी।
3: ऑफलाइन ऑनलाइन?
0: हाँ जी ऑन एयर, ऑन एयर।
3: हाँ जी,
0: हाँ जी,
3: आज ये तो ऋषि पंचिंग के बारे में बात चल रही है। बड़ों का आशीर्वाद जो ऋषि जो एक साखी है तो संत मिलन को जाइयो सति लोभ मोह अभिमान जू जू डग आगे भरो तो संतों ने तो देखो ऋषियों ने कितना बलिदान दिया है। आगे हम रामायण महाभारत में देखते हैं कि वे यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग आके बहुत संहार करते थे तो ऋषि तो भी मन लोगों के लिए ये यज्ञ करते थे तो मन नहीं चलित होता था कि भाई अब रहने दीजिए यज्ञ नहीं करने है राक्षस परेशान करते हैं ऐसा नहीं किया है उन्होंने तो लोगों के लिए बहुत बलिदान दिया है
0: जी।
3: ठीक है तो आज दूसरी बन गई है तो उसका याद करना चाहिए
0: जी।
3: ठीक है
0: हाँ जी।
3: और सवाल तो मैंने नहीं सुना अभी
0: सवाल आज का सवाल? है आज का प्रश्न इस प्रकार है कि देखिए आज के दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है उनके नाम बताना है सप्त ऋषियों के।
3: हाँ वो तो मैं बताऊँ करती
0: हूँ। ठीक है
3: हाँ जी सभी दोस्तों को आज को आज ऋषि
0: जी आपको भी। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेके और उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: सप्त ऋषियों के चरणों में आज श्रद्धा से शीश झुकाए। सप्त ऋषियों के चरणों में आज श्रद्धा से शीश झुकाए। पावन विचारों की गंगा से अपने मन को नहलाए। बीते कर्मों की भूलों को प्रेम से आज सुधारे। बीते कर्मों की भूलों को प्रेम से आज सुधारे। ऋषि पंचमी के शुभ दिन जीवन में संस्कार संवारे। ऋषि पंचमी के शुभ दिन जीवन में संस्कार संवारे। तो पुनः आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। हम सभी का सम्मान करते हैं, सबका डे मनाते हैं, सबका दिन मनाते हैं धूमधाम से। लेकिन ऋषि पंचम ये भी एक अच्छा शांत त्योहार है, तो ऋषि मुनियों का भी सम्मान होना चाहिए, इनका भी दिन मनाना चाहिए। तो देखिए ऋषि मुनियों के बल पर, इनके तपस्या के बल पर तो आज धरा टिकी हुई है। बाकी तो कितना पापाचार हाहाकार मच रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। कहाँ क्या अनर्थ, छोटी छोटी बच्चों के क्या हसर हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अच्छाई भी यही है तो बुराई भी यही है। बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है। कहीं पर भी जाइए है, आप कहते हैं ना कि भाई 100 में से 10 आपको सच्चे ईमानदार दिखाई देंगे, बाकी हर एक मन में कुछ ना कुछ खोट कपट होती है। और संत महात्माओं में भी ऐसा ही है, लेकिन अधिकांश संत वो सच्चे भी होते हैं और दिल के अच्छे नेक होते हैं, जो सिर्फ समाज का भला चाहते हैं। बाकी तो कलयुग का प्रभाव उनके मन पर भी पड़ रहा है। कहीं कहीं पर हम ऐसी वैसी बातें सुन लेते हैं वो बहुत ही गलत है, लेकिन ऐसे संत जो गलत है वो बहुत कम है। जो घर का त्याग करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, जो संत बनकर सच्ची साधना करते हैं, सचमुच उनको नमन करती हूँ मैं। और जैसे कि सुरेश भाई ने कहा कि जो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर ले वही संत है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर में भी रह करके हम संत के समान अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। हेलो,
3: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ सगन जी।
2: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
3: बस बस अभी घर पे आया था, थोड़ा खेत का अच्छा किया। कल गणेश जी बैठे और हमारे लिए गणेश जी ने सुनी और पानी पिला दिया, थोड़ा जान शांति में हो गई और
2: जी,
3: थोड़ा
2: जी।
3: ये हो गया, नहीं तो जल रही थी खेती। कल अच्छा बारिश हो गया थोड़ा
2: जी,
3: तो मैं बोला चलो नवा भी घर के आते बैठा और आपको फोन लगाया हो।
2: अच्छा चलिए,
3: और क्या कोई विषय भी है क्या? कोई आई
2: आज का विषय है ऋषि पंचमी है आज, तो हम मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, बहुत सारे डे मनाते हैं। ऋषि मुनियों का भी तो सम्मान का दिन होना चाहिए।

0: नाम तो इतना मेरे को मैडम याद नहीं है, लेकिन
1: अच्छा
0: देखो कोशिश करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, बुरा राम जी, राम राम। हाँ जी,
0: और कल मैं आपको एक मैसेज भेजा था कि मेरे को थोड़ी दम की बीमारी, कुछ बताया नहीं कि बताएंगे?
1: बता दिया, आज आपने सुना ही नहीं कार्यक्रम।
0: नहीं तो मैं तो अभी आया हूँ, ठीक से अभी आके बैठ रही हूँ।
1: वो अब आशियाना तो 10 बजे शुरू हो जाता है, तो हमने बता दिया था दम्मा।
0: वो तो नहीं हो जाता है, लेकिन इसे आपको तो भी बोल दे तो रिक्वेस्ट करके तो बता देंगे तो ठीक है।
1: ये क्या, भले मैं शॉर्ट में बता दूं क्योंकि
0: ओके
1: हाँ जी, फिर दूसरे भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे ना, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि देखिए हाँ, अगर सांस फूलती है तो आप हल्दी वाला दूध पीजिए, दम्मे की तकलीफ है ना,
0: हल्दी वाला।
1: तो हल्दी दूध गर्म करके आप एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच आप हल्दी डाल करके गर्म करके पीजिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो शहद में 1 चम्मच, शहद में 1/4 चम्मच या तो मुलेठी या काली मिर्च पाउडर डाल करके चाटिए दिन में 2 बार, ठीक है।
0: और दिन में 2 बार
1: हाँ जी, और अदरक की चाय पीजिएगा, और फिर आप गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन डाल करके भाप लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी
0: ओके,
1: हाँ जी,
0: थैंक यू।
1: और आप खेत में जाते हैं, अच्छी बात है, खेत में जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन धूल मिट्टी से बचना, इसलिए मास्क लगाना है।
0: हाँ थोड़ा ये क्या मेरे को धूल, और जब ये जो सुबह ये शाम को बोले तो जब ये बगार देते ना, समका आता है ना, वो टाइम में तो मेरी हालत खराब हो जाती है।
1: वही तो, इसलिए आप मास्क लगाइए, बारीक बारीक मिट्टी कब उड़ के आ जाती पता ही नहीं चलता है। फिर यह कि स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग मत करिएगा, ठीक है।
0: नहीं मैं तो इसको पहले करता था लेकिन अभी छोड़ दिया है।
1: अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया।
0: जब से आपसे जुड़ा रहता था थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को मैं जो आदतें गंदी थी वो छोड़ दी है, धीरे धीरे सब छोड़ दिया है। थोड़ा वाइट भी करता था वो भी आपके संपर्क में आने से छोड़ दिया है।
1: क्या बात है क्या बात है।
0: हाँ बहुत बहुत नजर नाम तो मेरे है ही नहीं, कम से कम आपसे जुड़ा जब से 3-4 बरस से तो बिल्कुल मुंह पे भी नहीं लगा कोई भी नशा।
1: जी जी,
0: तंबाकू तो लग नहीं।
1: बहुत बढ़िया। और फ्रीज की चीजें नहीं खानी है, ठंडी आइसक्रीम कुल्फी भी नहीं खानी है।
0: हाँ इससे भी डिफेक्ट पड़ता है नहीं।
1: जी
0: अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ओके उषा बहन जी,
1: जी थैंक यू। तो ये थे भूरा राम जी ओर से, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। तो यही है, आज सप्तऋषि है, ऋषि पंचमी है, और इसमें सप्तऋषियों की पूजा की जाती है, और एक माता अरुंधति की, इनकी पूजा होती है। माताएं बहनें नदी स्नान करके आती है, अभी तो नदी है कहाँ है, जा नहीं पाती है, और जहाँ है वहाँ तो आज भी महिलाएं जाती है, तालाब है, नदी है, नहर है, तो महिलाएं आज भी जाती है, और नहीं तो कुएं पर। और आजकल तो देखो जो वाली महिलाएं होती है, फास्ट लाइफ है, सभी का बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को काम पर जाना है, खाना बनाना इसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो समय मिलता है तब 12-1 बजे दिन में जाते हैं, पूजा भी ये दिन में ही करते हैं 3-4 बजे। और आज के दिन जैसे कि सुरेश भाई बता रहे थे, सामा ही खाते हैं बिल्कुल, मतलब खेत में बिना खेड़ी चीज़ें, ये जो सामा है ना ये भी घास फूस में लगता है, इसको हल से नहीं हाका जाता है, तो ऐसी चीज़ें खाते हैं। कोई कोई तो आजकल क्या है, चावल भी ऐसे लगाते हैं जिसको खेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर वो चावल का वो जो लोट बॉयल करते हैं, राजस्थान में घेरिया कहते हैं, गुजराती में इसको लोट कहते हैं, चावल का लोट, तो खिचू कहते हैं, खिचू गुजराती में, तो वो भी खाते हैं लेकिन बिना खड़े चावल का। बाकी तो ज़्यादातर सामा ही खाते हैं, फ्रूट में केला खाते हैं, और तो खेत के जोते हुए तो नहीं खाते हैं। तो इस तरह महिलाएं श्रद्धापूर्वक इनका व्रत करके कहानी कहती है, और उसके बाद ही वो फराल लेती है, फराल है सामा लेती है, मतलब सामा फराल में समझिए, या फिर और इसका गोरत भी होता है, उद्यापन, 5 महिलाओं को खाना खिलाया जाता है, उसमें भी ये सामा ही बनाते हैं। फिर हाँ फ्रूट सलाद

जो भी आप बनाना चाहो साथ में बनाते हैं। और 5 महिलाओं को खाना खिलाया जाता है, ये सब पूजा अर्चना करने के बाद, और यथा योग्य उनको भेंट भी दी जाती है। तो इस तरह इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं, शुभ भावनाओं के साथ मनाते हैं कि भाई सप्तऋषि, ये तो सप्तऋषि की बात है, बाकी सारे ऋषि मुनि श्रेष्ठ है, योग्य है, और उनका हम दिल से नमन करते हैं, क्योंकि संत बनना भी हर एक के बस में नहीं है। जिन्होंने 5 अपने 5ों ही कर्मेंद्रियों को जीता है, ठीक है, वो ही सच्चे संत है। कहते ना प्रकृति के 5 तत्व, ऐसे ही शरीर के भी हर कर्मेंद्रिया, आंखें है, कुछ भी देखने की इच्छा करती, देखो आजकल मोबाइल का कितना क्रेज हो गया है, मोबाइल छोड़ते ही नहीं, लेकिन जिन्होंने इसको जीत लिया वो महान है। तो आंखें धोखा नहीं देगी उस समय, मुंह है ये खाया वो खाया, लेकिन संत जो है सच्चे संत वो न मोबाइल देखेंगे, ठीक है, काम की बातों के अलावा अब किसी शिष्य का या भक्तों का फोन आया तो वो तो उठाना पड़ेगा, और बाकी खाने पीने में सात्विक भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, और बनती कोशिश खुद बना करके भोजन करते हैं, वो सच्चे संत है। मन इधर उधर भटकता है, वो मन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा संयम मन पर रखा जाता है, तो वो सच्चा संत है। तो इस तरह संतों का भी दिन मनाना चाहिए, और आज इस दिन को ऋषि पंचमी कहते हैं कि चलो इसी बहाने हम ऋषियों की पूजा करते हैं, ऋषि मुनियों को दिल से याद करते हैं, और सुंदर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भेजते हैं, दुआएं देते हैं। और कहते हैं ना कि जहाँ दवा काम नहीं करती वह दुआ काम करती है। संत जो समाज की सेवा करते हैं, समाज में गंदगी साफ करने की सेवा करते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षा संस्कार देते हैं, तो कम से कम हम उनको दुआ तो दे ही सकते हैं, है ना। और बाकी तो बहनों का ज़्यादा है, यहाँ पर इस व्रत को बहनों का रोल ज़्यादा है, बहनें ही इस व्रत को ज़्यादा करती है, बाकी ठीक है, भाई लोग तो सहयोग देते जो चाहिए, घर में सामान ले आते हैं। तो इस त्यौहार को इस तरह मनाते हैं, बाकी तो जितना इसका वर्णन करो उतना कम है, पर बस शॉर्ट रूप में आपको बताया है कि ऋषि पंचमी इस तरह मनाई जाती है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ऋषि मुनियों का सम्मान करना सीखे और उनसे गुण ग्रहण जरूर करें, तो ही ऋषि पंचमी मनाना हमारा सार्थक होगा। और आइए आज के प्रश्न की तरफ। आज के दिन सप्तऋषियों की पूजा होती है, उनके नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आइए आशियाना के किचन में पधारिए। आज आपको ऋषि पंचमी है जिसको सामा पंचमी भी कहते हैं, तो सामा बनाना सिखा रही हूँ आज आपको। ठीक है, सामा के लिए सामग्री ले लीजिए। एक तो सामा तो लेना ही है, फिर आप लीजिएगा मूंगफली के दाने, आलू, जीरा लीजिए, हरी मिर्च लीजिए, धनिया लेना है और लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, ये आप ले लीजिए सामग्री। ठीक है, फिर तो मीठा नीम का पत्ता भी आप ले सकते हैं, धनिया पाउडर आप ले लीजिए। तो ये हो गई सामग्री जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सामा लेना है आपको, फिर आप लीजिएगा आलू, सिंग दाने जिसको मूंगफली के दाने कहते हैं, मीठा नीम के पत्ते जिसको कड़ी पत्ते भी कहते हैं, हरी मिर्च लीजिएगा, हरा धनिया लीजिएगा, आप लीजिए सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर, जीरा। ठीक है, ये सब खेत के बिना खेड़े लेना है और बहुत सारी चीज़ें ये बिना खेड़े होती है। ठीक है, सामा जो थोड़ा सा श्याम कलर का होता है उसको सामा कहते हैं। मोरैया और सामा में भी फर्क है। मोरैया चावल की तरह दिखता है, मतलब दिखता तो चावल तो लंबे दाने होते हैं, वो छोटे होते हैं, छोटे छोटे मोरैया का, लेकिन कलर ऐसा होता है। लेकिन सामा क्या है, थोड़ा सा श्याम होता है, इसलिए इसका नाम सामा रखा गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर बहनें क्या करती है, सामा नहीं मिलता है तो फिर ये बिना खेड़े चावल भी बनाती है या फिर मोरैया। ठीक है, बाकी ऐसे चावल नहीं बनाते आज के दिन, वो वाले खेड़े हुए चावल बिल्कुल नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर नहीं मिलता है सामा तो मोरैया बना देती है। तो चलिए, सामा बनाने के लिए सामग्री आपने ले ली है। अब ये सब आलू की धुलाई करके काट लीजिए, इसको सामा को आप धुलाई करिए अच्छी तरह। और ये क्योंकि ये मिट्टी से निकलता है ना, तो ये मिट्टी वाला ही होता है, इसलिए अच्छी तरह धुलाई करिएगा। धुलाई करने के बाद इसको भिगो के रख दीजिए, हरी मिर्च साफ कर दीजिए, हरा धनिया साफ कर दीजिए और रखिए। अब आप गैस पर कढ़ाई और तेल डालिए। तेल आपको यूज़ किया हुआ नहीं डालना है, अंदर से अच्छा सा ताज़ा तेल निकाल करके डालना है। मतलब ताज़ा बोले तो फ्रेश, ऐसे पहले से सब्जी का बनाया हुआ या किसी में तला हुआ ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, और वो तेल डालिए। तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरे का तड़का लगाइए। जीरा तड़क जाए तो फिर हरी मिर्च डाल दीजिए, करी पत्ते डाल दीजिएगा, फिर आप डालिए सिंग दाने और फिर आप आलू जो हमने काटे हैं वो डालिएगा धुलाई करके काट के। और फिर अब इसमें आप सेंधा नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा और थोड़ा सा मसाला फ्राई करके फिर आप पानी डाल दीजिए, धनिया पाउडर भी इसमें डाल दीजिएगा और फिर आप पानी डाल दीजिए। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार पानी डालना है। पानी का उबाला आ जाए, एक उबाल आए, फिर ये सामा जो लिया है इसके धुलाई करके अंदर डाल दीजिए और ऊपर से ढक्कन ढक दीजिए। अब इसको खदबद होने दीजिए, इसको सीजने दीजिए। देखिए, कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में ही आजकल आता है, बहनें ज़्यादा बनाती है तो बस कुकर में तो एक सीटी में काम हो जाएगा आपका। आलू है तो दो सीटी ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बाकी एक सीटी में अच्छा बन जाता है। और कढ़ाई में बना रहे हैं खुला, तो इस तरह पानी सोख ले तब तक आप इसको सीजने दीजिए, बीच बीच में आप हिलाते रहिए। वो दाना घलेगा वो तो पता चल ही जाएगा कि हमारा सामा तैयार हो गया है। तो लास्ट में हरा धनिया डाल दीजिएगा, हिला दीजिए, ये बन गया सामा। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ। आप कुकर में बना रहे हैं तो भी तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो जीरे का तड़का लगाइए, जीरा तड़क जाए तो हरी मिर्च डाल दीजिए, फिर आप सिंग दाने भी डाल दीजिएगा और साथ ही साथ मीठा नीम भी डाल दीजिएगा। पहले तो आपको सिंग दाल, ये जैसे जीरा तड़क गया फिर सिंग दाने डालने हैं, उसके बाद हरी मिर्च और करी पत्ते डालने हैं। फिर आप जब ये सब थोड़ा सा मसाला फ्राई हो जाए फिर आप इसमें डाल दीजिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और फिर हल्का सा मसाला पक जाए फिर आप पानी डाल दीजिए। आलू डालना है, आलू डाल करके हिलाना है, जब ये सारे मसाले थोड़े से पक जाए तब आप पानी डालिए और एक उबाला
कुकर में बना रहे हैं तो पानी डाल दीजिए, ठीक है। पानी डालने के साथ ही साथ आप सामा भी धुलाई करके डाल दीजिए, भिगो रखा है ना, पानी निकाल के इसमें डाल दीजिएगा और आवश्यकता के अनुसार पानी लेकर के फिर आप कुकर को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो पर्याप्त पानी है कुकर में, बस फिर कुकर बंद कर दीजिए। एक सीटी में सामा तैयार हो जाएगा। और फिर आपको कहीं कहीं का पानी हार्ड होता है तो फिर दो सीटी, बाकी एक सीटी में सामा अच्छा तैयार हो जाता है। फिर आप जब भाप निकल जाए तो धनिया डाल करके फिर से बंद कर दीजिए ढक्कन को, ताकि वो धनिया भी अंदर बैठ जाए। फिर जब चाय आप खा सकते हैं। तो इस तरह सामा बनाया जाता है, पर अपने इष्ट देव को सप्त ऋषियों को भोग लगा करके ही खाना है, ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत सुंदर है। आज सप्त ऋषियों की पूजा होती है, उन ऋषियों के नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक गीत सुन करके पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए
0: नमस्ते डॉक्टर।

0: मम्मी जी।
1: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
1: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
1: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू, क्या तुम भी यही चाहती हो?
0: जी वो न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
1: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
2: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर दम्मा है, श्वास फूलते हैं तो क्या करेंगे, आपने जाना है। और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। ऋषि मुनियों का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है, क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए जी रहे होते हैं। इसलिए आज के दिन हम ऋषि मुनियों का भी दिल से दुआएं देते, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और रेसिपी में जो सामा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। ऐसा नहीं कि बहनें ही खाएगी, भाई लोग भी खा सकते हैं। बहुत ही लाइट खुराक है, लाइट डाइट है, आप आराम से खा सकते हैं। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आज के दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है, तो उन सप्त ऋषियों का नाम बताना है। तो हमारे लगभग सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है। सुरेश भाई जोटाना से, कला बहन अहमदाबाद से, नीलम जी आबूराज से, ममता जी मेहसाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आप सभी का जवाब सही, और कंचन भाई मंडाली से, आप सभी का जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से और भुराराम जी ने जवाब नहीं दिया है, बाकी आप सभी और अलका जी जुड़े हैं, अलका जी काबरा कपासन से, आप सभी का जवाब सही है। मैं जवाब जरूर सुनाऊंगी, एक बार तालियां बजा देती हूँ। तो आज का जवाब सुन लीजिए, सप्त ऋषियों के नाम है अत्रि मुनि, जमदग्नि मुनि, कश्यप मुनि, विश्वामित्र जी, गौतम मुनि, भारद्वाज मुनि और वशिष्ठ मुनि, ये हुए सप्त ऋषि। और विषय में भी जुड़े हैं सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, फिर भुराराम जी और से जुड़े हैं, कंचन भाई मंडाली से जुड़े हैं, सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं और सुभाष भाई महाराष्ट्र से। तो आप सभी के लिए पुनः तालियां। आज का मीठा मोती है, हमारे द्वारा किया जाने वाला विचार विश्व का निर्माण भी कर सकता है तो विनाश भी। अच्छे विचार निर्माण करते हैं, बुरे विचार विनाश। अब मैं आपको अपना ही स्वरचित गीत सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक सुंदर से प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
0: दीदी मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी, और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
0: Okay.
1: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए। ये भी हो सकता है ना? सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है। उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं, तो ब्लंटली जवाब देता है। जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। अब उसको सवाल समझ में नहीं आया, तो उसने कहा क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को
0: अनकंफर्टेबल होते हैं,
1: अनकंफर्टेबल। किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं
0: जी।
1: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है।
0: ओके,
1: वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए।
0: ओके,
1: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना। सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि उस छोटी सी बात को सोचने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे पास दो बिल्लियां हैं तो मुझे दो होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल।
0: ओके
1: तो उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे ये आपने दो होल क्यों बनाए हैं। कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली के लिए
0: छोटा होल।
1: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की जरूरत
0: नहीं है।
1: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते
0: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जैसा आपने बताया वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है। जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ, उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। ओके यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
1: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
0: जी जी,
1: जो सवाल था आपका उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।
0: हाँ जी, इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते।
1: नहीं करते हैं तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
0: ओके, कैसे?
1: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो।
0: ओके,
1: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो, जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
0: ओके,
1: क्योंकि
0: इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना, और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ कि राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड। उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज, एंड वो इतने उदार दिल है कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी
0: है। ओके, तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
1: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत। या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सप्रेशन में चली जाती है। और सप्रेस की हुई फीलिंग्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे प्रेशर दे तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे
0: तो एकदम से बाहर आती है,
1: उछल कर कूद कर
0: चलती है,
1: कहीं और चली जाएगी। तो वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं।
0: ओके,
1: उसको वेंट आउट नहीं हुई ना हमारी फीलिंग्स। उसको कई बार कहते हैं आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो पर थोड़ा ज्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
0: वॉमिटिंग हो जाती है
1: या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। दबा दबा दबा दबा के सप्रेस कर कर करके फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाए। क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
0: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा। जैसा आपने कहा, इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना, हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, तो शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ क्योंकि डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं। एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा। अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसर्च में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
0: ओके,
1: हाँ, सो वो कैसे बना, तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव, तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं, अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो क्वाइन होता था
0: जी।
1: तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया है किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे। तो मैंने आगे आके कहा कि मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए। फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है, बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना, किसी के भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए। आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए और अपने आपको आपको कम नहीं समझना चाहिए। जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है। लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना। उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, लेकिन मुझे उस पर नाज होना चाहिए। उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होंगे, मेरे सिंपल होंगे लेकिन स्वच्छ होंगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी। तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं अच्छा, कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही है, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि हमारे छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई।
0: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कितना प्रैक्टिकल है ये।
1: लोग क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं
0: जी,
1: कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है
0: जी,
1: वो सामने वाले के दिल को छू जाती है।
0: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना या फिर कुछ और बनने के लिए अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे, क्योंकि शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊं मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं क्या, क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है।
1: देखिए एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
0: जी,
1: तो मुझे आप बताओ, उनको ही पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या।
0: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या ऐसे
1: ग्रुप में अच्छा शामिल होने के लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते
0: जी,
1: है ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद ही नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते,
0: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं।
1: यस, ये फेक मी है,
0: इसमें न्यू मी नहीं है।
1: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। सो यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं।
0: ओके,
1: ये हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना।
0: मुझे अच्छा फील नहीं कर, अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है।
1: लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ ऐसे। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझमें ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूँ।
0: सेम जरूरी नहीं है,
1: नहीं है। मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
0: बहुत सुंदर डेफिनेशन है। और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं। सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है। मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए, और मी जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं उसको रियली रखें।
1: जी, सो मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर ले, किसी एक शांत स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस लें और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हूँ, एक्सप्रेस करते हूँ 10 सेकेंड्स के लिए। देखिए अपने आप को रोल प्ले करती हूँ। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूँ, रियल हूँ। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस ले। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखें, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो है, जैसे है, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर है, गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार है, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं। इसलिए गहरी और लंबी सांस लें, अपने आप से वादा करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूं। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना। अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलूं। बहुत सुंदर आपने एग्जांपल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों हम बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
1: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। मुलाकात होगी लव योर जिंदगी की।

0: अरे रुको रुको, ओए रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: अभी बजे हैं रात के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी है क्योंकि राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा में पहुंचे। बहुत खुशी लग रहा है। हर दिन की तरफ आज भी विद्यालय का आवाज बच्चों का आवाज सुनने को मिलेगा। बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है जो प्रतिभा है जो भाव है भावना है कविता का माध्यम से गीत का माध्यम से प्रार्थना का माध्यम से और भाषण का माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है जिसका चलते बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस तरह मौका जब उनको मिलता है तब तो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनके पास जो छुपी हुई प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाते हैं। रेडियो मधुबन इस तरह पुनित काम करने के लिए सभी सहयोग देते हैं और सरकार भी और प्रशासन लोकल प्रशासन भी सहयोग देते हैं और विद्यालय के स्टाफ और प्रभारी इस कार्यक्रम को सहयोग देते हैं। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं पहला प्रस्तुति और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी देख रहे हैं सबको कोऑर्डिनेट किए। मैम अपना परिचय देंगे। मैम का आवाज सुनकर बच्चे भी थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे। बच्चे को बोलने के लिए उमंग उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे उनका तुतला आवाज में सुनने को मिलेगा लेकिन पहले मैम को स्वागत करते हैं। मैम अपना परिचय देंगे।
1: मैं श्रीमती अशोक धायल सब्जेक्ट इंग्लिश से
0: जी मैम
1: और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धामसरा
0: जी
1: और रहने वाले सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
0: मैम आज सीकर जिला से आप रोड में आए हैं तो आपको कैसे महसूस होता है यहाँ का और वहाँ का बच्चों का डिफरेंस देखे होंगे सीकर का और आप रोड के?
1: यहाँ पे थोड़ा सर मुझे ठीक नहीं लगता है। सीकर में एजुकेशन का काफी फर्क है। बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, बच्चों को कुछ कहा जाता है ध्यान से सुनते भी हैं और काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों को कितना भी बोल दो कितना भी कह दो ये बच्चे बहुत ध्यान देने में बहुत कमी रखते हैं और हमारे चिल्लाते रहो लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये पढ़ाई में ध्यान देते हैं, जो पढ़ना होता है स्कूल में पढ़ते, घर पे कुछ भी पढ़ के नहीं आते हैं ये। लेकिन फिर भी हम पूरे स्टाफ इनके साथ कोशिश करते रहते हैं। 7-8 घंटे स्कूल रहते हैं, इन्हीं के लगे रहते हैं कि कैसे भी बच्चे पढ़े कैसे भी आगे आए। पूरी मेहनत रात दिन इनमें लगे रहते हैं। जी सर,
0: सही बात। कितने सुंदर भाव से आपने बताया और खास कर जैसे आपने बताया आप भी कभी बच्चे होकर पढ़ रहे थे उस समय भी बच्चे जब पढ़ते थे आप भी
1: जब ये बच्चे 1 से 8 तक की क्लासों में पढ़ते हैं तब हमारा कहना भी मानते हैं और जितना कहते हैं उतना पढ़ते भी हैं। लेकिन जैसे बच्चे 9th से 12th तक पहुंच जाते हैं बच्चे एक भी सुनते नहीं है सर।
0: तो इसका राज क्या, क्यों सुनते नहीं
1: बच्चे? क्यों नहीं सुनते? इनकी दिमाग से सारी बातें ऊपर से जाती है। न टाइम से स्कूल आना पसंद करते हैं, न ही ये कोई काम करना चाहते हैं।
0: ये तो शिकायत बहुत बड़ी बात से
1: इतनी बड़ी बात ही नहीं है सर। ये हम परेशान हो जाते हैं इनको। आप ही नहीं देखा हम एक गाने के लिए सबको इनको हाँ हाँ करके आगे लेकिन एक गाना नहीं सुना पाए।
0: तो
1: सबको आता है इनको गाना लेकिन आगे नहीं आना चाहते।
0: इसे पीछे थोड़े रहेंगे, आगे तो बढ़ना, इसलिए तो सरकार भी आपका पीछे कितना मेहनत करते हैं। और मैम
1: और हमारी स्कूल की तो प्रिंसिपल मैडम इतनी एक्टिव है, इतना समझाती है इनको। सर हम एक चोटी के लिए इतने परेशान हो गए लेकिन ये इतनी अच्छी लड़कियां हैं कि दो चोटी नहीं बना के आ सकती।
0: लेकिन अभी तो देखिए दीदी बहुत सुंदर,
1: ये तो पूछो इनको हम कितना चिल्ला रहे हैं कितना कर रहे हैं फिर भी हमारे ये परेशान करने में लगी रहती है।
0: लेकिन अभी तो मुझे तो दिखाई दे रहा सबका
1: ये सुबह सुबह इनसे करवाते आते स्कूल में आने के बाद ये मैडम करवाती है इनसे।
0: देखो कितना उनका दिल में कितना लगा होगा मैम को, इतना दूर से आए तो उनका जो जिसके लिए आए वो नहीं दिखाई देगा तो उनको तो गुस्सा आएगा ना।
1: मुझे तो बहुत दुख होता है ये बच्चों को जब मैं इतना पढ़ाती हूँ। मैं इनको 5 मिनट याद करने के लिए देती हूँ कि रोज तुम 5 मिनट याद करके सुना दिया करो, रोज 5 मिनट, ज्यादा नहीं डिमांड करती हूँ इनसे। फिर भी इनसे 5 या 1 मिनट मेरे को सुनाने के लिए राजी नहीं होते।
0: जैसे अपना बच्चे कुछ शैतान करेंगे तो माँ बाप कितने दुखी होते। तो विद्यालय का जो शिक्षक गण मैम बस प्रिंसिपल जो सभी स्टाफ है आपके लिए कितना जी जान लगा कर देते, उनका जीवन आपके लिए सैक्रिफाइस किए और इतना मेहनत किए उनका समय में आपको देने के लिए, आप लेने के लिए जब पीछा नहीं करेंगे और उसको आत्मसात नहीं करेंगे उसको प्रैक्टिकल बात नहीं मानेंगे बड़ों का तो जाकर क्या करेंगे। इसलिए अभी समय मैम इसलिए अपना बात पूरा करें। हर स्कूल में ऐसे मैम होना चाहिए क्योंकि बच्चे मित्र अपना बच्चे खराब होंगे तो हमें दुख होगा,
1: बहुत दुख होता है सर। हमारे बच्चे जब हमारी नहीं सुनते, हम क्लास में आते हैं तब इनके कोई पढ़ी नहीं है कि मैडम आई है तो हम कुछ बैठे
0: शांति से। जो हुआ हुआ है, जो हो गया आज से ऐसे संकल्प करेंगे। सही बच्चे संकल्प करेंगे ना, हम आज से जरूर बड़ों का बात मानेंगे वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमारा भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। अभी से हम मानेंगे, माँ बाप का बात भी मानेंगे, हमको कोई बोलने का पहले हम खुद करेंगे। जो पहले करते हैं उसको देवी देवता कहते हैं, बोलने के बाद भी जो नहीं करते हैं, बोलने के बाद भी नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, अलग नाम है उसका, उसको बोलना नहीं चाहते हम। जो बोलने के बाद करते हैं वो तो मनुष्य है, बोलते हैं तो करते हैं, लेकिन बोलने का पहले जो करेंगे ना उसके लिए शाबाश वो चाहिए हमें। इसलिए धर्मशाला स्कूल के आगे जब आएंगे रेडियो प्रोग्राम के लिए, उस समय जरूर मैं आप सबको मैंने चेहरा देख रहा हूँ और जरूर बोलने का पहले ऐसे रेडी रहेंगे, मैम को बोलना नहीं पड़ेगा, मैम को मेहनत करने के लिए नहीं देंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, मैम को पूछना मैम हम क्या कर सकते और क्या कर सकते और क्या कर, इसे पूछो, वो देने के लिए तैयार है, आपको टिप्स देंगे, आगे भी आगे जा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम को, अपना परिवार सोचकर अपना बात को बताया, लेकिन ऐसे होना चाहिए। और आप सभी बच्चे हमारा सच्चे है और बहुत अच्छे बच्चे परियां हैं सभी, और आपका पास वो भाग्य है, लेखा आपका पास लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा उजागर करना है, बस हो जाएगा। सबका अंदर में विशेषता है, जैसे मैम बोल रहे थे सबका पास विशेषता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा आगे हमें आना है। चले बहुत बहुत धन्यवाद सबको, उमंग उत्साह दिला दिए और एक वार्म अप हो गया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। यह था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा का, खासकर मैम का अपना दिल का बात।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हमारा साथ प्रार्थना के रूप में शुरू करेंगे। कि हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में कोई भी कार्य शुरू करते तो माँ सरस्वती को व भगवान को अल्लाह को खुदा को याद करते तीन छात्र उपस्थित है तो उनको भी स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएंगे और कौन सा फल चाहते हैं।
1: मेरा नाम वर्षा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
0: क्या बात है वर्षा, हमारा कितना नाम सुंदर है। वर्षा का दिन में वर्षा बारिश तो हो रहा है और वर्षा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे और उसका दो दोस्त भी है। हेलो, नाम बताइए प्लीज।
2: मेरा नाम है अंजलि, मैं कक्षा 9 से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
0: गुड, ऐसे होना चाहिए आवाज में दम है। भले अनेक तारा है लेकिन एक चांद पूरा रात का उजाला दे देता है। तो हमारा तीन छात्र जो पूजा और वर्षा और एक,
1: मेरा नाम दुर्गा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
0: क्या बात, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। कौन बोलता भाई बच्चे नहीं आते, लेकिन मैम का उमंग उत्साह देखकर बच्चे भी अपना उमंग उत्साह को बढ़ाए और डांट खाए तो आगे बढ़ गए। तो पूजा एंड टीम को एक प्रार्थना का गीत गाने के लिए रेडी।

0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और शुरुआत जब अच्छा होता है तो अंतिम भी अच्छा होगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि बच्चे का अंदर में जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, अभी उनका आवाज जब सुन रहे थे कितना सुंदर आवाज, और कंठ में माँ सरस्वती जैसे विराजमान है, ऐसे उनको लग रहा था। और बड़े होकर तो अच्छा अच्छा आशा रखते हैं, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा, बड़े होकर मैम जैसे कितना उमंग उत्साह से सीकर जिला से आकर आपको देने के लिए आए, उनका जो शिक्षा है आपको भी शिक्षित बनाने के लिए दिए, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा?
2: मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी।
1: वाह, टीचर के लिए ताली बजाओ, हमारा बहुत अच्छा बच्ची हमारा टीचर बनेगी। टीचर होते तो बहुत अच्छे से मैम कितना दिल से अपना पढ़ाई को आप तक पहुंचाते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए उनका कदम पर चल लेंगे तो आप भी बड़े बनेंगे, है ना वर्षा? बड़े होकर तो टीचर बनेगी। और घर में कौन कौन है?
2: माँ है, बहन है, पापा है, भाई है।
1: सबसे अच्छा कौन लगते हैं?
2: पापा।
1: पापा, वाह, पापा तो पापा होते हैं, माँ तो माँ होते हैं, उनका बिना अधूरा है। जिसका माँ बाप है तो सब कुछ है, भगवान तुल्य, है ना? बाप को हम भगवान कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, है ना? तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते हैं, हमारा माँ बाप हमारा भगवान तुल्य है ना वर्षा?
2: है।
1: हाँ, तुम बड़े कर क्या बनेगी?
2: टीचर।
1: टीचर ही टीचर, तो जिसको आवश्यकता है तो सीकर जिला को हम याद नहीं करेंगे, अपरोड में टीचर मिल जाएंगे। मैम आपका टीचर का पोस्ट को सभी लोग लाइक करते पसंद करते हैं, क्या विशेषता है जो टीचर बनने के लिए आप भी टीचर बने, क्या मेहनत की मैम आप? ऐसे बच्चों का समय में आपका उमंग था जिसे हम टीचर बने का भी सोचा था, मैम आप कैसे टीचर बने? बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगा, आप कितना मेहनत किए?
3: मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि घर से 600 किलोमीटर दूरी पे मुझे स्कूल मिलेगा, जो बहुत कुछ खो दिया इस जॉब के चक्कर में, ना परिवार के साथ रह पाई, ना बच्चों की देखरेख कर पाई, ना अपना भविष्य कहीं संभाल पाई मैं। हकीकत पूछा जाए ना सर, तो मैं मेरे जॉब से बहुत दुखी हूँ कि जहाँ हूँ वहाँ मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, और जिस पोस्ट को लेके यहाँ बैठी हुई उससे भी खुश नहीं हूँ मैं।
1: देखिए मैम, ये तो आपने जो बताया, मैंने और कल लेकर स्कूल में भी वो भी दूसरा
3: टीचर बनने के लिए बहुत मेहनत करी थी, ऐसे ही नहीं पहुंचे थे आरपीएससी से टेस्ट पास करके, इतनी रातों दिन रात दिन एक करके, लेकिन जहां पहुंचे वहां बहुत परेशान हुए।
1: देखिए आपका लेखा यहां पर लिखा हुआ है तो आपको यहां पर ही पालन करना पड़ेगा, कुछ समय बाद ये चेंज हो सकता, हमेशा नहीं रहता।
3: नहीं है सर, ये हम 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, फिर 10 साल बढ़ा दिया, 15 साल कर दिया, आज 20 साल हो गए यहाँ इतनी दूर बैठे हुए।
1: अच्छा,
3: अब तो हमारे भी तो घर परिवार वाले भूल गए हमें कि हमारे कोई बहू भी है, बेटी भी है, कोई जानते ही नहीं है हम लोगों को।
1: लेकिन अच्छा लग रहा है,
3: हम लोग इन बच्चों के लिए समर्पित है सारे दिन।
1: जी जी,
3: जो पैसे कमाते हैं वो भी हम सारा यहीं खर्च कर देते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए ही खर्च कर देते हैं। स्कूल है तो ऐसे आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं कि एक एक चीज के लिए हमें खुद ही अपने पेमेंट से बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ती है।
1: जी जी,
3: जब उत्सव होते हैं तब भी हम अपने ही पैसों से लाकर स्कूल की व्यवस्था करते हैं, सरकार की तरफ से हम ऐसी गिनी चुनी चीजें मिलती है जो हम बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी।
1: तो सभी बातें दिल का बात रखें कि हमारा प्रशासन तक ये पहुंचे, क्योंकि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे प्रशासन हो चाहे भामाशाह हो, क्योंकि कोई भी जो चीज होता है उसको दिल से इस माध्यम से, ये तो कम्युनिटी रेडियो है, अपना रेडियो है, रेडियो का माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना दुख हो चाहे सुख हो सब तक पहुंचे, जो निवारण हो, कोई दुखी नहीं रहे, ये हमारा भावना है। हम दुख रहेंगे तो हमारा बच्चे कैसे रहेंगे सुखी, इसलिए दुख और सुख, हम दुखी रहेंगे तो बच्चे भी दुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे तो बच्चे भी सुखी रहेंगे, इसलिए सभी स्टाफ हो चाहे हमारा बच्चे सुखी रहे, ये हमारा भावना है। हाँ, हिसाब किताब किसका कहाँ पर जो भी होता है, कुछ कार्मिक अकाउंट भी होता है, जैसे हम कर्म को देखेंगे तो जरूर हिसाब किताब जब चुक्त हो जाएगा वो तुरंत वहां से कुछ हिसाब, बच्चों का साथ आपका किसी जन्म में लगाव झुकाव है, इसलिए आज आपका बच्चों का साथ हम रूबरू हो रहे, नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ, ये तो हमारे हाथ में नहीं कि आपका हाथ में, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, इसका मतलब और कुछ दिन थोड़ा इतना सहन किया तो और कुछ दिन सहन करना पड़ेगा लगता मुझे, और हो सकता कल भी आपका प्रमोशन होकर जा सकता आप जहाँ चाहते, क्योंकि ये तो अपना संकल्प का ही पावर है, तो ये अपना अपना जगह में है। लेकिन हमारा कहने का मतलब जहां भी रहे जो भी वो परिस्थिति तो आएगा हर जगह में, तो वो परिस्थिति को अपना स्वस्थिति में टिका रहना चाहिए, स्वस्थिति मतलब खुद को कंट्रोल करना, जो भी परिस्थिति है उसको मुकाबला करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी किसका पास क्या भी आता, हर इंसान का पास अलग अलग आता है ट्रबल, बच्चों का पास भी आज रिकॉर्डिंग करने के लिए तो उनका समस्या आ गया है, बोला हम तो नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय आया तो बच्चे
3: तो बच्चे तो अभी ये आप आए हो तो ये बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखे मैडम क्या कर ले वे, सर क्या कर ले वे। ऐसे तो खूब गाने गाते हैं, ये कोई कमी थोड़ी छोड़ते हैं।
1: देखिए अभी पहला प्रस्तुत में कितना सुंदर सा आवाज में दिए वर्षा और उनका टीम। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा छोटे छोटे परियां भी बैठे तो उनको कौन भूल पाएंगे। और राकेश सर और मैम को भी धन्यवाद देते हैं बच्चों को लेकर आए रेडियो प्रोग्राम में, क्योंकि आकाशवाणी में जब आते हैं बच्चे तो उनका परिवार जब सुनेगा अरे मेरा बच्चा पढ़ाई का साथ साथ ऐसे रेडियो में आते हैं ये कम बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। सरकार तो बच्चों के लिए ग्रामांचल बच्चों को एक रेडियो स्टेशन दिया है, ऑल इंडिया रेडियो तो बच्चे नहीं जा पाते हैं कि कमर्शियल रेडियो में जा नहीं पाते, ये सामुदायिक रेडियो कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी का आवाज के लिए बच्चों को मंच मिलेगा। और हमारा छोटी छोटी नन्हियां परिया तो उपस्थित है तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ नन्हिया परिवार आए, छोटे छोटे बच्चे टुकल आबाद में, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के सब बच्चे हैं। सभी अपना अपना नाम बताएंगे खुशी से जब सुनेंगे रेडियो में आहा की आवाज है। हेलो, नाम बताइए।
2: मेरा नाम हीना है, मैं कक्षा 14 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: अरे क्या बात, मैम जो कंप्लेन कर रहे थे बच्चे, अब पूरा उम्मीद गुस्सा आ गया भाई। मैम का इज्जत को हमको रखना, मैम हमको इस स्कूल से नाराज थे, लेकिन हमारा बच्चे आज नाराज नहीं करेंगे मैम को, नहीं करेंगे, है ना मैम? जो चाहते हैं वो करना है। ओके, हमारा बहुत अच्छा बच्ची है, ऐसे बुलंद आवाज में बोलना है, डरना नहीं, हाँ झिझक नहीं।
2: मेरा नाम है दुर्गा, मैं चौथी कक्षा पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: क्या बात, एक्सप्रेस पूरा दुर्गा काली सब यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम है गुड़िया, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है सीमा, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
4: मेरा नाम है रमिता, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ।
1: कौन बोलता है भाई, ग्रामांचल वाले आदिवासी बच्चे बोल नहीं पाते, झिझक करते, लेकिन बड़े बच्चे शर्माते हैं, लेकिन छोटे बच्चे से सीखो। 9th क्लास का बच्चे, तीसरी क्लास, दूसरी क्लास का बच्चे कैसे आवाज से बोलते हैं, मैम सही बोल रहे थे। पहले क्लास से 8th तक मानते, 9th हो गया बस पढ़ाई हो गया, ऐसे नहीं करना। हाँ,
5: मेरा नाम है भावना, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ।
6: वेरी गुड।
7: मेरा नाम है सिंजल, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: हो गया, सभी का हो गया। देखो ये आवाज जब सुन रहे श्रोता मित्र, हो सकता है उनका माँ बाप भी सुन रहे होंगे, उनका बड़ी बहन बा, बड़ा भाई बा, छोटे काका दादा दादी सुन रहे होंगे, तो सुनेंगे जब उनका आवाज को, तो वो आवाज ही उनका पहचान होगा। क्योंकि रेडियो का माध्यम से, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे FM का माध्यम से, लिंक का माध्यम से, एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, जहां पर भी भारत का कोई भी कोने में हम सुन सकते इस कार्यक्रम को, क्योंकि शाम को 7 से 8 बजे हमारा श्रोता सुनते हैं और ये सामुदायिक आवाज। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे, सब रेडी बच्चे हैं, शुरू।

0: और एक गीत। अरे वाह क्या ऐसे होना चाहिए। और वाज मोर खुद बोले सर और एक गीत गाओ, मैं आ गाओ गाओ क्यों नहीं भाई। किंतु एक गीत में हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि स्कूल बहुत दूर है हमारा घर से, घने दूर है, बहुत दूर है, तब फिर हम कैसे जाओ। सरकार सुन रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे आंगनबाड़ी जल्दी जल्दी अपना आसपास रख दीजिए, और आज प्राइमरी स्कूल भी साथ में रहेगा आसपास, तो बच्चे पढ़ने के लिए बनवाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए वैसे ज्यादा दूर में बच्चे दिक्कत होता है, बारिश का सीजन में दिक्कत होता है, गर्मी के टाइम में भी दिक्कत होता है। इसलिए जितना नजदीक स्कूल मिलेगा बच्चे तुरंत जाएंगे, और सीसी रोड मिलेगा तो अच्छा है, कीचड़ नहीं, आराम से जा पाएंगे। ठीक है चलिए और एक प्रस्तुति हमारा वर्षा सुनाएगी सभी टीम के साथ, फिर और एक गीत। कौन सा गीत गाएंगे वर्षा?
1: हम सब बच्चों को गिनती सिखाएंगे।
0: अरे वाह बहुत अच्छा सुना।
1: हाँ।

0: जो बोलो पास हमने लाया नाच, थोड़ा हम भी नाचेंगे थोड़ा तुम भी नाचोगे, थोड़ा हम भी नाचेंगे थोड़ा तुम भी नाचोगे।
1: क्या बात, ताली बजा भाई बच्चों के लिए। बस ताली में कोई कंफ्यूज नहीं है। और बच्चे, छोटे बच्चे देखो उनके पास कितना उमंग है, वो खुद बोले सर और एक गीत गाओ। मतलब गाओ गाओ क्यों भाई? हाँ, हमारा वर्षा के लिए बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। घर में कौन कौन है ना?
0: मेरा दादा है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है।
1: रोटा कौन बनाता है? रोटा
0: मम्मी।
1: और तुम बनाती कभी?
0: नहीं।
1: तुमको आती नहीं? क्या आती तुमको बता देखी?
0: हमको कविता आता है।
1: और मगरा जाते हैं? मगरा में
0: जी।
1: मगरा में क्या मिलता है?
0: बकरी
1: चराने के लिए जाते। देखो हमारा बच्चे माँ बाप का हेल्प करते हैं, बकरा बकरी को मगरा में जाते, घास वगैरह लेकर आते हैं। बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बड़ों का भी प्रस्तुति सुनेंगे। वर्षा, वर्षा नाम ले रहे, वर्षा रेडी रहे और एक प्रस्तुति के लिए मैम। फिर उमंग उत्साह से आपको फिर दिलाएंगे डोज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन नहीं।
1: ओए रुको, ओए रुको, ओए रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
2: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
1: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो, और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
3: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि बच्चे का पास थोड़ा सा जब उमंग उत्साह होता है, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाता है ना तो पिकअप पकड़ता है, तो बच्चे पहले पहले मना कर रहे थे लेकिन जब मैम का डोज पड़ा तो सभी ने बच्चे रेडी हो गए और वांस मोर करके प्रोग्राम रेडी हो रहा है। सभी को धन्यवाद देते हुए अगला प्रस्तुति के लिए रेडी हमारे साथ वर्षा एंड पार्टी आए हैं, तो सुनाएंगे।

बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए, और लय और ताल का साथ गाते हैं। बच्चों का बल गीत को नहीं देखना, उनका जो भाव और भावना, उनका जो शब्द में गला में सरस्वती का जैसे बैठा हुई ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनका सुर लय और ताल का साथ जो गीत गाते हैं तो खुशी लगता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: सकेना।
1: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ और एक छात्रा उपस्थित है, तो अपना बात को रखें। पहले आप।
1: मेरा नाम पांडवी कुमार, कक्षा 9th में।
0: चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे। सब रेडी बच्चे, शुरू।

0: किशोर।
1: चल इस कार्यक्रम को और साथ देने के लिए और एक प्रस्तुति सुनाओ।
0: मेरा नाम है अंजलि कुमारी, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामसरा। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ, गलतियों से क्षमा करना। एक दिन बोले मुझे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। एक खेत में जूता पड़ा था, उबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कोई चिड़िया बीज उड़ाती, उड़ती उड़ती गई डाल पर। हवा डरा की धूप चलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। मिट्टी की गोदी में रहकर सूरज को किरणों में जलकर। कहा बीज ने हाय अकेला, पर निडर हूँ भले अकेला।
1: अंजलि बड़ा कर क्या बनेगी अंजलि?
0: मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: और घर में डॉक्टर है कोई?
0: नहीं नहीं थोड़े गांव में है।
1: गांव में है डॉक्टर? डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीज को
0: सुई लगाना।
1: सुई लगाते हैं, इलाज करते हैं। और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है?
0: मेरा दोस्त सीमा।
1: सीमा, सीमा अच्छा दोस्त है। कौन सा क्लास के सीमा?
0: 9th
1: क्लास। और कौन सा गांव से आप आते हैं?
0: दामसरा गांव से।
1: दामसरा गांव से। चलिए हमारे साथ अब छोटी सी परी भी है, तो वो भी अपना गीत गाएगी, है ना? गाओ
2: ला ला।

0: कहाँ से कलश निकाल देते सब, कहाँ से सीखते? मोबाइल से ना, घर में कहाँ से सीखते?
1: दुर्गा
0: कहाँ से सीखते?
2: स्कूल में।
0: स्कूल में सब होता है? हाँ, कब?
2: झंडे पे।
1: झंडा पे होता है।
0: और कहाँ से आती तुम? कौन सा फली? भमरिया फली। और कौन कौन है भमरिया फली का? दो चार लोग का नाम बताओ, काका काकी का नाम बताओ।
2: गोवा राम जी।
1: और तुम बताओ?
2: विक्रम।
0: विक्रम जी। और तुम बताओ?
2: धर्मी देवी जी।
1: धर्मी देवी। और तुम बताओ?
2: गीता देवी।
1: गीता देवी।
0: और पापा का नाम?
2: रमेश कुमार जी।
0: क्या करते रमेश जी?
2: खेती।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, धन्यवाद, आभार।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में आशा मामा सब हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का

0: बावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है हेमलता गोयल। आप आबू रोड के रहने वाले हैं, आपने 8वीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60 प्लस है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू देकर के खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा 8वीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार,
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव?
1: पांच पांडव।
0: तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं, आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे छह भाई है और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, छह भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है। हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी?
1: पूरी हुई, हर डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
0: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है?
1: आज भी पूरी हो रही है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना। नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती है, भाभियां आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: अच्छा तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि छह भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों भाई बहन कैसे रहते थे?
1: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, तीन भाई मेरे से बड़े, तीन भाई छोटे, मैं पांचवे नंबर की थी।
0: अच्छा, तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
0: इकलौती बेटी है तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
1: सही बात है।
0: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
1: जन्म मैंने कहा निकालते थे बाहर।
0: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिशें होती थी
1: बहुत,
0: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
1: बंदिश थी ना। मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में ही है।
0: अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: फोरमैन की पोस्ट पे थे पर।
0: जी जी, तो आपने जैसे 8वीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
1: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बेटी सामने।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
0: तब तो आपके फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
1: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
0: अच्छा, ये सारे गेम होते थे, आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
1: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
1: सेवंथ में।
0: फिर एट में भी गए?
1: एट्थ में नहीं गई थी फिर।
0: तो सेवंथ में फर्स्ट आई तो एट में क्यों नहीं गए?
1: एट्थ में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था 8वीं पास करके।
0: अच्छा अच्छा, तो 7वीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
1: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
0: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
1: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना जो फर्स्ट मिला था,
0: सर्टिफिकेट,
1: सर्टिफिकेट और इनाम।
0: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है,
1: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
0: अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए,
1: चाहिए। टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
0: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
1: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
0: अच्छा, चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
1: ना, कभी मैंने जीता ही है।
0: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की,
1: लाइफ की।
0: अच्छा, और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
1: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो वजह से याद रह गए सारे।
0: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
1: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्र गीत और सरस्वती के ऊपर और
0: ये। जी जी, देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
1: जैसे ये मनाते ना सरस्वती का फंक्शन बसंत पंचमी के दिन, उसपे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी, सब कुछ नाच कूद में। और
0: तो चंदेलाई ने सुनाएंगे आप?
1: हाँ, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सका।
0: जी जी जी, तो ये प्रार्थना बोलते थे आप?
1: प्रार्थना बोलते थे।
0: और आप किसमें भाग लेते थे?
1: बस ये खो खो में, और वो बताया ना मैंने वॉलीबॉल में, और उसमें भाग लेती।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब तो आप कह रहे थे एट में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया
1: था, इसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
0: तो आप तो अच्छे प्लेयर रह चुके, फिर स्वास्थ्य कैसे ऊपर नीचे हो गया?
1: डिप्टेरिया हो गया था, फिर गला बंद हो गया था मेरा, तो आवाज भी नहीं आती थी मैच, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। फिर मेरा ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा नहीं पढ़ाना बोले।
0: अच्छा, इसी वजह से आपकी पढ़ाई
1: रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
0: जी जी जी,
1: मजबूरी थी मेरी, मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी थी।
0: पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
0: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई?
1: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती थी।
0: स्वाभाविक है। जी जी जी, हर एक के सपने होते हैं। जी, तो हेमलता जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरी आंखों में सपने छोटे हो या बड़े, चुन लिए हैं मैंने क्यों जिद पे हो अड़े। मेरी आंखों में सपने

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया नारी ही असली शक्ति का आधार है, नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी, पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: तो आपकी बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
1: जी, बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
2: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक का एक बच्ची है और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
1: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
2: इसलिए भेजा नहीं।
1: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़ प्यार मिलता है तो पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाते हैं।
2: बात है, सही बात है।
1: तो उस समय आपको कैसा लगा, जैसे आगे नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है,
2: दुख हुआ ना उस समय कि भाई मैं और पढ़ती, पर घर वाले लाइक नहीं कर रहे थे, क्या कर।
1: और उस समय बचपना होता है, इतना सीरियसली नहीं लेते, वो तो जब एक एज होती तो पता चलता है पढ़ाई क्या है।
2: वो तो आगे बढ़ने के बाद अब महसूस हो रहा है हमको, आगे बढ़ते तो और कहीं पहुंचते, सर्विस करते, टीचर लाइन में जाते और कहीं जाते।
1: जी जी जी, हर एक का सपना होता है,
2: मजबूरी थी ना हमारी, क्या करें।
1: जी, कोई बात नहीं, अब तो आपकी 60 की उम्र हो गई है और आप भूल भी गए होंगे उन बातों को।
2: बातें भूल गए, अब तो यही याद आता, और सत्संग का।
1: जी जी, सत्संग का याद आता है। सही बात है, कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है। तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा, चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे? खेल
2: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
1: अच्छा, तो कौन सा खेल, हमको भी पता चले उस समय क्या।
2: उस समय तो यही थे ना, आग मिचोली, छुपा छुपी, और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
1: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
2: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
1: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी।
2: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
1: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
2: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी धोती थी शादी होने के बाद में भी।
1: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला,
2: सभी का प्यार मिला, कभी कोई, कभी कोई, कभी वो।
1: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो, लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो। तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
2: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
1: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
2: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूलों में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बड़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने, सब स्कूलों में सीखा था।
1: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
2: बनाए थैलिया, मनाई कसी देखी, और सब कुछ बनाए, बैग बनाए,

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Mamta ki murat bhi wahi, shakti ka swarup bhi wahi. Mamta ki murat bhi wahi, shakti ka swarup bhi wahi. Nari ko kamzor kehne walo, nari ko kamzor kehne walo, himmat karo, pehle use samjho to sahi. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था। फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
2: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेली किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अब रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी। तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
1: अच्छा सोचा। तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
2: हाँ, हस्बैंड से बात की ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
1: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की?
2: शुरुआत
1: जी। बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
2: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
1: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
2: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
1: जी जी। तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
2: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
1: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ?
2: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
1: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
2: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
1: हाँ जी हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन, आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
2: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
1: तो बच्चे लोग आते थे?
2: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
1: तो इसकी एड कैसे की आपने?
2: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
1: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
2: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब कि भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
1: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
2: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
1: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापिस रिपीट हो जाती थी?
2: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से, कि भाई इसको ये पढ़ाना, इसको ये पढ़ाना।
1: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके 4 बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
2: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
1: अच्छा, ट्विंस हुई?
2: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
1: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
2: तो फिर काम वाली बाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं।
1: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
2: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
1: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो।
2: आई थी ऐसे तो मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई दो चार महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती, उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
1: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
2: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
1: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
2: 10 साल का गैप है, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा और इनके साथ 10 साल का रहा।
1: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
2: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
1: जी जी जी, हाँ स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे ही काम वाली माई लगा रखी थी?
2: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना। काम तो बहुत मजबूरी से, बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
1: कहते हैं ना दुख सुख जीवन के साथ चलते हैं,
2: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
1: जी जी, 4 बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना घर में भतीजा भतीजे को बड़ा किया हो, तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
2: सरल है, कराना बड़े को भतीजा भतीजे, 3 की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं,
1: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
2: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
1: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा?
2: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
1: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है, एक साथ में बना के देना पड़ता है, उस समय मुश्किल होता
2: है? तो मुश्किल भाई, बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
1: बिल्कुल, 3 जनों का टिफिन, फिर 2 बच्चों को संभालना,
2: बच्चियों को संभालना सारा।
1: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
2: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी, जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, 2 बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
1: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
2: आते थे ना पियर वाले मिलने, आते थे कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
1: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
2: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, बाहर कैसे लेके जाना दोनों बच्चों, आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैं तो मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
1: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
2: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
1: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
2: नहीं
1: थे?
2: गई, मैं 2 साल तक कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई।
1: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो 2 साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े?
3: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी, मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी 2 साल।
2: लेकिन 2 साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं?
3: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
2: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकते,
3: बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे 2 साल के।
2: जी जी, तो 2 साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया?
3: शुरू किया 2 साल के बाद।
2: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं?
3: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए 4ों के।
2: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
3: नानी बन गई ना।
2: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए?
3: कहाँ, जिम्मेदारियां तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
2: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
3: प्यारा होता है।
2: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है?
3: फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख किडनी की प्रॉब्लम है जो।
2: अच्छा, पोते पोती के?
3: पोते पोती को।
2: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई?
3: हाँ, ये परेशानियां हो गई ये सब।
2: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में जाता है?
3: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ टाइम।
2: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं?
3: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, 2 बार।
2: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
3: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
2: अच्छा, सभी साथ में, दोनों बहुएं साथ में?
3: सब साथ में, सब साथ में।
2: तो बच्चों का कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
3: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
2: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
3: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
2: अच्छा, कोरोना के समय हो गया?
3: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हुए।
2: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
3: अच्छा नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
2: फिर भी कैंसर हो गया? तो अभी ठीक है?
3: हाँ अभी ठीक है।
2: तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
3: नहीं, जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना, लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते, फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
2: जी जी जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती
3: है? हाँ, बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहू संभाल लेती है।
2: जी जी जी, और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं, उनको कितना पढ़ाया आपने?
3: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है PhD में, बड़ा बेटा MBA करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट

0: उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
1: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करती
0: है? नहीं, जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
1: जी जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है,
0: दिया सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
1: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
0: उन्होंने पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब, सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
1: जी जी जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
0: खुश हूँ मैं, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मेरे जीवन में।
1: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही है, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाती, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती, तो आप क्या कहेंगे?
0: नहीं, हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
1: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
0: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें। जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो। किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है, तू मेरा वो है। अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से चार बात अपने को सुनने को मिलेगी। इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
1: क्या बात है बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
0: धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से हैं आप, आपने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपने नॉलेज देखिए कितना है। आज आप अपनी बहुओं के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे हैं, जब शादी करके आए तो आज भाभियों के साथ बहुत ही प्यार से रहे, तभी घर में सुख शांति बनी रही। और आज भी आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए रुचि रख रहे हैं और भजन सत्संग में भी अपना समय देते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेकी गर्ल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने मन की कमजोरियों को देखना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, यही साहस आपको मजबूत बनाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शांति। आज 16 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली याद और धारणा पर है। मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान को पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। बाबा कहते वास्तव में ये गीत तुम बच्चों का संगम युग का है। इस संगम युग पर बाप को पाने से हम सब कुछ पा लेते हैं, पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। सतयुग में जाकर के ये गीत नहीं गाएंगे, ये गीत है संगम युग का। दूसरी बाबा ने बात बताई कि बच्चे आपस में भी एक दो को सावधान करते रहो और बाप की याद में रहो तो उन्नति होती रहेगी। और जो धारणा की मुख्य बात बताई है बाबा ने कि बच्चे ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, ये समझते हुए आगे बढ़ो। कभी भी कोई भी सीन को देखते हुए रोना नहीं है। बाबा आए हैं हम बच्चों को रोना प्रूफ बनाने के लिए। बाबा कहते हैं किसी भी बात में अशांत नहीं होना है। कहा जाता जिन रोया तिन खोया, अर्थात जो रोता है वह स्वर्ग की बादशाही को भी खो देता है। इसीलिए इस धारणा में स्वयं को मजबूत

करना है, हर्षित मुख रहना है। कोई भी सीन आए, कैसी भी सीन हो, नथिंग न्यू समझते हुए मुस्कुराते रहो, तो बात बढ़ेगी नहीं, समाप्त हो जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर है, वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गंवा देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं, हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी, वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, ये गीत सतयुग के लिए नहीं है, ये संगम युग पर सर्व प्राप्तियों का नशा है। ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो, घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो, और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह याद रखो, कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा, यह इनको यानी ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। नेचुरल है, नया कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो सोचेगा ये ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप, शिव बाबा तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं, रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं, एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है। क्या सावधानी मिलती है? बाप की याद में रहो, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव, और बाप को याद करो। वह है पतित पावन बाप, अब वह सन्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर है। वह है जिस्मानी यात्रा, अब हम जिस्मानी यात्री नहीं है। बाबा कहते अब हम जिस्मानी यात्री नहीं है, हम है रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्मा जीत बनो। एक है विकर्मा जीत संबंध,
दूसरा है विक्रम संवत, फिर विकर्म शुरू होते हैं। विकर्म संवत आरंभ होते ही विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां कोई विकर्म होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, दुनिया में ये कोई नहीं जानते, तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ी है परमात्मा, नाम रूप से न्यारा थोड़ी है, उनका नाम रूप भी चाहिए। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा बाप को, आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को, बाबा कहते बाप तो जरूर बच्चों को वर्षा ही देंगे, जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है, गायन भी है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है, वह एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है। बाप कहते मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूं, पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हैं। सतयुग में कोई बाबा की पूजा नहीं करते हैं, भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हैं। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वशिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सदगति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, ज्ञान और भक्ति है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है, द्वापर के बाद ये भक्ति का झाड़ बढ़ने लगता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रसम रिवाज है, भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है। ज्ञान का सारा सार है मन मना भाव। बाबा कहते ज्ञान तो सबके लिए एक ही है, बस मन मना भाव। अलफ बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा, वर्षे का विस्तार हो जाता है ना। वह होती है हद की जायदाद, यहां तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहां ही गाया जाता है, यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है। जहां बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना भारत, सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना जहां भगवान साक्षात आते हैं। कहते हैं हे गॉड फादर हमको अपने घर ले चलो, भारत के ऊपर सबका लव है, बाप भी भारत में ही आते हैं, अभी तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो, बाबा कहते गोपी वल्लभ के गोप गोपियां कौन, तुम हो।
सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो कायदे अनुसार राजा ही चलती है। चरित्र श्री कृष्ण के है नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है, शिव बाबा का चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं, ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी है, बाप कहते उन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है, करण करावनहार है ना बाबा, करण करावनहार है ना। क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते तुम मुझे बुलाते हो, आकर के हमें पावन बनाओ, मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ। पतितों को पावन बनाने के पार्ट में बाबा कहते मैं भी बंधा हुआ हूं। ऐसा कोई कह ना सके, मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ हूं, ऐसा कोई कह नहीं सकता। ये शब्द कोई उच्चारण कर नहीं सकते, पतित से पावन बनाने के पार्ट में मैं बंधा हूं। ये क्यों बना, कब बना, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा के बंधन में हर कोई है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं, निरंतर ये ड्रामा परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। आत्मा विनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है ना। नटशेल में बाप बैठ समझाते हैं ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहां नहीं होती है। ऐसी बातें बाबा कहते यहां नहीं है। मुझे तो पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं, परमात्मा बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सुनाया, यह भी तुम जानते हो। बाप आते ही है कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नई स्थापन करेंगे ना, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। कल्प के संगम युग में ही ये बड़ा कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं, कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले, मिसल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी ये समझना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए, हम अखबारों में क्या डालें, यह भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है, सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से
बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वे लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है जो पार्ट बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं, पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहां बच्चे आदि कभी रोते नहीं हैं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहां भी तुमको रोना नहीं है, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। जिन रोया तिन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता ही नहीं है, फिर रोने की क्या दरकार है। पतियों का पति मिला वह तो कभी मरता ही नहीं है, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्र माला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना, ये सब कुछ बाप ने दिया है तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, ब्रह्मा बाबा से भी ममत्व निकाल दो। समझो ये सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो। शिव बाबा का है और शिव बाबा की मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। यहां कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है, यहां इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं, आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, ये अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा, ड्रामा में नोंद है, सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं। यह खूने नाहक खेल है, नाहक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़े,
यह तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है।

सजा किसको दे, पकड़े किसको। विनाश तो होना ही है, अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं और कल हम अमर लोक में होंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। कई लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी है बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी बहुत अच्छा है, ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, हम मानते हैं बस। खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। लिखते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि परमात्मा के सिवा ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, फिर भी सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिख करके तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तू घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक सो मत जाना, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, यह भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, इसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं है। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है, तुम भी जब तक बीके न बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बिचारे मुंझे हुए हैं, बताना है डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है, देधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरी पॉइंट, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर
फिर बाह्य मुक्तता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। आज का स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। आज का अव्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप दाता के बच्चे, सभी को देने वाले मास्टर दाता हो। आप अपनी एक सेकंड की दृष्टि से, अमूल्य बोल से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ। कोई भी दर पर आई हुई भूखी आत्मा खाली न जाए। जैसे साकार में करके दिखाया, कोई भी आत्मा संतुष्ट होकर नहीं गई। तो बल कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। अच्छा, ओम।